पक्का कीजिए और हमारे साथ इस सुंदर सुबह की यात्रा शुरू कीजिए। और आज हमारे साथ एक प्रबुद्ध मेहमान मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे आध्यात्म के बारे में, धर्म के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं दिव्य दर्शन।

आइए दोस्तों, आइए मित्रों, आइए महानुभावों, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दिव्य दर्शन के इस पवित्र और बहुत ही प्यारे से प्रोग्राम में। जैसा हम हमेशा करते हैं, ये प्रोग्राम है अपने अंदर झांकने का, अपने को पहचानने का, आध्यात्म को समझने का। तो आज जो मेहमान हमारे साथ हैं, जिनसे हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं, वो हैं सुनीता मैम। मैं सुनीता मैम का बहुत बहुत आभारी हूं, साधुवाद देता हूं, उनका स्वागत करता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि सुनीता मैम अपने बारे में हमें बताइए, थोड़ा सा बताइए, आप कौन हैं, कहाँ हैं, क्या करती हैं आप?

0: करुणा रेखी, आकाशिक हीलिंग एंड पास्ट लाइफ के बारे में भी, मतलब रिग्रेशन जो बोलते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन, वो भी मुझे आता है। तो बेसिकली ये सब एक इसी लाइन में ही डिफरेंट डिफरेंट रास्ते हैं स्पिरिचुअलिटी में
1: जी।
0: और ऑटोमेटिक राइटिंग भी मुझे आती है एंड लाइक सोल से कनेक्ट करना भी आता है।
1: जी।
0: तो ये सब अलग अलग पार्ट ही है इसी लाइन के और मैं प्रैक्टिस करती हूँ काफी टाइम से। अब तो मुझे मेरे ख्याल से 15 साल हो गए,
1: जी
0: ऊपर ही हो गए होंगे। बस
1: बिल्कुल ठीक। तो दोस्तों आपने जाना कि सुनीता मैम बेसिकली एक हीलर है, एक चिकित्सक है। चिकित्सक मतलब वो जो हील करते हैं, जो हम लोगों को उचित बनाने की कोशिश करते हैं, प्रकृति के साथ तालमेल बैठाते हैं। बहुत सुंदर। तो सुनीता मैम जाहिर सी बात है जब आप हील करते हैं, लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हैं, उनके वेलबींग के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनकी मानसिकता के लिए कोलैबोरेट करते हैं, तो बात जिस विषय में हो रही है इस प्रोग्राम में, मैं उस विषय में आपसे पूछना चाहूंगा। बात आध्यात्मिकता की है, स्पिरिचुअलिटी की है, और जैसा मैं मानता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो प्रैक्टिसेस हैं वो स्पिरिचुअलिटी से बहुत कनेक्टेड हैं। तो आपके हिसाब से, आपके परसेप्शन से, आपकी समझ से आध्यात्म की क्या परिभाषा है, द डेफिनेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी?
0: स्पिरिचुअलिटी आपको ना प्रैक्टिस करनी पड़ती है, इट्स अ पाथ। तो इसमें ये रहता है कि आप अपने आप पे काम करते हैं, मतलब कि जब आप अपने आप से क्वेश्चन करना शुरू करते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं कहाँ से आता है
1: जी।
0: तो जब हम इसके बारे में सोचना शुरू करते हैं, दिस ये एक पार्ट हो गया आपका स्पिरिचुअल पाथ पे चलना। ये तो मतलब बहुत लंबी यात्रा रहती है, लंबी जर्नी है। तो ये तो जस्ट एक इनिशियल फर्स्ट स्टेप जो मैं बोल रही थी कि जब हम खुद ये सोचना या कॉन्शियस होते हैं कि अवेयरनेस होता है हमारे अंदर, बिकॉज यूजुअली लाइफ में क्या भाग दौड़ चलती रहती है, बच्चे होते हैं, शादी होती है, पढ़ाई करनी है, पैसे कमाने हैं, ये एक नॉर्मल रूटीन सबका चलता ही है
1: जी।
0: इसके ओवर एंड अबाउट दैट जब आपको लगता है कि नहीं हमारे ऊपर भी कुछ पावर है, कुछ शक्ति है
1: जी,
0: तो उस शक्ति से जब हम जानना चाहते हैं, उस शक्ति के बारे में हम कोशिश करना चाहते हैं जुड़ने की, तो ये एक चलने लगे हम स्पिरिचुअल पथ पे। तो यही मेरे हिसाब से तो यही है कि ये एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। लाइफ लॉन्ग तो क्या, मतलब लाइफ की जर्नी रहती है स्पिरिचुअलिटी। अल्टीमेटली हमारा सोल इसीलिए ही जन्म लेता है ताकि हम अपने आप पे काम करते रहें। मेन पर्पस तो हमारा सोल का वही रहता है, आत्मा का, कि आत्मा की शुद्धि हो और उसी पे ही कैसे हम अलग अलग अपने विकार जो है वो नष्ट करते जाएं। इसीलिए जन्म जन्मांतर की मेरे ख्याल से ये जर्नी रहती है, यात्रा रहती है। एंड यही है कि कब इंसान मतलब बहुत दुर्लभ से ये मानते हैं हम लोग कि ये जीवन मिलता है, हर इंसान को ये योनि नहीं मिलती इंसान की, बहुत जिन्होंने बहुत अच्छे कर्म किए हैं यू नो उनको ये योनि में जन्म मिलता है। तो इसका हमें बहुत फायदा उठाना चाहिए इस चीज का
1: जी।
0: कि हम ही एक ऐसे हैं इंसान की जो योनि बोलते हैं जो उस स्पिरिचुअल पावर से कनेक्ट कर सकते हैं, ये किसी और में ये पावर नहीं है। मतलब जैसे जानवर है, झाड़ है, पत्थर है, नदियां हैं, इनमें ये पावर नहीं होता, समझ नहीं होती। हम इंसान जब जन्म लेते हैं, वी हैव दैट पावर एंड द नॉलेज, ज्ञान जो हमें है उस प्रकृति का। तो इसे हमें बहुत दुर्लभ मानना चाहिए कि हम इतने मतलब थैंकफुल रहना चाहिए कि वी आर सो हैविंग

0: स्पेशल लाइफ, तो ग्रेटिट्यूड में रहना चाहिए और इस पे काम करना जरूरी है मेरे ख्याल से, हर आत्मा को करना चाहिए, पर हर एक का अपना समय रहता है।
1: तो दोस्तों आपने जाना कि कितने आसान शब्दों में, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, बहुत आसान शब्दों में सुनीता मैम ने हमें बताया कि स्पिरिचुअलिटी क्या होती है। मैम मुझे आगे बढ़ते हुए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए ये बताइए कि अध्यात्म के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में आपने सबसे पहले कब सुना, किसने बताया आपको कि स्पिरिचुअलिटी कोई चीज होती है, कोई प्रैक्टिस होती है, एक धारा है जीवन की, सबसे पहले अध्यात्म से आपका परिचय कब हुआ?
0: मेरे ख्याल से मोस्टली जैसे हम फैमिलीज में देखते हैं, ये बचपन से ही हमारे मतलब माता पिता ही हमें बचपन से कुछ न कुछ ऐसी कहानियां सुनाते हैं और कनेक्ट करवाते हैं उस हायर पावर से, तो वो तो आगे चल के हमें पता पड़ता है कि ये एक स्पिरिचुअलिटी वर्ड है, बट मोस्टली तो ये सबके जीवन में बचपन से ही वो संस्कार डाले जाते हैं हर फैमिलीज में
1: जी,
0: तो वहां से ही स्टार्ट होता है ये बचपन से, हर फैमिली टू फैमिली डिपेंड करता है, बट मेरे तो फैमिली में मैं बोलूंगी वहीं से ही स्पिरिचुअलिटी का मुझे ज्ञान बचपन से ही रहा, नॉलेज रहा, इनडायरेक्टली हमेशा स्टोरीज वैसी सुनाई गई, गाइड किया गया, बुक्स ला के दे दिए पढ़ लो, गाने सुनाए, यू नो मंदिर में ले जाना, तो वो एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ हो गया।
1: जी वेरी नाइस। जाहिर सी बात है हमारे भारतीय संस्कृति में ये चीज हमेशा से रही है कि हमारे घर से ही हमको अध्यात्म के बारे में या स्पिरिचुअलिटी के बारे में मालूम पड़ता है, और यही चीज सुनीता मैम ने भी बहुत क्लियरली बताई, बहुत सुंदर। तो दोस्तों यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और आगे एक प्यारा सा भजन सुनने के बाद मैं सुनीता मैम से और बातचीत करूंगा, हमारे साथ बने रहिए।

0: सुनीता मैम, आगे बढ़ते हुए प्लीज मुझे ये बताइए कि क्या अध्यात्म को सीखने के लिए, समझने के लिए, स्पिरिचुअलिटी को लर्न करने के लिए क्या हमें किसी टीचर की, गुरु की, किसी टीचिंग्स की जरूरत है?
1: स्पिरिचुअलिटी जैसे मैं अभी आपसे बता रही थी कि ये एक पाथ है, जर्नी है, एक पथ है
0: जी।
1: तो इसमें हर एक किस टाइम पे वो कॉन्शियस होता है आत्मा, कि उसको रियलाइज होता है कि अब मुझे मैं कौन हूं। जब वो क्वेश्चन करना शुरू करती है आत्मा, तो वो जब इस पथ पे चलना शुरू करती है आत्मा लेवल पे
0: जी,
1: तब हमें ये रियलाइजेशन होता है कि मैं कौन हूं से आ जाता है कि मुझे अपने आप पे काम करना है, मुझे अपने ऊपर फोकस करना है। अब आगे आ जाता है कि गुरु की जरूरत है।
0: जी
1: मेरा मानना ये है कि जब आप खुद अवेयरनेस में रहते हैं तो गुरु अपने आप आपके पास आते हैं। जब आप रेडी होते हैं
0: जी
1: तो गुरु अपने आप आपके पास आएंगे, आपको कहीं गुरु को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती।
0: ओके।
1: पर हाँ, गुरु की जरूरत रहती है जब आपकी आत्मा उस लेवल पे पहुंच जाती है कि वो तैयार होती है कि मुझे और ज्ञान चाहिए, ज्ञान की प्राप्ति चाहिए। तो जैसे आप अलग अलग तरीके से इंसान का अलग अलग मार्ग रहते हैं ना, कोई भक्ति मार्ग करता है, कोई कर्म योग की करता है, कोई बुक्स पढ़ता है, कोई भजन जाता है करने, कोई चैरिटी में बिलीव करता है। हर एक का डिफरेंट वे है कि वो कैसा चाहते हैं जिससे उन्हें वो पीस मिलता है। अल्टीमेटली ये इस जर्नी इज मोर लाइक पीस, पीस ऑफ योर ओन सोल।
0: जी
1: तो वो हम खोजने वही निकलते हैं पीस को। क्यों? क्योंकि मन आत्मा बड़ी दुखी है, अंतरात्मा दुखी रहता है, तो उस टाइम पे हमें लगता है कि कहाँ जाएं, किधर जाएं, तो खोजना शुरू करती
0: जी
1: मैं कौन हूँ, क्या करें, किधर जाएं। कोई सोचता है चलो भगवान की पूजा कर ले, हमारा थोड़ा ये तकलीफ कम हो जाएगी। कोई बोलता है मैं थोड़े बुक्स पढ़ लूं, है क्या, कोई बोलता है मैं भजन कर लूं। तो जब हम वो ढूंढना शुरू करते हैं तो ये एक स्टार्ट होती है जर्नी की। और आगे चल के जैसे आप तैयार होते जाएंगे ना, तो आप खुद देखेंगे कि आपको कोई ना कोई, कहीं ना कहीं से गाइडेंस देने वाला, हेल्प करने वाला कोई तो ऐसा गुरु मिल ही जाता है जो आपको इस जर्नी पे आगे ले जाता है।
0: जी, बहुत खूब। तो जाहिर सी बात है सुनीता मैम, बतला भी रही हैं ये, और ये बहुत नेचुरल सी बात लगती है कि अगर कोई मार्ग दिखाने वाला, रास्ता दिखाने वाला मिल जाए तो जरा आसानी हो जाती है, फिर चीजें जरा इजीली समझ में आ जाती हैं। बाकी तो जाहिर सी बात है प्रैक्टिस की बात है, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, मेडिटेट करेंगे या सोचेंगे उस बारे में, तो क्लैरिटी बढ़ती जाएगी। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद मैम जी। आप कुछ कह रही हैं मैम?
1: यही मैं बोल रही थी कि गुरु जब हमें आता है हमारे लाइफ में तो वो उसका बहुत मतलब, अब आप समझिए कि आप और ऊपर जर्नी में जाने ही वाले हैं, आप एक हायर लेवल पे वाइब्रेट करने वाले हैं, और वो गुरु के साथ से ही, एक बोलते हैं ना गुरु ही हमें जो भव सागर से पार लगा देता है, तो वो बहुत हेल्प हो जाती है। गुरु के पथ तो रहता है पर गुरु के मार्ग में जब आजू बाजू में जो जंगल में हम जब चलते हैं तो आपके जो भेड़ भेड़िए जो भी हैं वो सब कोई तकलीफ नहीं देता क्योंकि गुरु का साथ रहता है, आप आराम से वो पथ क्लियर कर लेते हैं।
0: बहुत खूब, बिल्कुल ठीक। तो मैम जाहिर से बात है हम लोग अध्यात्म की बात कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं, तो एक और शब्द है जो पीछे नहीं रहता, बिल्कुल साथ साथ ही चलता है, वो है धर्म, रिलीजन। आपके हिसाब से मैम, धर्म और आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन, इनमें क्या फर्क है?
1: धर्म अगेन ये एक टूल है
0: जी,
1: है ना?
0: जी,
1: एक मींस टुवर्ड्स एन एंड है
0: जी,
1: तो एंड तो वही है स्पिरिचुअलिटी।
0: ओके,
1: सबकी उस आत्मा से, उस सोर्स से कनेक्ट होना है। तो हमें उस ऊपर वाले में विलीन होना है। तो विलीन होने का मार्ग अलग अलग जैसे टूल्स होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि बिना रिलीजन के आप वो अचीव नहीं कर सकते। रिलीजन एक हेल्प हो जाता है
0: जी,
1: जैसे आप खाना बना रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप छोटे चम्मच से खाना नहीं बनेगा या बड़े चम्मच ही चाहिए या ये, बट सही चम्मच अगर होता है तो एक आसान हो जाता है। तो
0: जी
1: मेरा मानना है कि रिलीजन का भी उतना ही काम है, उससे ज्यादा उसे इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए। रिलीजन शुड नॉट बी एन एंड इन इटसेल्फ, फिर आप भटक गए हो।
0: जी जी यू आर एब्सोल्युटली
1: तो
0: एब्सोल्युटली राइट मैम।
1: भटकना नहीं है, अगर आपने पाथ में जो आपका है वो पाथ से भटकोगे तो फिर इस वेद विवाद में ही अटके रहोगे, मेरा ये रिलीजन उसका वो रिलीजन उसका। हर रिलीजन का आप अगर ध्यान से पढ़ें, वही बोलता है सोर्स एक है, कनेक्ट उसी से होना है, अच्छे इंसान बनो, अच्छे कर्म करो। कोई रिलीजन, जहां तक मुझे पता है, हर रिलीजन में ये चीज तो रहती ही है।
0: ओके
1: तो दिस आर ऑल जस्ट लाइक अलग अलग क्रिएशन है, बट अगेन इट्स जस्ट टूल्स, यू नो, अ वे जो हमें हेल्प करता है टू अचीव एन एंड।
0: ब्यूटीफुल, आपने बिल्कुल बिल्कुल सही तरीके से बताया है मैम। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी, धर्म और आध्यात्म के बीच का फर्क। बहुत सुंदर। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए एक प्यारे से भजन का आनंद लें और फिर सुनीता मैम से बात करने के लिए हम वापस हाजिर होंगे।

0: पावर मिलता है,
1: जी
0: शक्ति मिलती है जब हम मेडिटेशन करते हैं,
1: ओके
0: और उसमें हमारी आत्मा को तृप्ति फील होती है और उसमें से हमारी लाइट आना शुरू होती है, तो आत्मा शाइन होना शुरू होती है। जब आप मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं, ऑटोमेटिकली आपके आजू बाजू पॉजिटिव वाइब्रेशंस आते हैं, लोग आपसे कनेक्ट होते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, आपको कहीं नहीं जाना, क्योंकि आप एक लैम्प है।
1: राइट जी
0: तो ये है, तो जब मेडिटेशन, मेरे ख्याल से कि अलग अलग वे होते हैं, बट जैसे हम, जैसे भी हम अपने मतलब सोल लेवल पे, आत्मा लेवल पे जब हम कनेक्ट करते हैं, यहाँ हमें पीसफुल लगता है, बहुत मन शांत रहता है, माइंड डिस्टर्ब नहीं रहता है, ये भी एक मेडिटेशन ही है।
1: ऑलराइट, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने पिक्चराइज करके बिल्कुल जैसे एक एक एक फिल्म जैसी दिखा दी कि किस तरीके से आप एक मेडिटेटिव स्टेज स्टेप स्टेज में होते ही हैं, फिर आप चाहे महसूस करें उसको या ना करें। ये बड़ी खूबसूरत तरीके से आपने बात बताई मैम, बहुत बहुत धन्यवाद इसका। तो दोस्तों बस एक प्यारे से भजन को सुने और फिर वापस से इसी तरीके की बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही जानकारी से भरपूर भरी हुई बातों के लिए हम सुनीता मैम के पास वापस हाजिर होते हैं।

0: बहुत सुंदर। सुनीता मैम, आपको क्या लगता है, आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से भी और जितना भी आप स्पिरिचुअलिटी को समझती हैं, क्या स्पिरिचुअलिटी अपना लेने से या आध्यात्मिक हो जाने से कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति पॉजिटिव हो सकता है, मतलब अपने पर्सनालिटी में, अपने चरित्र में, अपनी शख्सियत में, अपनी जिंदगी को जीने के लिए? तो सवाल यह हुआ मैम कि क्या आध्यात्म हमारे कैरेक्टर के ऊपर, हमारी पॉजिटिविटी के ऊपर कुछ असर डालता है?
1: बिल्कुल बिल्कुल हाँ, 100%। क्योंकि आध्यात्म में इसमें क्या रहता है कि जब आप सबसे पहले ना अवेयरनेस मोड में रहते हैं, ठीक है, आप अवेयरनेस मोड में रहते हैं तो आपको अपने थॉट्स पे फोकस करना होता है कि मेरे पास ये क्या थॉट आ रहा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो आप उस अपने आप को स्पिरिचुअल जर्नी में आप अपने आप को एज अ थर्ड पर्सन फोकस करते हैं, एज अ आउटसाइडर साइड में खड़े रहते हैं, आप अपने आप को देखते हैं कि मेरे दिमाग में ये थॉट आ रहा है, मेरे दिमाग में ये सही आ रहा है, मेरे दिमाग में ये गलत आ रहा है। जब हम ये करना शुरू करते हैं, अपने आप पे वर्क करना शुरू करते हैं, थॉट से ही तो बिल्ड होता है ना कि आपके जो एक्शंस हैं। तो
0: जी,
1: बिगनिंग इज थॉट, थॉट से आता है एक्शंस, एक्शन से आ जाता है आपका कैरेक्टर, सही है। तो ये तो सभी को पता है, वो कैरेक्टर से फिर आपके थॉट से आ जाता है, एक्शंस एक्शन से आ जाता है, हैबिट हैबिट से आ जाता है आपका कैरेक्टर। तो द फर्स्ट स्टेप इसी का यही रहता है कि जब आप अवेयरनेस में हैं, आपको पता है कि आप सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो आप अपने आप पे काम करना शुरू करते हैं, है ना
0: जी।
1: जब आप अपने आप पे काम करना शुरू करते हैं तो आपको रियलाइज हो रहा है कि आज मुझे बहुत गुस्सा आ गया, मुझे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था, मैंने क्यों किया, शायद मैं इसको थोड़ी और तरीके से अच्छे से हैंडल कर ली होती सिचुएशन, शायद मेरे को थोड़ा शांत होकर कुछ और वे में भी हैंडल कर लेना चाहिए था, या किसी से जेलसी आ गई, हाँ किसी से। अब आपको एज ए ह्यूमन बीइंग रियलाइजेशन तो होता है कि गुस्सा आ रहा है, जेलसी है, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, ये सब हमारे विकार हैं जिस पे हम वर्क करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में जाएंगे तो आपके अंदर ये नेगेटिव थॉट्स और ये नहीं एकदम नॉन एग्जिस्ट हो जाते हैं, बट आप अवेयर हो जाते हैं और आप इस पे काम करने लगते हैं। जब आप इस पे काम करना शुरू करते हैं, अपने आप पे वर्क करना शुरू करते हैं, तो जब आप अपनी गलतियां शुरू कर देखना शुरू करते हैं, मेरे से गलती हो गई, और हम अपने आप को कितनी जल्दी से माफ कर देते हैं ना, अरे गलती हो गई छोड़ दो, जानबूझ के नहीं किया, बट अगर किसी और ने वही गलती कर ली, इतना गुस्सा आ जाता है, इतनी गलती कैसे चल रही। तो जब हम अवेयरनेस मोड में रहते हैं तो हम वो रियलाइज करते हैं कि जब मैंने गलती की तो माफ कर दिया, सामने वाले से भी गलती हो गई, जाने दो, तो यू बिकम एम्पैथेटिक।
0: जी जी,
1: एम्पैथी तो रहती है, एम्पैथी आ जाती है, तो सामने वाले के जरिए से आप उनको, सामने वाले को भी अपने तरह देखने के, अपने प्लेस में रख के देखना शुरू कर देते हैं। तो वो उस हिसाब से क्या आपका पूरा बिहेवियर चेंज हो जाता है, आप एक बहुत पॉजिटिव वाइब्स देना शुरू कर देते हैं, आपके आसपास में देखिए फिर अच्छा माहौल रहेगा। तो इस तरह से जो आप बोल रहे हैं पॉजिटिविटी में कैसे काम करता है, ये जस्ट एक मैं बता रही थी कि हाउ इट ब्रिंग्स पॉजिटिविटी नॉट ओनली इन यू बट इट हेल्प्स द होल एटमॉस्फेयर, पूरा पॉजिटिविटी क्रिएट करने में हेल्प करता है।
0: बहुत सुंदर, बिल्कुल बिल्कुल सही बताया मैम आपने। जाहिर सी बात है आध्यात्म चीज ऐसी है, एक प्रैक्टिस इस तरह की है कि हमें पॉजिटिव रहने में हमेशा बहुत बहुत मदद उससे मिलती है। ये बात प्रैक्टिस करने पर आपको महसूस होगी दोस्तों, एक बार ध्यान लगाइए, एक बार इसकी प्रैक्टिस कीजिए तो मालूम पड़ेगा कि किस तरीके से हम अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। बहुत सुंदर। चलिए सुनीता जी, एक और छोटे से भजन का आनंद लेने के बाद हम वापस आते हैं।

0: सुनीता मैम, अगर इस प्रोग्राम को सुनकर, आपकी बातों को सुनकर कोई समझ जाए कि ऑल राइट, अध्यात्म मेरे बहुत काम की चीज है और मुझे इसको अपना लेना चाहिए, इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो आप किसी भी साधारण व्यक्ति को क्या सलाह देना चाहेंगी? 1, 2, 3 ये प्रैक्टिसेस करिए या ये काम कर लीजिए सिंपल से, और अध्यात्म का फायदा या अध्यात्म का जो महत्व है आपको पता चल जाएगा आपके जीवन में, तो वो क्या सजेशंस आप देना चाहेंगे?
1: सजेशंस देखिए, ये तो इसमें काफी हर एक की अपनी इंटरेस्ट की लेवल भी रहती है, कितने जने स्टोरीज पढ़ना चाहेंगे, कितने जने बुक्स पढ़ना चाहते हैं, बट एक सिंपल सी चीज मैं जो सजेस्ट करूंगी कि आप एक जर्नल रखिए और एट द एंड ऑफ द डे उसमें जो दिन में आपके साथ जो अच्छा हुआ, जिसके लिए आपको लगता है कि ये बहुत अच्छा लगा मुझे एंड थैंक यू नो यूनिवर्स, तो वो आप एक ग्रेटिट्यूड जर्नल बनाइए। ये एक बहुत सिंपल सी स्टेप है बट ये आपको बहुत हेल्प करती है कि आप ग्रेटिट्यूड मोड में रहते हैं। जैसे आप ग्रेटिट्यूड मोड में रहते हैं ग्रेटिट्यूड जर्नल बनाने से, तो एक थैंक्स रहते हैं ना हमेशा के
0: जी।
1: भगवान ने मुझे ये अच्छा किया, थैंक यू सो मच गॉड। तो जब हम उस मोड में रहते हैं तो वो एक बहुत बेसिक प्रैक्टिस से हम चालू करते हैं, एक ये हो जाता है। ऑफ कोर्स बीइंग थैंकफुल फॉर एवरीथिंग,
0: करेक्ट जी जी जी,
1: दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप मैं यही बोलूंगी, ट्राई टू स्टे कनेक्टेड मोर विथ नेचर, जितना हो सके आप प्रकृति से कनेक्टेड रहिए और ग्राउंडेड रहिए। वॉक करिए इवन ऑन द ग्रास विदाउट योर चप्पल, दीज आर द बेसिक्स जो मैं बोलूंगी कि ये सब करना ही चाहिए। थोड़ा आप अपने योगा करिए, लोम विलोम प्राणायाम करिए, ये प्रैक्टिसेस अपने स्टार्ट करिए, थोड़ा वॉक पे जाइए, ये सब इनिशियल स्टेजेस हैं। डू सम प्रेयर्स, स्टार्ट फ्रॉम देयर, रीड सम स्टोरीज, व्हाटएवर यू रीड, सम मॉरल स्टोरीज,
0: जी,
1: तो
0: जी.
1: वहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं। एंड ऑलवेज ट्राई टू बी काइंड, यू नो, वर्क ऑन योरसेल्फ टू बी अ बेटर पर्सन, ट्राई टू हेल्प अदर्स, दिस इज द बेसिक थिंग्स। यहाँ के आप स्टार्ट करके फोकस करिए एंड उसके आगे आप चलना चाहें तो ऑफकोर्स यू कैन स्टार्ट विथ मेडिटेशन एंड यू कैन डू सम चैरिटी, यू कैन डू सम प्रेयर, एंड आपके आगे रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे, ऊपर वाला अपने आप गाइड करेगा व्हाट इज द बेस्ट वे टू गो।
0: बहुत सुंदर, अमेजिंगली ब्यूटीफुल, बिल्कुल ही सीधी सीधी सी सच्ची बात दोस्तों। बहुत सिंपल मेथड्स, बहुत सिंपल तरीके मैडम ने बताए हैं, जो मुझे समझ में आया और मेरे काम की चीज लगी वो ये है कि हमेशा थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, याद रखिए कि आप किस किस चीज के लिए शुक्रगुजार हैं। थैंक यू कहते चलिए। आध्यात्म का ये तरीका भी बड़ा प्यारा है, बहुत सुंदर। सुनीता मैम, आपका बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, आपने बिल्कुल सिंपल तरीके से हमें चीजें बताई। जाहिर सी बात है, आप रेकी ग्रैंड मास्टर हैं तो ये चीजें आपकी रोज की प्रैक्टिस में हैं, तो बहुत आसान तरीकों से आप किसी को भी बता सकते हैं कि वो किस तरीके से इनको एम्ब्रेस करें, एक्सेप्ट करें और प्रैक्टिस करें। सुनीता मैम, आपका बहुत बहुत आभार, थैंक यू सो मच इन कमिंग टू आवर प्रोग्राम,
1: थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग, इट वॉज माई प्लेजर, थैंक यू।

विराम देते हैं। आशा है कि ये कुछ पल आपके मन को सुकून और दिन को सकारात्मक दिशा देंगे। मुस्कान के साथ दिन की शुरुआत करें, अच्छे विचारों को साथ रखें और शांति को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त समीर।

Hello, hello, hello. Mic check, 1, 2, 3. Energy check. Chai ready? Dil ready? मैं हूँ तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो बातें इधर की उधर की, जहाँ बातें सिर्फ होती नहीं, घुमा फिरा कर दिल तक पहुँचती हैं। यहाँ हम गॉसिप नहीं करते, हम हिस्ट्री को थोड़ा सा फन बना देते हैं। यहाँ फैक्ट्स बोर नहीं करते, वो डांस करते हुए आते हैं। कभी किसी चाय की कहानी में दुनिया देख लेते हैं, और कभी किसी सिंपल इंसान की स्टोरी में रेवोल्यूशन पकड़ लेते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, स्माइल थोड़ी सी और वाइड कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आपकी सोच थोड़ी सी अपग्रेड जरूर होने वाली है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये है बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। बॉस्टन टी पार्टी, एक कप चाय और आजादी की चिंगारी। दोस्तों, हमारे यहाँ चाय एक इमोशन है। घर आए मेहमान को चाय, ऑफिस के ब्रेक के लिए चाय, और दोस्ती की शुरुआत भी अक्सर चाय से ही होती है। पर क्या आप जानते हैं, एक बार चाय ने पूरा रेवोल्यूशन शुरू कर दिया था। साल था 1773, जगह बॉस्टन अमेरिका, और वहां ब्रिटिश सरकार ने एक नया टैक्स लगाया, चाय टैक्स। अब सुनने में लगता है

0: और उन्होंने 342 चाय की पेटियां समुन्द्र में फेंक दी। सोचिए, रात का अंधेरा, समुन्द्र की लहरें और चाय के डिब्बे पानी में गिरते हुए, कितना नुकसान हुआ भाई। बट ये प्रोटेस्ट सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं था, ये एक सिंबॉलिक डिक्लेरेशन था, हम चुप नहीं रहेंगे। इस इवेंट को नाम मिला बोस्टन टी पार्टी। ब्रिटिश गुस्से में आ गए, उन्होंने और सख्त कानून लगाए, पर जो होना था हो चुका था। एक आइडिया जन ले चुका था, फ्रीडम का आइडिया, आजादी का आइडिया, और वही आइडिया 1776 में अमेरिकन इंडिपेंडेंस तक पहुंच गया। लेकिन इस कहानी का गहरा अर्थ क्या है जानते हैं? ये कहानी बताती है कि रेवोल्यूशन हमेशा तलवार से शुरू नहीं होता, कभी कभी वो एक चाय के कप से शुरू होता है। इनजस्टिस जब रोजमर्रा की जिंदगी को छू लेता है, तब आम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कदम उठाते हैं। बोस्टन टी पार्टी ने यही दिखाया कि यूथ की पावर होती क्या है। इस मूवमेंट में ज्यादातर लोग यंग थे, उन्होंने डिसाइड किया अगर सिस्टम अनफेयर है तो सिस्टम को हम ही चैलेंज करेंगे और हमें ही चैलेंज करना पड़ेगा। और ये बात सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं थी, हर देश में, हर युग में जब लोग अपनी डिग्निटी के लिए खड़े हुए हैं, तब तब हिस्ट्री बनी है। और एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, उस वक्त शायद किसी ने यह सोचा भी नहीं होगा कि चाय की पेटियां समुंदर में फेंकना एक दिन दुनिया की सबसे पावरफुल डेमोक्रेसी की फाउंडेशन बनेगा, पर ऐसा ही हुआ। ये छोटा सा एक्शन एक बड़ा इंपैक्ट छोड़ गया। इसलिए दोस्तों, कभी अपनी आवाज को हल्का मत समझना, कभी अपने सवाल को छोटा भी मत समझना। हिस्ट्री हमें यही सिखाती है, चेंज तब आता है जब आम लोग खड़े होते हैं अपने अधिकार के लिए। और बोस्टन की उस रात लहरों के साथ एक नई सोच भी उठी, एक सोच कि आजादी मांगी नहीं जाती, उसे जीता जाता है। जीत कर देखिए।
1: दिल में है एक जुनून, है जज्बा भरपूर, भारत के हर कोने में है एक रोशनी नूर। तिरंगा लहराए, आसमां से बातें करे, आजादी के गीत हर दिल में बजने लगे।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: इंडियन शादी में खाना खाने जाओ तो ऐसा लगता है मास्टर शेफ का कोई फाइनल चल रहा हो। सब लोग प्लेट लेकर एकदम सीरियस फेस के साथ खड़े होते हैं, कमर पे हाथ रखकर पहले स्टार्टर्स कवर कर लेते हैं, फिर मेन कोर्स पे आएंगे और फिर वही लोग डाइट पे होते हैं अगले ही दिन से। बस कल एक चीट डे था ना, शादी का चीट डे तो चलता है।

हेडी लमार फिल्म स्टार या फ्यूचर की साइंटिस्ट। दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी औरत की कहानी शेयर करने वाली हूँ जिसके बारे में अगर स्कूल में पढ़ाया जाता तो शायद साइंस और हिस्ट्री दोनों थोड़े और इंटरेस्टिंग लगते। नाम है हेडी लमार। और ध्यान से सुनिए, अगर हेडी लमार ना होती तो शायद आप और मैं वाईफाई पर कभी कोई प्रोग्राम सुन ही ना पाते। हाँ, एक फिल्म हीरोइन और वाईफाई का कनेक्शन थोड़ा अलग है ना। कहानी यहीं से इंटरेस्टिंग हो जाती है। शुरुआत 1930 के दशक का यूरोप। हेडी लमार ने अपना करियर 1930 के आसपास यूरोप में शुरू किया। बर्लिन और वियना के एक फिल्म जगत में उनकी खूबसूरती और स्क्रीन प्रेजेंस का चर्चा होने लगा। पर जिंदगी सिर्फ कैमरा तक सीमित नहीं रही। उनकी शादी हुई एक ऑस्ट्रियन हथियार व्यापारी से जो सेना को गोला बारूद बेचता था। सोचिए, घर में डिनर टेबल पर बातें हो रही हैं, जंग, मिसाइल, रेडियो सिग्नल्स, डिफेंस स्ट्रेटजी, और हेडी एक ज्यूइश महिला जिसे मजबूरी में परफेक्ट वाइफ बनकर बैठना पड़ता था। उनके पति के मेहमान कौन होते थे? नाजी ऑफिसर्स। एक तरफ चमक दमक की दुनिया, दूसरी तरफ अंधेरों से भरी सियासत। लेकिन हेडी सिर्फ चुपचाप रहने वालों में से नहीं थी। वो सुनती थी, ऑब्जर्व करती थी और समझ रही थी। और फिर एक दिन उन्होंने फैसला किया। वो उस दिन शादी से भाग निकली। हाँ, बिल्कुल फिल्म जैसे। घर छोड़ा, देश छोड़ा और पहुंच गई हॉलीवुड। हॉलीवुड की चमक, एक गोल्डन एज में हेडी लमार एक बड़ी स्टार बन गई। उनकी खूबसूरती को लोग दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत कहने लगे। पर दुनिया उनकी सोच को देख नहीं पाई उस समय। कैमरा के सामने एक्टिंग चलती थी और कैमरा के पीछे उनका दिमाग कुछ और ही कर रहा था। उनके पास कोई फॉर्मल साइंस की डिग्री नहीं थी, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज का सर्टिफिकेट भी नहीं था, लेकिन उनके पास था तेज दिमाग और बहुत सारी क्यूरियोसिटी। उन्होंने अपने फिल्म ट्रेलर में एक छोटा सा वर्कशॉप बना लिया था। सोचिए, शॉट के बीच में बाकी लोग मेकअप, टचअप यही सब कर रहे थे और हेडी सर्किट डायग्राम्स बना रही थी। वो मछलियों और पंछियों को देखकर उनकी बॉडी मूवमेंट स्टडी कर रही थी। एरोडायनेमिक्स समझने के लिए उनका मन बहुत उत्सुक था। नेचर से बड़ा टीचर कोई नहीं, उनका यही मानना था। फिर आया वर्ल्ड वॉर टू। हेडी ने एक आर्टिकल पढ़ा रेडियो कंट्रोल्ड टॉर्पेडोज के बारे में। ये ऐसी मिसाइल थी जो दूर से सिग्नल करके कंट्रोल के थ्रू चलाई जाती थी। पर प्रॉब्लम ये थी, दुश्मन उन सिग्नल्स को जैम कर सकता था। सिग्नल ब्लॉक करो, मिसाइल बेकार। हेडी को तुरंत याद आई वो डिनर टेबल वाली बातें। उन्होंने सोचा, अगर सिग्नल एक ही फ्रीक्वेंसी पे रहेगा तो उसे पकड़ना आसान है, पर अगर सिग्नल बार बार फ्रीक्वेंसी बदलता रहे तब दुश्मन कंफ्यूज हो जाएगा। यहीं से जन्म हुआ फ्रीक्वेंसी हॉपिंग के आइडिया का। उन्होंने एक म्यूजिक कंपोजर दोस्त के साथ मिलकर ये सिस्टम डिजाइन किया। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल था, ट्रांसमिटर और रिसीवर दोनों एक साथ एक पैटर्न में फ्रीक्वेंसी बदलते रहेंगे, इस तरह सिग्नल सिक्योर रहेगा। उन्होंने इसका पेटेंट भी फाइल किया। और सोचिए, एक फिल्म एक्ट्रेस और एक पेटेंट ऑफिस। नेवी ने मना कर दिया, लेकिन उस वक्त अमेरिकन नेवी ने इस आइडिया को सीरियसली नहीं लिया। उन्होंने रेडियो कंट्रोल टॉर्पेडोस का यूज नहीं किया और हेडी का इन्वेंशन फाइल में ही बंद होकर रह गया। कभी कभी दुनिया आपसे आगे नहीं चलती, आप दुनिया से आगे चल देते हो। सालों बाद जब वायरलेस कम्युनिकेशन डेवलप हुआ, साइंटिस्ट ने फ्रीक्वेंसी हॉपिंग का कॉन्सेप्ट निकाला और धीरे धीरे ये टेक्नोलॉजी बन गई वाईफाई का बेस, ब्लूटूथ का बेस। आज जब आप फोन से किसी को कॉल करते हो
जब लोकेशन मैप पर देखते हो, जब वायरलेस हेडफोन्स लगाते हो, कहीं ना कहीं हेडी का आइडिया ही बैकग्राउंड में चल रहा होता है। सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि वो खूबसूरत थी, सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि वो हॉलीवुड की स्टार थी, सबसे बड़ी बात ये है कि उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को एक बॉक्स में बंद नहीं होने दिया। लोग उन्हें सिर्फ एक्ट्रेस समझते थे, पर वो कहीं ना कहीं एक साइंटिस्ट भी थी, एक इन्वेंटर थी, एक सोचने वाली सोल थी। उन्हें उनके जीवन के आखिरी सालों में जाकर रिकॉग्निशन फाइनली मिला, अवार्ड्स मिले, रिस्पेक्ट मिली, पर उनका काम उनसे काफी पहले दुनिया को बदल चुका था। दोस्तों, कभी किसी को देखकर डिसाइड मत करिए कि वो क्या कर सकते हैं। टैलेंट सिर्फ डिग्री से नहीं आता और दिमाग सिर्फ लेबोरेटरी में नहीं चलता। कभी कभी एक फिल्म सेट के ट्रेलर में भी पूरा फ्यूचर दिख रहा होता है। हेडी लमार हमें ये सिखाती हैं कि अगर आप ऑब्जर्व करते हो, अगर आप सोचते हो, अगर आप डरे नहीं, तो आप दुनिया को कनेक्ट कर सकते हो, लिटरल सेंस में भी और सोच के सेंस में भी। इसीलिए दोस्तों, अगली बार जब वाईफाई कनेक्ट हो, एक छोटा सा थैंक्स जरूर कहना। शायद स्क्रीन के पीछे कहीं हेडी लमार मुस्कुरा रही हो। थैंक यू कर देखिए।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: इंडियन ट्रैफिक लॉजिक। इंडिया में ट्रैफिक लाइट का मतलब होता है देखो कोई आ तो नहीं रहा। ग्रीन लाइट का मतलब होता है अब सब एक साथ भागो। और हॉर्न का मतलब होता है मैं जिंदा हूँ, मुझे नोटिस करो।

24 फरवरी 1739 तीन घंटे और बदल गया भारत का इतिहास। दोस्तों, हिस्ट्री अक्सर किताबों में शांत लगती है, डेट्स लिखी होती हैं, नाम भी लिखे होते हैं और हम पढ़कर आगे भी बढ़ जाते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जो सिर्फ कैलेंडर की एंट्री नहीं होती, वो एक सिविलाइजेशन का टर्निंग पॉइंट होती हैं। ऐसी ही एक तारीख थी 24 फरवरी 1739, जगह करनाल। एक तरफ मुगल साम्राज्य जो कभी दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत माना जाता था और दूसरी तरफ पर्शिया के शासक नादिर शाह। बैटल शुरू हुई, घमासान युद्ध, और सिर्फ तीन घंटे में मुगल सेना पूरी तरह टूट गई। तीन घंटे, बस इतना ही वक्त लगा एक पूरे एम्पायर की कमजोरी दुनिया के सामने आने में। सोचिए, मुगल सल्तनत ने शाहजहां के दौर में ताजमहल बनवाया जिसका खजाना सोना चांदी से भरा हुआ था, जिसका नाम सुनकर यूरोपियन ट्रेडर्स रिस्पेक्ट से झुकते थे। वही साम्राज्य तीन घंटे में पूरा हिल गया। लेकिन सवाल यह है, क्या मुगल एम्पायर उस दिन हारा या वो पहले से ही धीरे धीरे अंदर से कमजोर हो रहा था? हिस्ट्री के एक्सपर्ट्स कहते हैं ये हार अचानक नहीं थी। कोर्ट पॉलिटिक्स, अंदर के झगड़े, कमजोर लीडरशिप और आउटडेटेड मिलिट्री स्ट्रैटेजी, ये सब पहले से ही चल रहा था। नादिर शाह ने बस एक दरवाजा नॉक किया जो पहले से ही ढीला हो चुका था और फिर वो दिल्ली तक पहुंच गया। दिल्ली जो तब दुनिया के सबसे अमीर शहरों में से एक हुआ करता था, और वहां से ले जाया गया खजाना, सोना चांदी, तख्ते तौस और दुनिया का मशहूर हीरा कोहिनूर। कहते हैं इतना माल लूटकर नादिर शाह इतना अमीर हो गया कि उसने अपने देश में कुछ समय के लिए टैक्स माफ कर दिए, पर भारत के लिए ये एक साइकोलॉजिकल झटका था। ये सिर्फ धन की चोरी नहीं थी, ये कॉन्फिडेंस का कोलैप्स था। उस दिन के बाद मुगल एम्पायर कभी पहले जैसा नहीं रहा। रीजनल पावर्स उभरने लगी, मराठास, सिख्स, नवाब्स सब अपनी जगह मजबूत होने लगे और धीरे धीरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भी मौका मिल गया। एक छोटी सी बैटल, लेकिन उसका चेन रिएक्शन इतना बड़ा कि पूरे सब कॉन्टिनेंट का पॉलिटिकल मैप बदलने लगा। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा लेसन क्या है जानते हैं? लेसन ये है कि जब लीडरशिप वीक हो जाती है तो खतरा बाहर से नहीं, पहले अंदर से आता है। एम्पायर्स तलवार से नहीं गिरती, अंदर की लालच, ईगो और मिसमैनेजमेंट से गिरती हैं। और ये सिर्फ 1739 की बात नहीं थी, ये हर युग का सच है। आज भी अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई सिस्टम, कोई देश अंदर से डिवाइड हो जाए तो तीन घंटे नहीं, तीन मिनट भी काफी होते हैं। हिस्ट्री हमें डराती नहीं, हिस्ट्री हमें जगाती है। इसीलिए करनाल की बैटल सिर्फ एक वॉर नहीं थी, वो एक वार्निंग थी। वार्निंग की पावर को संभालना पड़ता है, यूनिटी को प्रोटेक्ट करना पड़ता है और लीडरशिप को जिम्मेदारी से निभाना पड़ता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप कोई हिस्टोरिकल डेट सुनो, उसे सिर्फ एक पुरानी कहानी मत समझना, उसके पीछे छुपा पैटर्न समझना, समझना और सीख समझना, क्योंकि हिस्ट्री रिपीट नहीं होती पर उसके लेसन्स बार बार रिपीट होते हैं। याद कर देखिए,

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारी हंसने का समय।
1: इंडियन पेरेंट्स और उनके कंपैरिजंस बचपन से सुनते आए, देखो शर्मा जी का बेटा। अब बड़े हो गए तो सुनते हैं, देखो शर्मा जी के बेटे ने शादी भी कर ली। मतलब शर्मा जी का बेटा ना हुआ कोई नेशनल बेंचमार्क हो गया। What?

0: is black.
1: एक किताब जिसने दुनिया हिला दी, ओलाउदा इकुआनो की कहानी। दोस्तों, हिस्ट्री सिर्फ राजाओं और जंगों की कहानी नहीं होती। कभी कभी एक आम इंसान जिसके पास ना सेना होती है ना ताकत, सिर्फ एक कलम होती है, और वही कलम दुनिया की सोच हिला देती है। आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रही हूं। नाम शायद आपने स्कूल की किताबों में ज्यादा न पढ़ा हो, लेकिन उनका असर पूरी दुनिया ने महसूस किया है। ये कहानी है ओलाउदा इकुआनो की। जरा सोचिए, 1745 के आसपास का समय है ये। अफ्रीका के नाइजीरिया के एक छोटे से गांव में एक बच्चा पैदा होता है। उसका घर, उसका परिवार, उसकी मिट्टी, सब कुछ अपना, सब कुछ सुकून से भरा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सिर्फ 11 साल की उम्र में, हाँ सिर्फ 11 साल में, इकुआनो को उनके गांव से अगवा कर लिया गया। उन्हें और उनकी बहन को अलग अलग कर दिया गया। एक पल में बचपन टूट गया। उन्हें समुन्दर के रास्ते दूर देशों में ले जाया गया। उस समय एक बहुत ही कठोर व्यवस्था चल रही थी। लोगों को पकड़कर गुलाम बनाकर बेचा जाता था। इंसान को सम्मान की तरह इधर से उधर ले जाया जाता था। सोचिए दोस्तों, एक छोटा सा बच्चा जो कल तक माँ की गोद में था, आज एक अंधेरी शिप में, बिल्कुल अंधेरी शिप में बंद था, समुन्दर के बीचों बीच, डर के साथ, भूख के साथ, बेइज्जती के साथ। ये सफर सिर्फ शारीरिक नहीं था, ये आत्मा को तोड़ देने वाला सफर था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इकुआनो ने हार नहीं मानी। उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा। उन्होंने समझा कि ज्ञान सबसे बड़ी ताकत है। कई सालों तक उन्होंने काम किया, पैसे जोड़े, और आखिरकार अपनी आजादी खरीद ही ली। सोचिए, जिसे बचपन में बेचा गया था, वो एक दिन अपनी ही आजादी खरीद कर आजाद इंसान बन गया। ये भी एक जीवन है दोस्तों, ये भी एक जीवन है। लेकिन आजादी पाना उनका अंतिम लक्ष्य नहीं था। उन्होंने सोचा, सिर्फ मैं आजाद हो जाऊं इतना काफी नहीं है, दुनिया को सच पता चलना चाहिए। और फिर उन्होंने लिखी अपनी कहानी, अपनी जिंदगी का सच, दर्द, अपमान, समुंदरी सफर, टूटना, उठना, सभी कुछ। उनकी किताब 1789 में छपी और लोगों ने जब उसे पढ़ा तो उनके दिल हिल गए। पहली बार यूरोप और ब्रिटेन के लोगों ने एक गुलाम की जुबानी उसका सच सुना। जो कहानियां दूर लगती थीं, वो अचानक जीती जागती हकीकत बन गईं। इकुआनो सिर्फ एक लेखक नहीं बने, वो एक आवाज बन गए। वो शहर शहर गए, लोगों से मिले, सभाओं में गए और बोल उठे। उन्होंने कहा, इंसान को रंग, जात या जमीन के हिसाब से मत तोलो, इंसान इंसान होता है। उनकी किताब इतनी मशहूर हुई कि कई बार दोबारा छपी। लोग उसे खरीद कर पढ़ते थे। घरों में, बैठकों में चर्चाएं होने लगी और धीरे धीरे ये चर्चा एक आंदोलन में बदल गई। ब्रिटेन में गुलामी के व्यापार के खिलाफ आवाज तेज होने लगी। लोग सवाल पूछने लगे, ये व्यवस्था गलत है, ये अमानवीय है। आखिरकार 1807 में ब्रिटेन ने स्लेव ट्रेड को गैर कानूनी कर दिया। एक छोटे से गांव का बच्चा, जिसे दुनिया ने कभी गिना भी नहीं था, उसकी कहानी ने एक साम्राज्य को फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, ये सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये एक सबक है। कभी कभी तलवार से ज्यादा ताकत कलम में होती है, कभी कभी एक सच्ची कहानी हजारों नारों से ज्यादा जोर से बोलती है। इकवानों ने दुनिया को ये सिखाया कि दर्द को छुपाना नहीं चाहिए, उसे शब्द देने चाहिए। अगर वो चुप रहते, अगर वो कहते मेरी जिंदगी मेरी तकलीफ तक सीमित है, तो शायद इतनी जल्दी बदलाव नहीं आता। आज जब हम आजादी, इंसानियत और बराबरी की बातें करते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि ये सब आसानी से नहीं मिला। किसी ने कहानी लिखी, किसी ने सच बोला, किसी ने रिस्क लिया और किसी ने वो जीवन सच में जिया। इकवानों की कहानी हमें ये बताती है कि पढ़ाई और लिखाई सिर्फ डिग्री के लिए नहीं होती, वो इंसान को सोचने की, सवाल करने की और बदलाव लाने की ताकत देती है। सोचिए, अगर एक बच्चा जिससे सब कुछ छीन लिया गया था अपनी कलम से दुनिया को जगा सकता है, तो हम क्या क्या कर सकते हैं। हर इंसान के पास एक कहानी जरूर होती है, शायद आपकी भी, और हो सकता है आपकी कहानी भी किसी जिंदगी को पूरी तरह बदल दे या बदलने की ताकत रखे। दोस्तों, इतिहास सिर्फ याद रखने के लिए नहीं होता, इतिहास समझने के लिए होता है। और अलाउद्दीन इकवाना की ये कहानी हमें एक सीधा सा संदेश देती है, सच बोलने से डर मत, अपनी कहानी को छुपा मत, क्योंकि कभी कभी एक सच पूरी दुनिया को आजादी की तरफ एक कदम आगे बढ़ा देता है। ये थी एक कहानी एक इंसान की, जिन्होंने कलम से इतिहास लिखा। याद करके देखिए।

तो दोस्तों, आज की बात ने आपको थोड़ा सा इंस्पायर जरूर किया होगा, थोड़ी सी स्माइल जरूर दी होगी, या थोड़ा सा सोचने पर मजबूर तो जरूर किया होगा। मेरा मिशन तो अकम्प्लिश्ड है। मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और ये था आपका शो बातें इधर की उधर की, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, थोड़ा ह्यूमर, थोड़ा हार्ट और थोड़ा हटके लेकर एंगल। तब तक के लिए याद रखिए, स्टोरीज हर जगह होती हैं, बस उन्हें सुनाने का नजरिया चाहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे क्यूरियस। बाय।

जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा, और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को।

0: सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आलोक कुमार एक नया प्रोग्राम लेकर आपसे मुखातिब हूं। इस प्रोग्राम में हम हमारे समाज के उन लोगों से बातचीत करते हैं जिन्होंने अखबार में या मीडिया में भले ही सुर्खियां न बटोरी हों, लेकिन उन्होंने अपना जीवन सुकून और आनंद के साथ जिया है। जिनके पास भले ही अकूत धन और संपदा ना हो, लेकिन उन्होंने अपना जीवन अपनी शर्तों पर जिया। इन लोगों ने भीड़ के साथ चलने की बजाय अपना रास्ता अलग बनाने की कोशिश की है। दोस्तों, इस कड़ी में आज बातचीत करेंगे सुंदर अय्यर जी से, जो एक प्रतिष्ठित फोटोग्राफर है और फोटोग्राफी इनका पैशन है। वैसे पेशे से ये एक पत्रकार रहे हैं और देश के कई बड़े समाचार पत्रों के साथ इन्होंने काम किया है। सुंदर जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार आलोक जी, और अभी सभी श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार, आभार जो आपने मुझे बुलाया अपने मंच पर। तो बताइए आलोक जी।
0: हाँ, तो सुंदर जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका ये फोटोग्राफी में किस तरह से दिलचस्पी हुई, ये शौक कैसे हुआ? क्या ये एक जर्नलिस्ट होने के नाते आपका जुड़ाव फोटोग्राफी से हुआ, या ये शौक पहले से ही था?
1: हाँ नहीं, मैं कहूंगा कि जर्नलिज्म में आने से बहुत पहले से मेरा शौक था ये, और जर्नलिज्म में तो मैं काफी बाद में आया था। ये शौक बचपन से ही था देखा जाए तो, क्योंकि शौक पहले था, पर कैमरा मैंने पहला जरूर लिया था नौकरी करने के बाद में, पहला कैमरा तभी ले पाया था मैं। बस ये हाँ कि पत्रकारिता में मुझे इससे मदद जरूर मिली, क्योंकि मेरी समझ फोटोग्राफी को लेकर अच्छी थी, तो पत्रकारिता में, क्योंकि मैं जैसे न्यूज एडिटर हूँ तो मेरे पास दिन भर में 1000-2000 तस्वीरें आती हैं, उसमें से मुझे मान लीजिए 4 छाटनी हैं, तो वो उसमें मुझे बहुत मदद मिल गई थी, क्योंकि मुझे शौक पहले से था और मैं पहले से फोटोग्राफी कर रहा था, शौकिया कर रहा था लेकिन।
0: ओके, अच्छा, तो ये तो बड़ा दिलचस्प सवाल, मैंने नहीं सोचा था मैं पूछूंगा आपसे। आपका पहला कैमरा कौन सा था? कि मुझे भी आया पहला कैमरा।
1: पहला कैमरा मेरी जो पहली सैलरी मिली मुझे पहली नौकरी से, जो लगभग उस पूरी सैलरी का एक मैंने कैमरा ले लिया था। उस समय आता था हॉटशॉट करके एक कैमरा।
0: हाँ, हॉटशॉट आता था, बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो मैंने ले लिया था और मैंने घर में आके बताया कि मुझे सैलरी मिली और मैंने कैमरा ये ले लिया है। तो सच बताया तो एज ए पेरेंट मेरे पिताजी बहुत दुखी हो गए कि ये गाड़ी कैसे चल देगी, इसकी गाड़ी पहली सैलरी मिली है और कैमरा लेके आई है ये। तो क्योंकि मैं बहुत पहले से सोचा हुआ था जब मैं कमाऊंगा तब मैं कैमरा लूंगा। उस समय कैमरा बहुत मुश्किल से मिलता था। उस समय मतलब विदेशी कैमरा बड़ा संभव नहीं था कि हर आदमी अफोर्ड कर पाए या मिल पाए।
0: बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात।
1: तो हॉटशॉट हुआ करता था 110 वाला, तो वो लिया था मैंने। वो 800-850 रुपए का था और सैलरी उस समय मेरी ऐसे ही मेरी सैलरी थी 900-950।
0: ये जो पैशन वाले लोग होते हैं वो जुनून ही होते
1: हैं। ये हमारे पिताजी को हमेशा लगता रहा कि हम जिस तरह से खर्च करते हैं वो पता नहीं कैसे इसकी गाड़ी चलेगी, क्या होगा इसका। तो लेकिन ठीक है, सब चलता रहा, ऊपर वाले की कृपा रही हमेशा।
2: यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे।

0: बिल्कुल, मुझे भी बड़ी पुरानी बात याद आ गई। मेरा पहला कैमरा गेवा बॉक्स हुआ करता था, जो उस जमाने में आता था, दैट वाज लॉन्ग टाइम बैक, 67 की बात कर रहा हूँ मैं। गेवा बॉक्स है, डायरेक्ट पाया।
1: पिताजी के पास भी कैमरा था, एक कोडेक का बॉक्स कैमरा हुआ करता था, वो भी शौकीन थे थोड़ा, लेकिन हमको छूने को नहीं मिलता था वो क्योंकि ये था कि नहीं, वो बहुत ही प्रेशस उनकी वो थी, विषम था वो।
0: अच्छा, आप ये बताइए कि ये जो शौक आपके बचपन से ही लग गया था, इस पे किसी ने आपको इंस्पायर किया? कोई प्रेरणा स्रोत था आपका जिसने कहा कि भाई, जिसको देख के आपको लगा कि मैं भी फोटोग्राफी करूं?
1: हाँ लोग जी, एक तो मुझे ऐसा हमेशा लगा है कि हम टेक्स्ट के बजाय इमेजेस के प्रति ज्यादा आकृष्ट होते हैं, मतलब
0: जी
1: ऐसा
0: जी, जी, जी.
1: तो बचपन में क्या, हमारे घर में एक्सप्रेस, इंडिया एक्सप्रेस अखबार आता था इंग्लिश का, दिल्ली से आता था उस समय, मतलब दिल्ली से आता अच्छा। था वो, तो उसमें एक फोटोग्राफर, उनके चीफ फोटोग्राफर थे एस पॉल करके,
0: अच्छा,
1: एस पॉल
0: अच्छा।
1: का लोग नाम कम जानते होंगे, रघु राय को लोग जानते हैं, रघु राय के बड़े भाई साहब, बल्कि रघु राय ने उन्हीं से सीखा है।
0: ओके,
1: एस पॉल साहब की तस्वीरें उसमें निकलती थी हर मंडे को, ऑफ द बीट करके, मतलब फोटो ऑफ द वीक करके एक निकलती थी वो, बहुत ही
0: अच्छा।
1: और मेरा मतलब लिटरली, मैं उस उम्र में भी, 10-12 साल की उम्र में भी, उस मंडे

0: थी एक बार या कभी 2 बार भी, तो
1: जी
0: कानपुर से दक्षिण भारत की यात्रा चेन्नई की या तंजौर जहां मैं रहता था, मतलब जहां मेरे पिताजी का घर था, तो 2 दिन की यात्रा हुआ करती थी। और रास्ते में जो मतलब खासकर एमपी में जो बैतूल होशंगाबाद वगैरह का इलाका है, जंगली इलाका पूरा है, जंगल से भरा हुआ,
1: हाँ
0: वो
1: बिल्कुल
0: इतना
1: बिल्कुल
0: आकर्षित करता था हमको, मुझे
1: हाँ
0: लगता था कि बस ऐसी जगह पे ही मुझे जाके रहना है। जैसा मतलब होता है कि वो सब चीजें मुझे बचपन से आकर्षित कर दे रही हैं, तो फिर वो धीरे धीरे वो दिमाग में हमेशा बना रहा है। इसीलिए मैं ज्यादा नेचर के प्रति हमेशा ज्यादा आकर्षित रहा हूँ। तो तस्वीरें शुरू से देखना मेरा शौक रहा है कि भाई वहीं से मुझे मिला वो।

0: आपकी, खैर अपन बात करेंगे उसके बारे में। आपकी फोटोग्राफी में नेचर बहुत है, बहुत हर जगह है आपके, है जहां भी मैं देखता हूँ आप उस जगह देख। तो अब चलिए ये बताइए कि क्या आप हमें अपने फोटोग्राफी का कोई ऐसा ना भूलने वाला अनुभव बता सकते हैं, या कोई ऐसा प्रोजेक्ट आपने किया हो जो आपके लिए हमेशा के लिए यादगार बन गया हो, ऐसा कोई अनुभव?
1: देखा जाए तो फिर हर ट्रिप में बहुत ढेर सारे अनुभव होते हैं, अलग अलग किस्म के, लोगों से मिलने के, जगहों के, और हर ट्रिप में कुछ अलग अनुभव देता है, कुछ सिखाता है आपको। है ऐसे एक कहना तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन जैसे एक चीज मुझे याद है, जैसे हम लोग महाराष्ट्र में जब हम थे, बॉम्बे में था, तो महाराष्ट्र में मेरा ग्रुप था फोटोग्राफी का, तो हम लोग हर हफ्ते ट्रैक पे जाते थे, जो केव्स में या किले, जितने वहां पे किले हैं बहुत अच्छे हैं, तो बारिश में ही जाते थे ज्यादातर हम लोग। तो
0: जी
1: एक
0: जी
1: बार मैं बहुत मतलब गलत जगह फंस गया, झरना था, मैंने उसको एक पहाड़ी पे, उस झरने को मैंने क्रॉस किया पहाड़ी की तरफ से, और क्रॉस तो कर लिया, जो फोटो वोटो खींचने के बाद में वापस लौटने लगा, तो मेरी निगाह अपने बाएं तरफ पड़ी, तो बिल्कुल पूरी खाई थी वो 200-250 फीट की। तो उस समय मैं इतना घबरा गया कि मुझे लगा कि अब तो मैं वापस उस पार पहुंच ही नहीं पाऊंगा शायद, है क्योंकि तो झरना बह रहा है, उसे क्रॉस करके मुझे जाना है वहां पर है। फिर मैं किसी तरह
0: अच्छा
1: मतलब हिम्मत करके जूते उते उतार के उस तरफ फेंके, कैमरा बैग उस तरफ उछाल के फेंका, फिर मतलब क्रॉस करके किस तरह आया। लेकिन मुझे हमेशा लगा कि नहीं, ये शौक में मुझे ये भी ध्यान रखना है कि ओवर नहीं करना है कहीं पर, क्योंकि ये बहुत घातक हो सकता है। ये मतलब ऐसे एक दो घटनाएं और हुई कि जहां पर लगा कि हम अपने रॉ में बहते चले जा रहे हैं और गलत जगह पहुंच गए हैं, जहां से मतलब वापस आना या मतलब मुश्किल हो जा रहा है मेरे लिए, तो इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी। इस तरह के अनुभव बहुत सारे होते रहते हैं।
0: नहीं, बिल्कुल सही बात है, एडवेंचरस हो जाता है सारा बहुत, और चैलेंजिंग भी हो जाता है
1: जी
0: फिर
1: जी
0: बहुत
1: चैलेंजिंग तो होता ही है,
0: कई
1: और इसका हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि जो है आप जब नेचर के
0: बार।
1: साथ हैं, नेचर क्योंकि किसी को बख्शता नहीं है, देखिए
0: बख्श देने,
1: आपने जरा
0: बिल्कुल
1: सी चूक की तो आप आपके साथ बहुत कुछ हो सकता है, फिर
0: नहीं, आजकल तो रोजाना आए दिन घटनाएं होती हैं,
1: घटनाएं
0: सेल्फी
1: होती रहती।
0: सहित
1: अब तो सेल्फी का जमाना आ गया है, तो फिर
0: सेल्फी
1: तो
0: का
1: आदमी
0: जमाना
1: और
0: और
1: ज्यादा उसमें मतलब
0: ज्यादा है,
1: वो रहता है।
0: बिल्कुल
1: हाँ
0: बिल्कुल, बहुत रिस्क है हर चीज में। जी,
1: रिस्क रहता है बहुत,
0: तो
1: तो
0: अब
1: ये
0: थोड़ा सा हम डिटेल में बात करते हैं सुंदर जी, कि जहां तक मुझे लगता है आप नेचर या प्रकृति के नजारों की फोटोग्राफी अधिक करते हैं, ये हमारी
1: जी
0: बातचीत में अब आ ही गया,
1: जी
0: आपको यही क्यों पसंद है, और इन चित्रों के थ्रू आप क्या बात कहना चाहते हैं, क्यों क्यों वाई नेचर ओनली?
1: हाँ नेचर, एक तो जैसे बताया कि बचपन से ही मुझे नेचर आकर्षित करता रहा है,
0: जी
1: और हमेशा हम हमेशा लगता रहा है कि नेचर सुप्रीम है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, बहुत
0: जी जी
1: ताकतवर
0: वाह
1: चीज है ये। और एक और चीज है कि आपको बहुत सुकून देती है वो, चाहे पहाड़ हो, चाहे झरने हो, बादल हो, मतलब जो भी नेचर में आप पहुंच जाते हैं, जंगल में,
0: जी
1: तो आपको मतलब जो शहर की आपाधापी है ना, आप
0: जी
1: इससे ऊब चुके होते हैं, तो आपको लगता है कि नेचर के पास जाएंगे तो आपको सुकून मिलेगा, या मतलब। और नेचर के लिए है कि हमेशा, जैसे मैंने बताया कि फिल्में रही बॉलीवुड की, पुरानी फिल्में जो यहाँ पर कश्मीर

0: और महाराष्ट्र का
1: कश्मीर।
0: रंगपुर
1: हाँ
0: शो
1: हाँ
0: होता
1: बिल्कुल
0: था
1: सही,
0: है, तो वो सब
1: महाबलेश्वर।
0: चीजें हमेशा आकर्षित करती रही हैं कि, और दक्षिण भारत की यात्रा है जैसे मैंने बताया कि जंगल
1: हाँ
0: अंगल हैं, तो जैसे अभी भी मैं हाल में गया था दुधवा, तो लगता था वाकई जंगल भी क्या मतलब जैसे कई बार मैं किसी से कह रहा था कि जंगल का राजा शेर नहीं, जंगल खुद होता है वो, क्योंकि वो आपको जो है ना जंगल से ज्यादा बड़ा वहां कोई नहीं है, वो चाहे वो शेर हो चाहे वो कोई भी हो, तो वो है हर चीज मतलब मुझे नेचर हमेशा सुप्रीम लगा है कि वो। और कई बार मैं इसीलिए कोशिश भी करता हूँ अपनी कई बार पिक्चर्स में कि आदमी को या मनुष्य को बहुत छोटा दिखाना चाहता हूँ उसमें, ये खाली ये मैसेज देने के लिए कि हम लोग बहुत छोटे हैं उसके सामने, नेचर के सामने, नेचर बहुत बहुत बड़ा है, सुप्रीम है वो।

0: क्या बात कह दी आपने। ये शेर भी जंगल हर तरह से शेर से बड़ा है, अगर अकेला शेर हो जाएगा तो जंगल में घूमते फिरेगा कहाँ जाएगा।
1: मैंने कहीं अभी लिखा भी था किसी फोटो में कैप्शन की
0: जी,
1: जंगल का राजा शेर नहीं खुद जंगल होता है।
0: जी जी क्या बात है क्या बात। और तो अब थोड़ा नेचर के अलावा आप और किस तरह की फोटोग्राफी करते हैं, मतलब अलग कुछ भी इसमें कभी कभी कोशिश की है क्या?
1: हाँ नहीं बिल्कुल, जैसे ऐसा कोई मेरा, मैं किसी जोनर में बंधना तो नहीं चाहता हूँ
0: जी,
1: वो अलग बात है कि नेचर पसंद है तो मैं कोशिश करता हूँ कि नेचर के पास जाऊं, लेकिन ऐसा नहीं कि बाकी और कुछ नहीं करता हूं मैं। और सब्जेक्ट होता क्या है कि जब आप सब्जेक्ट से कनेक्ट कर पाते हैं ना, जिस सब्जेक्ट से
0: जी
1: उसी को आप खींचना चाहते हैं, और वो कनेक्ट बहुत जरूरी होता है। अगर कनेक्ट नहीं है तो फिर आप फोटो नहीं खींच पाएंगे, ये मेरा मानना है कि अच्छी फोटो नहीं खींच पाएंगे। फोटो तो खींची जाएगी लेकिन वो अच्छी फोटो नहीं हो पाएगी, आपको मतलब मन नहीं हो पाएगी। तो कनेक्ट मेरा मतलब नेचर से ज्यादा होता है तो मैं खींचता हूँ। जैसे जैसे मैं दक्षिण जाता हूँ, दक्षिण के जैसे मंदिर हैं, कई मंदिर हैं जहाँ की जो आर्किटेक्चर है वहां का, या जैसे एक कर्नाटका में चिन्नकेश्वर मंदिर में गया।
0: अच्छा,
1: चिन्नकेश्वर बेलूर के पास में है, हसन डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा। तो वहां की जो अद्भुत कारीगरी देख के ना बिल्कुल हतप्रभ हो गया मैं, क्योंकि अब तब आपको लगता है कि आप बहुत छोटे हैं। एक कोई व्यक्ति 1000 साल पहले ये मूर्ति बना गया और उसको कोई जानता भी नहीं हो कौन था वो। तो वो चीजें मुझे बहुत अट्रैक्ट करती हैं तो उनको खींचता हूँ। या जैसे बच्चे, बच्चे मेरा एक फेवरेट सब्जेक्ट रहे हैं काफी।
0: अच्छा,
1: और खासकर रूरल एरिया के बच्चे, जैसे यहाँ पर एक हाल लखनऊ के पास में एक मेला होता है देवा का मेला।
0: अच्छा, अच्छा।
1: देवा एक, देवा शरीफ एक मजार है, मतलब दरगाह है। तो वहां अच्छा। मेला हर साल में लगता है, ऐसे अक्टूबर नवंबर में लगता है। तो वहाँ गांव का ही मेला होता है, मतलब बेसिकली कैटल फेयर भी होता है वहां पर, और बहुत सारे बच्चे गांव वगैरह के आते हैं। तो अच्छा। वो जैसे बड़े बड़े जायंट व्हील या वो सब लगे रहते हैं, तो जिस आश्चर्य से उसको देख रहे होते हैं, शायद उन्होंने पहली बार बच्चे ने देखा होता है उसको, तो वो मुझे उनके जो, या आइसक्रीम खाते हैं तो वो उनके जो एक्सप्रेशन है ना, वो मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। लगता है कि बस इसको फ्रीज कर लो कहीं पर, क्योंकि वो अद्भुत है बहुत। तो बच्चे मुझे मतलब मेरा सब्जेक्ट रहे हैं।
0: बच्चों के चेहरे पे जो कौतूहल का भाव आता है, भाव आते हैं, जो विभिन्न तरह के एक्सप्रेशन।
1: मैंने देवा पर बहुत एक अच्छी सीरीज की थी काफी।
0: अच्छा,
1: मतलब लोगों ने पसंद भी की थी।
0: अच्छा,
1: वहाँ जो बेसिकली बच्चों पर ही थी वो, की वहाँ के बच्चे जो वहाँ जो आते हैं कैसे जो है वो। तो जैसे बच्चे, एक एक बच्चा था जो वो जो ऑरेंज बार खा रहा है, चूस रहा है, और नीचे अच्छा। हाथ लगाए हुए कि टपक रहा है ना जो, तो उसको भी चाटता जा रहा बीच बीच में। तो वो चीजें मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो ऐसा नहीं खाली नेचर, लेकिन मुझे कि आप जिससे कनेक्ट कर पाते हैं वो आपका सब्जेक्ट हो जाता है, कनेक्ट नहीं कर पाते हैं तो नहीं हो पाता सब्जेक्ट। वो कनेक्ट बहुत जरूरी है सब्जेक्ट से, वो मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग वही है।
0: जी जी बिल्कुल सही बात।

0: अब ये बताएं कि फोटोग्राफी की जैसे लेमैन के लिए जो हमारे
1: जी
0: श्रोता हैं वो सब बहुत ही लेमैन की भाषा में बताएं कि फोटोग्राफी की कितनी अलग अलग तरह की विधाएं हैं और इनमें क्या डिफरेंस है और क्या है ये सारा कुछ, बहुत अगर सिंपल शब्दों में कुछ हमें बस समझा सके तो।
1: हाँ, जैसे नेचर तो एक एक एक्सप्लोरर हो गया उसका ना। उसके
0: जी
1: अलावा मतलब बहुत सारे हो रहे हैं, वाइल्ड लाइफ है, पोर्ट्रेचर है, स्ट्रीट है, मैक्रो है, फूड फोटोग्राफी अलग से आजकल होती है, फोटो जर्नलिज्म तो है ही है, अब्स्ट्रैक्ट
0: हाँ
1: फोटोग्राफी अलग होती है,
0: जी
1: एस्ट्रो अलग
0: जी
1: होती है, एस्ट्रो फोटोग्राफी जो तारों और की फोटोग्राफी
0: अच्छा
1: करते
0: अच्छा
1: हैं,
0: अच्छा उसकी भी
1: मिल्की
0: अलग है।
1: मिल्की वे
0: ओके
1: की या फिर तारों के
0: ओ
1: मूवमेंट्स की है,
0: जी जी जी जी जी
1: वेडिंग
0: अच्छा
1: करते हैं लोग आजकल। तो सब मतलब बहुत अलग अलग जोनर हैं, तो होता है कि
0: अच्छा
1: किसको जो अच्छा लग रहा है। लेकिन ये होता है कि इन सब के लिए कोई एक इक्विपमेंट नहीं होता है कि एक किसी एक इक्विपमेंट से आप सारी चीजें कर लें।
0: जी।
1: तो हर एक के
0: अच्छा
1: लिए इक्विपमेंट भी अलग अलग होते हैं। इक्विपमेंट क्या मतलब, बॉडी तो एक ही होती है कैमरे की, उसमें लेंसेज डिटेचेबल होते हैं, वो अलग अलग लेंसेज होते हैं हर एक के। अब वाइल्ड लाइफ खींच रहे हैं आप तो फिर लॉन्ग लेंस चाहिए बहुत, अगर आप तो मैक्रो खींच रहे हैं तो मैक्रो लेंसेज अलग आते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं, निश लेंसेज होते हैं, वो मैक्रो से खींच सकते हैं आप। तो हर एक चीज के लिए अलग लेंस है। ये होता है कि हाँ, कोई एक लेंस ऐसा नहीं होता है जिससे आप हर चीज कर सकें, ऐसा मुश्किल होता है। तो बाकी एक, लेकिन होता है कि किट लेंस आजकल आते हैं, कि जूम लेंसेज आते हैं ना, कि 18 mm से लेके
0: अच्छा
1: 100 mm तक का आ गया, तो उसमें आप काफी सारे रेंज कवर हो जाती है फोकल लेंथ उसमें।
0: अच्छा
1: तो
0: अच्छा
1: उसमें क्या है कि
0: अच्छा
1: आप बहुत सारी चीजें एक ही लेंस से कर पाते हैं, लेकिन तब भी उसकी भी लिमिटेशन एक होती है, हर चीज नहीं कर सकते। तो जोनर तो बहुत सारे हैं, वाइल्ड लाइफ, पोर्ट्रेचर है,
0: बहुत सारे।
1: स्ट्रीट बहुत
0: हाँ
1: लोग
0: आप
1: करते
0: बिल्कुल
1: हैं।
0: हाँ स्पोर्ट्स फोटोग्राफी ये भी बहुत कॉमन है
1: हाँ,
0: आजकल,
1: स्पोर्ट्स
0: सारी
1: भी बिल्कुल,
0: ये
1: स्पोर्ट्स तो है ही, स्पोर्ट्स तो
0: स्पोर्ट्स
1: बहुत ही,
0: एथलीट
1: और
0: स्पोर्ट्स
1: स्पोर्ट्स के
0: का
1: लिए बहुत
0: बहुत।
1: ही डेडिकेटेड कैमरा आते हैं, जो
0: हाँ
1: बहुत ही फास्ट शटर स्पीड वाले होते हैं, जो उसका शटर काउंट मतलब जिसे शटर काउंट कह रहे हैं, जो फ्रेम पर सेकंड है ना, उनका बहुत ज्यादा होता है, तेज होता है वो।
0: अच्छा
1: यानी कि
0: अच्छा
1: आप
0: अच्छा
1: एक जैसे नॉर्मल कैमरा हम लोग यूज करते हैं, उसमें पता लगा 6 फ्रेम्स पर सेकंड है ना? अब आजकल
0: अच्छा
1: आते हैं 10, 12, 15 फ्रेम्स पर सेकंड, क्योंकि आपको 1 सेकंड में अगर आपने 15 फ्रेम नहीं खींचे तो आपको सही डिजिटल मूवमेंट आप कैप्चर नहीं कर पाएंगे। तो जितनी देर में आप शटर दबाएंगे उतनी देर में तो मतलब वो मूवमेंट चला गया होगा ना। तो उस जो स्पीड उसकी है फ्रेम्स पर सेकंड की, वहां वो बहुत मैटर करती है। तो उसके लिए अलग बॉडी अलग होती है उसकी। तो मतलब हर एक का वही है कि अलग चीज, ऐसा नहीं कि आप बाकी से नहीं कर सकते हैं, बाकी से भी आप काम कर लेंगे वो, लेकिन हो सकता है कि वो आपको उतना बढ़िया रिजल्ट या उतना सटीक रिजल्ट आपको ना मिल
0: बिल्कुल
1: पाए। आजकल तो मोबाइल से इतना
0: प्रिसीजन।
1: ज्यादा लोग हो जाते हैं कि मोबाइल से ही लोग खूब अच्छी
0: हाँ मैं
1: तस्वीरें खींच रहे
0: पूछो पूछो
1: हैं।
0: पूछूंगा आपसे। अच्छा अब वापस हम लेंस के फोटोग्राफी पे आते हैं। लेंस के फोटोग्राफी का प्रोसेस क्या है, क्या कोई खास तकनीक है या कोई विशेष इक्विपमेंट चाहिए होते हैं या क्या, आप किस तरह से तैयारी करते हैं जब इसके लिए जाते हैं?
1: लैंडस्केप के लिए तैयारी, क्या तैयारी, तो हमेशा मुझे लगता है कि आपको जनरल आइडिया तो होता ही है कि लैंडस्केप कैसा है, वहां का टेरेन कैसा है,
0: अच्छा
1: और का वेदर कैसा है वहां पर है, कितना ठंडा है। जैसे बहुत ठंडा है तो आपको डेफिनेटली थोड़े एक्स्ट्रा कार्ड रखने पड़ेंगे, क्योंकि उस समय बहुत ठंड में क्या है कि बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन हो जाती है, खत्म हो जाती है जल्दी।
0: अच्छा अच्छा
1: बहुत
0: अच्छा
1: ठंडा अगर
0: ओके
1: है तो उसको है कि एक्स्ट्रा आपके पास बैकअप बैटरीज होनी चाहिए।
0: ओके ओके ओके
1: तो लैंडस्केप में क्या कि देखिए, सबका सबकी नजर अलग होती है, सबका नजरिया अलग होता है देखने का कोई भी चीज।
0: जी जी
1: हम लोग जैसे
0: हाँ
1: ग्रुप में जाते हैं, 10 लोग जा रहे हैं अगर ग्रुप में, लैंडस्केप तो वही है लेकिन सबने अलग
0: हाँ
1: अलग तरीके से खींचा हुआ उसको। और
0: हाँ
1: सबका ऐसा नहीं, किसी का अच्छा किसी का बुरा ऐसा नहीं होता है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि जब मैं पढ़ाता था बच्चों को फोटोग्राफी, तो मैं कहता था कि फोटोग्राफी, फोटोग्राफ दो ही तरह के होते हैं, एक अच्छा होता है, एक कम अच्छा होता है, बुरा कुछ नहीं होता है उसमें। क्योंकि क्योंकि जिसने भी खींचा है, हो सकता है कि हमें वो उतना अच्छा ना लग रहा हो सकता है, लेकिन जिसने खींचा उसको तो अच्छा लग ही रहा है ना, मतलब वो तो है ही है ना। तो इसलिए बुरा कुछ नहीं होता है, या तो एक कैटेगरी अच्छी है पिक्चर, या है कम अच्छी है थोड़ी, बस यही हो सकता है। तो सबका नजरिया अलग अलग है, सब लोग अलग अलग तरीके से खींचते हैं। और जिसको जैसा जो मतलब कई लोग बहुत वाइड एंगल खींचना चाहते हैं, कई लोग थोड़ा सा क्लोज जाके खींचते हैं। और सबसे बड़ी वही जैसे मैंने कहा कि आपका कनेक्ट अगर बना हुआ है सब्जेक्ट से तो आप आपकी तस्वीर सुंदर होगी होगी, क्योंकि आपका कनेक्ट है उसके साथ में।
0: तो सही बात है।
2: हाँ, जरा हंस के, जरा और खिल

0: अच्छा, हमें पता लगा कि आप कई फोटोग्राफी क्लब के मेंबर हैं। ऐसे क्लब के मेंबर्स बनने में क्या फायदा होता
1: हाँ, मैं क्लब्स क्या बेसिकली, जैसे पहले अब तो ऑनलाइन सारे क्लब्स हो गए हैं ज्यादातर जो
0: है?
1: ग्रुप्स बन रहे हैं।
0: अच्छा,
1: पहले तो था
0: हाँ
1: कि हम लोग हर हफ्ते, जैसे पूना में था, पूना में हम लोग हर हफ्ते मिलते थे, कहीं बाहर निकलते थे शूट के लिए। है तो एक तो क्या होता है इन सब ग्रुप्स को ज्वाइन करने में कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है,
0: जी
1: दूसरों का काम देखने को मिलता है आपको। है तो दूसरों का काम आप देखते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और उससे आप इंस्पायर भी होते हैं। किसी का अच्छा
0: जी
1: काम
0: बिल्कुल
1: देखा
0: सर।
1: तो आप उससे इंस्पायर होते हैं कि यार कितना शानदार काम किया इसने। तो आपको अलग अलग तरीके के, एक ही सब्जेक्ट पे अलग अलग नजर कैसी है ये आपको देखने को मिलता है।
0: जी
1: अब फिर
0: बिल्कुल
1: बात करते हैं, जब कभी ग्रुप में मिलते हैं हम लोग तो कभी कुछ समस्या आ रही है या कुछ भी है तो कभी मतलब आपस में एक दूसरे की पिक्चर्स पे थोड़ा सा बात करते हैं कि यार इसमें ये ऐसे होता तो ज्यादा अच्छा रहता या ऐसा होता तो बहुत कुछ, मतलब बहुत एक लर्निंग कर्व बहुत आपका स्टीप हो जाता है, काफी जल्दी आप सीखते हैं फिर चार लोगों से बात करके।
0: एक्चुअली एक्सचेंज ऑफ नॉलेज भी हो जाता है
1: हाँ
0: और
1: बिल्कुल
0: एक्सचेंज ऑफ
1: बिल्कुल हाँ।
0: टेक्निकल डिटेल्स भी जो आप
1: और
0: लोगों की
1: सबसे बड़ी
0: होती है
1: चीज ना
0: वो सब।
1: दूसरों का काम देख, जैसे आजकल मैं देखता हूँ लोगों को ना, जैसे कि दूसरों का काम देखने की फुर्सत नहीं है, अपना ही काम दिखाना है खाली उनको।
0: हाँ,
1: तो वो
0: बिल्कुल
1: एक एक जैसे कई बार मैं नमिता के साथ जाता हूँ कभी जो साहित्यिक गोष्ठी में, तो मैं देखता हूँ कि लोगों को अपनी कविता सुनाने का ही खाली मतलब वो है, बाकी दूसरों को सुनने का उनको मतलब
0: बिल्कुल
1: उतना पेशेंस नहीं है शायद। तो जब तक आप
0: नहीं
1: दूसरे का
0: होता।
1: नहीं देखेंगे काम ना, तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि आप कहाँ पर खड़े हुए हैं। मतलब
0: बिल्कुल सही कह रहे
1: हम
0: हैं।
1: भाई, हमने फोटो खींची, मुझे तो अच्छी लगेगी लगेगी, लेकिन किसी सामने वाले की और अच्छी है तो हम कैसे उसको बेटर करें, कम से कम ये दिमाग में मेरे आएगा ना। तो ये एक अच्छी चीज है कि आप ग्रुप में रहते हैं तो सीखते बहुत कुछ है आप।
0: चलिए, बिल्कुल सही बात बता रहे हैं, बिल्कुल है। तो और इसके लिए बहुत मादा चाहिए, बहुत बड़ा दिल भी चाहिए कि दूसरे की अच्छी चीज से सीखने के लिए।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल हाँ।
0: वो
1: एक
0: बहुत
1: तो
0: बड़ा गुण
1: दूसरे को
0: होना चाहिए
1: अप्रिशिएट करने
0: कहने के
1: का
0: लिए।
1: वो होना चाहिए।
0: बहुत
1: हाँ वो अगर अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं, जैसे आज जमाना हो गया ना, मतलब सोशल मीडिया का हो गया है कि हमको मैंने कोई तस्वीर डाली उसमें लाइक्स कम आए तो मेरा मूड खराब हो
0: लाइक
1: गया, अगर कुछ ज्यादा है
0: बोल
1: तो ये होता है। ये जब भी
0: गया
1: हम, जैसे कई बार मैं कहता हूँ कि लाइक के लिए मत डालो ना, तुम क्यों खींच रहे हो फोटो, सबसे पहले तो यही सवाल करो ना कि हम फोटो क्यों खींच रहे हैं भाई, हम अपने लिए खींच रहे हैं। दो जो दूसरे को पसंद आ रही नहीं पसंद आ रही ये बहुत सेकेंडरी चीज है वो, मतलब मैं इरेलेवेंट तो नहीं कहूंगा लेकिन सेकेंडरी चीज है वो, प्राइमरी है कि मुझे पसंद है बस, ये प्राइमरी चीज है ये, बाकी तो बोनस है। अगर किसी को पसंद आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती है तो कोई बात नहीं।
0: स्वांत
1: तो
0: सुखाए जिसको कहते थे वो तो खत्म ही हो गया आजकल। तो
1: हाँ।
0: अब तो लाइक सुखाए हो गया है, बिल्कुल
1: अब तो
0: लाइक
1: भाई
0: सबके
1: हमारा
0: आ
1: ही, मैं कई
0: रहे।
1: बार कहता हूँ कि मैं तो जो कुछ कर रहा हूँ अपने लिए कर रहा हूँ, किसी को पसंद आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो ठीक है।
0: जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात
1: तो
0: है।

0: वो हम लोग कैमरे के बारे में, स्मार्टफोन्स के बारे में बात कर रहे थे, तो मेरा अगला सवाल यही है कि स्मार्टफोन में भी आजकल काफी एडवांस कैमरे आ गए हैं
1: हाँ
0: और हम
1: बहुत
0: लोग हर लोग मोबाइल से ही फोटोग्राफी करते हैं,
1: जी
0: तो क्या
1: जी जी
0: सलाह देने दे पाएंगे ऐसे लोगों को जो
1: हाँ
0: स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं और उनकी स्किल्स थोड़ी बेहतर हो सके, कुछ टिप्स अगर दे
1: हाँ
0: सके उनके लिए तो।
1: जैसे इक्विपमेंट क्या है ना, जैसे मैं कई बार कहता हूँ फोटोग्राफी में कि दो पार्ट है, एक साइंस पार्ट उसका, एक आर्ट पार्ट है।
0: जी।
1: साइंस का पार्ट जो है वो तो आपके जेब पर है, डिपेंड करता है। आप मतलब जो बेस्ट कैमरा ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास पैसा है ले लीजिए।
0: जी।
1: लेकिन आर्ट पार्ट जो होता है, जो उसका आर्ट पार्ट या एस्थेटिक्स वाला पार्ट है, वो
0: हाँ
1: आपको सीखना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा। वो आपको पैसे से नहीं मिल सकता है।
0: जी
1: वो
0: जी
1: आपके
0: जी
1: अंदर होना चाहिए होगा।
0: जी जी
1: अब जहां तक कैमरे की बात है कि कैमरे तो आजकल, पहले फिल्म कैमरा हुआ करते थे, तो हम लोग फिल्म कैमरा में क्या होता था
0: हाँ
1: कि 36 का एक रोल होता था, और उस समय क्योंकि कैमरा तो ले लिया आपने एक, लेकिन जो फिल्म का खर्चा है वो रिकरिंग होता था ना, आपको हर
0: रिकरिंग
1: बार एक
0: बिल्कुल
1: फिल्म लेनी है, और उसमें भी 36 खाली हैं, 36 है, तो आप हर शॉट को सोच के खींचते थे।
0: बिल्कुल सही बात
1: आज क्योंकि डिजिटल एरा में क्या हो गया कि कोई आपको ऐसा कोई लिमिटेशन ही नहीं है, आप ऐसे ही खींच लेते हैं 100 200 फोटो, तो यूं ही
0: हाँ बिल्कुल सही
1: मतलब
0: है
1: कोई, क्योंकि फिर उसमें क्या होता है कि आप सोच के नहीं खींच रहे ना, आप खाली खींचते जा रहे हैं। पहले जिस तरह
0: बिल्कुल
1: कि
0: सही
1: हम लोग एक फोटो खींचते थे, उसका एपर्चर रीडिंग, उसके शटर स्पीड की रीडिंग, आईएसओ
0: शटर
1: रीडिंग
0: स्पीड बिल्कुल सही
1: नोट
0: बात
1: करके रखते थे कि ये मैंने ऐसा
0: हाँ
1: किया
0: इसे
1: था
0: जी
1: तो उसका रिजल्ट क्या आया है, तो वो
0: जी
1: आपको
0: बिल्कुल
1: लर्निंग होती थी वहां पर। यहाँ पर क्या है कि
0: जी
1: जब डिजिटल में क्या है कि हम बेतहाशा खींचे जा रहे हैं, अंधाधुंध बिल्कुल, हाँ पता लगा मैं छत पे गया, बादल देखे तो 50 फोटो ही खींच दी मैंने ऐसे ही, है
0: हाँ
1: तो उसमें क्या है कि हम कुछ सीख तो नहीं रहे हैं, वो बस खींचे
0: हाँ
1: जा रहे हैं। तो वो एक एक उसका मैं कहता हूँ कि उससे आपका लर्निंग उस तरह से नहीं हो पाती है। लेकिन ये जरूर है कि स्मार्टफोन वगैरह जब से आ गए हैं, ये जैसे मैंने भी हाल में मैं लद्दाख गया, और
0: जी
1: उसके ठीक थोड़े दिन पहले ही मैंने एक नया फोन लिया था, अच्छा फोन, बहुत अच्छा फोन था, मुझे गिफ्ट मिला था। तो मैंने देखा कि इस बार ट्रिप में, क्योंकि अब धीरे धीरे क्या है, एज के साथ में बहुत बल्की इक्विपमेंट ले जाने में मुझे दिक्कत हो रही है, क्योंकि स्पॉन्डिलाइटिस मुझे है ही है, तो मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि लाइटर रहे मेरे कंधे पर बोझ।
0: जी
1: तो इस बार ऑलमोस्ट मैंने 50% पिक्चर्स

0: स्मार्टफोन से खींची है, ऑलमोस्ट 50% है।
1: अच्छा।
0: और बल्कि मैंने अभी लौट के आए थे तो उसके मैंने 24 इंच के प्रिंट भी बना के देखे कि कैसा रिजल्ट आ रहा, देखें जरा।
1: अच्छा
0: ठीक है, मतलब मुझे लगा कि आपको कोई उस प्रिंट कोई होल्डिंग तो बनानी नहीं है कोई, आपको मैक्सिमम 24 इंच की, 18 इंच की या 36 इंच की बनानी होगी, उतने भर के लिए वो बहुत बढ़िया रिजल्ट दे रहा है।
1: Okay,
0: उसमें okay. कोई शक ही नहीं है। और सबसे बड़ी चीज है ईज ऑफ यूज, मतलब जो आपका कन्वीनियंस है ना उतनी, आपको भारी बिल्कुल नहीं है, आपको बस जेब रखा और कर लिया। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो ये है कि लैंडस्केप वगैरह खींच रहे हैं तब तो ठीक है, अब जैसे आपको वाइल्ड लाइफ करना है तो स्मार्टफोन से मुश्किल होगा जरूर,
1: मुश्किल
0: क्योंकि उसका जो एक जैसे बोलते हैं ना कि हम लोग शटर लैग होता है, मतलब कि जब आपने शटर प्रेस किया और जो फोटो खींची उसके बीच में 0.00 कुछ सेकंड्स का लैग होता है, मतलब वो लैग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो DSLR कैमरे में नहीं होता है वो। अच्छा, उसमें आपने द मोमेंट यू प्रेस द शटर आपकी पिक्चर फ्रीज हो गई वहीं पर।
1: ओके,
0: तो
1: ओके,
0: वो थोड़ा सा जो होता है कि वहां पर, मतलब स्मार्टफोन इन जनरल बहुत काम की चीज है और मैंने तो बहुत अच्छे से यूज किया उसको। और लेकिन ये होता है कि हाँ बहुत ऐसी जगह होंगी जहां पर आप उसका यूज उस तरह से नहीं कर पाएंगे, जैसे स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स पे थोड़ा
1: मुश्किल है
0: वहां पर थोड़ा सा, या फिर वाइल्ड लाइफ में जहाँ बहुत जूम का है।
1: रात में भी नाइट विजन भी उनका बहुत उतना अच्छा नहीं होता मेरे ख्याल में।
0: लेकिन होता है कि अब, लेकिन स्मार्टफोन अब ऐसे आ गया है कि मैं खुद अचंभ, जैसे मैं अभी अपने इस कैमरे का रिजल्ट देख रहा था, मैं खुद अचंभित था कि यार ये मतलब स्मार्टफोन के कारण ही संभव हो पाया है। कैमरा होता तो मुझे बहुत झंझट करनी पड़ती उसमें उस शॉट के लिए, स्मार्टफोन बहुत इजी है यूज करना उसको, तो बढ़िया है, अच्छा है। और टेक्नोलॉजी ऐसी चीज है कि जो धीरे धीरे चीजें बदलती जाएंगी, अब तो AI आ रहा है, AI आ गया है, तो AI में लिखा है कि आपको लद्दाख जाना भी नहीं है, आपको घर बैठे लद्दाख में तो आप अपनी एक कोई फोटो खींची, बहुत बढ़िया सा लद्दाख का बैकग्राउंड बनाया, डाल दिया, कोई पता भी नहीं कर सकता कि ये लद्दाख में खींची गई है या आपने अपने घर में बनाई है ये।
1: जी जी बिल्कुल।
0: तो अब ये इसके मतलब ये इसका प्लस भी है माइनस भी है, मतलब
1: ना बिल्कुल सही तो,
0: मतलब ये अच्छाई भी है बुराई भी है।
2: देखो तुमसे अच्छा।

जान हमें पर होगी, कभी हमने नहीं सोचा था ऐसा दिन भी आएगा। पानी में आग लगेगी, पत्थर भी पिघल जाएगा। देखो तुम से आ...

प्यासे के पास नदी भी खुद प्यास बुझाने आए। प्यासे के पास नदी भी खुद प्यास बुझाने आए। प्यासे के पास नदी भी खुद प्यास बुझाने आए। कभी हमने नहीं सोचा था।

0: अपने दिल में वो आग उधर भी होगी, जो आग है अपने दिल में वो आग उधर भी होगी, जो आग है अपने दिल में वो आग उधर भी होगी। कभी हमने नहीं सोचा था ऐसा दिन भी आएगा, पानी में आग लगेगी पत्थर भी पिघल जाएगा। देखो तुमसे अच्छा कौन है।
1: अच्छा, जैसे अब लद्दाख की बात हमने शुरू की, आपको घूमने का और भ्रमण करने का भी काफी शौक है, तो क्या ये शौक आपके फोटोग्राफी शौक को तो सप्लीमेंट कर ही रहा है, लेकिन अब इससे रिलेटेड कोई ऐसी बात बताइए, आप कहाँ कहाँ घूमे पहले तो एक ब्रीफ में हमें ये बता दीजिए, और फिर आप बताइए कोई ऐसा अनुभव हुआ हो आपके इस घूमने के दौरान। आपको तो काफी शौक है लद्दाख पहाड़ों पर भी जाने का, समंदर में भी जाने का।
2: हाँ नहीं, जैसे अब हम लोग लखनऊ में रहते हैं, यहाँ तो उत्तरांचल नजदीक है बहुत, तो अच्छा। उत्तरांचल की ट्रिप्स हमने बहुत की हैं, और इसलिए भी कि नजदीक है और मेरे मन का है वहां पर जो कुछ मुझे चाहिए
1: जी।
2: नेचर है वहां पर बहुत ही सुंदर, तो लद्दाख था, लद्दाख जाने का मेरा बहुत दिनों से मन था, बहुत सालों से मन था, लेकिन जा नहीं पा रहा था किसी किसी कारण से। लेकिन जब गया तो मुझे लगा कि यार यहाँ तो बहुत पहले आना चाहिए था मुझे, क्योंकि अब धीरे धीरे वहां जाना मुश्किल इसलिए भी है कि वहां पर एक सर्टेन हाइट के ऊपर दिक्कत होती है ऑक्सीजन की बहुत, वहां
1: ऑक्सीजन
2: एक सर्टेन एज के बाद में आपको वहां मुश्किलें आएंगी आएंगी, पक्का आएंगी
1: जी।
2: हालांकि लकीली बाई गॉड्स ग्रेस इस बार हम लोग जब गए थे तो मुझे ऐसे कोई दिक्कत नहीं, हम लोग हालांकि पूरी तैयारी से मैं गया था, दवाइयां लेके और ऑक्सीजन सिलेंडर भी रख लिया था गाड़ी में, सब कुछ था, लेकिन जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन यह है कि ये ऐसी जगहों पर आपका जाना हमेशा नहीं हो सकता है, आप एक एज के बाद में आपको, अनलेस कि आप मतलब प्रोफेशनल ट्रैकर हैं तो बात अलग है, अदरवाइज आप जो कि प्लेन्स पर रहते हैं आपके शरीर को या आपके लंग्स को उतने कम ऑक्सीजन की आदत नहीं बिल्कुल भी है, या 100% पे परेशानी हो रही है वहां तो मतलब 30% 40% ऑक्सीजन है खाली जो नॉर्मल होता है उससे, तो आपको चलना फिरना मतलब उसी में आप हाँफने लगते हैं बिल्कुल, तो वो दिक्कतें आती हैं। तो पहाड़ मेरा हमेशा मतलब फेवरेट वो रहा है, मतलब डेस्टिनेशन तो उत्तरांचल मैंने बहुत घूमा है काफी, जैसे उत्तरांचल में कई जगह ऐसे गए हैं जैसे कि ट्रैकिंग भी कभी कभी हम लोग करते रहते थे बीच बीच में, तो अभी 5-7 साल पहले हम लोग गए थे बेदनी बुग्याल एक जगह है ग्वालदम के पास में, वो करीब 11,500 फीट पे है, बेसिकली रूपकुंड का ट्रैक होता है, रूपकुंड एक जगह है वहां का ट्रैक होता है, करीब 24 किलोमीटर का है वो ट्रैक, 24-25 किलोमीटर का उसका हाफ वे पड़ता है बेदनी बुग्याल, मतलब करीब 12-13 किलोमीटर।
1: अच्छा,
2: तो हम लोग गए थे, तो हम लोग हाफ तक गए थे पूरा नहीं, इसलिए टाइम नहीं था पूरा, वो पूरा ट्रैक 8 दिन का होता है, इतना टाइम भी नहीं था मेरे पास उस समय, तो आधा गए थे, तो वो ये ट्रैक वगैरह भी करने के लिए उत्तरांचल बहुत इजी है पहुंचना वहां पर, और बेसिकली ट्रैक्स जो है वहां पर हैं उतने मॉडरेट लेवल के हैं, मतलब बहुत एक्सट्रीमली डिफिकल्ट नहीं है, कोई भी आदमी थोड़ा बहुत भी फिट है चला जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है।
1: अच्छा,
2: मतलब 6-7 घंटे का आपको ट्रैक करना पड़ेगा, 6-7 घंटे जाके आप पहुंच गए वहां पर और फिर आ गए लौट के अगले दिन। तो उत्तरांचल मेरा फेवरेट है। बाकी आर्किटेक्चर में मैं साउथ में काफी घूमा हूँ और नॉर्थ ईस्ट भी थोड़ा बहुत गया हूँ, मतलब एक आध प्रोजेक्ट में गया हूँ मैं, और इधर लद्दाख है, बाकी तो साउथ में काफी घूमा हूँ, साउथ में मेरा फेवरेट आर्किटेक्चर वगैरह के लिए मैं वहां जाता हूँ।
1: बिल्कुल सही बात है।

0: अब थोड़ा सा करते हैं, आपकी पत्नी भी साहित्यिक गतिविधियों में काफी व्यस्त रहती हैं, कैसे
1: जी
0: सपोर्ट करते हैं आप उनको? क्या उनके साहित्यिक पैशन से आपको अपनी फोटोग्राफी में कोई सहायता मिलती है?
1: हाँ, जैसे सहायता क्या, जैसे होता क्या है कि एक तो एक बहुत कॉम्प्लीमेंट्री सा हो जाता है हम दोनों का, क्योंकि जैसे मुझे साहित्य की समझ है, मैं साहित्यकार तो नहीं हूँ लेकिन साहित्य की समझ मुझे है ठीक,
0: जी
1: और
0: जी
1: ऐसे ही उसको जो है फोटोग्राफी की समझ है, क्योंकि जैसे
0: अच्छा,
1: मैं हर पिक्चर पहले, सबसे पहले तो मेरी मतलब व्यूअर वही
0: आप
1: होती है,
0: उन्हीं
1: उसको
0: के लेते
1: दिखाता
0: होंगे।
1: हूँ,
0: हाँ,
1: नहीं
0: वही
1: उसको ही
0: आप।
1: दिखाता हूँ कि कैसी है पिक्चर,
0: अच्छा
1: ये बताओ
0: अच्छा
1: मतलब जो भी कमियां नहीं
0: अच्छा
1: है तो बताओ उसमें क्या है, तो वो ठीक से बहुत अच्छे से उसको बताती है कि क्रिटिक सही देती है कि इसमें क्या कमी है क्या अच्छा है,
0: अच्छा अच्छा
1: तो
0: अच्छा वेरी
1: ये
0: गुड।
1: थोड़ा कॉम्प्लीमेंट्री हो जाता है कि हमको समझ उसके साहित्य की, जैसे कविता वो भी लिखेगी तो मुझे बताएगी कि देखो ये कैसी है, मैं बताऊंगा कि ये शब्द मुझे समझ में नहीं आ रहा है, शब्द थोड़ा चेंज कर सकती हो तो ठीक है, मतलब ये आपस का वो होता है। बाकी
0: अच्छा,
1: साहित्यिक गोष्ठियों वगैरह में मेरी कोई, मैं लिखता तो हूँ नहीं ज्यादा, बहुत कमी, वो भी अपने लिए लिखता हूँ, लिखता भी हूँ तो मतलब कभी छपवाने के लिए नहीं लिखता हूँ, लेकिन गोष्ठियों वगैरह में कभी कभी चला जाता हूँ उनके साथ में, तो ऐसे बैठ के सुनता हूँ बाकी तो
0: नहीं, आप दोनों क्रिएटिव लोग हैं, ये बहुत बढ़िया बात है। तो

0: सुंदर जी, कोई चलते चलते कोई सलाह आप नए फोटोग्राफर्स के लिए देना चाहते हो, या कोई टिप देना चाहते हो, कोई भी ऐसी बात संदेश आप देना
1: नहीं,
0: चाहते हो तो उसका स्वागत है।
1: संदेश वगैरह कोई, मैं इतना बड़ा फोटोग्राफर तो नहीं हूँ, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि जो नए बच्चे आते हैं, जैसे मैंने 5 साल करीब एक यूनिवर्सिटी में यूजी और पीजी के बच्चों को फोटोग्राफी और विजुअल
0: अच्छा
1: कम्युनिकेशन
0: अच्छा
1: सब्जेक्ट पढ़ाया
0: अच्छा
1: है यहाँ पर।
0: ओहो
1: हाँ, मतलब जर्नलिज्म छोड़ने के बाद में मैंने फिर यही किया था कि फोटोग्राफी से
0: अच्छा
1: जुड़ा ही काम करूंगा, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी, वहां पर मैं एसोसिएट प्रोफेसर था करीब 5-6 साल। मैं गया था,
0: अच्छा
1: जैसे मैं
0: अच्छा
1: काफी BHU में और भी कई यूनिवर्सिटी में मैं गेस्ट फैकल्टी रहा हूँ कई जगह, लेकिन
0: अच्छा
1: फिर
0: अच्छा
1: यहाँ पर भी
0: अच्छा
1: गेस्ट फैकल्टी था तो उन्होंने कहा फुल टाइम आ जाइए, तो मैंने कहा ठीक है। अच्छा, तो उनका पूरा सेटअप करना था, स्टूडियो वगैरह पूरा बनाना था उनका,
0: अच्छा
1: तो मैंने
0: अच्छा
1: कहा
0: अच्छा
1: ठीक है।
0: अच्छा
1: तो फिर वो सारा कुछ किया, धीरे धीरे करते करते 5 साल बीत गए। तो वहां पर तो जैसे जब मतलब बच्चे जब होते हैं तो आपको लगता है ना कि हाँ ठीक है कि चलिए। तो उनको, बच्चों को मैं हमेशा बोलता था कि देखो, पहली चीज तो ये कि खुद से सवाल कर लो ना कि तुम तस्वीर खींचना क्यों चाहते हो।
0: अच्छा
1: तो मतलब आप मतलब पर्पस क्या है इसका है, तो क्यों खींचना चाहते हो, मतलब तुम्हें तस्वीर पसंद है या क्योंकि आज की पीढ़ी, मुझे लगता है ना, वो हमारी पीढ़ी से ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो
0: अच्छा
1: ज्यादा शार्प है, और उसके पास सुविधाएं भी हमसे ज्यादा हैं जो हमारे पास थी उस समय, है ना। बस मैं हमेशा कहता हूँ कि तुम्हें थोड़ा सा धैर्य कम है शायद, मुझे ऐसा लगता है। तो अगर वो पेशेंस थोड़ा सा हो जाए तो तुम लोग तो कमाल कर सकते हो, तुम्हारे पास सब कुछ तो
2: जिंदगी के रंग हजार।
3: दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना ना भूलिएगा।
2: छोटी सी हमारी कायनात बन गई।
4: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
5: अ से अर्जुन,
6: आ से आशा
5: जी।
7: टाइम हो रहा है, भैया ने बुलाए,
8: चलते हैं।
9: सही कह रहे हो,
8: चलो चलते हैं फटाफट। इससे पहले टाइम नहीं है, मुझे लगता है खेलने के लिए बुलाया होगा। चलो,
10: कल कहीं पढ़ने के लिए तो नहीं बुला रहे?
8: कई काम से
11: लगता है बच्चे आ गए। बच्चों की आवाज है। अरे अरे अरे अरे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ बच्चों, आ जाओ, शाबाश।
12: नमस्ते भैया।
11: नमस्ते बच्चों, नमस्ते। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शाबाश। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। हाँ, ये हुई ना बात। पहले तो सब बच्चे अपना अपना नाम बताएंगे, ठीक है ना?
13: नमन,
11: नमन,
13: लवीश,
11: लवीश,
13: अर्णव,
11: अर्णव,
13: अभय,
11: अभय,
13: दक्ष,
11: कुशाग्र,
13: निशांत,
11: निशांत। भाई जोर से बजाओ ताली पहले सबके लिए। शाबाश शाबाश। ये बताओ, कहानी सुनना किस किस बच्चों को अच्छा लगता है? हाथ खड़ा।
14: मुझे,
11: तो बच्चों, आज से मैं आपको रोज एक नई कहानी सुनाया करूंगा।
14: कहानी?
11: हाँ, कहानी।
15: अपनी बहन को
16: महमूद भी आए।
11: हाँ हाँ, महमूद को लेके आना, अपनी बहन को लेके आना, अपने भाई को लेके आना, ठीक है ना? और जानती हो कहानी किस पर हुआ करेगी?
14: हाथी,
11: हाथी, गिलहरी,
14: बिल्ली।
11: बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक भाई। मैं इन सब की कहानियां तो सुनाऊंगा ही, और साथ में सुनाऊंगा तुम्हें अक्षर की कहानी।
17: क्या बात हुई, क्या बात हुई?
11: ये कौन आ रहा है?
18: नमस्ते भैया।
11: नमस्ते बेटा, नमस्ते। आ जाओ बेटा, आ जाओ, अंदर आ जाओ, आ जाओ, शाबाश, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ
18: जाओ। तो आज नई कमीज पहनी है।
11: क्या क्या क्या?
18: तुमने आज नई कमीज पहनी है।
11: अरे निशांत, इसका नाम आतुल नहीं, अतुल है।
18: अतुल?
11: अरे वाह अतुल, तुम्हारी कमीज तो बहुत ही सुंदर है।
18: ये मामा जी ने दी है।
11: अच्छा, क्या बात है। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, जैसे निशांत ने अतुल को आतुल बोला, ऐसे ही अगर हम अमर में अ की जगह आ लगाएं तो क्या बनेगा?
18: अमर,
11: अमर,
18: अमर, अमर।
19: और भैया अकल का हो जाएगा आकल,
11: आकल। वैसे बच्चों, होता है अकल, जैसे अकलमंद। तुम तो सच में बहुत अकलमंद।
19: भैया अजब का बन जाएगा आजब।
11: हाँ आजब, शाबाश। बजाओ सी बात तो जोरदार तालियां, बजाओ तालियां, शाबाश। अच्छा बच्चों, अगर मैं आरती में आ की जगह अ लगाऊं तो क्या बनेगा? सोचो सोचो।
6: आरती
9: आरती
11: आरती। वाह शाबाश। और अगर मैं अकेला में अ की जगह आ लगाऊं तो क्या बनेगा?
9: अकेला
11: अकेला
9: अकेला
11: अकेला। तो इसी बात में बच्चों हो जाए अक्षर की कहानी। तो अ से अक्षर, अ से
9: अक्षर
11: अक्षर।
19: भैया मेरी बहन ने छोटे अ से अनार सिखाया है।
11: अच्छा, और बड़े अ से?
19: बड़े अ से आम।
11: वो आपको समझाने के लिए कहती हैं छोटा आ बड़ा आ। और वो बच्चों इसलिए क्योंकि हम अगर थोड़ी देर के लिए बोलेंगे तो हम ऐसे बोलेंगे अ, और अगर ज्यादा देर के लिए बोलेंगे तो हम इसको खींचेंगे जैसे आ। तो अ और आ, अ से अनार और आ से आम। इसीलिए तुम्हारी मैडम या तुम्हारे सर तुम्हें समझाने के लिए कहते हैं छोटे अ से अनार बड़े आ से आम। होता है लघु स्वर जैसे अ थोड़ी देर के लिए बोला हमने, और दीर्घ स्वर ज्यादा देर के लिए बोलेंगे तो बोलेंगे आ। बोलो मेरे पीछे एक साथ, ठीक है? अ आ
9: आ
11: आ। शाबाश। तो बच्चों हमारी आज की कहानी है अ से अर्जुन और आ से आशा। अ आ
9: आ।
11: हाँ, आगे समझ में? अ से
9: अर्जुन
11: और आ से
9: आशा।
11: शाबाश। बच्चों दोनों भाई बहन थे, अर्जुन छोटा था आशा बड़ी थी। दोनों भाई बहन बड़े शरारती थे, दिन भर खेलते रहते। इतना खेलते बच्चों, इतना खेलते कि उन्हें खाने पीने की भी चिंता नहीं रहती थी। हाँ। अच्छा एक बार पता है क्या हुआ?
9: क्या हुआ भैया?
6: क्या हुआ भैया?
11: एक बार अर्जुन और आशा के घर के बाहर तमाशे वाला आया। अच्छा तमाशे वाला कौन होता है, कौन बताए?
19: वो रस्सी पे चलता है भैया।
11: हाँ सही कहा तुमने,
19: जादू भी करता है।
11: जादू भी करता है हाँ।
19: भैया और वो नए नए खेल दिखाता है।
11: नए नए खेल दिखाता है, क्या बात है। तो एक बार अर्जुन और आशा के घर के बाहर तमाशे वाला आया। आ से आया, आ से आशा और आ से आया, ठीक है? तो बच्चों दोनों तमाशा देखने में इतना खो गए कि अचानक जब वर्षा आई तब भी वो बाहर ही खड़े रहे।
19: भैया आ से अचानक।
11: हाँ, आ से अचानक।
6: भैया आ से आया,
11: आ से आया और आ से आई।
19: भैया आ से आता,
11: आ से आता। शाबाश। आ से आज। तो सुनो आगे क्या हुआ। तो बच्चों जब बारिश हो रही थी तो उनकी अम्मा ने उन दोनों को आवाज लगाई। अरे बच्चों, अरे आशा और अर्जुन जल्दी आओ जल्दी, अरे बारिश होने लगी है बेटा, अरे बीमार पड़ जाओगे भीग जाओगे, जल्दी आ जाओ अंदर। हाँ तो बच्चों आ से आशा, आ से आवाज, आ से आओ और अ से
19: अर्जुन,
11: अ से अर्जुन,
19: आ से अमरूद,
11: अ से अमरूद,
19: आ से अगली,
11: आ से अगली,
19: आ से अजगर,
11: आ से अजगर,
6: अंदर,
11: आ से अंदर,
19: अम्मा
11: और आ से अम्मा। शाबाश, बहुत बढ़िया बच्चों। तो बच्चों अर्जुन और आशा भीग चुके थे, उन्होंने जल्दी जल्दी कपड़े बदले। इसी बीच अम्मा ने चूल्हे में आ से आग जलाई और पकाए गर्मा गर्म पराठे।
19: भैया आ से आटा,
11: आ से आटा। शाबाश।
6: आ से आग,
11: आ से आग।
19: भैया अ से अरहर की दाल।
11: अ से अरहर, सही कहा तुमने। और बच्चों साथ ही बनाई अरबी की सब्जी। किसकी सब्जी?
9: अरबी की सब्जी।
19: भैया अ से अरबी।
11: हाँ शाबाश।
9: अ से अम्मा।
11: हाँ अ से अम्मा।
19: अ से अगर,
6: अ से अगरबत्ती,
11: अ से अगरबत्ती, अ से अगर, अ से अजगर, अ से असलम और अ से अम्मा, अ से अरहर और अ से अरबी। और हाँ एक चीज और भी बनाई, बड़ी चटपटी मसालेदार।
16: ये क्या बनाई?
11: अम्मा ने बनाए चटपटे आलू।
20: भैया मुझे आलू पसंद है।
11: मुझे भी पसंद है भाई चटपटे आलू।
21: भैया मुझे अनार पसंद,
11: अनार पसंद है, से अनार। तो अम्मा ने उन्हें अनार भी दिया खाने को और हाँ आम भी दिया। आम किसको पसंद है? वाह सभी को पसंद है ना। तो आ से आम, आ से आलू, अ से अरबी और अ से अरहर, अ से अपनी और आ से आंखें, अपनी आंखें।
20: भैया आ से आम का अचार,
11: आ से आम और अ से अचार, तो आम का अचार। वाह क्या बात है, बजाओ ताली जोरदार। तो बच्चों आगे सुनो, अम्मा ने बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया और अर्जुन और आशा से कहा,
22: अरे बच्चों, अरे भाई अपने आप ले लो खाना, मैं तो काम में बहुत व्यस्त हूँ, ले लो हाँ।
20: अ से अपने,
11: अ से अपने,
21: भैया आ से आप,
11: आ से आप, शाबाश अपने आप। वाह क्या बात है अपने आप। तो बच्चों अर्जुन और आशा ने ढेर सारा खाना खाया, उन्हें भूख भी तो लगी थी ना
16: भैया।
21: हाँ भैया।
11: अच्छा बच्चों ये बताओ उन्हें खाना कैसा लगा होगा?
16: बहुत अच्छा लगा
21: भैया, अच्छा।
11: शाबाश अ से अच्छा। तो दोनों कहने लगे, आहा मजा आ गया, आहा अम्मा ने कितना अच्छा कितना स्वादिष्ट खाना।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
1: अधिक बलवान कौन?

0: एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। हवा ने सूरज से कहा,
1: मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ।
0: सूरज ने हवा से कहा,
2: मुझमें तुमसे ज्यादा ताकत है।
0: इतने में हवा की नजर एक आदमी पर पड़ी। हवा ने कहा,
1: इस तरह बहस करने से कोई फायदा नहीं है। जो इस आदमी का कोट उतरवा दे वो ही ज्यादा बलवान है।

0: सूरज हवा की बात मान गया। उसने कहा,
1: ठीक है, दिखाओ अपनी ताकत।
0: हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की।

0: आदमी की टोपी उड़ गई।
1: अरे अरे अरे
0: पर कोट उसने अपने दोनों हाथों से शरीर से लपेटे रखा और जल्दी जल्दी कोट के बटन बंद कर लिए। हवा और जोर से चलने लगी। अंत में आदमी नीचे ही गिर पड़ा।
1: अरे अरे अरे
0: पर कोट उसके शरीर पर ही रहा। अब हवा थक गई थी।

0: सूरज ने कहा,
1: हवा अब तुम मेरी ताकत देखो।

0: सूरज तपने लगा। आदमी ने कोट के बटन खोल दिए। सूरज की गर्मी और बढ़ी। आदमी ने कोट उतार दिया और उसे हाथ में लेकर चलने लगा। सूरज ने कहा,
1: देखी मेरी ताकत, उतरवा दिया ना कोट।
0: हवा ने सूरज को नमस्कार किया और कहा,
2: मान गई तुम्हारी ताकत को।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो टंट्या भील 90.8 FM, जाबुआ की आवाज।
1: जलियांवाला बाग

0: ये बात उस वक्त की है जब पहले महायुद्ध में हिंदुस्तानियों ने विदेशी सरकार की तन मन धन से सहायता की और इसके बदले में भारतीयों को मिला रॉलेट बिल।
1: रॉलेट बिल ने पुलिस को बिना वारंट के लोगों को गिरफ्तार करने, नजरबंद करने और तलाशी लेने के पूरे अधिकार दे दिए। अदालतों में पैरवी करने की मनाही कर दी गई।
0: इस कानून का सीधा सा मतलब था व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अंत। 6 फरवरी 1919 को रॉलेट बिल नाम के दो बिलों को बड़ी काउंसिल में पास करने के लिए पेश किया गया। 24 फरवरी के दिन गांधी जी ने ऐलान किया कि अगर बिलों को पास कर दिया गया तो सारे देश में सत्याग्रह होगा और 30 मार्च 1919 को रॉलेट बिल के विरोध में देशव्यापी हड़ताल की योजना बनाई गई। लेकिन इस हड़ताल की तिथि बढ़ाकर 6 अप्रैल कर दी गई, पर दिल्ली खबर न पहुंचने की वजह से 30 मार्च को ही हड़ताल हुई।
1: लेकिन इसी बीच पहला बिल मार्च के तीसरे सप्ताह में पास कर दिया गया, जो रॉलेट एक्ट कहलाया।
2: मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो।
3: हमारा पहला प्रस्ताव है कि काला कानून रॉलेट एक्ट वापस लिया जाए।
4: रॉलेट एक्ट वापस लो,
5: रॉलेट एक्ट
4: वापस लो,
5: रॉलेट एक्ट
4: वापस लो,
5: रॉलेट

पूरे देश में हड़ताल हुई। पंजाब के सभी नगरों में यह हड़ताल शांतिपूर्वक रही। 9 अप्रैल के दिन रामनवमी थी। रामनवमी के अवसर पर अमृतसर में हिंदू मुसलमानों ने जुलूस निकाला।

0: और नो।
1: ये हिंदू मुसलमानों की कौमें एक होकर तो हमारा सरदर्द बन जाएंगी। क्यों नहीं डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया जाए? इससे आवाम का जोश भी ठंडा पड़ जाएगा।
2: Hey, you, come up!
3: इसी बीच गांधी जी भी पंजाब जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें वहां पहुंचने से पहले ही पलवल स्टेशन पर गिरफ्तार कर वापस बंबई भेज दिया गया। नेताओं की गिरफ्तारी से पंजाब और ज्यादा उत्तेजित हो उठा और अमृतसर को सेना के हाथों सौंप दिया गया। सेना का सर्वे सर्वा था जनरल डायर। 11 अप्रैल को अमृतसर में जनता ने हड़ताल की और जुलूस निकाला। 12 अप्रैल को अमृतसर एक सैनिक कैंप बन गया। जनरल डायर ने हवाई जहाज से शहर का निरीक्षण किया और गली गली फौजी मार्च कराया गया।

0: महात्मा गांधी की
1: जय।
0: महात्मा गांधी की
1: जय। भारत माता की
2: जय।
1: भारत माता की।
3: जनरल डायर के सामने नारे लगाने की ऐसी हिम्मत, चौथा इन्हें कोरियर से बूंद डालू। नो नो नो, मुझे इससे बेहतर मौके का इंतजार करना होगा।
4: इंतजार, जनरल डायर ने और ज्यादा इंतजार नहीं किया। 12 अप्रैल को जुलूस के नेताओं को गिरफ्तार करके उन्हें हथकड़ियां पहनाई गईं और रामबाग ले जाकर उन्हें पेड़ों से बांध दिया गया। निगरानी के लिए डायर ने गोरखों को तैनात कर दिया। दमन चक्र सख्त होता जा रहा था। अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था। अमृतसर में आसपास के गांव से लोग बैसाखी का त्योहार मनाने पहुंचे थे। बैसाखी के मेले में भाग लेने आए इन लोगों ने अपना डेरा जलियांवाला बाग में जमाया हुआ था। इसी बीच जनरल डायर ने यह ऐलान कराया था कि शहर में कोई मीटिंग न की जाए, लेकिन यह ऐलान सब लोगों तक पहुंचा नहीं। जलियांवाला बाग में नेताओं की रिहाई के लिए एक मीटिंग का आयोजन किया गया। बैसाखी मनाने आए लोगों ने जब मीटिंग की भीड़ देखी तो कौतूहलवश वे भी इसमें शामिल होने पहुंच गए। शाम 4:30 बजे के लगभग जलियांवाला बाग में 10,000 के करीब लोग जमा हो चुके थे, जिसमें बच्चे भी शामिल थे। वातावरण में विरोध था, तनाव अपनी चरम सीमा पर था।
5: भाइयों और बहनों, सुनिए सुनिए, भाइयों और बहनों, माताओं और बच्चों, आज की सभा में हम कुछ जरूरी प्रस्ताव रखना चाहते हैं। हमें उम्मीद है कि आप सब हमारा साथ देंगे।
6: भारत माता की
1: जय।
6: भारत माता की
1: जय।
6: भारत माता की
1: जय।
5: इन प्रस्तावों को पास करके हम इन्हें सरकार के पास भेजेंगे ताकि हमारी मांगे फौरन पूरी की जा सके।
6: हमारी मांगे
1: पूरी करो।
6: हमारी मांगे
1: पूरी करो।
6: हमारी मांगे
1: पूरी करो।
5: हमारा पहला प्रस्ताव है कि काला कानून रोलेट एक्ट वापस लिया जाए।
7: रोलेट एक्ट
1: वापस लो।
7: रोलेट एक्ट
1: वापस लो।
7: रोलेट एक्ट
1: वापस लो।
5: ये सभा 10 अप्रैल के दिन हुए गोलीकांड की निंदा करती है और शहीदों के परिवार के साथ सहानुभूति प्रकट करती है।
6: मारो,
5: मारो। सरकार से अनुरोध करती है कि डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को फौरन रिहा किया जाए।
6: सत्यपाल को
1: रिहा करो।
6: डॉक्टर किचलू को
1: रिहा करो।
6: सत्यपाल को
1: रिहा करो।
6: डॉक्टर किचलू को
1: रिहा करो।
4: सभा चल रही थी और उधर जनरल डायर अपने सिपाहियों के साथ जलियांवाला बाग के एकमात्र दरवाजे पर आ डटा। जलियांवाला बाग के चारों ओर दीवारें थीं और केवल एक ही दरवाजा था जिससे अंदर आया जाया जा सकता था। इसी दरवाजे पर डायर के सैनिकों ने अपनी खूनी बंदूकें तान ली।

लोग एकमात्र दरवाजे की ओर भागे और गोलियां उन्हें बीनती रही। कुछ लोग दीवारों पर चढ़े जिससे कि दूसरी ओर कूदा जा सके, लेकिन कोशिश बेकार रही। गोलियों की बौछारों से बचने के लिए कुछ कुएं में भी कूदे, लेकिन मौत

0: माता वहां भी इंतजार कर रही थी। पूरे 10 मिनट तक मौत का नंगा नाच होता रहा।
1: गोली चलाना बंद क्यों कर दिया? आई से फायर, फायर इन।
2: सर, सर कारतूस खत्म हो गए हैं।
1: और शट अप। ठीक, ये सबक काफी है। अबाउट टर्न, फायर।

0: मौत का दरिंदा जब दरवाजे से हटा, तब रतन देवी उस मौत के मैदान में अपनों को खोजती हुई पहुंची।
1: मासी, मासी मेरी लत सीधी करते, मासी, मासी, मासी मेरी लत सीधी
2: करती है, करनी है। अल्लाह, हाय अल्लाह, हाय मेरी पुत्र है तो अल्लाह ही लाऊं है।
1: पानी
2: कितने लाऊ, पानी कितने
1: ना जाइए तेरे मासी ना
2: जाइए।
0: जब कोई हिंदुस्तानी किसी अंग्रेज अफसर को मिले तो उसे सलाम करे। अगर घोड़े पर सवार हो तो हिंदुस्तानी अंग्रेज की शान में घोड़े से उतर जाए। अगर हिंदुस्तानी छाता लगाए हो तो नीचे झुका ले। पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। पंजाब की खबरों के बाहर जाने पर रोक लगा दी गई।
3: और यही वजह थी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की खबर कांग्रेस के नेताओं को कई हफ्ते बाद मिली।
0: इस खबर के मिलते ही भारतीयों के मन दुख, ग्लानी और आक्रोश से भर गए। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि का त्याग कर दिया। उन्होंने कहा कि अब वो समय आ गया है कि जब सम्मान पदक शर्म पदक लग रहे हैं। डायर की मनमानी करतूतों के कारण पूरे पंजाब में विद्रोह भड़क उठा और इसी के साथ ही अंग्रेजी हुकूमत के बढ़ते दमन चक्र की वजह से कसूर, गुजरावाला और लाहौर में भी विद्रोह की आग भड़क उठी। ये सब देखते हुए अंग्रेजी हुकूमत ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के 6 महीने बाद अक्टूबर 1919 में हंटर जांच समिति नियुक्त की, जिसको जलियांवाला बाग में हुए हत्याकांड की जांच करनी थी।
4: जनरल डायर।
5: यस सर।
4: आप जब जलियांवाला बाग में पहुंचे तो आपने क्या किया?
5: मैंने गोली चलाने का हुक्म दिया।
4: क्या ये हुक्म आपने फौरन दिया?
5: यस, मैंने पहुंचते ही गोली चलाने का हुक्म दिया।
4: क्या वार्निंग नहीं दी?
5: नो, क्योंकि हमारे सुबह के ऐलान के बावजूद भी लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे। उन्हें कोई भी मीटिंग करने से मना कर दिया गया था। वैसे उन्हें मेरे आने की चेतावनी तो मिल ही गई होगी।
4: फिर गोली चलाने का क्या मकसद था?
5: मेरा मकसद गोली चलाकर फीट को टिटर बिटर करना नहीं था। मैं चाहता था कि इस तरह की फायरिंग के बाद पूरे पंजाब के लोगों में कुछ ऐसा डर बैठ जाए कि दोबारा ऐसा करने की हिम्मत ही ना हो।
0: जनता को डराने धमकाने के इस शर्मनाक तरीके को हंटर जांच समिति ने ताक पर रख दिया। हंटर जांच समिति की कार्यवाही केवल इस हत्याकांड पर लीपापोती करती रही और डायर को बरी कर दिया गया।
3: लेकिन कांग्रेस ने पंजाब की घटनाओं की सही जानकारी लेने के लिए अपनी एक समिति नियुक्त की, जिसके प्रमुख सदस्य थे सर्वश्री मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, देश बंधु चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, बदरुद्दीन तैयब जी और जयकर। इस समिति ने 3 महीने तक पंजाब की घटनाओं का अध्ययन किया। समिति ने पंजाब के प्रशासकों की घोर निंदा की, प्रमुख रूप से पंजाब के गवर्नर माइकल ओडायर और सेना के जनरल डायर की भर्त्सना की गई।
6: कांग्रेस का दिसंबर अधिवेशन सन 1919 में पहले से ही अमृतसर में होना निश्चित हुआ था और वही हुआ। इस अधिवेशन में कुछ सदस्यों ने जलियांवाला बाग के अमानवीय एवं निर्मम हत्याकांड के खिलाफ जबरदस्त आवाज उठाई।
7: हम मांग करते हैं कि जनरल डायर को अपने पद से हटा दिया जाए।
8: पंजाब के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
9: अब भारतीयों का विश्वास वायसराय कोर्ट से उठ गया है, उन्हें आप ब्रिटिश सरकार द्वारा वापस बुला लेना चाहिए।
7: आज के इस अधिवेशन में हम संकल्प लेते हैं कि जलियांवाला बाग के शहीदों की याद हम अमर करेंगे और जलियांवाला बाग को राष्ट्रीय शहीद स्मारक बनाएंगे।
6: जलियांवाला बाग हत्याकांड में लगभग 1000 शांतिप्रिय निहत्थे एवं असहाय लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इस हत्याकांड ने भारतीय जनमानस को स्तब्ध कर दिया और इस तरह जलियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक निर्णायक मोड़ बन गया।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
1: पहली उड़ान में
2: आपने आकाश में उड़ते पक्षियों को तो देखा ही होगा, देखा है ना? पक्षियों को उड़ते हुए देखकर आकाश में उड़ने की लालसा मनुष्य के मन में शुरू से ही रही है, और आज मनुष्य रॉकेट, अंतरिक्ष यानों और हवाई जहाज की सहायता से आकाश में उड़ सकता है। मगर ये कैसे संभव हुआ, आइए आज हम आपको बताते हैं। आज से लगभग 200 वर्ष पहले की बात है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में दो भाई रहते थे, जोसेफ और स्टीफन, जिनकी आयु होगी लगभग 15-16 वर्ष। दोनों भाई अक्सर आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को देखते और हवा में उड़ने की लालसा किया करते। एक दिन की बात है, दोनों भाई घर में खाना खा रहे थे।
3: भाई वाह, आज तो मजा आ गया। कितना बढ़िया खाना बनाया है माँ ने, क्यों जोसेफ?
4: हाँ स्टीफन भाई, हमारी माँ से बढ़िया खाना भला और कोई बना भी सकता है?
5: तुम लोग खाना खाओगे या बातें ही करते रहोगे? जल्दी से खा लो बेटा, मुझे अभी कबूतरों को भी दाना पानी देना है।
4: अच्छा माँ, क्या मैं एक बात पूछ सकता हूँ?
5: हाँ पूछो बेटा।
4: क्या हम भी कबूतर की तरह नहीं उड़ सकते?
5: बेटा भला हम कैसे उड़ सकते हैं, हमारे पास पंख थोड़े ही हैं।
4: लेकिन माँ,
5: ओफो, तुमसे बातें करते करते मैं तो भूल ही गई कि चूल्हा भी बुझ रहा है। ठहरो जरा, जोसेफ
4: जी
5: जरा वो फूकनी तो देना बेटा।
4: अच्छा माँ, ये लो माँ।
5: ला।
3: ओ, कितना धुआं भर गया है कमरे में, जल्दी करो माँ।
4: मिल गया, हाँ मिल गया मुझे। अरे मिल गया मुझे,
5: क्या मिल गया
4: मुझे? माँ माँ माँ,
5: क्या मिल गया, क्या मिल गया
4: मुझे? मिल गया,
3: हाँ क्या मिल गया भाई, क्या मिल गया?
5: सब क्या हो गया तुम्हें बेटा, बताओ तो सही, क्या हो गया है?
4: माँ मुझे उड़ने का तरीका मिल गया। हाँ उड़ने का तरीका मिल गया।
3: जोसेफ होश में आओ भाई, क्या हुआ?
4: स्टीफन स्टीफन, माँ माँ माँ, सर इस कमरे के धुएं को देखो।
5: धुआं?
4: हाँ इस कमरे के धुएं को देखो।
5: हाँ?
4: इसमें इसमें क्या उड़ रहा है बताओ?
5: क्या उड़ रहा
4: बताओ,
5: है
4: उसमें क्या उड़ रहा है?
5: कुछ हाँ? भी तो नहीं,
3: कुछ भी तो नहीं है।
4: ओ नहीं स्टीफन नहीं, ध्यान से देखो।
5: हुँ?
4: हाँ ध्यान से देखो, क्या धुएं के साथ राख नहीं उड़ रही है? उड़ रही है ना?
3: वो तो है मगर
4: इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ स्टीफन कि धुआं राख को उड़ा सकता है।
3: हाँ, कहते तो तुम ठीक हो।
4: तो फिर क्यों ना हम कुछ प्रयोग करें है?
3: हाँ
4: मुझे तो लगता है कि अगर हम किसी हल्के लिफाफे में धुआं भर दें तो वो जरूर ऊपर की ओर उड़ेगा।
3: हाँ ये बात तो है। चलो चलो जोसेफ, चलो देखते हैं।
4: ठीक है, आओ मेरे साथ।
5: अरे सुनो, अरे खाना तो खाते जाओ। स्टीफन जोसेफ सुनो तो।
2: और फिर क्या था, दोनों भाइयों ने झटपट कई प्रयोग कर डाले। इसमें कई बार उन्हें असफलता हाथ लगी, लेकिन वो पूरी लगन से अपने काम में जुटे रहे। और एक दिन सचमुच धुएं से भरा लिफाफा छत से जा टकराया। इस प्रयोग की सफलता से उत्साहित होकर दोनों भाई और अधिक परिश्रम से अपने प्रयोग करते रहे। उनकी योजना थी एक बड़ा गुब्बारा बनाकर उसे उड़ाने की, और आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई, उन्होंने एक ऐसा गुब्बारा बना ही लिया। सन 1783 सितंबर का महीना था। दोनों भाई एक बड़े मैदान में अपने बनाए हुए गुब्बारे के पास खड़े थे। इस करतब को देखने के लिए मैदान में भारी भीड़ जमा थी।
6: हाँ अरे गुब्बारा गुब्बारा कहाँ उड़ेगा?
7: क्या बात है दोस्त, यहाँ तो बड़ी भीड़ है।
6: हाँ भाई भीड़ तो है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लड़के मजाक ही कर रहे हैं। अरे यार भला हवा में कोई चीज उड़ सकती है क्या?
7: अभी पता चल जाएगा, पर यहाँ तो इतनी भीड़ है कि इस तरफ से कुछ भी साफ साफ नहीं दिख पाएगा।
6: तो चलो उस तरफ चलते हैं, उधर भीड़ जरा कम है।
7: हाँ, आओ, आओ, यही ठीक रहेगा।
6: अरे भाई साहब जरा रास्ता दीजिए, आगे जाने दीजिए।
7: भाई साहब हट जाइए। हाँ आ गए आ गए, यहाँ से हम सब कुछ साफ साफ देख सकते हैं।
6: अरे अरे वो देखो वो सामने एक बड़ा सा गुब्बारा रस्सी से बंधा हुआ है।
7: अरे ये क्या, जोसेफ और स्टीफन गुब्बारे से एक टोकरे को बांध रहे हैं। वो देखो टोकरे में। हाँ
6: अरे अरे टोकरे में तो एक भेड़ है। अरे वो देखो एक मुर्गा और साथ में एक बत्तख भी है।
7: हाँ, क्या ये भी गुब्बारे के साथ उड़ेंगे?
6: दोस्त लगता तो कुछ ऐसा ही है। अरे अरे अरे, अरे वो देखो स्टीफन हाथ से कुछ इशारा कर रहा है।
7: हाँ, और एक आदमी गुब्बारे की रस्सी खोल रहा है।
6: अरे अरे अरे वो गुब्बारा तो ऊपर की ओर जा रहा है।
7: मान गए, कमाल कर दिया बच्चों ने।
6: ये क्या हो रहा है, कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही है? अरे देखो वो गुब्बारा तो वाकई ऊपर जा रहा है।
7: अरे सचमुच उड़ रहा है, सचमुच।
6: अरे वाह, अरे यार ये तो कमाल हो गया।
7: बहुत अच्छे, देखो गुब्बारा बहुत ऊंचा चला गया।
6: अरे अरे इन दोनों लड़कों ने कमाल दिखा दिया, आज तक ऐसा नहीं हुआ।
7: वो देखो वो देखो गुब्बारा नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा, उधर उधर जा रहा है। देखो पेड़ों की तरफ।
6: अरे देखो, अरे हाँ हाँ, अरे वो पेड़ों की तरफ। अरे बाप रे, अरे वो पेड़ से जाकर टकरा गया। अरे गिर गया, अरे गिर गया।
2: साथियों, ये थी जोसेफ और स्टीफन की पहली उड़ान। क्या आप जानते हैं, ये गुब्बारा लगभग 8 मिनट तक हवा में उड़ा और बाद में एक पेड़ से जा टकराया। और हाँ, जिस रस्सी से टोकरा बंधा हुआ था वो रस्सी भी टूट गई और सभी यात्री धड़ाम से नीचे आ गिरे। सिर्फ मुर्गे का एक पंख टूटा, शेष यात्री यानी भेड़ और बतख बिल्कुल ठीक थे। ठीक इसके 2 महीने बाद यानी नवंबर सन 1783 में

0: हमारी सरकार जो है यहाँ पे हाइड्रोसिल के ऑपरेशंस भी होते हैं जिनसे कि वह दूरी दूर होता है उससे।
1: जी डॉक्टर साहब, फाइलेरिया उन्मूलन का जो अभियान चलाया जाता है हमारे प्रदेश में, हमारे दर्शकों को बताइए कि वो कब से कब तक चलाया जाता है और इसके अंतर्गत जो गोली खिलाई जाती है क्या वो किसी एक निश्चित स्थान पर खिलाई जाती है?
0: ये हमारा जो ये फाइलेरिया अभियान होता है, उन्मूलन अभियान होता है, इसको मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन भी कहते हैं। हमारे यहाँ प्रदेश में यह दो चरणों में चलता है, एक फरवरी में और एक नवंबर में। ये दो तो हमारे खत्म हो चुके हैं लेकिन अगले वर्ष फिर से यह शुरू होगा। इसमें स्वास्थ्य कर्मी सभी ग्रामीण और शहरी इलाकों में घर घर जाकर फाइलेरिया की गोली निःशुल्क देते हैं और अपने सामने खिलाते हैं। यह एक साथ खिलाया जाता है, सार्वजनिक रूप से खिलाया जाता है, इसलिए इसका उन्मूलन के लिए यही प्रयास है।
1: जी बिल्कुल, और हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हम चाहेंगे कि जब भी उनके घर पे उन्मूलन के लिए गोलियां खिलाने के लिए कार्यकर्ता पहुंचे वो इस गोली का सेवन जरूर करें। डॉक्टर, सबके मन में जरूर एक बात आ रही होगी कि यदि किसी को बुखार है या कोई और छोटी मोटी सीजनल परेशानियां चल रही हैं तो क्या तब भी वो इस गोली का सेवन कर सकते हैं?
0: जी, ये दो वर्ष से कम बच्चों को नहीं दिया जाता है, गर्भवती महिलाओं को नहीं दिया जाता है और अगर वह किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं तो उनको नहीं दिया जाता है। बाकी ये सभी प्रकार के व्यक्ति खाना चाहिए, सभी उम्र के व्यक्तियों को खाना चाहिए।
2: जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो फाइलेरिया से बचाव की गोली है ये क्या फाइलेरिया ग्रसित व्यक्ति खा सकता है या स्वस्थ व्यक्ति को भी खानी चाहिए?
1: जी बताइए।
0: ये संक्रमित और असंक्रमित दोनों प्रकार के व्यक्ति खा सकते हैं और इनको साल भर में एक बार अवश्य सेवन करना चाहिए।
1: जी डॉक्टर साहब की तरफ से ये भी हमारे कार्यक्रम की तरफ से आपको जरूर जाननी चाहिए कि यदि फाइलेरिया हो चुका है तो दवाओं के माध्यम से इसे उसी स्टेज पर रोका जा सकता है, इसलिए बचाव की गोली खानी जरूरी है आप सभी के लिए। और डॉक्टर साहब, इसी के साथ साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या फाइलेरिया से बचाव की गोली जब भी हमें किसी को संक्रमित व्यक्ति है वो भी खा ले या सिर्फ जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वही खाएं, दोनों के लिए कितनी फायदेमंद है ये?
0: ये दोनों के लिए फायदेमंद है। अगर कोई संक्रमित है इससे तो वह उसी स्थान पे उसको दूरगामी प्रभाव से रोका जा सकता है और इसको नहीं है उसको उसके बचाव के लिए ये उपाय है हमारे लिए,
1: तो दोनों को ही खानी चाहिए।
0: और अगर किसी को गंभीर बीमारी है, अगर उनको कोई भी शक है कि हम ये खाएं या ना खाएं, तो वह हमारे निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर जाके वहां पे उनके चिकित्सा उपचार ले सकते हैं और उनसे परामर्श ले सकते हैं,
1: अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं।
0: जी,
1: और डॉक्टर साहब,
3: क्या फाइलेरिया की दवाई
1: बार
3: खा लेने से साल में पूरे
0: खाने से बचा जा सकता है? जी नितिन जी, एक बार अगर आप सेवन इसका कर लीजिए तो इनके दूरगामी प्रभावों से बचा जा सकता है।
1: आज हम बात कर रहे हैं फाइलेरिया विषय पर और हमारे साथ हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की तकनीकी सलाहकार डॉक्टर सारिका सिंह जी। और डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो उन्मूलन का अभियान है इसमें जन सामान्य से किस तरह के सहयोग की अपेक्षा हम कर सकते हैं?
0: ये जब अभियान चलता है हम सभी से यही बोलेंगे कि आप कृपया उनका सेवन अवश्य करें, जब हमारे स्वास्थ्यकर्मी उनके घर जाते हैं तो उनका सहयोग उनमें सहयोग प्रदान करें और अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करें, इसका सेवन करना बहुत आवश्यक है जिससे हम इनका उन्मूलन कर सकें।
1: जी, और डॉक्टर साहब, एक चीज और बहुत जरूरी जानकारी है जो इससे रिलेटेड हमारे दर्शकों को जरूर मिलनी चाहिए कि क्या फाइलेरिया रोग किसी खास वातावरण, मौसम या उम्र में ही होता है?
0: नहीं, इसके फाइलेरिया के जो कीटाणु है वह किसी उम्र या वातावरण से संबंधित नहीं है, या किसी भी समय और किसी भी मौसम में हो सकता है और किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है। यह विशेषता इसके जो कीटाणु है वह शरीर में जो रक्त प्रवाह है उसमें वह रात में 10 बजे से लेके 2 बजे तक ज्यादा परिलक्षित होते हैं।
1: अच्छा।
0: तो जब किसी का कोई भी अगर किसी को जांच करानी होती है तो वह उनका जो ब्लड का सैंपल है वह रात में ही लिया जाता है।
1: अच्छा। जी रात के 10 बजे से 2 बजे तक ज्यादा
0: वह सबसे ज्यादा दिखते हैं। जी
1: जी,
3: और मेरा डॉक्टर साहब से ये सवाल है कि क्या फाइलेरिया की कोई होम्योपैथिक दवा भी है?
1: जी बताइए।
0: इसके लिए मैं आपसे यही आग्रह करूंगी कि आप अपने निकट के चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्र पर जाइए और वहां पे आप चिकित्सकीय सलाह लीजिए।
1: जी
4: श्रोताओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमने फाइलेरिया रोग के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त किया। श्रोताओं, हमने जाना है फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है, इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमें हमारे नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहिए और इसकी गोली को अवश्य खाना चाहिए। तो श्रोताओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनते रहिए रेडियो टंट्या भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज़ पर।

0: बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा, हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा।
1: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
2: नमस्कार साथियों, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेतीबाड़ी में। और अब हमारे किसान साथी इंतजार कर रहे हैं क्योंकि अब हल्की फुल्की बारिश स्टार्ट हो गई है और मध्यम गति से ये बारिश हो रही है, रिम बारिश हो रही है। मौसम विभाग क्या कहता है इस पर आज नजर डालेंगे। साथ साथ में साथियों आपको बता देना चाहते हैं कि आज के हमारे इस कार्यक्रम में आज हम काफी विषयों पर बातचीत करने जा रहे हैं, जैसे कि कपास की खेती। चूंकि अगर देखा जाए झाबुआ जिले को देखा जाए तो यहाँ पर कपास की खेती का विशेष ध्यान दिया जाता है, किसान विशेष तौर पर इस खेती को करते हैं। कौन सा बीज होना चाहिए, कैसे इसको करना चाहिए, उस पर चर्चा करेंगे। साथ साथ में मधुमक्खी पालन एक अच्छा व्यवसाय है तो हमारे किसान साथी इसको भी, मधुमक्खी पालन भी हमारे किसान साथी कर सकते हैं। साथ साथ में सफल किसान की कहानी पर भी हम एक नजर डालेंगे। लेकिन इन बातों से पहले हम साथियों आपको बता देना चाहते हैं कि भारत का मौसम विभाग इस बार का क्या कहता है। दक्षिण पश्चिम मानसून जिसकी उत्तरी सीमा पोरबंदर, बड़ौदा, शिवपुरी, रीवा, चक्र से होकर गरज रही है और प्रदेश के चंबल संभाग के जिले तथा ग्वालियर, दतिया, नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, उज्जैन, आगरा जिलों को छोड़कर प्रदेश के शेष जिलों में आ चुका है मानसून। आज अगर बात करें कि पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के नर्मदापुरम और भोपाल संभागों के जिलों में अधिकांश स्थानों पर शहडोल, जबलपुर, सागर, ग्वालियर एवं उज्जैन संभागों के जिलों में अनेक स्थानों पर रीवा, इंदौर एवं चंबल संभागों के जिलों में कुछ स्थानों पर वर्षा दर्ज की गई है। वर्षा के प्रमुख आंकड़े अगर देखा जाए तो छपारा, गोहरगंज, नागदा, पचौर और परसवाड़ा, अनूपपुर, बहोरीबंद, देवेंद्र नगर, गुलाबगंज, रायसेन, खाच रोड और नर्मदापुरम में 5 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान ग्वालियर संभाग के जिलों में काफी गिरे और शेष संभागों में जिलों में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। ग्वालियर संभागों के जिलों के सामान्य से विशेष रूप से कम है और सागर संभागों के जिलों में सामान्यता काफी कम, इंदौर और उज्जैन संभागों में सामान्य, रीवा, शहडोल और जबलपुर संभागों के जिलों में सामान्य से कम और शेष संभागों में जिलों में सामान्य वर्षा हो रही है। आपको बता देना चाहते हैं कहां पर किस तरीके की बरसात होने की संभावना बताई जा रही है। मौसम विभाग क्या कहता है, वर्षा या गरज चमक के साथ बौछार किन किन स्थानों पर होनी है। रीवा, शहडोल, सागर, जबलपुर, भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर, चंबल, इंदौर एवं उज्जैन संभागों के जिलों में संभावित है। आगामी 24 घंटों में भारी और मध्यम वर्षा कहां कहां होने वाली है। कहीं कहीं भारी वर्षा की संभावना बताई जा रही है, जहां पर डिंडोरी आएगा, बैतूल, बालाघाट, राजगढ़, रायसेन, धार, उज्जैन, अनूपपुर, मंडला एवं सिवनी जिलों में, और कहीं कहीं गरज के साथ बिजली चमकने और गिरने के अल्पकालीन तेज हवा की संभावना, उसमें रीवा, शहडोल, सागर, जबलपुर, भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर, चंबल, इंदौर एवं उज्जैन संभागों के जिले इसमें आते हैं। तो ये थी हमारे जानकारी जो अभी आप सुन रहे थे मौसम की। अगर झाबुआ जिले की बात करें तो अधिकतम तापमान आज का जो रहा है वो 37.1 डिग्री सेल्सियस रहा है, न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस रहा है। वर्षा अभी तक नहीं हुई है, बहुत कम हुई है। 1 जून से अभी तक जो वर्षा कुल आंकी गई है वो 15.9 मिलीमीटर आंकी गई है। तो ये मौसम आधारित जानकारी आपको हम दे रहे थे क्योंकि इस आधार से हमारे किसान साथी चुनाव कर सकते हैं कि किस तरीके से हमें फसलों का चयन करना है। कार्यक्रम को आगे बढ़ते हुए हम कार्यक्रम में जानते हैं कि किस तरीके से हमारे किसान साथी कपास की खेती कर सकते हैं, साथ साथ में जानेंगे किस तरीके से हमारे किसान साथी मधुमक्खी पालन कर सकते हैं। तो आइए इस रेडियो रिपोर्ट को हम सुनते हैं। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम, आप लो रेडियो अपनी बात है।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम, आप लो रेडियो अपनी।

0: बीटी कपास में भी कई प्रजातियां लोकप्रिय हैं, जो स्थान विशेष के हिसाब से रोग और कीट प्रतिरोधक क्षमता रखती हैं। इसकी खेती के बारे में विस्तार से बात करें तो इसकी बुवाई पर्याप्त सिंचाई व्यवस्था होने पर मई माह में की जाती है। यदि सिंचाई का अभाव है तो किसान मानसूनी बारिश शुरू होने पर ही कपास की बुवाई करें। बुवाई से पहले मिट्टी को अच्छी तरह भुरभुरा कर लेना चाहिए। बुआई के लिए उन्नत जातियों का 2.5 से 3 किलोग्राम बीज, जबकि संकर व बीटी जातियों का 1 किलो बीज प्रति हेक्टेयर की दर से ठीक रहता है। बुआई करते समय कतार से कतार और पौध से पौध की दूरी का खास ख्याल रखना चाहिए। वहीं कपास की सघन खेती में कतार से कतार 45 सेंटीमीटर व पौधे से पौधे 15 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाए जाते हैं। फसल के सही विकास और बेहतर उत्पादन के लिए खाद व उर्वरक की सही मात्रा सही समय पर देनी चाहिए। उन्नत किस्मों में 80 से 120 किलो नत्रजन प्रति हेक्टेयर, 40 से 60 किलो फास्फोरस, 20 से 30 किलो पोटाश, करीब 25 किलो गंधक प्रति हेक्टेयर देना चाहिए। जबकि संकर किस्मों की बात करें तो 150 किलो नत्रजन, 75 किलो फास्फोरस, 40 किलो पोटाश, 25 किलो गंधक प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए। इसके अलावा सड़ी हुई गोबर की खाद 7 से 10 टन प्रति हेक्टेयर की दर से डालना चाहिए। खरपतवारों के नियंत्रण के लिए अंकुरण के 15 से 20 दिन के अंदर डोरा चलाकर खरपतवारों को नष्ट किया जा सकता है। इसके अलावा कृषि विशेषज्ञ की सलाह से खरपतवार नाशी का छिड़काव भी किया जा सकता है। फसल में सिंचाई की बात करें तो शाखाएं निकलने की अवस्था व 45 से 50 दिन पर, फूल व फल बनने के दौरान 75 से 85 दिन पर, इसके बाद 95 से 105 दिन की फसल होने पर और 115 से 125 दिन की फसल होने पर सिंचाई करनी चाहिए। यदि किसान टपक तकनीक का इस्तेमाल करते हैं तो करीब 70% पानी की बचत की जा सकती है, साथ ही खरपतवारों और कीटों पर नियंत्रण भी आसान हो जाता है। कपास की फसल में चुनाई का काम बहुत विशेष होता है। देसी व उन्नत जातियों की चुनाई खासकर नवंबर से जनवरी फरवरी तक, संकर जातियों की अक्टूबर नवंबर से दिसंबर जनवरी तक, बीटी किस्मों की चुनाई अक्टूबर से दिसंबर तक की जाती है। कपास की चुनाई करते समय किसान इस बात का ध्यान रखें कि चुनाई ओस सूखने के बाद ही करें, गीले घेटों की चुनाई ना करें। चुनाई करते समय कपास के साथ सूखी पत्तियां, डंठल ना आए। चुनाई के बाद कपास को धूप में सुखा लेना चाहिए। कपास को सुखाकर ही भंडारित करें, क्योंकि नमी होने पर कपास पीला पड़ जाएगा व फफूंद भी लग सकती है। लेकिन कुछ जरूरी सावधानियां अपनाकर कपास का बेहतर उत्पादन कर मुनाफा कमाया जा सकता है।
1: ये हमारा पशुधन पर, पशुधन में आज हम बात करेंगे मधुमक्खी पालन के बारे में। जी हाँ, सरकार भी मधुमक्खी पालन को काफी प्रोत्साहित कर रही है और आज के समय में युवाओं के बीच में भी काफी लोकप्रिय हो रहा है। खास बात यह है कि मधुमक्खी पालन से न सिर्फ किसानों की आय में वृद्धि होती है, बल्कि साथ ही साथ उनकी फसलों में भी इसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। तो कैसे करें मधुमक्खी पालन और कौन कौन सी विशेष बातें जिसका ध्यान रखना जरूरी है, आइए डालते हैं नजर।
0: हमारे देश में मधुमक्खी पालन के कई फायदे हैं। इससे जहां परागण में सहायता मिलती है, वहीं अतिरिक्त आय भी होती है। हाल के कुछ वर्षों में मधुमक्खी पालन में खासी दिलचस्पी बढ़ी है, जिससे भूमिहीन किसानों के सामने रोजगार के कई अवसर पैदा हुए हैं। मुनाफे की ओर ले जाने वाले इस व्यवसाय में मधुमक्खी पालकों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो लाभ के साथ साथ मधुमक्खी का भी ख्याल रखें, जिससे उनकी घटती संख्या में कमी लाई जा सके। मौजूदा समय में तापमान में हो रही बढ़ोतरी के साथ कुछ खास प्रबंधन करने होते हैं, जिससे मधुमक्खियों को अनुकूल वातावरण मिल सके। तो इस समय कौन से हैं वो खास बिंदु, आइए जानते हैं विशेषज्ञ की राय।
2: गर्मियों का मौसम है, मधुमक्खी पालक के लिए जरूरी है कि कुछ विशेष चीजों का ध्यान रखे, ताकि मधुमक्खी पालक अच्छे से मधुमक्खियों का देखभाल कर सके, तो अच्छे से उनको लाभ मिल सके। सबसे जरूरी है, क्योंकि गर्मी का समय है, इस समय जो तापमान है वो 40 के ऊपर है, तो इसलिए जरूरी है कि मधुमक्खी पालक जो मधुमक्खियां हैं उनको ऐसे स्थान पर रखें जहां फूल यानी के फ्लोरा हो। इसके लिए इस समय जो है सीसम, जहां सीसम हो, नीम हो, जामुन हो, यूकेलिप्टिस हो, या इसके अलावा मल्टी फ्लोरा हो, तो वहां मधुमक्खी को अपने उस स्थान पर रखना चाहिए। साथ ही साथ क्योंकि गर्मी का समय है, तो पीने के पानी, स्वच्छ पीने का पानी मधुमक्खी के लिए जरूर होना चाहिए, और इसके लिए जरूरी है कि ऐसे स्थान पर मधुमक्खी को रखें जहां छाया हो, क्योंकि इस समय लू

0: और गर्मी ज्यादा है तो उससे बचाव के लिए जरूरी है कि उनको ऐसे स्थान पर रखें जहां ऊपर पेड़ पौधे उसके आसपास हो। और इसके लिए जरूरी है कि कहीं कहीं अब इस समय फ्लोरा की कमी है तो उनको भोजन के रूप में आर्टिफिशियल भोजन दें। इसके लिए एक भाग पानी और एक भाग चीनी दोनों का घोल बनाकर एक चाशनी तैयार कर लें। उस चाशनी को ठंडा होने के उपरांत फीडर की सहायता से किसान भाई यानी कि मधुमक्खी पालक आदि मधुमक्खियों में इस भोजन को दें। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें कि गर्मी का मौसम थोड़ा और भी बढ़ सकता है, टेम्परेचर और भी बढ़ सकता है, तो जो टाट के बोरे होते हैं उन टाट के बोरे को जो बॉक्स है मधुमक्खी के उसके ऊपर डाल देना चाहिए। साथ ही साथ दो या तीन बार उनको गीला करना चाहिए दिन में ताकि जो बॉक्स का तापमान है वो सामान्य बढ़े रहे और मधुमक्खी को ज्यादा दिक्कत ना हो। साथ ही साथ ये भी जरूरी है, ये भी ध्यान रखें कि इस समय मधुमक्खी पालक को मधुमक्खी का विभाजन नहीं करना चाहिए। अगर कमजोर मधुमक्खी है, बॉक्स कमजोर है, परिवार बॉक्स कम है, तो ऐसे समय पर उनको विभाजन नहीं करना चाहिए।
1: गर्मी के मौसम में पर्याप्त फूल नहीं होते जिससे मधुमक्खियों को भोजन के लिए संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे में मधुमक्खी पालकों को चाहिए कि उनके कृत्रिम भोजन की व्यवस्था करें। इसके लिए क्या करें जानते हैं विशेषज्ञ से।
0: तो स्थान का चुनाव करते समय इन बातों का जरूर ध्यान रखना है मधुमक्खी पालक को।
1: ये तो बात हो गई मधुमक्खियों के भोजन की, अब बात कर लेते हैं उनकी सुरक्षा की। इस समय अन्य कीटों से उन्हें कैसे सुरक्षा दी जाए आइए जानते हैं।
0: मधुमक्खी पालक ये देख ले कि ऐसे स्थान का चुनाव इस समय करे कि जहां फूल यानी कि फ्लोरा हो वैसे स्थान पर मधुमक्खियों का स्थानांतरण कर दे। साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि पहले से वहां स्थान आपका होना चाहिए कि पानी वहां है, अच्छा पीने के लिए स्वच्छ पानी है, आसपास जो है कोई हाईवे रूट तो नहीं है, साथ ही साथ कोई किसी तरह की पेस्टिसाइड, क्योंकि आजकल जो फसलें हैं अधिकतर किसान भाई पेस्टिसाइड का प्रयोग करते हैं, तो ये भी देख लें कि अधिकतर वहां ज्यादातर किसान कीटनाशियों का अधिक प्रयोग ना करते हो, और करते भी हो तो ये भी शोध कर ले कि किस कीटनाशी या फंजीसाइड का किसान भाई इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब मक्खी होती है तो वो फूल के पास जाएगी, उससे फूल से रस चूसेगी, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो केमिकल होता है उसका इफेक्ट मधुमक्खी के में आएगा और धीरे धीरे उससे उसकी जो है मोर्टिलिटी होने की भी संभावना बनी रहती है।
1: इस तरह छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर किसान और मधुमक्खी पालक उनकी सुरक्षा भी कर सकते हैं और उनकी संख्या में इजाफा भी। एचएस और बीक्यू टीकाकरण के 10 से 15 दिन पहले सभी पशुओं की डीवॉर्मिंग कर देनी चाहिए। ऐसा करने से टीकाकरण प्रभावी हो जाता है। पशुओं को 50 से 60 ग्राम खनिज मिश्रण एवं 20 ग्राम नमक प्रतिदिन देना चाहिए। गर्मियों के मौसम में लगाई गई ज्वार फसल पशुओं को ना दें, इस समय ये हानिकारक हो सकता है। बरसात के मौसम में हरे चारे की अच्छी पैदावार लेने के लिए ज्वार व मक्का की बुआई करें। हरे चारे की फसल से अधिक उत्पादन लेने के लिए उन्नत किस्म के बीज का प्रयोग करें। जून का महीना काफी गर्म रहता है, इसीलिए पशु के लिए अलग से शेड बनाएं। इस समय पशु को ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाएं। अधिक दूध देने वाले पशुओं को तरल कैल्शियम फास्फोरस की मात्रा 70 से 100 ग्राम प्रतिदिन दें। पशुओं को बाह्य परजीवियों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह पर दवा का प्रयोग नियमित रूप से करें। यदि पिछले माह भेड़ के ऊन कतरने का कार्य ना किया हो तो इस माह कर लें।

0: किसानों को पशुओं की खरीद और बिक्री में मदद मिले और किसान की आमदनी में बढ़ोतरी हो, इसके लिए भारत सरकार ने एक कार्यक्रम केंद्रीय पशु पंजीकरण योजना लागू किया, जिसके तहत गाय और भैंस की महत्वपूर्ण नस्लों के दुग्ध उत्पादन का रिकॉर्ड करके पशु पंजिका में लिखा जाता है। इस कार्यक्रम में उन्नत नस्ल के पशुओं के प्रमाणीकरण और पशुओं के उत्पादन का लेखा जोखा लिखा जाता है। पशु पंजीकरण योजना के उद्देश्य इस प्रकार है। पंजीकरण के माध्यम से बेहतर जर्म प्लाज्म यानी उच्च कोटि की आनुवांशिकी का पता लगाना, प्रजनन क्षेत्र में पशुओं का व्यवस्थित दुग्ध अभिलेखन शुरू करना, पशु चुनाव के लिए दुग्ध अभिलेखन कार्य को बढ़ावा देना, सभी पंजीकृत किए हुए पशुओं के इकट्ठे किए हुए आंकड़ों को प्रकाशित करना ताकि पशु पालकों का मार्गदर्शन हो और पशुओं को खरीदने व बेचने में इसका योगदान मिले, पशुओं की खरीद बिक्री और आयात निर्यात को नियंत्रित करना ताकि उनकी गुणवत्ता को नियंत्रित किया जा सके तथा आयात व निर्यात के लिए स्तर निर्धारित किया जा सके, पशु पालकों को योजना के बारे में जागृत करना और जानकारी देना ताकि पशुओं के सुधार में उनकी आर्थिक स्थिति सुधर सके। केंद्रीय पशु पंजीकरण योजना में पशु पंजीकरण पुस्तक होती है, इसमें उन पशुओं की सूची रखी जाती है जो कि पशु पंजीकरण पुस्तक के नियम व नियमावली पर खरे उतरते हैं। इस पंजीकरण के तहत पंजीकृत पशुपालकों को प्रोत्साहन राशि तथा प्रमाण पत्र प्रदान किए जाते हैं जो पशुपालकों को पशु खरीदने तथा बेचने में मदद करते हैं। अब सवाल ये है कि इस योजना के तहत सुविधा का लाभ कैसे उठाया जाए। ये सुविधा देसी गाय व भैंसों के लिए है। इस सुविधा का लाभ गौशाला और अभिलेखन केंद्र के आसपास के पशु झुंड उठा सकते हैं। पंजीकृत पशुओं का ब्यौरा कंप्यूटरीकृत होता है। पशुपालकों तक योजना को आसानी से पहुंचाने के लिए दुग्ध अभिलेखन केंद्र पशु चिकित्सालय पर रखा जाता है। खास बात ये है कि पशु पंजीकरण इकाइयां दुग्ध अभिलेखन योजना को समयबद्ध विस्तार के लिए प्रशिक्षण भी देती है। गौरतलब है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत हरियाणा में गाय और मुर्रा भैंस के लिए संयुक्त रूप से एक यूनिट 1962 में रोहतक में स्थापित की गई। ये इकाई हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्यों में संचालित है। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान गिर व कांकरेज गाय और सूरती भैंस के लिए एक इकाई अहमदाबाद में स्थापित की गई। पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंत में दो और इकाइयां एक आंध्र प्रदेश में और एक राजस्थान में स्थापित की गई। इस प्रकार चार इकाइयां रोहतक हरियाणा, अहमदाबाद गुजरात, ओंगल आंध्र प्रदेश और अजमेर राजस्थान में चल रही है। पशुपालक स्थानीय केवीके या कृषि विभाग से संपर्क कर केंद्रीय पशु पंजीकरण योजना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें और इस योजना का लाभ उठाएं।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम। आपू रेडियो आपड़ी बातें।
2: अब नई चीज हम जान लेते हैं क्योंकि बहुत सारे किसान साथियों को हम वही चीजें बताते रहते हैं, वही बातें सुनाते रहते हैं। आज कुछ नया करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं अब कि सीप की खेती, जो मोतियों की खेती रहती है, वो किस तरीके से होती है। ये भी एक व्यवसाय है हमारे किसान साथियों की, नई चीज है। आइए जानते हैं कि हमारे किसान साथी किस तरीके से मोतियों का खेती कर सकते हैं। लेकिन साथियों से बातचीत करने से पहले हम लेते हैं एक छोटा सा विराम, सुनते हैं प्यारे से गीत को।

आज समाज में बालिकाओं के प्रति पुरुष तो ठीक, महिलाएं भी परंपराओं का हवाला देकर अपनी फूल सी कोमल बच्चियों को अपनी जिंदगी को ठीक से जीने नहीं देती। हमारे समाज में अनेक बच्चियां रूढ़िवाद एवं सामाजिक प्राचीन परंपराओं के कारण माँ के कोख में ही खत्म कर दी जाती है। यदि जन्म लेती है तो परिवार पर बोझ बन जाती है, यह रूढ़िवादी परंपरा है। बच्चियां अपनी सिसकियां अपने हृदय में संजोकर अपने पिताजी की गोद में शायद यह जरूर अभ्यंतर से कहती होगी,

0: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और साथियों, अभी आपने इस प्यारे से गीत को सुना, गीत का आनंद लिया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम सुनते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से हमारे किसान साथी मोती और खेती कर सकते हैं, कैसे इसका प्रशिक्षण, कहाँ प्रशिक्षण मिलेगा, इसकी सारी जानकारी इस सेगमेंट में सुनते हैं।
1: भारत में मोतियों का इस्तेमाल लंबे समय से ही किया जा रहा है। मोती शुरू से ही सजने संवरने और सजावट के लिए प्रयोग किए जाते हैं। पहले सिर्फ प्राकृतिक रूप से मिलने वाले मोतियों का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन बदलते दौर में मांग को देखते हुए मोतियों का उत्पादन किया जा रहा है, जिसे हम सरल भाषा में सीप पालन या मोती की खेती कहते हैं। ये इतना सरल और सस्ता है कि किसान इसे आसानी से शुरू कर सकते हैं। सीप पालन के लिए सबसे जरूरी प्रशिक्षण लेना है। कई संस्थानों में सरकार के द्वारा निशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इसके अलावा जिले के मत्स्य विभाग से भी जानकारी ली जा सकती है। मोती एक प्राकृतिक रत्न है जो सीप में बनता है। जब सीप में कोई बाहरी पार्टिकल जैसे मिट्टी के कण या कोई सूक्ष्म जीव चला जाता है, तो वो उसे बाहर निकालने के लिए एक तरल छोड़ती है। ऐसे ही धीरे धीरे उस कण पर सीप परत दर परत एक चमकदार कोटिंग बना देती है और फिर एक निश्चित समय बाद यही मोती बन जाता है। सीप पालन को शुरू करने के लिए सबसे पहले स्थान का चयन करना होता है जहां सीप को आसानी से पाला जा सके। सीप को छोटे स्तर से घर में पाला जा सकता है, जबकि बड़े स्तर पर पालने के लिए तालाब की जरूरत होती है। इसके बाद किसान को सीप खरीद कर सीपों को खुले पानी में दो दिन के लिए रखते हैं, जिससे धूप और हवा लगने के बाद सीप का कवच और मांसपेशियां ढीली हो जाती है। मांसपेशियां ढीली होने के बाद सीप की सर्जरी कर सीप के अंदर सांचा डाल दें। किसान चाहे तो सामान्य मोतियों का भी उत्पादन कर सकते हैं। मोती बनते समय सांचा जब सीप को चुभता है तो वो उस पर अपने अंदर से निकलने वाला एक पदार्थ छोड़ता है जो मोती में बदल जाता है। सीपियों के प्रकार लेमिनेनिस मार्जिनेनिस, लेमिनेनिस कोरियनस, पाइरेसिया। सीप पालन के लिए सबसे अनुकूल मौसम शरद ऋतु यानी अक्टूबर से दिसंबर तक का समय माना जाता है। कम से कम 10x10 फीट या बड़े आकार के तालाब में सीप पालन किया जा सकता है। सीप में छोटी सी शल्य क्रिया के बाद इसके भीतर 4 से 6 मिलीमीटर व्यास वाले साधारण या आकर्षक आकृति के मोती तैयार किए जा सकते हैं। शल्य क्रिया के बाद सीप को बंद कर दिया जाता है। इन सीपों को नायलॉन बैग में 10 दिनों तक एंटीबायोटिक और प्राकृतिक चारे पर रखा जाता है। अब इन सीपों को तालाबों में डाल दिया जाता है। इसके लिए इन्हें नायलॉन बैगों में रखकर यानी 2 सीप प्रति बैग बांस या बोतल के सहारे लटका दिया जाता है और तालाब में 1 मीटर की गहराई पर छोड़ दिया जाता है। प्रति हेक्टेयर 20,000 से 30,000 सीप की दर से इनका पालन किया जा सकता है। अंदर से निकलने वाला पदार्थ बीट के चारों ओर जमने लगता है जो अंत में मोती का रूप लेता है। करीब 10 माह बाद सीप को खोलकर मोती निकाल लिया जाता है। बेहतर उत्पादन के लिए सबसे जरूरी संबंधित विषय में जानकारी का होना है। इसके लिए किसानों को चाहिए कि वो सीप पालन शुरू करने से पहले प्रशिक्षण लें। सरकारी संस्थान ग्रामीण नवयुवकों, किसानों व छात्र छात्राओं को मोती उत्पादन पर तकनीकी प्रशिक्षण देते हैं। इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्रों और किसान हेल्पलाइन से भी मोती उत्पादन पर तकनीकी प्रशिक्षण की जानकारी ली जा सकती है।
0: अभी आपने कि हमारे किसान साथियों ने सुना कि किस तरीके से मोतियों का हम खेती कर सकते हैं, यानी हम मोतियों का जो खेती रहती है उसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, कैसे प्रशिक्षण लिया जाता है, ये सारी जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से जानी है। और भी बातें हम इस कार्यक्रम के माध्यम से जानेंगे, लेकिन यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा विराम, यानी लेते हैं छोटा सा ब्रेक और सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। बनी रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, अपना रेडियो अपनी बात है।

0: जब किसान की मेहनत सार्थक होती है तो खेतों में खुशी की तरंगे बिखरने लगती है और बंजर जमीन भी हरियाली की चुनर ओढ़ लेती है। वैसे तो राजस्थान की धरती को मरुभूमि के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ के किसान प्रकृति का सीधा सामना करते हुए सफलता की कहानी गढ़ रहे हैं। आज हम आपको ऐसे ही एक किसान से मिलवाएंगे जिन्होंने कृषि का शायद ही कोई क्षेत्र छोड़ा हो जिसमें कामयाबी ना पाई हो। जयपुर राजस्थान का बेहद खूबसूरत शहर जहां देश के हर हिस्से से पर्यटक पहुंचते हैं। यहां से करीब एक घंटे की दूरी और 36 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद आता है कालख गांव, जो पहचाना जाता है किसान गंगाराम सेपट के नाम से, जो सेपट ऑर्गेनिक कृषि फार्म का संचालन करते हैं। उनके यहाँ जितनी भी पैदावार ली जाती है वो सभी जैविक तरीके से ली जाती है। गंगाराम कृषि के साथ साथ बहुत कुछ करते हैं, जैसे जैविक खेती, पॉली हाउस में खेती, पशुपालन, मछली पालन, जल संचय करना और सोलर पैनल लगाकर बिजली का इस्तेमाल कर खेती के हर कार्य को संपन्न कर रहे हैं। वो बताते हैं कि आज वो जिस मकाम पर है उसके पीछे उनकी व उनके परिवार की मेहनत तो है ही, साथ ही सरकार का पूरा सहयोग भी रहा। सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर गंगाराम ने अपने कार्य क्षेत्र में इजाफा किया। आज उनके खेतों में हर तरह की फसलें लहलहा रही है जिसमें विदेशी सब्जियां भी शामिल है। उनके खेतों की सब्जियां बड़े शहरों तक पहुंचाई जाती है जिससे परिवार को अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है।
1: ये राजस्थान में पानी की काफी कमी है, रेगिस्तान है और इस वजह से हम लोग बरसात का एक एक बूंद इकट्ठा करते हैं। मेरे पास में पॉली हाउस है, पॉली हाउसों के ऊपर जितनी भी बारिश होती है उन सबको मैं पाइप के द्वारा मेरे फार्म पॉन्ड के अंदर लेके आता हूँ। फार्म पॉन्ड में जो साइज है मेरी 50x50 मीटर का, लगभग 75 लाख लीटर पानी इसके अंदर हम बरसात का पूरा पानी इकट्ठा करते हैं और इसी के आधार पर पूरे साल भर हम लोग सिंचाई करते हैं। इसके फार्म पॉन्ड के जो है भारत सरकार का जो स्कीम है NHM और NHB दोनों के द्वारा 50% सब्सिडी मिलती है। इसमें मेरे जो है इस फार्म पॉन्ड बनाने में 8,35,000 रुपया खर्चा हुआ था तथा सब्सिडी के रूप में मुझे 5 लाख रुपए मिले थे। साथ ही फार्म पॉन्ड से पानी की सिंचाई करने के लिए मेरे पास में सोलर पैनल है, सोलर पैनल पे भी मैंने सब्सिडी ली है। 3 HP का इसमें भी मैंने कनेक्शन ले रखा है और जिसमें 67,000 रुपए मेरे फार्मर शेयर के लगे हैं। साथ ही इसमें 1,32,000 रुपए मेरे अनुदान प्राप्त हुआ है। इस फार्म पॉन्ड के अंदर मैंने 7 प्रकार की मछलियां डाल रखी जिसमें 3 प्रकार की देसी मछलियां हैं और 4 प्रकार की विदेशी मछलियां हैं जो अलग अलग लेयर में अपना भोजन करती है। और देसी मछलियों में कटला है, रोहू है और मरगला है और विदेशी में कॉमन कॉर्प है, गोल्डन कॉर्प, सिल्वर कॉर्प और ग्रास कॉर्प है। इन मछलियों को हमारे पास में विशेष प्रकार के कोई भोजन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारे खेत में जो भी वेस्टेज पदार्थ होता है हम लोग मछलियों के लिए डाल देते हैं। इसके अलावा जो हमारे और भी कई बार क्या होता है वेस्टेज पदार्थ कम होता है तो हम बाजरे का दाना और सरसों की खली मिलाकर इनको भिगोकर देते हैं और जो मछलियों का वेस्टेज है वो हमारे खेत के लिए, हमारी फसल के लिए उर्वरक शक्ति बढ़ाने का काम करता है। और साथ ही हमारा जो पानी का EC और PH है वो मेंटेन करने का काम है। इसके अंदर अगर मछलियां नहीं डालेंगे तो इसके अंदर एल्गी आ जाती है जो हमारे फिल्टर पंप को चोक कर देती है, इस वजह से इसको मछलियां डाली गई है। साथ ही मछलियों का जो है एक्स्ट्रा इनकम के बेचने पर हमें एक्स्ट्रा इनकम प्राप्त होगी तो ये हमारे साथ में इंटीग्रेट फार्मिंग का एक अच्छा उदाहरण है। मैं सभी युवा साथियों से सलाह देना चाहता हूं कि अपने फार्म खेत के अंदर बरसात के पानी को इकट्ठा करें, उसमें पॉन्ड बनाए, मछली पालन कर सकते हैं, साथ में खेती कर सकते हैं और अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। किसी भी और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आज भारत सरकार की और स्टेट गवर्नमेंट की बहुत अच्छी अच्छी स्कीमें हैं जैसे पॉली हाउस लगा सकते हैं, ड्रिप सिंचाई यंत्र है, सोलर सिस्टम है, इन सब का उपयोग करके अपने अच्छे से आप नई तकनीकी के द्वारा खेती कर सकते हैं और अच्छा लाभ और मुनाफा कमा सकते हैं।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपनू रेडियो आपड़ी बातें। रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से कार्यक्रम खेती बाड़ी में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और साथियों, अभी आपने इन सफल किसानों की कहानी को सुना और जाना कि किस तरीके से उन्होंने अपने क्षेत्र में एक नया मुकाम

हासिल किया है, यानी खेती के क्षेत्र में नया मुकाम हासिल किया है। उन्होंने योजनाओं का लाभ लिया है, उन्होंने आधुनिक पद्धति से खेती की है, उन्होंने वर्मी कंपोस्ट पर जोर दिया है। तो तमाम प्रकार की उन्होंने योजनाओं का लाभ लेते हुए आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं कि सफल किसान के नाम से उनको जाना जाता है राजस्थान में। तो साथियों, हमें आशा है कि ऐसे ही हमारे किसान साथी अब सोच रहे होंगे कि हम भी एक उन्नतशील किसान बन सकते हैं। तो इसके लिए आपको हमें वैज्ञानिक पद्धति से खेती करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके लिए आप समय समय पर कृषि विस्तार अधिकारी अपने झाबुआ जिले में बैठे हुए हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं, खासतौर पर जो केबीके रहता है उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो नई नई पद्धति से और नई नई योजनाओं के साथ लाभ लेकर आप एक अच्छी पद्धति से खेती करके मुनाफा कमा सकते हैं, यही हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य है। मित्रों, अब हमारा समय होता है आज के कार्यक्रम खेतीबाड़ी कार्यक्रम से जाने का। आपकी हमारे फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात, और चलते चलते आपको सुनवाते हैं एक और प्यारे से गीत को। नमस्कार।

0: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
1: नमस्कार मेरे प्यारे श्रोताओं, आज की इस शाम में आपका दिल से स्वागत है SN रेडियो पर। मैं हूं आपकी तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और ये है वो जगह जहां हम सिर्फ बातें नहीं सुनते, हम महसूस करते हैं, जहां जिंदगी के रंग गीतों के साथ और गहरे हो जाते हैं। आज का एपिसोड खास इसलिए है क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिनकी लिखाई में शोर नहीं पर गहरा असर होता है। एक टीचर जिन्होंने सिर्फ पढ़ाया नहीं समझाया, एक राइटर जिन्होंने सिर्फ लिखा नहीं महसूस करवाया, और एक इंसान जो वर्ड्स के साथ वैल्यूज भी बनाती रही। आज हमारे साथ हैं कल्पना पुरोहित जी। कल्पना जी, SN रेडियो के इस प्यारे से सफर में आपका दिल से स्वागत है।
2: नमस्ते। नमस्ते तनिषा।
1: नमस्ते मैम। थैंक यू सो मच, आपका दिल से स्वागत है हमारे आज के एपिसोड में। चलिए हम अपना सफर शुरू करते हैं और डायरेक्ट आपके क्वेश्चन से पहुंचते हैं उस जगह पे जहां से आपकी यात्रा शुरू हुई थी। कल्पना जी, अगर आप अपनी जिंदगी के सफर की शुरुआत से थोड़े सरल शब्दों में हम सबके साथ शेयर करें तो आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे आपके आज तक के सफर को?
2: ठीक है, बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। मैं हसमुख, जिज्ञासु और चुलबुली बालिका थी। मुझे कहानियां सुनना और दोस्त बनाना अच्छा लगता था। जब पढ़ना लिखना सीखा तो शहर की लाइब्रेरी की मेंबर बनी और अपने विचारों को लिखने का प्रयास करती। तब मैं बहुत छोटी थी, 7-8 साल की रही होंगी
1: जी।
2: पढ़ने में रुचि होने के कारण मेरी वोकैबुलरी भी समृद्ध हुई। लिखने की प्रेरणा स्वतः स्फूर्त थी। स्वतः स्फूर्त मतलब

0: लोगों के विचारों को भी ध्यान में रखते हुए लिखते हैं,
1: बहुत
0: तो उसका फर्क तो पड़ता है।
1: जी जी, इसी से कनेक्टेड मेरा नेक्स्ट सवाल है, क्योंकि आप जो जो करते हैं जीवन में उस सभी का इम्पैक्ट आपकी लेखनी पे, आपकी बोली पे, आपकी सोच पे होता है, तो आपने काफी सालों तक टीचिंग करी है मैम, एक टीचर होने का एक्सपीरियंस आपकी सोच को, आपकी लिखाई को किस तरह से शेप करता रहा?
0: हाँ जी, मैंने नन्हे मुन्ने बच्चों से लेकर 10वीं तक के बच्चों को पढ़ाया। मैं हिंदी टीचर रही और हिंदी भाषा से मुझे बहुत प्यार था, इसीलिए मैंने हिंदी सब्जेक्ट ऑप्ट किया। छोटे बच्चों को पढ़ाना मुझे बहुत अच्छा लगता था, उनको सिखाना समझाना सरल बनाने के लिए मैंने रोज सीखने वाली बातों को 8-10 पंक्तियों की कविताएं बनाकर याद करवाया और बच्चों ने याद भी कर लिया खेल खेल में। सामान्य टॉपिक जैसे हेल्दी ईटिंग, गुड मैनर्स, एनवायरमेंट, फेस्टिवल्स वगैरह, बहुत से टॉपिक्स आप देखेंगी तो आप पाएंगी कि आप खुद भी सोचेंगी तो बहुत सारे अनगिनत टॉपिक्स होते हैं जिनपे कोई हमें समझा सकता है, बता सकता है या बच्चों को कुछ लर्न करा सकता है। तो ये मैंने, और मैंने उन्हें छोटी छोटी कहानियों के रूप में नैतिक शिक्षा भी दी। मेरा पहला काम था कि छोटे छोटे बच्चों को हम शुरुआत से ही उनको एकदम शुरुआत से ही उनको हम नैतिक शिक्षा दें तो एक अच्छा इंसान बनेंगे बड़े होके। वही एक समय होता है जब बच्चा सब कुछ ग्रैस्प कर लेता है,
1: उसकी
0: ग्रैस्पिंग बहुत अच्छी होती है उस समय। तो बहुत जो 3 से 5 तक के बच्चे थे उनको मैंने काफी साल पढ़ाया और मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि उस दौरान मैंने इतनी नई नई कृतियां लिखी, छोटे बच्चों की कहानियां भी लिखी और कविताएं भी लिखी। अच्छा, बड़े बच्चों के लिए मैंने एनुअल फंक्शन की स्क्रिप्ट लिखी और बड़े बच्चों के लिए नाटक लिखेंगे तो आपके स्क्रिप्ट तो लोग सुनते हैं, मैच्योर लोग सुनते हैं, तो वो उसी पे, और जो सोशल प्रॉब्लम्स थी उन पे मैंने स्क्रिप्ट लिखी थी मोस्टली, जैसे तो हाँ उनके, और उनका निर्देशन भी किया मैंने कितने बच्चों को सेलेक्ट करना है, उनकी वॉइस ओवर, ये सब काम मेरे जिम्मे था। तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था एज अ टीचर। मैं एक बहुआयामी लेखिका और कवित्री बनी जो कि शायद मैं गृहिणी होती तो नहीं बन पाती
1: जी।
0: तो मैंने अध्यापिका होने के कारण मैं स्वयं को एक बहुत बहुआयामी लेखिका बना पाई, इसके लिए मैं ऊपर वाले की बहुत धन्यवाद देती हूँ।
1: जी, हम भी ऊपर वाले का धन्यवाद देते हैं कि हमारे साथ आप जैसी एक कवित्री, एक लेखिका, एक टीचर, एक इतनी सुंदर शख्सियत है और आज हम आपको होस्ट कर पा रहे हैं। थैंक यू सो मच मैम वंस अगेन, और बहुत नेचुरली
0: जी आपका प्यार है ये तो।
1: जी मैम, मैम आप डिजर्व करते हैं सब कुछ, और आपने बहुत नेचुरली बताया कि कैसे एक टीचर की जर्नी, हर एपिसोड में बाय एंड लार्ज मेरी ये बातचीत रहती है क्योंकि ज्यादातर जिनको मैंने इंटरव्यू किया है अभी तक उनका कहीं ना कहीं गाइडेंस से, मेंटोरशिप से, टीचिंग से कनेक्शन रहा है, ये संयोग की बात है। तो हर एपिसोड में मैं ये बात रीइंफोर्स करती हूँ कि कैसे एक टीचर, एक गाइड, एक मेंटोर आपके जीवन को शेप कर सकता है, क्योंकि आप सच कह रहे हैं बच्चे बिल्कुल कच्ची मिट्टी जैसे होते हैं, तो उनको जिस तरह से आप ढालना चाहें अच्छा सिखाएंगे, उनको नैतिक शिक्षा देंगे, एक एक यंग एज से उनको सिखाएंगे, छोटी छोटी बातें प्रीच करके नहीं बट एग्जाम्पल्स से, खेल खेल में, तो वो बहुत जल्दी सीखते हैं, तो बहुत इम्पैक्ट होता है टीचर का। एंड आई एम सो थैंकफुल कि हमारे देश में आप जैसे टीचर्स हैं और ऐसे टीचर्स हैं जिनको मैं आज तक इंटरव्यू करके आई हूँ। बहुत बहुत बहुत शुक्रिया मैम। अब आगे चलते हैं, हमारा सफर आगे लेके चलते हैं। आपने लिखने की जो आपकी शुरुआत थी वो आपकी आदत थी कि बस किताब लिया, अपनी नोटबुक ली और फटाफट कुछ लिख लिया, या ओवर टाइम ये शौक डेवलप हुआ, या पढ़ने से ये आदत ज्यादा डेवलप हुई? क्योंकि मैं अपने अपने श्रोताओं को ये बताना चाहती हूँ कि लेखन की जो जर्नी होती है वो जरूरी नहीं है कि बहुत यंग एज से शुरू हो। कई बार आप एक पढ़ाव पे आके भी जीवन के रियलाइज करते हैं कि कुछ बातें हैं जो आप भी जीवन में लोगों से कहना चाहते हैं, और वहीं कई कुछ लोग होते हैं जो बचपन से पढ़ते आते हैं और उनकी वो जर्नी वहीं से शुरू हो जाती है। तो जैसे आपने कहा बचपन में लाइब्रेरी जाते थे, वहां टाइम स्पेंड करते थे, तो कैसे आपकी लेखन की आदत शुरुआत हुई, मतलब इसका इसकी रूट कॉज क्या थी और कहां से आपकी पहली शुरुआत हुई, ये अगर आप हमें थोड़ा बताएं।
0: आप शायद माने ना माने पर मैं बहुत छोटी थी जब मैं लिखना शुरू किया तो हमको दो दो शब्द राइमिंग वर्ड सिखाया करते थे स्कूल में, वेरी यंग, तो राइमिंग वर्ड्स लिखती थी और फिर मैं उनके साथ साथ टू लाइनर्स भी लिखती

0: थी, स्लेट पे लिखती थी और मिटा, मम्मा को कहती थी मम्मा मेरे देखो ये लिखी, मम्मा कहती बहुत बढ़िया, मम्मा बिजी रहती थी अपने काम में, तो मैं कहती और लिखो बेटा बहुत अच्छा लिखा, तो मैं कहती हूँ स्लेट में तो जगह ही नहीं है, मम्मा कहती तो आप कितना इजी होता है स्लेट में, तो आप उसको मिटाओ और फिर नया लिख दो. तो मैंने डॉक्यूमेंटेशन कुछ भी है ही नहीं उस समय की, क्योंकि अगर शायद इतनी समझ होती कि मैं आगे तक भी कभी लिखूंगी तो उनको मैं संभाल के रखती, तो पता लगता कि एक 5-6 साल का बच्चा लिख भी सकता है. खैर वो देखिए उसका मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है
1: जी, जी.
0: पर मैंने खुद से खुद को लिखने के शौक से लेखन शुरू किया और अब वो आदत सी बन गई है. मेरे को कुछ भी विचार आते हैं तो मैं लिख लेती हूँ. कभी कभी मेरे पास बाध्यता होती है कि इस टॉपिक पर लिख के आपको देना है, एक दिन में देना है या 2 घंटे में देना है, तो तब उस बाध्यता में भी लिखती हूँ और मैं अपने शौक से भी लिखती हूँ. कोई मेरा के लिखने में एक आदत बन चुकी है.
1: जी जी, जब लिखना प्रेशर नहीं रहता, एक एहसास बन जाता है, एक फीलिंग बन जाता है, तभी वर्ड एक्चुअली जिंदा लगते हैं, वो आपको फील होते हैं, आपको टच करते हैं. बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर, बहुत सही कहा आपने.
0: एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगी, पढ़ना बहुत जरूरी है. कोई भी टॉपिक पे आप जरूर पढ़िए. जिसको भी लिखने का शौक थोड़ा भी है तो ऐसे नहीं लिखेंगे कि किसी का सुना पढ़ा और खुद ने लिख दिया, नहीं. आप उस टॉपिक पे पढ़िए. मैं तो इन लोग बच्चों के लिए कह रही हूँ जो कि लिखने के शौकीन होते हैं पर समझ नहीं आता कि क्या लिखें, तो हर टॉपिक को डिटेल में पढ़ना चाहिए उनको, मैं ऐसा समझती हूँ.
1: जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल. रीड रीड रीड एंड रीड टिल मोर एंड ओनली देन दैट यू कैन राइट.
0: यस,
1: बहुत फेमस इनपुट है. तो इससे ये बातों का सफर हमारा चलता रहेगा. बट दोस्तों, इसी सफर को थोड़ा और सुंदर, थोड़ा और गहरा और थोड़ा और हसीन बनाने के लिए एक सॉफ्ट सा सुकून से भरा गीत आप सभी के लिए.
0: रमिशा, आज पूछ सकती हूँ?
1: जी मैम.
0: ये रिकॉर्डिंग हो रही है मेरी इस प्रोग्राम की?
1: जी जी जी.
0: मुझे मिलेगी?
1: जी जी जी, बिल्कुल.
0: थैंक यू सो मच.
1: जी जी जी. रिकॉर्डिंग एक्चुअली जब प्रोग्राम एयर होगा ना मैम, तब उस दिन मैं आपको बताऊंगी और उसी के साथ मैं आपको एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो होगी ना प्रोग्राम की वो भी भेजूंगी.
0: थैंक यू
1: जी. वेलकम बैक. कम
0: यस. हाँ जी,
1: वेलकम बैक. वेलकम बैक कल्पना जी.
0: हाँ जी, बोलिए
1: जी. कल्पना जी, आपकी लिखी हुई किताबें आपकी जर्नी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा रही हैं, आई एम श्योर वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं. तो आपकी सोलो पोएट्री कलेक्शन परिचय कल्पना से और बच्चों के लिए लिखी हुई नर्सरी राइम मीठे बोल, इन दोनों को लिखने का एक्सपीरियंस कैसा रहा, अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा टच कर पाए तो हमें बताए मैम.
0: जी बिल्कुल. मैंने कविताएं तो बचपन से लिखी और बहुत कविताएं लिखी, समय समय पर, हर त्योहार पर, हर ओकेजन पर, मतलब सुख में दुख में, किसी घर वाले के लिए, किसी के जन्मदिन पर, किसी के विवाह की वर्षगांठ पर, मैंने बहुत कविताएं लिखी. पर कुछ मेरी खास पसंद की जो कविताएं थी या जो मेरे को लोगों ने जिनकी बहुत सराहना की थी, उन कविताओं को मैंने फिर सोचा संकलित करवा देती हूँ. तो मैंने उसका संकलन करवाया और जब वो पुस्तक के रूप में मेरे सामने आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा. आप खुद समझ सकती हैं, कभी आपने भी अपना कुछ प्रिंट करवाया हो, छपवाया हो, तो आपको उतनी ही खुशी होती है जैसे कोई हमारा नया बेबी आया है दुनिया में. तो मुझे बहुत अच्छा लगा. और छोटे बच्चों की जो मैंने मीठे बोल लिखी थी वो विद्यालय के लिए ही थी, तो क्योंकि उसको बाहर प्रिंट कराने की मुझे अनुमति नहीं थी स्कूल से, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे लिखती थी और बहुत सारी कविताएं थी छोटे बच्चों की, पर कुछ थी जो सेलेक्टेड कविताएं वो उसको हर क्लास के बच्चों को, मतलब LKG से और प्रेप तक के बच्चों को लर्न कराई जाती थी वो. और वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, मैं बता नहीं सकती आपको, शायद आप कभी लिखें तो आप
1: समझ सकते हो.
0: बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, बच्चे याद करके आपको सुनाते हैं, अपनी फैमिली में सुनाते हैं, उनके पेरेंट्स आके आपको कहते हैं कि कितनी अच्छी अच्छी कविताएं याद कराई हैं आपने बच्चों को.
1: बिल्कुल,
0: तो अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगा.
1: बिल्कुल बिल्कुल. कोई भी लिखी हुई बात और छपी हुई बात आई थिंक यूनिवर्स को चली जाती है सीधा, क्योंकि वो इटर्नल हो जाती है इन टाइम. और कभी भी वो बुक जब कोई भी इंसान कोई भी पीढ़ी का इंसान उसको उठा के पढ़ता है तो वो वही एहसास फील करता है जो कभी हमने लिखने के समय उससे फील किया हो. तो मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ मैम कि बहुत ही आपके दिल के करीब है ये बुक, क्योंकि हर लेखक की पहली लेखनी, पहली क्या, मेरे हिसाब से तो हर लेखनी लेखक के लिए बहुत स्पेशल होती है, बट पहली तो बिल्कुल बच्चे जैसी होती है क्योंकि तो मैं समझती हूँ मैम बिल्कुल। आप कविता, गीत, कहानी, नाटिका, जैसे आपने बताया सब जोनर्स में लिखा है आपने, इतनी वेरिड फॉर्म्स ऑफ राइटिंग की आपकी कैपेबिलिटीज हैं, तो क्या लिखने से पहले कोई प्लानिंग रहती है या फिर आप मन से ज्यादा अफेक्टेड होते हैं कि जो मन में आया वो लिखना है, या कोई एक प्रोसेस है आपका लिखने का, अब जाके इस स्टेज पे आके क्या कोई प्रोसेस है आपका लिखने का, या इट्स जस्ट फ्री फ्लोइंग की मतलब जो विचार आए वैसा लिखा, कैसा क्या प्रोसेस है मैम आपके लिखने का, क्योंकि बहुत सारे फॉर्म्स में आप लिखते हो, सब फॉर्म्स में अलग एक टेक लेना पड़ता है आपको लिखने से पहले, चाहे कहानी हो, चाहे नाट्य शास्त्र हो, चाहे कविता हो, चाहे गीत हो।
0: जी बिल्कुल, जैसे एक तो जो आजकल की जो प्रॉब्लम्स हैं बच्चों की हैं, या जो इतना पेड़ कट रहे हैं उससे है, मतलब जो समसामयिक विषय होते हैं, समसामयिक विषय मतलब जो अभी एट प्रेजेंट जो घटित हो रहा है सब आज के जमाने में, उन पे किसी पे भी मेरा मन करता है तो मैं लिख लेती हूँ, मेरे पे उसकी बाध्यता नहीं होती कि आप इस पे लिखिए, पर मैं अपनी मन से लिख लेती हूँ। लेकिन कभी कभी जब मैं बच्चों के लिए लिखा करती थी तो मेरे पे बाध्यता होती थी कि बच्चों को इस टॉपिक, मैं खुद ही सजेस्ट करती थी टॉपिक कि इस टॉपिक पे इस बार लिखेंगे, जैसे बच्चे पटाखे और होली और इनके साथ खेलते तब तक तो ठीक है, पर वो अपने आप को नुकसान भी बहुत पहुंचा लेते हैं, पतंग उड़ाते हैं तो हाथ पाथ कट जाते हैं कभी बच्चे, और मतलब बहुत घायल हो जाते हैं, दीपावली पर भी बच्चे घायल हो जाते हैं पटाखों से, और होली के रंग में भी बहुत कुछ मिला देते हैं जिससे, तो ये एक सिर्फ उदाहरण दे रही हूँ मैं
1: जी।
0: तो इस तरह की चीजें लिखती हूँ जब मेरे पास खुद ही बाध्य हो जाती हूँ कि मुझे इस पे लिखना है, तो मैं उससे संबंधित सारा लिखती हूँ, और जब अपने मन से लिखती हूँ तो मैं किसी भी टॉपिक पे लिखती हूँ, और मेरे को खुशी देता है लिखना। आप भी सोचेंगे इतनी खुशी देती है लिखना तो आप इतनी फेमस कवित्री क्यों नहीं हुई।
1: अरे मैम उसका कोई मैं नहीं मानती कि उसका कोई मेजरमेंट होता है मैम, सच में होता है जी, जी।
0: आज सब प्रेमचंद को पढ़ते हैं, महादेवी वर्मा को पढ़ते हैं, तो मैं कभी कभी इनको कहती, मेरे हस्बैंड को कहती हूँ कि देखिए मैं कितना अच्छा लिख लेती थी, अब पुराना अपना देखती हूँ संग्रह तो, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं इन लोगों की तरह से फेमस हो जाऊँ, लेकिन अब इस उम्र के इस पड़ाव पे आके लगता है कि मैं ऐसा कर सकती थी। ठीक है, जो जिसका जो रहता है ना
1: जी,
0: जी
1: बिल्कुल,
0: मेरे कुछ हैं बहुत आप जैसे प्यारे प्यारे लोग।
1: नहीं, हम तो बहुत पसंद करते हैं और हम चाहेंगे कि आप बहुत सारा और लिखें, और अभी भी बहुत समय है आपके पास वहां तक पहुंचने का, मैं तो ये मानती हूँ।
0: बिल्कुल, मैं तो सोचती हूँ जीवन पर्यंत लिखना चाहती हूँ मैं तो।
1: बिल्कुल मैम, और हम पढ़ने के लिए रेडी हैं, हम सारे हम सब पढ़ने के लिए आपके लिए उत्सुक हैं, आप जो लिखें और लिखते चलें और आपकी लिखाई वहां तक पहुंचे जहां आप चाहते हैं, उस शिखर पर आप पहुंच पाए। मैम कुछ है जो आप हमारे लिए पढ़ सकते हैं अभी, अगर आप पढ़ना चाहें तो कुछ छोटा सा, एनीथिंग?
0: मैं एक छोटा सा तो नहीं, थोड़ा सा
1: बिल्कुल बिल्कुल, समय है हमारे पास मैम, आप पढ़ें।
0: मैं एक ऐसी बात बताना चाहती हूँ, देखिए आजकल बच्चे सुसाइड कर रहे हैं बहुत ज्यादा।
1: जी जी,
0: हम वैसे तो मेरे पास बहुत बड़ा संग्रह है, लेकिन मैं इसको स्पेशली पढ़ना चाहती हूँ ताकि बच्चे सुने, बड़े सुने, जिसको भी तकलीफ है, जो भी तकलीफ में है
1: जी,
0: आयु कोई भी हो, कभी कभी परिस्थिति मन वांछित नहीं होती
1: जी,
0: अपने अथवा किसी अन्य की भूल के कारण हम किसी भी विपदा में गिर जाते हैं, तब किसी पर भी विश्वास करने से डरते हैं, किंतु कोई भूल इतनी बड़ी नहीं होती कि माता पिता क्षमा न करें या हमें संबल न दें, यह विशेषतः उन विद्यार्थियों के लिए है जो भावुकतावश और भावुकतावश घोर दुर्भाग्यपूर्ण कृत्य करने की ठान लेते हैं, वो लोग सुसाइड कर लेते हैं और भी बहुत कुछ गलत कर देते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो मैं उसके लिए कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहूंगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल मैम, बहुत बहुत जरूरी है जी।
0: कोई भी हो सकती है, किसी को नौकरी में तकलीफ हो सकती है, तो मैं बताती
1: हूँ। बिल्कुल मैम बिल्कुल जी,
0: मेरी कविता है, तू जिसे मन की कहेगा, तू विवल अथवा विकल हो विरुद्ध सब तू विफल हो, बेवचन तू न डिगेगा, भाव सब वश में करेगा, साथी छोड़े साथ तेरा, सामने हो तम घनेरा, स्वप्न क्या तू न बुनेगा, यत्न सारे छोड़ देगा। यह परीक्षा की घड़ी है और चुनौती भी बड़ी है, तो क्या कुंठित हो रहेगा, लक्ष्य से मुख मोड़ लेगा। संभवतः आज भाग्य अस्त होगा, मार्ग कल प्रशस्त होगा, कठिनाइयों को जीत लेगा, विश्वास जब स्वयं पर रखेगा। ऋण है तुझ पर माँ पिता का, पथ देखना मत तू चिता का, असफलता से डरेगा तो सफल कैसे बनेगा। तेरा निर्णय हो न घाती, तू किसी की भी है थाती, आत्ममंथन जब करेगा तू जनक से जा कहेगा, अपने पिता से कहेगा, जनक मतलब पिता
1: जी।
0: जिसने सृजन तेरा किया है, रूप रंग जिसने दिया है, अपनी व्यथा से जब थकेगा, जननी से तू मन की कहेगा। जो है तेरे पथ प्रदर्शक, भाई बंधु गुरु शिक्षक, इनसे दुख साझा करेगा, तू अकेला न सहेगा। मत समझ कोई नहीं है, तेरे सब अपने यही हैं, संशय उन्हें अपने कहेगा, उनकी कही भी तू सुनेगा। नेह का रस सिक्त घट वह, दया के सागर का तट वह, वह हृदय की सब सुनेगा, प्रभु से तू मन की कहेगा। इनका विकल्प तू ढूंढना मत, मस्तक रहे इनके लिए नत, इनके लिए ही सब सहेगा, देवचन तू न डिगेगा। रिक्त कर अपना मनस्तु, छोड़ सारे प्रश्न वस्तु, तिमिर जब मन का छटेगा, पथ तुझे उज्जवल दिखेगा, देवचन तू न डिगेगा, देवचन तू न डिगेगा। थैंक यू।
1: बहुत बहुत बहुत सुंदर मैम, और मतलब इतना सही और इतना रेलेवेंट है ये समय के लिए, क्योंकि हाल ही में बहुत सारे इंस्टेंसेस हुए हैं, जयपुर में बहुत सारे इंस्टेंसेस हुए हैं, और हम ये समझें कि हमारा जीवन सिर्फ हमारा नहीं है, सच में उसमें ऋण है, और उस ऋण बंधक से अगर हम इस जन्म में मुक्त होने की कोशिश करेंगे तो अगले जन्म हम फिर वही सहेंगे और उससे और ज्यादा पीड़ा सहनी पड़ सकती है। तो अपने आप को सिर्फ अपने तक सीमित ना रखें, अपने जीवन को एक एक गिफ्ट समझें जो सिर्फ आपके लिए नहीं है, आपसे बंधे हुए बहुत सारे लोग जुड़े हैं उस जीवन से। तो ऐसे स्टेप्स उठाने से पहले प्लीज प्लीज ऐसे प्रेरणात्मक कवियों को सुने और अपने जीवन को थोड़ा सा सीरियसली लें, क्योंकि वो सिर्फ आपका नहीं है, आपका ऋण है सब लोगों के लिए। बहुत ही सुंदर कविता मैम, थैंक यू सो मच।
0: मुझे लगा मैं शेयर करूं कि नहीं करूं, पर मुझे लगा ये संदेश रेडियो के थ्रू बच्चों तक बड़ों तक पहुंचना चाहिए, ऐसा मुझे लगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल मैम। अब हम एक गीत की तरफ चलते हैं, बहुत सुंदर बातों का सफर चल रहा है, आप सुन रहे हैं जिंदगी के रंग गीतों के संग, एक खूबसूरत सा गीत इन खूबसूरत बातों के बीच में जो सिंप्लिसिटी और पॉजिटिविटी से भरा है। वेलकम बैक कल्पना मैम।
0: जी
1: हमारी बातों के सफर को थोड़ा और आगे ले जाते हैं। आपका जो सफर है वो सिर्फ लिखने तक सीमित नहीं है, कहीं ना कहीं आपने अपने आप को सोशल वर्क से भी बहुत जोड़ा है और काफी एक्टिव रही हैं। तो आपका लिखना और आपकी समाज सेवा, इन दोनों के बीच का जो गहरा रिश्ता है, क्योंकि मैं जानती हूँ लेखक एक बहुत ही सेंसिटिव ह्यूमन बीइंग होता है और वो लिखना तभी शुरू करता है जब कहीं ना कहीं उसको समाज की चीजें अफ्लिक्ट करती हैं। पहले तो जर्नी शुरू होती है पर्सनल राइटिंग से और फिर वो पर्सनल से और इम्पर्सनल होके समाज तक पहुंचती है। तो क्योंकि आपको कोई चीज लगी है कुछ, जैसे अभी आपने अपनी कविता पढ़ी सुसाइडल अटेम्प्ट के ऊपर, तो उसी तरह कैसे आपके लिखने से जो समाज सेवा का सफर है वो कनेक्ट हुआ और उससे आप अपने लेखन से बाहर निकल के एक्चुअली ग्राउंड लेवल पर चेंज लेके आ सके, इसके बारे में अगर आप हमें बताएं।
0: बिल्कुल बिल्कुल अनिशा जी, जो समाज सेवा के अनुभव होते हैं वो लेखन को प्रामाणिक बनाते हैं। मतलब मेरे जो भी अनुभव हुए मुझे समाज सेवा, और समाज सेवा मैं आपको बताना चाहती हूँ सिर्फ इतना ही नहीं है कि जिनके पास वस्त्र नहीं है या जो दो समय का भोजन नहीं कर सकते उनको भोजन देना या वस्त्र देना, मैं इसको समाज सेवा में नहीं मानती, क्योंकि उसके लिए तो सरकार भी बहुत सारी स्कीम्स चलाती हैं। समाज सेवा है कि उन डिप्राइव्ड लोगों को या उन कम पढ़े लिखे लोगों को जागरूक बनाए, मैं उसको समाज सेवा मानती हूँ। तो मैं लोगों को जागरूक बनाने के लिए क्या है कि जो जिनको नीड है, जिनको आवश्यकता है, जिनको जरूरत है, उनको उनकी आवश्यकताएं और उन जरूरतें पूरी कौन करेगा? जो बाकी का समाज है, जो जिसके पास जो समृद्ध है
1: जी,
0: तो जो ये समाज सेवा में ये भी आता है कि हम समृद्ध लोगों को उन लोगों की परेशानियों से अवगत कराएं
1: जी,
0: तो शोषित वर्ग की पीड़ा से अवगत कराते हैं हम अपनी रचनाओं द्वारा। मैं जितना कर सकती हूँ अपनी रचनाओं द्वारा उनको बताती हूँ पीड़ा, और उससे बहुत फर्क पड़ता है, लोग आगे आते हैं, मदद करते हैं, तो समाज सेवा में एक बहुत बड़ा मतलब क्राउड जुड़ जाता है
1: जी।
0: तो समाज सेवा में लेखन और समाज सेवा मेरी तो हैंड इन हैंड चलती है, मतलब साथ साथ चलते हैं, लेखन और समाज सेवा दोनों ही समाज को बेहतर बनाने के सशक्त माध्यम है, दोनों ही मिलकर जागरूक बनाते हैं, जागरूकता बढ़ाते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, कैसे लेखन से भी जी, लेखन से भी फंड रेजिंग होती है, लेखन से भी लोग उस पूरे आपके ऑब्जेक्टिव से जुड़ सकते हैं और आगे चल सकते हैं, और कैसे वर्ड्स जब एक्शन से जुड़ते हैं तो इम्पैक्ट और स्ट्रॉन्ग हो सकता है, सब बिल्कुल सही है। लेखन की पावर एक अलग ही पावर है, कलम की पावर एक अलग ही पावर है अगर सही यूज की जाए जी।
0: और ये तभी लेखन में ताकत तभी आएगी जब आपने ग्राउंड लेवल पे कुछ काम किया होगा, अगर आपने सचमुच जो शोषित वर्ग की तकलीफें देखी होंगी तभी आप लिख पाएंगे।
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल, इसलिए मैं सोचती हूँ कि समाज सेवा और लेखन मेरे तो साथ साथ चले हैं, और मुझे लगा कि कुछ उसका असर भी हुआ है।
1: जी जी बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ है, इस थॉट से ही आई थिंक कहीं ना कहीं यूनिवर्स को मैसेज जाता है कि आपकी वाइब्रेशंस चेंज होती हैं, और उस थॉट से ही इतना चेंज आ जाता है, और फिर आप तो इतना कुछ कर रहे हैं इतने सालों से, और उसी करने के से चलते आपको कई अवार्ड समय समय पर मिले हैं मैम, कई रिकॉग्निशंस मिले हैं, जैसे कि जी राजस्थान वुमेन्स अवार्ड, पारिक प्राइड अवार्ड, और वुमन एम्पावरमेंट से जुड़े हुए कई सम्मान। तो ये अवार्ड्स आपके लिए क्या मायने रखते हैं इतने इस जीवन के सफर में यहाँ तक पहुँचने के बाद? क्या लगता है आपको कि आपने ये सब पाया? अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि आप सोच रहे हैं कि वहां नहीं पहुंचे प्रेमचंद जी एंड विनोद कुमार शुक्ल जी, बट इतना आपको जो सम्मान और प्लेटफॉर्म मिला है, ये आपको कैसा फील होता है, और क्या आपको अनुभव करते हैं आप इस यहाँ तक पहुँच के?
0: हाँ तनुषा जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। अवार्ड मिलने का मतलब आपके कार्य को पहचान मिली
1: जी,
0: तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब मुझे फर्स्ट अवार्ड मिला, मुझे चुना गया कि आप तो इतना अच्छा गाती हैं, इतना अच्छा लिखती हैं, मैं आपको आपका नाम मेरे को भेजिए, आपका परिचय, और इस बार आपको अवार्ड दिलाएंगे हम। कहीं कोई आउट ऑफ द ब्लू कोई हमें मिल गए और उन्होंने पहचान लिया, मैंने तो कभी ये प्रयास भी नहीं किया था, पर हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद तो देखिए, जब आपको सम्मान मिल जाता है तो लोगों की आपके प्रति, उनका भी सम्मान बढ़ जाता है आपके प्रति
1: जी,
0: सभी सम्मान देने लगते हैं। ये ऐसी कड़ी है जो एक के बाद एक जुड़ती जाती है, और मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगा कि मैं जो करती हूँ वो लोगों को पसंद आता है, लोग उसकी सराहना करते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है कि हम अपने काम में खरे उतरे। अवार्ड तो ले लिया, हम बड़े खुश हैं, लेकिन हम उससे ये ना हो कि हम अपने पथ से थोड़े विचलित हो जाएं, हम अपना अच्छा कार्य करते रहें और हम अपने काम में हमेशा खरे उतरे, मैं ऐसा सोचती हूँ। और समाज में प्रतिष्ठा मिलना तो सभी को अच्छा लगता है।
1: जी जी, जैसे कहते हैं कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इट्स ट्रू। एंड मैम, अगर आपने बताया आप गाते भी हैं, जैसे हमने पढ़ा भी कि आप गीत भी लिखते हैं, तो कोई गीत, अगर मैं ज्यादा फरमाइश कर रही हूँ, बट अगर कोई गीत हो जो आप हमारे साथ गुनगुनाएं और हमारे श्रोताओं को सुनाएं तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, छोटा सा कोई भी पंक्ति।
0: तनिषा, दो पंक्तियां सुना दूंगी, तीन चार पंक्तियां, लेकिन मैं तुम्हें पहले बता देती हूँ कि मुझे लेरिंजाइटिस, बिकॉज मैं टीचर थी
1: जी,
0: तो टीचर थ्रोट बहुत कॉमन है।
1: बिल्कुल,
0: बहुत अच्छा गाया करती थी मैं अपनी कॉलेज की और स्कूल की स्टार सिंगर थी
1: जी,
0: पर ये लेरिंजाइटिस होने के बाद मैं 20 साल तक गा नहीं सकी। बहुत तकलीफ में रहा मेरा गला और मेरा मन भी, फिर मेरा मन भी, क्योंकि मैं बचपन से गाने की शौकीन थी। तो मैं आज आपको, अब मैं थोड़ी सी बेहतर हुई हूँ
1: जी,
0: मैं अपने इस जैसे भी गले में मैं आपको दो पंक्तियां सुनाती हूँ।
1: थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू।
0: जी चाहता है।

0: के आगे बैठी रहूं।
1: सॉरी तनुषा, आप इसको बिल्कुल मिटा देना क्योंकि
0: नहीं
1: मुझसे नींद आया जा रहा
0: नहीं
1: है।
0: नहीं बहुत सुंदर है, मैं इसको बिल्कुल नहीं मिटाऊंगी, क्योंकि इतना सुंदर गला और इतनी सरलता, इतनी सच्चाई आपकी आवाज में मैम, बहुत ही सुंदर लगा मुझे गीत, बहुत बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच कि आपने हमारे लिए गाया, बहुत बहुत थैंक यू मैम।
1: थैंक यू।
0: अगर सिंपलिसिटी की आवाज होती तो वो आपकी होती।
1: थैंक यू
0: जी। आगे चलते हैं। आज के युवा को लिखना बहुत पसंद है, सब लिखना चाहते हैं, सब सोशल मीडिया से अफ्लिक्टेड हैं, देखते हैं, सबको कुछ ना कुछ, सबके पास अपनी एक आवाज है, पर कहीं ना कहीं कोई डाउट्स रहते हैं लोगों को कि हम क्या अच्छे लेखक बन पाएंगे, या क्या हमें हमारी मन की बात शेयर करनी चाहिए, लोगों का जजमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि आप चिल्ड्रन हार्ट, बच्चों के दिल से, चिल्ड्रंस हार्ट इससे जुड़ते हैं, आप युवा से जुड़ते हैं, तो आप ऐसे बच्चों के लिए जो लिख तो सकते हैं, लिखना चाहते हैं, बट थोड़ा डरते हैं, थोड़े डाउट में रहते हैं, उनके लिए अगर कुछ कहना चाहें, कोई मैसेज तो।
1: बिल्कुल बिल्कुल, जो युवा लिखना चाहते हैं या जो बच्चे लिखना चाहते हैं, मैं उन्हें कहूंगी कि जिस विषय पर लिखने का मन है उसके बारे में जानकारी हासिल करें, पढ़ें, बहुत पढ़ें और अपनी वोकैबुलरी बढ़ाएं। लेखन के लिए आपको बहुत सारे शब्द आने भी आवश्यक हैं, है ना? और अगर आप उर्दू में लिख रहे हैं तो उर्दू शब्दों का प्रयोग करें, और हिंदी में लिख रहे हैं तो हिंदी शब्दों का प्रयोग करें। आपको नहीं आते तो आप डिक्शनरी देखिए, नहीं तो गूगल सर्च कर लीजिए, क्योंकि राइमिंग वर्ड्स हर जगह मिलते हैं और कविताएं हैं वो उसमें अधिकतर राइमिंग वर्ड्स का ही प्रयोग होता है।
0: जी।
1: तो आप उसमें से देख के सीख सकते हैं। थोड़ी मेहनत यहाँ करनी पड़ेगी आपको, जो कि बहुत लंबा समय नहीं लेती है, अगर आपका आपकी लगन है लिखने के प्रति और आप अपनी भाषा को परिष्कृत करके जब आप अपनी नॉलेज के साथ लिखेंगे तो मैं कहूंगी कि आप बेधड़क लिखें, क्योंकि सच्चा प्रयास जो होता है वो हमेशा सराहा जाता है।
0: बिल्कुल।
1: अगर आप लिखें खुद ही, आपको हमको है ना, हम खुद ही अपने जज सबसे अच्छे होते हैं, हमें पता लग जाता है कि ये हमने सही लिखा, अच्छा लिखा या नहीं लिखा। तो जब आप खुद जज बनते रहेंगे ना तो आप परिष्कृत होते चले जाएंगे और आपकी दुनिया भी बहुत सराहना करेगी। मेरा तो ये मैसेज है बच्चों के लिए।
0: बहुत बहुत सही और सटीक मैसेज है मैम, कि बहुत सिंपल यात्रा नहीं है ये, प्रयास करना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी, तब जाके आपकी जो लेखनी आएगी उसमें वो रस आएगा, जो आप भी पढ़े तो आपको अच्छा लगे और दुनिया पढ़े तो खैर आपका मैसेज पहुंचे। और ये बहुत सिंपल यात्रा नहीं है, बट बहुत सिंपल हो सकती है अगर आप अपने मन से इससे जुड़े और थोड़ा सा प्रयास, थोड़ा परिश्रम करें। कुछ भी चीज परिश्रम के बिना नहीं मिलती। बहुत ही सटीक और सुंदर बात कही आपने। अब इसी से कभी कभी कुछ बातें मेरे दिल को इतना छू जाती हैं कि इसी फीलिंग के साथ हम अब सुनते हैं एक छोटा सा, इसी फीलिंग के साथ अब हम सुनते हैं एक गीत जो होप और भरोसे से भरा हो। वेलकम बैक कल्पना जी।
1: हाँ जी
0: जी। आगे चलते हैं, हम हमारे सफर को थोड़ा और आगे ले चलते हैं। जब आप पीछे मुड़कर आज अपनी जर्नी को देखते हैं मैम, तो आप सबसे ज्यादा खुशी और सबसे ज्यादा रिग्रेट, इन दोनों बातों को अगर आप हमें बताएं कि सबसे ज्यादा खुशी किस बात की होती है और रिग्रेट किस बात का होता है, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा।
1: जी तनिषा, मैं कह नहीं सकती कि मुझे सबसे ज्यादा खुशी कब हुई।
0: जी।
1: अलग अलग समय पर बहुत सी बातों से मुझे बेहद खुशी हुई, पत्नी बनने की, माँ बनने की, लेखिका, अध्यापिका और बहुत कुछ बनने की, पारितोषिक मिलने की
0: जी,
1: नानी बनने की
0: जी,
1: और ऐसे बहुत से मौके आए जब मैं बेहद खुश थी। तो मैं गिना नहीं सकती आपको कि मैं कब बेहद खुश थी। और रिग्रेट तो देखिए, हम लाइफ में शायद दिन में कभी ना कभी हम रिग्रेट, ओह हमने ये नहीं किया उसका, देखो उसने मुझे कहा था हेल्प करने के लिए, मैं भूल गई। तो हम छोटी छोटी रिग्रेट्स की बात करें तो रहती है हमारे जीवन में लगातार, और खुशियां भी लगातार रहती हैं। तो कोई बहुत बड़ी रिग्रेट तो मुझे लगता है कभी मैंने किसी स्टूडेंट का दिल दुखाया हो। मैं हमेशा मन में सोचती हूँ, ऊपर वाले से मैं माफी भी मांगती हूँ, कोई स्टूडेंट का मैंने अनजाने में ऐसा सबके सामने डांट दिया हो, जो कि बहुत भावुक किस्म का बच्चा हो और मुझे मैंने ध्यान ना दिया हो और उसका दिल दुखा हो, तो वो शायद मैं उसके लिए रिग्रेट कभी कभी जरूर करती हूँ कि अगर मैंने कर दिया हो, मेरी नॉलेज में तो नहीं है
0: जी,
1: पर टीचर कर सकती है। देखिए
0: आपका जी, आपका हर जवाब मुझे इस यकीन की तरफ ले जाता है कि आप कितनी सुंदर, कितनी सरल और कितनी सुलझी हुई शख्सियत है मैम। बहुत बहुत अच्छा एहसास है कि कोई इतना सोचे, और बहुत बहुत अच्छा लगा ये जवाब सुन के, बहुत ही प्यारा जवाब था आपका। अब हम लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो लोग लाइफ के किसी भी फेज में थक गए हैं, रुक गए हैं, अपने आप से परेशान हैं, उनके सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जो उन्हें बाहर नहीं आने दे रहे किसी एक समस्या से, उनके लिए एक छोटा सा मैसेज, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बहुत सेंसिटिव हैं जैसा मैंने आपको समझा है, और आप ह्यूमन माइंड, ह्यूमन साइक को समझते हैं, बच्चों के साथ डील किया है, तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि इंसान कैसे कभी कभार ऐसी जगह में फंस जाता है जहां से कोई रास्ता नजर नहीं आता। तो ऐसे लोगों के लिए अगर आपका कोई मैसेज है मैम।
1: मेरे पास बिल्कुल मैसेज है। अभी तो मैंने आपको एक कविता सुनाई थी पढ़कर, उसमें तो बहुत भरपूर मैसेज था। और दूसरी बात ये कि कभी हारिए मत, आपको जीवन मिला है वो अद्वितीय चीज है, जो मतलब एक बार जब जीवन मिला है तो उसको पूरा जी के जाइए, बीच में मत छोड़िए। आपके बहुत सारे काम हैं जो आप खुद के लिए नहीं तो दूसरों के लिए जीने की सोचिए, अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने मित्रों और समाज के लिए। आप हारिए मत, बैठकर आप अगर थक चुके हैं तो बैठकर मनन चिंतन कीजिए, उसका जवाब आप ही के पास है। अगर ये सोचते रहेंगे कि अरे अब तो मेरा कुछ नहीं बचा, मैं खत्म हूँ, तो आप ये सोचिए कि जब ये सोच सकते हैं तो आप ये क्यों नहीं सोच सकते कि मैं बहुत सबल हूँ, मुझे भगवान ने हाथ पैर आंख नाक सब इतना पूरा बनाया है, मैं पूर्ण हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ।

0: तकलीफ सबके जीवन में आती है, लेकिन सब अपने मन को समझाते हैं और उन तकलीफों से बाहर निकलते हैं। जीवन को समाप्त करना कोई, मैं सोचती हूँ, कोई वो नहीं है,
1: जवाब
0: नहीं है हमारी तकलीफों का। जी बिल्कुल, हमारे ये जवाब नहीं है हमारी समस्याओं का, ये समाधान नहीं है। तो हमें कुछ भी करना, सोशल सर्विस कीजिए, लिखिए, बहुत तकलीफ में कोई सुन नहीं रहा, आपके माँ बाप भी कहते तुम गलत हो, आपके फ्रेंड्स भी कहते तुम गलत हो, तो मान लो ना कभी उनकी कि तुम गलत हो।
1: जी।
0: ऐसा थोड़ी है कि तुम इतने, तुमको पूर्ण बनाया है तो तुम्हारी बुद्धि भी पूर्ण है।
1: जी।
0: नहीं होता ऐसा। तो आदमी को खुद सोचना पड़ता है, लड़की हो, आदमी हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, बैठ के चिंतन मनन करें और अपने आप को सोचें मुझे ईश्वर ने कितना अच्छा बनाया है, मैं दुनिया का एक अनोखी वस्तु हूँ, अनोखी चीज हूँ जो मैं इस धरती पे हूँ।
1: जी।
0: नहीं तो देखिए, डॉग्स भी घूम रहे हैं, कैट्स भी घूम रही हैं, गाय भी घूम रहे हैं, लेकिन मैं क्या हूँ, मैं मनुष्य हूँ।
1: तो
0: बहुत बड़ी चीज है। अगर जिस दिन ये समझ में आ जाएगी ना, उसको ये प्रॉब्लम ही नहीं होगी कि मैं अब क्या करूँ, वो अपना रास्ता खुद ढूंढ ही लेगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, मंथन करें, आत्म मंथन करें, अपने साथ बैठ,
0: बिल्कुल आत्ममंथन करें,
1: रुक जाना नहीं, तू कहीं हार के कांटों पे चल के मिल
0: गया। बिल्कुल, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती।
1: बिल्कुल,
0: ऐसी पंक्ति है जो आजकल हर बच्चा बच्चा बोलता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल मैम, बहुत सुंदर, बहुत ही हौसले से भरे शब्द थे आपके। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हमने सिर्फ एक राइटर से बात नहीं की, हमने एक सोच, एक सफर और एक सच्ची जिंदगी को महसूस किया। कल्पना पुरोहित जी जैसे लोग ये याद दिलाते हैं कि लिखाई सिर्फ शब्द नहीं होती, वो इंसान को इंसान से जोड़ने का जरिया होती है। कल्पना जी, आपका दिल से शुक्रिया, इतनी प्यारी, इतनी सीधी, इतनी गहरी बातें हमसे शेयर करने के लिए।
0: थैंक यू तनुषा, धन्यवाद, शुक्रिया, मैं क्या बोलूं, आप इतनी प्यारी हैं कि आपको सभी अच्छे लगते हैं।
1: नहीं मैम, आप सच में बहुत प्यारे हैं और मैं बहुत लुक फॉरवर्ड करती हूं आपसे पर्सनली मिलने का इस एपिसोड के बाद। इतनी प्यारी बातें हमने की तो मैं आपको थोड़ा और जान पाई, थोड़ा और झांक सकी आप में, और बहुत ही सुंदर एक शख्सियत मुझे नजर आई। तो थैंक यू सो मच मैम।
0: थैंक यू तनुषा। अब हमारी रिकॉर्डिंग खत्म हो गई तो पर्सनल बात कर सकते हैं।
1: मैं हूं तनुषा, आपके तरानों की हमसफर। सुनते रहिए SN रेडियो, सुनते रहिए जिंदगी के रंग गीतों के संग। मिलते हैं फिर एक नए रंग, एक नई कहानी और कुछ प्यारे से गीतों के साथ। नमस्कार।

जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा, और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को।

0: सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आलोक कुमार एक नया प्रोग्राम लेकर आपसे मुखातिब हूं। इस प्रोग्राम में हम हमारे समाज के उन लोगों से बातचीत करते हैं जिन्होंने अखबार में या मीडिया में भले ही सुर्खियां न बटोरी हों, लेकिन उन्होंने अपना जीवन सुकून और आनंद के साथ जिया है। जिनके पास भले ही अकूत धन और संपदा ना हो, लेकिन उन्होंने अपना जीवन अपनी शर्तों पर जिया। इन लोगों ने भीड़ के साथ चलने की बजाय अपना रास्ता अलग बनाने की कोशिश की है। दोस्तों, इस कड़ी में आज बातचीत करेंगे सुंदर अय्यर जी से, जो एक प्रतिष्ठित फोटोग्राफर है और फोटोग्राफी इनका पैशन है। वैसे पेशे से ये एक पत्रकार रहे हैं और देश के कई बड़े समाचार पत्रों के साथ इन्होंने काम किया है। सुंदर जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार आलोक जी, और अभी सभी श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार, आभार जो आपने मुझे बुलाया अपने मंच पर। तो बताइए आलोक जी।
0: हाँ, तो सुंदर जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका ये फोटोग्राफी में किस तरह से दिलचस्पी हुई, ये शौक कैसे हुआ? क्या ये एक जर्नलिस्ट होने के नाते आपका जुड़ाव फोटोग्राफी से हुआ, या ये शौक पहले से ही था?

0: नहीं, मैं कहूंगा कि जर्नलिज्म में आने से बहुत पहले से मेरा शौक था ये, और जर्नलिज्म में तो मैं काफी बाद में आया था। ये
1: जी
0: शौक
1: जी
0: बचपन से ही था देखा जाए तो, क्योंकि शौक पहले
1: ओ
0: था, पर कैमरा मैंने पहला जरूर लिया था नौकरी करने के बाद में, पहला कैमरा तभी ले पाया था मैं। तो बस
1: ओहो
0: ये हाँ कि पत्रकारिता में मुझे इससे मदद जरूर मिली, क्योंकि मेरी समझ फोटोग्राफी को लेकर अच्छी थी। तो पत्रकारिता में, क्योंकि मैं जैसे न्यूज एडिटर हूं, तो मेरे पास दिन भर में 1,000-2,000 तस्वीरें आती हैं, उसमें से मुझे मान लीजिए 4 छाटनी हैं, तो
1: जी
0: वो
1: जी जी
0: उसमें मुझे बहुत मदद मिल गई थी, क्योंकि मुझे शौक पहले से था और मैं पहले से फोटोग्राफी कर रहा था, शौकिया कर रहा था। लेकिन
1: अच्छा, तो ये तो बड़ा दिलचस्प सवाल, मैंने नहीं सोचा था मैं पूछूंगा आपसे। आपका पहला कैमरा कौन सा था कि मुझे भी आया मेरा
0: पहला
1: पहला
0: कैमरा था पहला
1: कैमरा?
0: कैमरा, मेरी जो पहली सैलरी मिली मेरी पहली नौकरी से, तो
1: जी
0: लगभग उस पूरी सैलरी का एक मैंने कैमरा ले लिया था। उस समय आता था हॉट शॉट करके एक कैमरा,
1: हाँ,
0: प्लास्टिक
1: हॉटशॉट
0: बॉडी
1: आता था,
0: का,
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल
0: वो
1: याद है
0: मैंने
1: मुझे।
0: ले लिया था। और मैंने घर में आके बताया कि मुझे सैलरी मिली और मैंने कैमरा ये ले लिया है। तो सचमुच सच बताया तो एज ए पेरेंट मेरे पिताजी बहुत दुखी हो गए कि ये गाड़ी कैसे कैसे चलेगी, इसकी गाड़ी पहली पहली सैलरी मिली है और कैमरा लेके आई है ये। तो क्योंकि मैं बहुत पहले से सोचा हुआ था जब मैं कमाऊंगा तब मैं कैमरा लूंगा। तो उस समय कैमरा बहुत मुश्किल से मिलता था। उस समय मतलब विदेशी कैमरा बड़ा संभव नहीं था कि हर आदमी अफोर्ड कर पाए या मिल पाए,
1: बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात,
0: तो हॉटशॉट हुआ करता
1: बिल्कुल।
0: था 110 वाला, तो वो लिया था मैंने। वो 800 850 रुपए का था और सैलरी उस समय
1: जी,
0: मेरी ऐसे ही मेरी सैलरी थी 900 साढ़े 900।
1: ये जो पैशन वाले लोग होते हैं वो जुनूनी होते
0: तो
1: हैं, बिल्कुल सही
0: ये
1: बात
0: हमारे पिताजी को
1: है।
0: हमेशा लगता रहा कि हम जिस तरह से खर्च करते हैं वो पता नहीं कैसे इसकी गाड़ी चलेगी, क्या होगा इसका तो लेकिन
1: बिल्कुल
0: ठीक है,
1: सही,
0: सब चलता रहा, ऊपर वाले की कृपा रही हमेशा। हाँ।

0: बिल्कुल मुझे भी बड़ी पुरानी बात याद आ गई। मेरा पहला कैमरा गेवा बॉक्स हुआ करता था जो उस जमाने में आता था, दैट वाज लॉन्ग टाइम बैक, 67 की बात कर रहा हूँ मैं। गेवा बॉक्स है, डायरेक्ट पाया।
1: पिताजी के पास भी कैमरा था, एक कोडेक का बॉक्स कैमरा हुआ करता था, वो भी शौकीन थे थोड़ा, लेकिन हमको छूने को नहीं मिलता था वो क्योंकि ये था कि नहीं, वो बहुत ही प्रेशर उनकी वो थी, पोजिशन था।
0: अच्छा आप ये बताइए कि ये जो शौक आपके बचपन से ही लग गया था, इस पे किसी ने आपको इंस्पायर किया, कोई प्रेरणा स्रोत था आपका जिसने कहा कि भाई, जिसको देख के आपको लगा कि मैं भी फोटोग्राफी करूं?
1: हाँ लोग जी, एक तो मुझे ऐसा हमेशा लगा है कि हम टेक्स्ट के बजाय इमेजेस के प्रति ज्यादा आकृष्ट होते हैं, मतलब
0: जी
1: ऐसा
0: जी, जी,
1: जी. तो बचपन में क्या, हमारे घर में एक्सप्रेस, इंडिया एक्सप्रेस अखबार आता था इंग्लिश का, दिल्ली से आता था उस समय, मतलब दिल्ली से आता। अच्छा। था वो तो उसमें एक फोटोग्राफर, उनके चीफ फोटोग्राफर थे एस पॉल करके।
0: अच्छा,
1: एस पॉल का
0: अच्छा।
1: लोग नाम कम जानते होंगे, रघु राय को लोग जानते हैं, रघु राय के बड़े भाई साहब, बल्कि रघु राय ने उन्हीं से सीखा है।
0: ओके,
1: एस एस पॉल साहब की तस्वीरें उसमें निकलती थी हर मंडे को, ऑफ द बीट करके, मतलब फोटो ऑफ द वीक करके एक निकलती थी, वो बहुत ही
0: अच्छा।
1: और मेरा मतलब लिटरली मैं उस उम्र में भी, 10-12 साल की उम्र में भी उस मंडे का इंतजार करता था उस तस्वीर के लिए कि देखें क्या उन्होंने डाली है। तो वहां से एक तो मतलब तस्वीरों के प्रति आकर्षण बढ़ा मेरा, और फिर उसके अलावा फिल्में देखना शुरू किया जब और थोड़े बड़े हुए, तो फिल्मों में जो गाने फिल्माए जाते थे ना, एकदम बिल्कुल ही नेचर में, एकदम बादल ये झरने, तो उनसे मैं सोचता रहता था कि क्या मैं कभी जीवन में ऐसी जगहों पर जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा, पता नहीं है। उसके अलावा फिर क्या होता था कि दक्षिण भारत हम लोग हर साल जाते ही थे, एक बार या कभी दो बार भी। तो कानपुर से दक्षिण भारत की यात्रा चेन्नई की या तंजौर, जहां मैं रहता था, मतलब जहां मेरे पिताजी का घर था, दो दिन की यात्रा हुआ करती थी। और रास्ते में जो मतलब खासकर एमपी में जो बैतूल, होशंगाबाद वगैरह का इलाका है, जंगली इलाका पूरा है, जंगल से भरा हुआ, वो इतना आकर्षित करता था हमको। मुझे लगता था कि बस ऐसी जगह पे ही मुझे जाके रहना है, जैसा मतलब होता है कि वो सब चीजें मुझे बचपन से आकर्षित कर दे रही है। तो फिर वो धीरे धीरे वो दिमाग में हमेशा बना रहा, इसीलिए मैं ज्यादा नेचर के प्रति हमेशा ज्यादा आकर्षित रहा हूँ। तो तस्वीरें शुरू से देखना मेरा शौक रहा है कि भाई वहीं से मुझे मिला वो।

0: आपकी, खैर अपन बात करेंगे उसके बारे में। आपकी फोटोग्राफी में नेचर बहुत है, बहुत हर जगह है आपके, हैं जहां भी मैं देखता हूँ आप उस जगह देख। तो अब चलिए ये बताइए कि क्या आप हमें अपने फोटोग्राफी का कोई ऐसा ना भूलने वाला अनुभव बता सकते हैं, या कोई ऐसा प्रोजेक्ट आपने किया हो जो आपके लिए हमेशा के लिए यादगार बन गया हो, ऐसा कोई अनुभव?
1: देखा जाए तो फिर हर ट्रिप में बहुत ढेर सारे अनुभव होते हैं, अलग अलग किस्म के, लोगों से मिलने के, जगहों के, पर हर ट्रिप में कुछ अलग अनुभव देता है, कुछ सिखाता है आपको। है ऐसे एक कहना तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन जैसे एक चीज मुझे याद है, जैसे हम लोग महाराष्ट्र में जब हम थे, बॉम्बे में था, तो महाराष्ट्र में मेरा एक ग्रुप था फोटोग्राफी का, तो हम लोग हर हफ्ते ट्रैक पे जाते थे, जो केव्स में या किले, जितने वहां पे किले हैं बहुत अच्छे हैं, तो बारिश में ही जाते थे ज्यादातर हम लोग।
0: जी
1: एक बार मैं बहुत मतलब गलत जगह फंस गया, झरना था, मैंने उसको एक पहाड़ी पे, उस झरने को मैंने क्रॉस किया पहाड़ी की तरफ से, और क्रॉस तो कर लिया, जो फोटो वोटो खींचने के बाद मैं वापस लौटने लगा, तो मेरी निगाह अपने बाईं तरफ पड़ी, तो बिल्कुल पूरी खाई थी वो 200-250 फीट की। तो उस समय मैं इतना घबरा गया कि मुझे लगा कि अब तो मैं वापस उस पार पहुंच ही नहीं पाऊंगा शायद, है क्योंकि तो झरना बह रहा है, उसे क्रॉस करके मुझे जाना है वहां पर है। फिर मैं किसी तरह मतलब हिम्मत करके जूते उते उतार के उस तरफ फेंके, कैमरा बैग उस तरफ उछाल के फेंका, फिर मतलब क्रॉस करके किस तरह आया। लेकिन मुझे हमेशा लगा कि नहीं, ये शौक में मुझे ये भी ध्यान रखना है कि ओवर नहीं करना है कहीं पर, क्योंकि ये बहुत घातक हो सकता है। ये मतलब ऐसे एक दो घटनाएं और हुई कि जहां पर लगा कि हम अपने रॉ में बहते चले जा रहे हैं और गलत जगह पहुंच गए हैं, जहां से मतलब वापस आना या मतलब मुश्किल हो जा रहा है मेरे लिए, तो इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी। इस तरह के अनुभव बहुत सारे होते रहते हैं।
0: नहीं, बिल्कुल सही बात है, एडवेंचरस हो जाता है सारा बहुत, और चैलेंजिंग भी हो जाता
1: जी
0: है
1: जी
0: बहुत
1: चैलेंजिंग तो होता ही है,
0: कई
1: और इसका हमेशा ध्यान
0: बार।
1: रखना पड़ता है कि जो है आप जब नेचर के साथ है, नेचर क्योंकि किसी को बख्शता नहीं है, देखिए
0: बख्श देंगे
1: आपने जरा
0: बिल्कुल।
1: सी चूक की तो आपके साथ बहुत कुछ हो सकता है, फिर
0: नहीं, आजकल तो रोजाना आए दिन घटनाएं होती हैं,
1: घटनाएं
0: सेल्फी
1: होती रहती। अब
0: सहित
1: तो सेल्फी का जमाना आ गया है, तो फिर
0: सेल्फी
1: तो
0: का
1: आदमी
0: जमाना
1: और
0: है,
1: ज्यादा उसमें
0: और
1: मतलब
0: ज्यादा है,
1: वो रहता है। हाँ
0: बिल्कुल बहुत रिस्क है हर चीज में जी।
1: रिस्क रहता है बहुत। तो
0: तो अब थोड़ा सा हम डिटेल में बात करते हैं सुंदर जी, कि जहां तक मुझे लगता है आप नेचर या प्रकृति के नजारों की फोटोग्राफी अधिक करते हैं, ये हमारी बातचीत में अब आ ही गया, आपको यही क्यों पसंद है, और इन चित्रों के थ्रू आप क्या बात कहना चाहते हैं, क्यों क्यों वही नेचर ओनली?
1: हाँ नेचर, एक तो जैसे बताया कि बचपन से ही मुझे नेचर आकर्षित करता रहा है,
0: जी
1: और हमेशा हम हमेशा लगता रहा है कि नेचर सुप्रीम है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, बहुत ताकतवर चीज है ये। और एक और चीज है कि आपको बहुत सुकून देती है वो, चाहे पहाड़ हो, चाहे झरने हो, बादल हो, मतलब जो भी नेचर में आप पहुंच जाते हैं, जंगल में,
0: जी
1: तो आपको मतलब जो शहर की आपाधापी है ना, आप
0: जी
1: इससे ऊब चुके होते हैं, तो आपको लगता है कि नेचर के पास जाएंगे तो आपको सुकून मिलेगा, या मतलब। और नेचर के लिए है कि हमेशा, जैसे मैंने बताया कि फिल्में रही बॉलीवुड की, पुरानी फिल्में जो यहाँ पर कश्मीर और महाराष्ट्र वगैरह
0: कश्मीर,
1: में कुछ
0: हाँ
1: शूट
0: हाँ
1: होता
0: बिल्कुल
1: था,
0: सही,
1: है
0: हाँ
1: तो वो सब
0: महाबलेश्वर।
1: चीजें हमेशा आकर्ष करती रही हैं। कि और दक्षिण भारत की यात्राएं, जैसे मैंने बताया कि जंगल अंगल हैं, तो जैसे अभी भी मैं हाल में गया था दुधवा, तो लगता था वाकई जंगल भी क्या मतलब जैसे कई बार मैं किसी से कह रहा था कि जंगल का राजा शेर नहीं, जंगल खुद होता है वो, क्योंकि क्योंकि वो आपको जो है ना, जंगल से ज्यादा बड़ा वहां कोई नहीं है, वो चाहे वो शेर हो चाहे वो कोई भी हो। तो वो है हर चीज, मतलब मुझे नेचर हमेशा सुप्रीम लगा है कि वो। और कई बार मैं इसीलिए कोशिश भी करता हूँ अपनी कई बार पिक्चर्स में, कि आदमी को या मनुष्य को बहुत छोटा दिखाना चाहता हूं उसमें, ये खाली ये मैसेज देने के लिए कि हम लोग बहुत छोटे हैं उसके सामने, नेचर के सामने, नेचर बहुत बहुत बड़ा है, सुप्रीम है वो।

0: क्या बात कह दी आपने। ये शेर भी जंगल हर तरह से शेर से बड़ा है, अगर अकेला शेर हो जाएगा तो जंगल में घूमते ही फिरेगा, कहाँ
1: मैंने
0: जाएगा।
1: कहीं अभी लिखा भी था किसी फोटो में कैप्शन की,
0: जी
1: जंगल का राजा शेर नहीं खुद जंगल होता
0: जी, क्या बात है, क्या बात है। और तो अब थोड़ा नेचर के अलावा आप और किस तरह की फोटोग्राफी करते हैं, मतलब अलग कुछ भी इसमें कभी कभी कोशिश की है क्या आपने?
1: हाँ, नहीं बिल्कुल, जैसे ऐसा कोई मेरा, मैं किसी जोनर में बंधना तो नहीं चाहता हूँ,
0: जी
1: वो अलग बात है कि नेचर पसंद है तो मैं कोशिश करता हूँ कि नेचर के पास जाऊं, लेकिन ऐसा नहीं कि बाकी और कुछ नहीं करता हूं मैं। और सब्जेक्ट होता क्या है कि जब आप सब्जेक्ट से कनेक्ट कर पाते हैं ना, जिस सब्जेक्ट से,
0: जी
1: उसी को आप खींचना चाहते हैं, और वो
0: दैट्स
1: कनेक्ट बहुत जरूरी होता है। अगर कनेक्ट नहीं है तो फिर आप फोटो नहीं खींच पाएंगे, ये मेरा मानना है कि अच्छी फोटो
0: जी
1: नहीं खींच पाएंगे। फोटो तो खींची जाएगी लेकिन वो उस
0: हाँ
1: अच्छी फोटो नहीं हो पाएगी, आपको मतलब मन नहीं हो
0: हाँ
1: पाएगी। तो कनेक्ट मेरा मतलब नेचर से ज्यादा होता है तो मैं खींचता हूँ। जैसे जैसे मैं दक्षिण जाता हूँ, दक्षिण के जैसे मंदिर हैं, कई
0: हाँ
1: मंदिर हैं जहाँ की जो आर्किटेक्चर है वहां का, या जैसे एक कर्नाटका में चिन्नकेश्वर मंदिर में गया, चिन्नकेश्वर
0: अच्छा
1: बेलूर के पास में है, हसन डिस्ट्रिक्ट में है, तो
0: अच्छा
1: वहां की जो अद्भुत कारीगरी देख के ना बिल्कुल हतप्रभ हो गया मैं। क्योंकि अब तब तो आपको लगता है ना कि आप बहुत छोटे हैं, एक कोई व्यक्ति 1,000 साल पहले ये मूर्ति बना गया है और उसको कोई जानता भी नहीं हो कौन था वो। तो वो चीजें मुझे बहुत अट्रैक्ट करती हैं तो उनको खींचता हूँ। या जैसे बच्चे, बच्चे मेरा एक फेवरेट सब्जेक्ट रहे हैं काफी,
0: अच्छा
1: और
0: अच्छा
1: खासकर रूरल एरियाज के
0: बैकग्राउंड के
1: बच्चे। हाँ, जैसे
0: रिलेटेड।
1: यहाँ पर एक हाल लखनऊ के पास में एक मेला होता है, देवा का मेला।
0: अच्छा,
1: देवा शरीफ एक मजार है, मतलब दरगाह है, तो वहां मेला
0: अच्छा
1: हर साल में लगता है, ऐसे अक्टूबर नवंबर में लगता है। तो वहाँ गांव का ही मेला होता है, मतलब बेसिकली कैटल फेयर भी होता है वहां पर, और बहुत सारे बच्चे गांव वगैरह के आते हैं। तो
0: अच्छा
1: वो जैसे बड़े बड़े जायंट व्हील या वो सब लगे रहते हैं, तो वो जिस आश्चर्य से उसको देख रहे होते हैं, शायद उन्होंने पहली बार बच्चे ने देखा होता है उसको, तो वो मुझे उनके जो, या आइसक्रीम खाते हैं तो वो उनके जो एक्सप्रेशंस है ना, वो मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। लगता है कि बस इसको फ्रीज कर लो कहीं पर, क्योंकि वो अद्भुत है बहुत। तो बच्चे मुझे मतलब मेरा सब्जेक्ट रहे हैं
0: बच्चों के
1: तो।
0: ऊपर चेहरे पे जो कौतूहल का भाव आता है, जो
1: जी जी
0: खुशी के
1: जी
0: भाव
1: जी
0: आते
1: जी
0: हैं, जो
1: हाँ,
0: विभिन्न तरह के
1: मैंने
0: एक्सप्रेशंस
1: देवा
0: हैं
1: पर बहुत एक अच्छी
0: उनको।
1: सीरीज की थी काफी, मतलब लोगों ने पसंद भी की थी कि वहां के, वो बेसिकली बच्चों पर ही थी वो, कि वहां के बच्चे जो वहां जो आते हैं कैसे जो है वो।

0: बच्चे एक एक बच्चा था जो वो जो ऑरेंज बार खा रहा है, चूस रहा
1: हाँ
0: है, और नीचे हाथ
1: अच्छा
0: लगाए हुए कि टपक रहा है ना, जो तो उसको भी चाटता जा रहा बीच बीच में तो वो चीजें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। वो तो ऐसा नहीं खाली नेचर, लेकिन मुझे बोलता है कि आप जिससे कनेक्ट कर पाते हैं वो आपका सब्जेक्ट हो जाता है, कनेक्ट नहीं कर पाते हैं तो नहीं हो पाता सब्जेक्ट। वो कनेक्ट बहुत जरूरी है सब्जेक्ट से, वो मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग वही है।
1: जी बिल्कुल सही बात।

0: अब ये बताएं कि फोटोग्राफी की जैसे लेमैन के लिए जो हमारे
1: जी
0: श्रोता हैं वो सब बहुत ही लेमैन की भाषा में बताएं कि फोटोग्राफी की कितनी अलग अलग तरह की विधाएं हैं और इनमें क्या डिफरेंस है और क्या है ये सारा कुछ, बहुत अगर सिंपल शब्दों में कुछ हमें बस समझा सके तो।
1: हाँ, जैसे नेचर तो एक एक एक जोनर हो गया उसका ना। उसके
0: जी
1: अलावा मतलब बहुत सारे और हैं, वाइल्ड लाइफ है, पोर्ट्रेचर है, स्ट्रीट है, मैक्रो है, फूड फोटोग्राफी अलग से आजकल होती है, फोटो जर्नलिज्म तो है ही है, अब्स्ट्रैक्ट
0: हाँ
1: फोटोग्राफी अलग होती है,
0: जी
1: एस्ट्रो
0: जी
1: अलग
0: जी
1: होती है, एस्ट्रो फोटोग्राफी जो तारों और की फोटोग्राफी
0: अच्छा
1: करते
0: अच्छा
1: हैं,
0: अच्छा उसकी भी अलग है
1: मिल्की वे
0: ओके
1: की या फिर तारों के
0: ओ
1: मूवमेंट्स की है,
0: जी जी जी जी जी
1: वेडिंग
0: अच्छा
1: करते हैं लोग आजकल। तो सब मतलब बहुत अलग अलग जोनर हैं, तो होता है कि
0: अच्छा
1: किसको जो अच्छा लग रहा है। लेकिन ये होता है कि इन सबके लिए कोई एक इक्विपमेंट नहीं होता है कि एक किसी एक इक्विपमेंट से आप सारी चीजें कर लें।
0: जी जी जी
1: तो हर एक के
0: अच्छा
1: लिए इक्विपमेंट भी अलग अलग होते हैं। इक्विपमेंट क्या मतलब, बॉडी तो एक ही होती है कैमरे की, उसमें लेंसेज डिटेचेबल होते हैं, वो अलग अलग लेंसेज होते हैं हर एक के। अब वाइल्ड लाइफ खींच रहे हैं आप तो फिर लॉन्ग लेंस चाहिए बहुत, अगर आप तो मैक्रो खींच रहे हैं तो मैक्रो लेंसेज अलग आते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं, निश लेंसेज होते हैं, वो मैक्रो से खींच सकते हैं आप। तो हर एक चीज के लिए अलग लेंस है। ये होता है कि हाँ, कोई एक लेंस ऐसा नहीं होता है जिससे आप हर चीज कर सकें, ऐसा मुश्किल होता है। तो बाकी एक, लेकिन होता है कि किट लेंस आजकल आते हैं, कि जूम लेंसेज आते हैं ना, कि 18 mm से
0: अच्छा
1: लेके 100 mm तक का आ गया, तो उसमें आप काफी सारे रेंज कवर हो जाती है फोकल लेंथ। तो उसमें
0: अच्छा अच्छा
1: उसमें क्या है कि
0: अच्छा
1: आप बहुत सारी चीजें एक ही लेंस से कर पाते हैं, लेकिन तब भी उसकी भी लिमिटेशन एक होती है, हर चीज नहीं कर सकते। तो जोनर तो बहुत सारे हैं, वाइल्ड लाइफ, पोर्ट्रेचर है,
0: बहुत सारे।
1: स्ट्रीट बहुत
0: हाँ
1: लोग
0: आप
1: करते
0: बिल्कुल
1: हैं।
0: हाँ स्पोर्ट्स फोटोग्राफी ये भी बहुत कॉमन है
1: हाँ,
0: आजकल,
1: स्पोर्ट्स
0: सारी
1: की बिल्कुल,
0: ये
1: स्पोर्ट्स तो है ही, स्पोर्ट्स तो
0: स्पोर्ट्स
1: बहुत ही,
0: एथलीट
1: और
0: स्पोर्ट्स
1: स्पोर्ट्स के
0: का
1: लिए बहुत
0: बहुत।
1: ही डेडिकेटेड कैमरा आते हैं, जो
0: हाँ
1: बहुत ही फास्ट शटर स्पीड वाले होते हैं, जो उसका शटर काउंट मतलब जिसे शटर काउंट कह रहे हैं, जो फ्रेम पर सेकंड है ना, उनका बहुत ज्यादा होता है, तेज होता है वो।
0: अच्छा
1: यानी कि
0: अच्छा
1: आप
0: अच्छा
1: एक जैसे नॉर्मल कैमरा हम लोग यूज करते हैं, उसमें पता लगा 6 फ्रेम्स पर सेकंड है ना? अब आजकल
0: अच्छा
1: आते हैं 10, 12, 15 फ्रेम्स पर सेकंड, क्योंकि आपको 1 सेकंड में अगर आपने 15 फ्रेम नहीं खींचे तो आपको सही डिसिव मूवमेंट आप कैप्चर नहीं कर पाएंगे। तो जितनी देर में आप शटर दबाएंगे उतनी देर में तो मतलब वो मूवमेंट चला गया होगा ना।
0: चला
1: तो उस जो जो स्पीड उसकी है फ्रेम्स पर सेकंड की, वहां वो बहुत मैटर करती है। तो उसके लिए अलग बॉडी अलग होती है उसकी, मतलब हर एक का वही है कि अलग चीज। ऐसा नहीं कि आप बाकी से नहीं कर सकते हैं, बाकी से भी आप काम कर लेंगे वो, लेकिन हो सकता है कि वो आपको उतना बढ़िया रिजल्ट या उतना सटीक रिजल्ट आपको ना मिल
0: बिल्कुल
1: पाए। आजकल तो मोबाइल से इतना
0: प्रिसीजन।
1: ज्यादा लोग हो जाते हैं कि
0: हाँ
1: मोबाइल से ही लोग खूब अच्छी अच्छी
0: हाँ
1: तस्वीरें
0: मैं
1: खींच रहे
0: पूछूं
1: हैं।
0: पूछूं पूछूंगा आपसे। अच्छा अब वापस हम लेंस के फोटोग्राफी पे आते हैं। लेंस के फोटोग्राफी का प्रोसेस क्या है, क्या कोई खास तकनीक है या कोई विशेष इक्विपमेंट चाहिए होते हैं या क्या, आप किस तरह से तैयारी करते हैं जब इसके लिए जाते हैं?
1: लैंडस्केप के लिए तैयारी, क्या तैयारी, तो हमेशा मुझे लगता है कि आपको जनरल आइडिया तो होता ही है कि लैंडस्केप कैसा है, वहां का टेरेन कैसा है, और का वेदर कैसा वहां पर है, कितना ठंडा है। जैसे बहुत ठंडा है तो आपको डेफिनेटली थोड़े एक्स्ट्रा कार्ड रखने पड़ेंगे, क्योंकि उस समय बहुत ठंड में क्या है कि बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन हो जाती है, खत्म हो जाती है जल्दी। बहुत ठंडा अगर है तो उसको है कि एक्स्ट्रा आपके पास बैकअप बैटरीज होनी चाहिए। तो लैंडस्केप में क्या कि देखिए, सबका सबकी नजर अलग होती है, सबका नजरिया अलग होता है देखने का कोई भी चीज। हम लोग जैसे ग्रुप में जाते हैं, 10 लोग जा रहे हैं अगर ग्रुप में, लैंडस्केप तो वही है लेकिन सबने अलग अलग तरीके से खींचा हुआ उसको, और सबका ऐसा नहीं, किसी का अच्छा किसी का बुरा ऐसा नहीं होता है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि जब मैं पढ़ाता था बच्चों को फोटोग्राफी, तो मैं कहता था कि फोटोग्राफी, फोटोग्राफ दो ही तरह के होते हैं, एक अच्छा होता है, एक कम अच्छा होता है, बुरा कुछ नहीं होता है उसमें। क्योंकि क्योंकि जिसने भी खींचा है, हो सकता है कि हमें वो उतना अच्छा ना लग रहा हो सकता है, लेकिन जिसने खींचा उसको तो अच्छा लग ही रहा है ना, मतलब वो तो है ही है ना। तो इसलिए बुरा कुछ नहीं होता है, या तो एक कैटेगरी अच्छी है पिक्चर, या है कम अच्छी है थोड़ी, बस यही हो सकता है। तो सबका नजरिया अलग अलग है, सब लोग अलग तरीके से खींचते हैं। और जिसको जैसा जो मतलब कई लोग बहुत वाइड एंगल खींचना चाहते हैं, कई लोग थोड़ा सा क्लोज जाके खींचते हैं। और सबसे बड़ी वही जैसे मैंने कहा कि आपका कनेक्ट अगर बना हुआ है सब्जेक्ट से तो आप आपकी तस्वीर सुंदर होगी होगी, क्योंकि आपका कनेक्ट है उसके साथ में।
0: तो सही बात है।
2: हाँ, जरा हंस के, जरा और खिलखिला के।

0: इन सब ग्रुप्स को ज्वाइन करने में कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है,
1: जी
0: दूसरों का काम देखने को मिलता है आपको, है तो दूसरों का
1: जी
0: काम आप देखते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और उससे आप इंस्पायर भी होते हैं। किसी का अच्छा
1: जी
0: काम
1: बिल्कुल
0: देखा
1: सर,
0: तो आप उससे इंस्पायर होते हैं कि यार कितना शानदार काम किया इसने, है तो आपको अलग अलग तरीके के एक ही सब्जेक्ट पे अलग अलग नजर कैसी है ये आपको देखने को मिलता है।
1: जी
0: अब फिर
1: बिल्कुल
0: बात करते हैं, जब कभी ग्रुप में मिलते हैं हम लोग तो कभी कुछ समस्या आ रही है या कुछ भी है तो कभी कभी मतलब आपस में एक दूसरे की पिक्चर्स पे थोड़ा सा बात करते हैं कि यार इसमें ये ऐसे होता तो ज्यादा अच्छा रहता या ऐसा होता तो बहुत कुछ मतलब बहुत एक लर्निंग कर्व बहुत आपका स्टीप हो जाता है, काफी जल्दी आप सीखते हैं फिर चार लोगों से बात करके।
1: एक्चुअली एक्सचेंज ऑफ नॉलेज भी हो जाता है
0: हाँ
1: और
0: बिल्कुल
1: एक्सचेंज ऑफ
0: बिल्कुल हाँ,
1: टेक्निकल डिटेल्स भी जो आप
0: और
1: लोगों की
0: सबसे बड़ी
1: होती है
0: चीज है ना
1: वो सब।
0: दूसरों का काम देख, जैसे आजकल मैं देखता हूँ लोगों को ना जैसे कि दूसरों का काम देखने की फुर्सत नहीं है, अपना ही काम दिखाना है खाली उनको,
1: हाँ बिल्कुल
0: तो
1: सही
0: वो
1: बात।
0: एक जैसे कई बार मैं नमिता के साथ जाता हूँ कभी ये साहित्यिक गोष्ठी में, तो मैं देखता हूँ कि लोगों को अपनी कविता सुनाने का ही खाली मतलब वो है, बाकी दूसरों के सुनने का उनको मतलब
1: बिल्कुल
0: उतना पेशेंस नहीं है शायद, तो जब तक आप दूसरे का
1: बिल्कुल
0: नहीं देखेंगे काम ना तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि आप कहाँ पर खड़े हुए हैं।
1: सही
0: मतलब
1: बात
0: हम
1: बिल्कुल
0: भाई हमने फोटो खींची मुझे तो अच्छी लगेगी लगेगी, लेकिन किसी सामने वाले की और अच्छी है तो हम कैसे उसको बेटर करें, कम से कम ये दिमाग में मेरे आएगा ना। तो ये एक अच्छी चीज है कि आप ग्रुप में रहते हैं तो सीखते बहुत कुछ है आप।
1: चलिए बिल्कुल सही बात बता रहे हैं बिल्कुल। तो और इसके लिए बहुत मादा चाहिए, बहुत बड़ा दिल भी चाहिए कि दूसरे की अच्छी चीज से सीखने के लिए,
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल
1: वो
0: हाँ,
1: बहुत
0: एक तो
1: बड़ा दिल
0: दूसरे को
1: होना चाहिए
0: अप्रिशिएट करने
1: कहने के
0: का
1: लिए।
0: वो होना चाहिए। हाँ वो अगर अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं, जैसे आज जमाना हो गया ना मतलब सोशल मीडिया का हो गया है कि हमको मैंने कोई तस्वीर डाली उसमें लाइक्स कम आए तो मेरा मूड खराब हो
1: लाइक
0: गया, कुछ ज्यादा है तो ये होता है, ये जब भी हम जैसे कई बार मैं कहता हूँ कि लाइक के लिए मत डालो ना, तुम क्यों खींच रहे हो फोटो, सबसे पहले तो
1: बोल
0: यही सवाल करो ना कि हम फोटो क्यों खींच रहे हैं भाई, हम अपने लिए खींच रहे हैं, दो जो दूसरे को पसंद आ रही नहीं पसंद आ रही ये बहुत सेकेंडरी चीज है वो, मतलब मैं इरेलेवेंट तो नहीं कहूंगा लेकिन सेकेंडरी चीज है वो, प्राइमरी है कि मुझे पसंद है बस, ये प्राइमरी चीज है ये, बाकी तो बोनस है, अगर किसी को पसंद आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती है तो कोई बात नहीं। तो
1: स्वांत सुखाए जिसको कहते थे वो तो खत्म ही हो गया आजकल, तो अब तो लाइक सुखाए हो गया है बिल्कुल,
0: अब तो
1: लाइक
0: वही जैसे
1: सबके
0: हमारा ही,
1: आ
0: मैं
1: गए।
0: कई बार कहता हूँ कि मैं तो जो कुछ कर रहा हूँ अपने लिए कर रहा हूँ, किसी को पसंद आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो ठीक है
1: जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात
0: तो
1: है।

0: वो हम लोग कैमरे के बारे में, स्मार्टफोन्स के बारे में बात कर रहे थे, तो मेरा अगला सवाल यही है कि स्मार्टफोन में भी आजकल काफी एडवांस कैमरे आ गए हैं,
1: हाँ,
0: और लोग हर लोग मोबाइल से ही फोटोग्राफी करते हैं,
1: जी
0: तो क्या
1: जी
0: सलाह
1: जी
0: देने दे पाएंगे ऐसे लोगों को जो
1: हाँ
0: स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं और उनकी स्किल्स थोड़ी बेहतर हो सके, कुछ टिप्स अगर दे
1: हाँ
0: सके उनके लिए तो।
1: जैसे इक्विपमेंट क्या है ना, जैसे मैं कई बार कहता हूँ फोटोग्राफी में कि दो पार्ट है, एक साइंस पार्ट उसका, एक आर्ट पार्ट है।
0: जी,
1: साइंस का पार्ट जो है वो तो आपके जेब पर है, डिपेंड करता है, आप वन ऑफ द बेस्ट कैमरा ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास पैसा है ले लीजिए।
0: जी,
1: लेकिन आर्ट पार्ट जो होता है, जो उसका आर्ट पार्ट या एस्थेटिक्स वाला पार्ट है, वो आपको सीखना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा, वो आपको पैसे से नहीं मिल सकता है वो।

0: जी
1: आपके अंदर होना चाहिए वो है।
0: जी जी
1: अब जहां तक कैमरे की बात है कि कैमरे तो आजकल, पहले फिल्म कैमरा हुआ करते थे, तो हम लोग फिल्म कैमरा में क्या होता था
0: हाँ
1: कि 36 का एक रोल होता था, और उस समय क्योंकि कैमरा तो ले लिया आपने एक, लेकिन जो फिल्म का खर्चा है वो रिकरिंग होता था ना, आपको हर बार एक फिल्म
0: रिकरिंग
1: लेनी है और उसमें भी 36 खाली हैं, 36 है, तो आप हर शॉट को सोच के खींचते थे।
0: बिल्कुल सही बात
1: आज क्योंकि डिजिटल एरा में क्या हो गया कि कोई आपको ऐसा कोई लिमिटेशन ही नहीं है, आप ऐसे ही खींच लेते हैं 100 200 फोटो, तो यूं ही
0: हाँ बिल्कुल सही
1: मतलब
0: है
1: कोई, क्योंकि फिर उसमें क्या होता है कि आप सोच के नहीं खींच रहे ना, आप खाली खींचते जा रहे हैं। पहले जिस तरह
0: बिल्कुल
1: कि
0: सही
1: हम लोग एक फोटो खींचते थे उसका एपर्चर रीडिंग, उसके शटर स्पीड की रीडिंग, आईएसओ
0: शटर
1: रीडिंग
0: स्पीड बिल्कुल सही
1: नोट
0: बात
1: करके रखते थे कि ये मैंने ऐसा
0: हाँ
1: किया था
0: इसे
1: तो उसका रिजल्ट क्या आया है, तो वो
0: जी
1: आपको
0: बिल्कुल
1: लर्निंग होती थी वहां पर। यहाँ पर क्या है कि
0: जी
1: जब डिजिटल में क्या है कि हम बेतहाशा खींचे जा रहे हैं अंधाधुंध बिल्कुल, हाँ पता लगा मैं छत पे गया बादल देखे तो 50 फोटो ऐसे खींच दी मैंने ऐसे ही,
0: हाँ
1: तो उसमें क्या है कि हम कुछ सीख तो नहीं रहे हैं, वो बस खींचे
0: हाँ
1: जा रहे हैं, तो वो एक एक उसका मैं कहता हूँ कि उससे आपका लर्निंग उस तरह से नहीं हो पाती है। लेकिन ये जरूर है कि स्मार्टफोन वगैरह जब से आ गए हैं, ये जैसे मैंने भी हाल में मैं लद्दाख गया और
0: जी
1: उसके ठीक थोड़े दिन पहले ही मैंने एक नया फोन लिया था, अच्छा फोन, बहुत अच्छा फोन था, मुझे गिफ्ट मिला था, तो
0: अच्छा
1: मैंने देखा कि इस बार ट्रिप में, क्योंकि अब धीरे धीरे क्या है एज के साथ में बहुत बल्की इक्विपमेंट ले जाने में मुझे दिक्कत हो रही है, क्योंकि
0: जी
1: स्पॉन्डिलाइटिस मुझे है ही है, तो मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि लाइटर रहे मेरे कंधे पर बोझ, तो
0: जी
1: इस बार ऑलमोस्ट मैंने 50% पिक्चर्स स्मार्टफोन से खींची है,
0: जी
1: ऑलमोस्ट
0: अच्छा
1: फिफ्टी
0: अच्छा
1: परसेंट
0: अच्छा
1: है। और बल्कि मैंने अभी लौट के आए थे तो उसके मैंने 24 इंच के प्रिंट भी बना के देखे कि कैसा रिजल्ट आ रहा, देखें जरा ठीक
0: अच्छा
1: है। मतलब मुझे लगा कि आपको कोई उस प्रिंट, कोई होल्डिंग तो बनानी नहीं है कोई,
0: जी
1: आपको
0: जी जी जी
1: मैक्सिमम 24 इंच की, 18 इंच की या 36 इंच की बनानी होगी, उतने भर के लिए वो बहुत बढ़िया रिजल्ट दे रहा है, उसमें
0: ओके
1: कोई शक
0: ओके
1: ही नहीं है। और सबसे बड़ी चीज है
0: अच्छा
1: ईज ऑफ यूज, मतलब जो आपका
0: हाँ
1: इतना
0: मतलब
1: कन्वीनियंस है
0: इसका
1: ना उतनी, कि
0: कन्वीनियंस
1: आपको
0: है
1: भारी बिल्कुल नहीं है, आपको बस जेब में रखा और
0: ना
1: कर लिया। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो ये है कि लैंडस्केप वगैरह खींच रहे हैं तब तो ठीक है, अब जैसे आपको वाइल्ड लाइफ करना है तो स्मार्टफोन से मुश्किल होगा जरूर, क्योंकि
0: मुश्किल होगा नेचुरली
1: उसका जो एक जैसे बोलते हैं ना कि हम लोग शटर लैग होता है, मतलब कि जब आपने
0: अच्छा
1: शटर प्रेस किया और जो फोटो खींची उसके बीच में 0.00 कुछ सेकंड्स का लैग होता है, मतलब वो
0: ठीक
1: लैग
0: है
1: बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो डीएसएलआर कैमरे में नहीं होता है, वो उसमें
0: अच्छा
1: आपने द मोमेंट यू प्रेस द शटर आपकी पिक्चर फ्रीज हो गई वहीं पर, तो वो थोड़ा सा जो होता है कि वहां पर, मतलब स्मार्टफोन इन जनरल बहुत काम की चीज है और मैंने तो बहुत अच्छे से यूज किया उसको, और लेकिन ये होता है कि हाँ बहुत ऐसी जगह होंगी जहां पर आप उसका यूज उस तरह से नहीं कर पाएंगे, जैसे स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स पे थोड़ा
0: हाँ
1: मुश्किल
0: स्पोर्ट्स
1: है
0: में मुश्किल है
1: वहां पे
0: मुश्किल
1: थोड़ा
0: है
1: सा, या फिर वाइल्ड लाइफ में जहाँ बहुत जूम करना आपको
0: हाँ
1: है तो मुश्किल है,
0: रात
1: तो
0: रात पे भी नाइट विजन भी उनका बहुत उतना अच्छा नहीं होता
1: हाँ
0: मेरे
1: उतना
0: ख्याल
1: नहीं। लेकिन ये
0: ना
1: होता है कि
0: नाइट
1: अब लेकिन स्मार्टफोन अब ऐसे आ गया है कि मैं खुद जैसे मैं अभी अपने इस कैमरे का रिजल्ट देख रहा था, मैं खुद अचंभित था कि यार ये मतलब स्मार्टफोन के कारण ही संभव हो पाया है, कैमरा होता तो मुझे बहुत झंझट करनी पड़ती उसमें उस शॉट के लिए, स्मार्टफोन बहुत इजी है यूज करना उसको, तो बढ़िया है अच्छा है। और टेक्नोलॉजी ऐसी चीज है कि जो धीरे धीरे चीजें बदलती जाएंगी, अब तो एआई आ रहा है, एआई आ गया है, तो एआई में
0: जी
1: तो क्या है कि
0: बिल्कुल
1: आपको लद्दाख जाना भी नहीं है, आपको घर बैठे लद्दाख की फोटो खींच लेंगे तो आप अपने
0: लद्दाख
1: अपनी एक कोई फोटो खींची, बहुत बढ़िया सा लद्दाख का बैकग्राउंड बनाया, डाल दिया, कोई पता भी नहीं कर सकता कि ये लद्दाख में खींची गई है या आपने अपने घर में बनाई है ये,
0: जी बिल्कुल हाँ
1: तो
0: बिल्कुल
1: अब
0: बिल्कुल
1: ये इसके मतलब ये इसका प्लस भी है माइनस भी है, मतलब
0: ना बिल्कुल सही बात
1: तो
0: है
1: मतलब ये अच्छाई भी है बुराई भी है ये।
2: देखो तुमसे अच्छा

तुम जान हो तो आलम की और जान हमें पर दोगी। कभी हमने नहीं सोचा था ऐसा दिन भी आएगा, पानी में आग लगेगी, पत्थर भी पिघल जाएगा। देखो तुमसे

जलाशय के पास नदी भी खुद प्यास बुझाने आए। प्यासे के पास नदी भी खुद प्यास बुझाने आए। प्यासे के पास नदी भी खुद प्यास बुझाने आए। कभी हमने नहीं सोचा था ऐसा दिन भी आएगा पानी में।

आज है अपने दिल में वो आग उधर भी होगी, जो आग है अपने दिल में वो आग उधर भी होगी, जो आग है अपने दिल में वो आग उधर भी होगी।

0: अच्छा, जैसे अब लद्दाख की बात हमने शुरू की, आपको घूमने का और भ्रमण करने का भी काफी शौक है, तो क्या ये शौक आपके फोटोग्राफी शौक को तो सप्लीमेंट कर ही रहा है, लेकिन अब इससे रिलेटेड कोई ऐसी बात बताइए, आप कहाँ कहाँ घूमे पहले तो एक ब्रीफ में हमें ये बता दीजिए, और फिर आप बताइए कोई ऐसा अनुभव हुआ हो आपके इस घूमने के दौरान, आपको तो काफी शौक है लद्दाख पहाड़ों पे भी जाने का, समंदर में भी जाने का।
1: हाँ नहीं, जैसे अब हम लोग लखनऊ में रहते हैं, यहाँ तो उत्तरांचल नजदीक है बहुत, तो
0: अच्छा
1: उत्तरांचल की ट्रिप्स हमने बहुत की हैं, और इसलिए भी कि नजदीक है और मेरे मन का है वहां पर, जो कुछ मुझे चाहिए
0: जी,
1: नेचर है वहां पर बहुत ही सुंदर। तो लद्दाख था, लद्दाख जाने का मेरा बहुत दिनों से मन था, बहुत सालों से मन था, लेकिन जा नहीं पा रहा था किसी किसी कारण से। लेकिन जब गया तो मुझे लगा कि यार यहाँ तो बहुत पहले आना चाहिए था मुझे, क्योंकि तो अब धीरे धीरे वहां जाना मुश्किल इसलिए भी है कि वहां पर एक सर्टेन हाइट के ऊपर दिक्कत होती है ऑक्सीजन की बहुत वहां पर,
0: ऑक्सीजन जी
1: एक
0: जी
1: सर्टेन एज के बाद में आपको वहां मुश्किलें आएंगी आएंगी, पक्का आएंगी।
0: जी
1: हालांकि लकीली बाय गॉड्स ग्रेस इस बार हम लोग जब गए थे तो मुझे ऐसे कोई दिक्कत नहीं, हम लोग हालांकि पूरी तैयारी से मैं गया था, दवाइयाँ लेके
0: हाँ
1: और ऑक्सीजन सिलेंडर भी रख लिया था गाड़ी में, सब कुछ था,
0: जी जी
1: लेकिन जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन यह है कि ये ऐसी जगहों पर आपका जाना हमेशा नहीं हो सकता है, आप एक एज के बाद में आपको, अनलेस कि आप मतलब प्रोफेशनल ट्रैकर हैं तो बात अलग है, अदरवाइज आप जो कि प्लेन्स पर रहते हैं, आपके शरीर को या आपके लंग्स को उतने कम ऑक्सीजन की आदत नहीं है बिल्कुल भी है।
0: जी
1: या
0: जी
1: 100% पे परेशानी हो रही है वहां, तो मतलब 30% 40% ऑक्सीजन है खाली, जो नॉर्मल होता है
0: हाँ
1: उससे। तो आपको चलना फिरना मतलब उसी में आप हाँफने लगते हैं बिल्कुल, तो वो दिक्कतें आती हैं। तो पहाड़ मेरा हमेशा मतलब फेवरेट वो रहा है, मतलब डेस्टिनेशन। तो उत्तरांचल मैंने बहुत घूमा है काफी, जैसे उत्तरांचल में कई जगह ऐसे गए हैं, जैसे कि ट्रैकिंग भी कभी कभी हम लोग करते रहते थे बीच बीच में। तो अभी 5-7 साल पहले हम लोग गए थे बेदनी बुग्याल, एक जगह है ग्वालदम
0: अच्छा
1: के पास में, वो करीब 11,500 फिट पे है। बेसिकली एक
0: अच्छा
1: रूपकुंड का ट्रैक होता है, रूपकुंड एक जगह है, वहां का ट्रैक होता है, करीब 24 किलोमीटर का है वो ट्रैक,
0: अच्छा
1: चौबीस चौबीस 25 किलोमीटर का। उसका हाफ वे
0: अच्छा
1: पड़ता है बेदनी बुग्याल, मतलब करीब 12-13 किलोमीटर।
0: अच्छा
1: तो हम लोग गए थे, तो हम लोग हाफ तक गए थे, पूरा नहीं, इसलिए टाइम नहीं था पूरा, वो पूरा ट्रैक 8 दिन का होता है, इतना टाइम भी नहीं था
0: ओके
1: मेरे पास उस समय, तो आधा गए थे। तो वो ये ट्रैक वगैरह भी करने के लिए उत्तरांचल बहुत इजी है पहुंचना वहां पर, और
0: अच्छा
1: बेसिकली ट्रैक्स जो वहां पर हैं उतने मॉडरेट लेवल के हैं, मतलब बहुत एक्सट्रीमली डिफिकल्ट नहीं है, कोई भी आदमी थोड़ा बहुत भी फिट है चला जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब
0: अच्छा
1: 6-7 घंटे का आपको ट्रैक करना पड़ेगा, 6-7 घंटे जाके आप पहुंच गए वहां पर और फिर आ गए लौट के अगले दिन। तो उत्तरांचल मेरा फेवरेट है। बाकी आर्किटेक्चर में मैं साउथ में काफी घूमा हूँ, और नॉर्थ ईस्ट भी थोड़ा बहुत गया हूँ, मतलब एक आध प्रोजेक्ट्स पे गया हूँ मैं, और इधर लद्दाख है, बाकी तो साउथ पे काफी घूमा हूँ। साउथ में मेरा फेवरेट
0: साउथ
1: रहा है कि आर्किटेक्चर वगैरह के लिए मैं वहां जाता हूँ जरूर।
0: हाँ, बिल्कुल सही बात है।
2: है।

0: अब थोड़ा सा करते हैं। आपकी पत्नी भी साहित्यिक गतिविधियों में काफी व्यस्त रहती हैं, कैसे
1: जी जी
0: सपोर्ट करते हैं आप उनको? क्या उनके साहित्यिक पैशन से आपको अपनी फोटोग्राफी में कोई सहायता मिलती है?
1: हाँ, जैसे सहायता क्या, जैसे होता क्या है कि एक तो एक बहुत कॉम्प्लीमेंट्री सा हो जाता है हम दोनों का, क्योंकि जैसे मुझे साहित्य की समझ है, मैं साहित्यकार तो नहीं हूँ लेकिन साहित्य की समझ मुझे है ठीक,
0: जी
1: और
0: जी
1: ऐसे
0: जी
1: ही उसको जो है फोटोग्राफी की समझ है, क्योंकि जैसे
0: अच्छा,
1: मैं हर पिक्चर पहले, सबसे पहले तो मेरी मतलब व्यूअर वही
0: आप
1: होती है,
0: उन्हीं के
1: उसको
0: लेते
1: दिखाता हूँ,
0: होंगे। हाँ हाँ
1: नहीं
0: हाँ वही
1: उसको ही
0: आप।
1: दिखाता हूँ कि कैसी है
0: अच्छा
1: पिक्चर ये बताओ, मतलब जो भी कमियां नहीं
0: अच्छा
1: है तो बताओ उसमें क्या, तो वो ठीक से बहुत अच्छे से उसको बताती है कि क्रिटिक सही देती है कि इसमें क्या कमी है क्या अच्छा है,
0: अच्छा अच्छा
1: तो
0: अच्छा वेरी
1: ये
0: गुड।
1: थोड़ा कॉम्प्लीमेंट्री हो जाता है कि हमको समझ उसके साहित्य की, जैसे कविता वो भी लिखेगी तो मुझे बताएगी कि देखो ये कैसी है, मैं बताऊंगा कि ये शब्द मुझे समझ में नहीं आ रहा है, शब्द थोड़ा चेंज कर सकती हो तो ठीक है, मतलब ये आपस में वो होता है। बाकी
0: चलता
1: साहित्यिक गोष्ठियों वगैरह में मेरी कोई, मैं लिखता तो हूँ नहीं ज्यादा, बहुत कमी, वो भी
0: है।
1: अपने लिए लिखता हूँ, लिखता भी हूँ तो मतलब कभी छपवाने के लिए नहीं लिखता हूँ, लेकिन गोष्ठियों वगैरह में कभी कभी चला जाता हूँ उनके साथ में, तो ऐसे बैठ के सुनता हूँ बाकी
0: नहीं
1: तो
0: नहीं ये आप दोनों क्रिएटिव लोग हैं, ये बहुत बढ़िया बात है। तो

0: तो सुंदर जी, कोई चलते चलते कोई सलाह आप नए फोटोग्राफर्स के लिए देना चाहते हो, या कोई टिप देना चाहते हो, कोई भी ऐसी बात, संदेश आप देना
1: नहीं,
0: चाहते हो, तो उसका स्वागत है।
1: संदेश वगैरह कोई, मैं इतना बड़ा फोटोग्राफर तो नहीं हूं, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि जो नए बच्चे आते हैं, जैसे मैंने 5 साल करीब एक यूनिवर्सिटी में यूजी और पीजी के बच्चों को फोटोग्राफी और विजुअल
0: अच्छा
1: कम्युनिकेशन
0: अच्छा
1: सब्जेक्ट
0: अच्छा
1: पढ़ाया यहाँ पर।
0: ओहो
1: हाँ, मतलब जर्नलिज्म छोड़ने के बाद में
0: हो
1: मैंने फिर यही किया था कि फोटोग्राफर से जुड़ा
0: अच्छा
1: ही काम करूंगा। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी, वहां पर मैं एसोसिएट प्रोफेसर था करीब 5-6 साल। मैं गया था,
0: अच्छा
1: जैसे मैं
0: अच्छा
1: काफी बीएचयू में और भी कई यूनिवर्सिटी में मैं गेस्ट फैकल्टी रहा हूँ कई जगह, लेकिन
0: अच्छा
1: फिर
0: अच्छा
1: यहाँ पर भी
0: अच्छा
1: गेस्ट फैकल्टी था तो उन्होंने कहा फुल टाइम आ जाइए। तो मैंने कहा ठीक है। अच्छा, तो उनका पूरा सेटअप करना था, स्टूडियो वगैरह पूरा बनाना था उनका, तो
0: अच्छा
1: मैंने
0: अच्छा
1: कहा
0: अच्छा
1: ठीक है।
0: अच्छा
1: तो फिर वो सारा कुछ किया, धीरे धीरे करते करते 5 साल बीत गए। तो वहां पर तो जैसे जब मतलब बच्चे जब होते हैं तो आपको लगता है ना कि हाँ ठीक है कि चलिए। तो उनको, बच्चों को मैं हमेशा बोलता था कि देखो, पहली चीज तो ये कि खुद से सवाल कर लो ना कि तुम तस्वीर खींचना क्यों चाहते हो।
0: अच्छा
1: तो मतलब आप मतलब पर्पस क्या है इसका है, तो क्यों खींचना चाहते हो, मतलब तुम्हें तस्वीर पसंद है या क्योंकि आज की पीढ़ी मुझे लगता है ना वो हमारी पीढ़ी से ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो
0: अच्छा
1: ज्यादा शार्प है और उसके पास सुविधाएं भी हमसे ज्यादा हैं जो हमारे पास थी उस समय, है ना। बस मैं हमेशा कहता हूँ कि तुम्हें थोड़ा सा धैर्य कम है शायद, मुझे ऐसा लगता है।
0: ओके
1: तो अगर वो पेशेंस थोड़ा सा हो जाए तो तुम लोग तो कमाल कर सकते हो, तुम्हारे पास सब कुछ तो
2: जिंदगी के रंग हजार। दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे, आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना ना भूलिएगा।

0: दोस्तों, आप हैं आप ही के दोस्त समीर के साथ 90.8 FM रेडियो टांटिया भील, आपके झाबुआ की आवाज पर। तो दोस्तों, लीजिए शुरू करते हैं गजलों का ये महकता हुआ प्रोग्राम आज शाम।
1: धीरे धीरे हर शम बुझी रफ्तार।
0: गजलों की इस शाम के प्रोग्राम में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो राइटर शायरा हमारे साथ प्रोग्राम में हैं, उनका नाम है डॉक्टर दुर्गा सिन्हा जी। डॉक्टर दुर्गा सिन्हा जी बनारस से हैं और BHU में मनोविज्ञान विभाग की लेक्चरर थी। अभी ये बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं, लेखिका हैं, इनकी तमाम किताबें अमेज़न पर भी हैं और हिंदी साहित्य की सेवा में लगी हुई हैं। अभी डॉक्टर दुर्गा सिन्हा US में हैं और हमारे साथ हमारे इस प्रोग्राम में हैं। मैम, आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारे प्रोग्राम में आए।
2: जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
0: आपका स्वागत करते हुए मैम, बस एक सबसे पहला मासूम सा सवाल पूछना चाहूंगा आपसे, इससे पहले कि हम आपके लेखन के बारे में बात करें, कि आपका आप बचपन में क्या बनना चाहते थे मैम?
2: मैं बचपन में ऐसा कोई खास सपना नहीं था, पर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पिताजी जो सिविल सर्विसेज में थे, वो ही रिटायर्ड एज कलेक्टर, तो उनका मानना ये था कि लड़कियों को टीचिंग में जाना चाहिए। तो शुरू से ही मन में भरा था कि यूनिवर्सिटी के लेक्चरर बनना चाहिए तुम्हें। तो एक मन में फीलिंग थी कि हाँ, मैं, उनका मानना यह था कि बच्चों के साथ रहोगे तो कभी बुजुर्गियत नहीं आएगी, और मुझे लगता है उनकी बात बहुत सच थी। आज भी मैं अपने आप को उन्हीं बच्चों के स्तर का ही महसूस करती हूँ मन से, उनके साथ रहकर।
0: बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दुर्गा मैम। अब मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपनी पहली गजल सुनाएं जो हमारे श्रोताओं के लिए मैं समर्पित करना चाहूंगा, प्लीज मैम।
2: जी जी, जरूर। तो जैसा मैंने कहा कि मैं मनोविज्ञान के अध्यापिका तो नहीं कहूंगी, मैं विद्यार्थी ही रही हूँ और आज भी विद्यार्थी ही हूँ मैं, और साहित्य को भी मैं सीख रही हूँ। तो मेरी पहली गजल जो मैं सभी को समर्पित करती हूँ, कि हमें अपने आप को पहचानना बहुत जरूरी है, तो इसका उन्वान ही मैंने रखा है, जरूरी है।
0: जी।
2: खुद से खुद की अपनी पहचान जरूरी है, खुद से खुद की अपनी पहचान जरूरी है। अपने इस जीवन में अरमान जरूरी है।

है, खुद से खुद की अपनी पहचान जरूरी है। धर्मों में बटकर हम सीमित होते जाते, मंदिर में पूजा मस्जिद में अजान जरूरी है, खुद से खुद की अपनी पहचान जरूरी है। हम ऊपर

0: खुद से खुद की अपनी पहचान जरूरी है। मुफलिस इतने देखे मुश्किल से जीते हैं, उन सब का ही अब तो उत्थान जरूरी है। खुद से खुद की अपनी पहचान जरूरी है।
1: बहुत खूब।
0: दिन रात यहाँ कटते हंसते गाते रोते, सबके ही होठों पर मुस्कान जरूरी है। अभिमान उदार हमें अपने इस जीवन पर, उदार मेरा तखल्लुस है, अभिमान उदार हमें अपने इस जीवन पर, हर जीवन का अब तो सम्मान जरूरी है। खुद से खुद की अपनी पहचान जरूरी है। खुद को पहचान ले तो हमें लगता है कि दुनिया में किसी तरह की कोई मुश्किल, कोई समस्या ही नहीं रहेगी।
1: बहुत खूब, बहुत सुंदर बात कही, बहुत सुंदर बात कही मैम आपने
0: जी,
1: कि अगर हम खुद को पहचान लें तो इस दुनिया में कोई तकलीफ रहेगी ही नहीं।
0: बिल्कुल, हम दूसरों की जगह अपने को रख करके देखना शुरू कर सकेंगे और फिर वो नहीं करेंगे जो हमें सचमुच नहीं करना चाहिए।
1: बहुत बढ़िया। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपने किसी पसंदीदा गजल गायक की कोई गजल हमें बताएं जो हम अपने दोस्तों को सुनवा सकें।
0: मैं देखिए, मैं बहुत सारे बेगम अख्तर, गुलाम अली, नुसरत फतेह अली खान और मीना कुमारी, इन लोगों की गजलें हम लोग बहुत सुनते थे और सुनते रहते हैं। मुझे मीना कुमारी जी की गजल एक बहुत प्रिय है, यूं तेरी गुजर से दीवानावार गुजरे, अगर आप सुनाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपका हुक्म सर आंखों पर। मैम आइए दोस्तों सुनते हैं मीना कुमारी जी की ही गाई हुई ये प्यारी सी गजल।

0: आगे बढ़ते हैं मैम, और आपसे बस छोटा एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा कि आपका सबसे पसंदीदा खाना क्या है और क्यों?
1: बड़ा कठिन सवाल है।
0: कठिन? ये तो बहुत ही आसान होना चाहिए।
1: मुझे सब चीजें पसंद है
0: जी,
1: और इसका श्रेय मैं देती हूँ कि मुझे 7 साल हॉस्टल में रहने का सुअवसर मिला है
0: जी।
1: तो हॉस्टल में रह करके जो भी मिलता था वो हमें खाना जरूर, और उस जमाने के हॉस्टल में आपको पता है जब मैंने पढ़ाई की तो 1961 में मैं 11th में हॉस्टल में चली गई थी कक्षा में, तो उस समय का ये था डिसिप्लिन अनुशासन दूसरे ही प्रकार का था, आज के तरह का नहीं था। तो सब चीजें खाना है और सब चीजों को लेना है और खाना भी है
0: जी।
1: तो वहीं से टेस्ट डेवलप हुआ सब चीजें, बस मिठाई कम, नमकीन चाट पकौड़े और ये सब चीजें ज्यादा पसंद है जो हमें लगता है कि महिलाओं को पसंद भी आती है
0: जी। तो बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया आपने, बिल्कुल सही कहा, बहुत बहुत बहुत अच्छा। तो दुर्गा मैम, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपना अगला कलाम हमें सुनाएं।
1: जी मैं अपनी अलग तरीके की बात कहती हूँ कि गजल मैं लिख रही हूँ, बस अपने गजल है कि नहीं है, नज्म है, क्या है, बहुत ज्यादा मैं उन बंदिशों में नहीं घूमती हूँ, मैं अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करती हूँ। हो सकता है मैं गजल के पैरामीटर पर ना भी खरी उतरूं,
0: कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने बिल्कुल सही फरमाया, आपकी भावनाओं का ही आदर होना चाहिए
1: जी।
0: जी
1: तो मैं एक अपनी मनपसंद गजल पेश करती हूँ
0: जी।
1: खूबसूरत गजल लिख रही हूँ, आशिकी की पहल लिख रही हूँ।

की फजल लिख रही हूँ, खूबसूरत गजल लिख रही हूँ।

दोस्ती की नजल लिख रही हूँ, खूबसूरत गजल

दे, चाहतों से संभल लिख रही हूँ, खूबसूरत गजल लिख रही हूँ। कौन जाने मुकद्दर में क्या है, आज तो मैं गजल लिख रही हूँ, खूबसूरत गजल लिख रही हूँ। अंतिम बंद है।

0: मैं नकल लिख रही हूँ, खूबसूरत गजल लिख रही हूँ, आशिकी की पहल लिख रही हूँ। शुक्रिया।
1: बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत ही सुंदर गजल, बहुत ही सुंदर गजल।
0: ये आपको अच्छी लगी?
1: तो आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा दुर्गा मैम कि अपने किसी पसंदीदा गजल गायक की कोई गजल बताएं जो हम अपने दोस्तों को सुनवा सकें।
0: तो आप गुलाम अली साहब की गजल सुनवा दीजिए। मैं तो गुलाम अली जी की तो सभी गजलें बहुत प्रिय हैं
1: जी, फिर भी कोई खास गजल?
0: चुपके चुपके।
1: जी बिल्कुल ठीक। आइए दोस्तों सुनते हैं डॉक्टर दुर्गा मैम की फरमाइश पर गुलाम अली साहब की गाई हुई ये प्यारी सी गजल।

0: बहुत खूब, बहुत ही सुंदर गजल। दुर्गा मैम, आपका सबसे पसंदीदा रंग कलर कौन सा है और क्यों?
1: मेरा पसंदीदा कलर लाल है
0: जी
1: और ऑरेंज भी है, पर लाल इसलिए पसंद है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि प्रेम का रंग है लाल,
0: जी
1: तो रेड कलर मुझे बहुत भाता है।
0: बहुत खूब, बहुत सुंदर। तो आगे बढ़ते हुए मैं फिर से आपको, आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा, आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि एक और गजल हमारे दोस्तों के लिए सुनाएं।
1: जी, मैंने जैसा अभी कहा आपको कि मैंने देहदान किया है, और मैं ये मानता हूँ कि देखिए ब्लड डोनेशन बहुत लोग करते हैं, रक्तदान देते हैं, धन दान देते हैं, विद्यादान देते हैं, और तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि देहदान हम जलाकर राख कर देते हैं अपने शरीर को, इससे बेहतर जिन्हें जरूरत है उनको हमारे देह से, अगर जो भी शरीर का अंग हमारा सही है वो उनको मिल जाए और उनको जिंदगी मिल जाए तो बहुत ज्यादा लाभ होगा समाज को। और हमने एक लेक्चर भी सुना मेडिकल कॉलेज में जाकर, तो उन्होंने जो बातें हमें विस्तार से बताई, हमें लगा कि हमारे शरीर में पढ़ने के लिए अगर हम कॉलेज को ही दे दें शरीर को तो वो ज्यादा उपयोगी बन पड़ेगा। अब ईश्वर कैसा रखेगा अपने शरीर को नहीं पता, लेकिन ये है कि हम कोशिश करें कि हम स्वस्थ रह सकें और हमारे मरने के बाद भी हम काम आ सकें समाज के लिए।
0: बहुत सुंदर।
1: उसी भाव को लेकर मैंने एक गजल लिखने की कोशिश की है, आशा है आप सभी को पसंद आएगी।
0: जी इरशाद।
1: अरमान अपने जीने का, अरमान अपने जीने का किया कीजिए, अरमान अपने जीने का किया कीजिए, खुद के लिए भी थोड़ा थोड़ा जिया कीजिए, खुद के लिए भी थोड़ा थोड़ा जिया कीजिए। माना के दोस्ती में, माना के दोस्ती में कोई गैर नहीं है।

0: अरमान अपने जीने का किया कीजिए। हर दान से बढ़कर है, हर दान से बढ़कर है देह दान आज अब। हर दान से बढ़कर है देह दान आज अब। कुछ इस तरफ भी सोचिए, कुछ किया कीजिए। अरमान अपने जीने का किया कीजिए। माना उदार हमने देखा नहीं रब को। माना उदार हमने देखा नहीं रब को। फिर भी उसी की चाह में ही जिया कीजिए। अरमान अपने जीने का किया कीजिए। खुद के लिए भी थोड़ा थोड़ा जिया कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं ये मानती हूँ कि खुद के लिए जीना मतलब अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, तभी तो आपका शरीर दूसरे के लिए काम आ सकेगा।
1: बिल्कुल ठीक फरमाया मैम आपने, बहुत बहुत ही सच्ची और सीधी सी बात कही। आपकी इस गजल से पहले जो आपने बताया कि आपने देह दान किया है, मुझे बहुत गर्व है, बहुत खुशी है इस बात की कि आप जैसे प्रबुद्ध लोग, आप जैसे सीनियर लोग हमारे समाज के, इतनी समझदारी से ये फैसला ले रहे हैं। जबकि हमारे ही समाज में बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग जिन्होंने पीएचडी कर रखी है, जिन्होंने पता नहीं पीएचडी से भी ऊपर कुछ कुछ पढ़ाई कर रखी है।
0: पीएचडी तो मैंने भी कर रखी है, पर
1: लेकिन आपने समझदारी से उस पढ़ाई को गुना है ना, अपनी जिंदगी में उतारा है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं उनसे करबद्ध माफी मांगते हुए कि जो पढ़ तो बहुत लेते हैं, समझदार नहीं होते। कहीं पर मैंने एक पढ़ा था और मुझे बहुत पसंद आता है वो जुमला, और मैं अक्सर देता रहता हूं कि बहुत सारी पढ़ाई लिखाई समझदारी की निशानी नहीं होती। लॉट ऑफ एजुकेशन इज नॉट अ गारंटी ऑफ विजडम। तो छोटे छोटे दकियानुसी विचारों वाले लोग जो बड़े बड़े पीएचडी करके बैठे होते हैं, बहुत ही तकलीफ पहुंचाते हैं। बहुत ही आहत होता हूं मैं जब मैं देखता हूं कि इतना पढ़ा लिखा आदमी इतनी छोटी बात कर रहा है, बड़ा दुख होता है। चलिए जाने देते हैं मैम, उनकी जिंदगी उनके सहारे, हमारी जिंदगी हमारे सहारे। आपने देहदान करके एक मिसाल कायम की, आज की जनरेशन को बताया कि किस तरीके से हम हमेशा इस दुनिया के काम आते रह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो मैं आपसे फिर से गुजारिश करूंगा कि अपने किसी पसंदीदा गजल गायक की कोई गजल बताएं।
0: पसंदीदा गजल गायक के, मैं तो फिर मीना कुमारी को ही दूंगी
1: जी।
0: आवाज, चांद तन्हा है आसमां तन्हा।
1: बहुत खूब, बहुत ही प्यारी गजल। आइए दोस्तों सुनते हैं ये प्यारी सी गजल मीना कुमारी जी की गाई हुई।

0: बहुत ही सुंदर गजल। मैम, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए एक छोटा सा सवाल, अगर मैं किसी को आपके बारे में बताऊं तो आप क्या चाहेंगी कि मैं आपका परिचय उनको कैसे दूं?
1: बस मैं एक सामान्य गृहिणी हूं और परिवार से प्रेम करती हूं, केवल अपने परिवार से ही नहीं, मैं पूरा विश्व मैं परिवार मानती हूं। अपने देश अपने भाषा के लिए मैं कार्यरत हूं और ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूं कि मैं सतत जो उद्देश्य लेकर चल रही हूं अपने जीवन में, उस उद्देश्य में सफल हूं और सक्रिय रहूं, अनवरत सेवा कर सकूं अपने समाज की, देश की, विश्व की, क्योंकि मैं अपने को केवल भारत का ही नहीं कहती हूं, पूरे विश्व। हम इंसान हैं तो इंसान हम सीमित नहीं है, हमारा विशाल हृदय होना चाहिए। और शायद उदार जो नाम है हमारा, हालांकि उदार में परिवार के ही लोगों के नाम है, उन्हीं अक्षरों से मिलकर ये मेरा तखल्लुस मैंने रखा है, पर इतना छोटा नहीं है परिवार मेरा, मेरा परिवार पूरा विश्व है। तो व्यापकता विशालता अपने हृदय में लेकर चल रही हूँ, तो मैं ये चाहती हूँ कि लोग भी इसी तरह से मुझे जाने कि पूरे विश्व को जो परिवार मानकर चल रहे थे, ऐसी एक महिला जिन्होंने अपनी भावनाएं जो अभिव्यक्त भी की है, मैंने आप देख रहे होंगे कि मैं अकेले किसी एक व्यक्तिगत भाव को लेकर नहीं, समग्रता के भाव को लेकर मैं लिखने की कोशिश करती हूँ।
0: जी बहुत खूब, बहुत सुंदर। मैम, मैं गुजारिश करूंगा कि एक गजल और सुनाएं हमारे श्रोताओं के लिए।
1: ठीक है, सुनाती हूँ मैं। मैंने अभी मीना कुमारी जी की गजल चांद तन्हा आसमां तन्हा की फरमाइश की आपसे, तो आप इसको उसके साथ संलग्न कर सकते हैं। कोई खुशी नहीं थी तेरी आशिकी से पहले,

धड़का नहीं था दिल भी, दिल की लगी से पहले कोई खुशी नहीं थी, खुद को ही जानती थी, खुद को ही मानती थी, खुद को ही जानती थी, खुद को ही मानती थी, मैं भी तो मैं कहाँ थी, तेरी दोस्ती से पहले कोई खुशी नहीं थी। अल्फाज बोलते हैं जब से मिली हूँ तुमसे, अल्फाज बोलते हैं

पहले कोई खुशी नहीं थी, है हजार ऐब उसमें, इंसान खुदा नहीं है। हजार ऐब उसमें, इंसान खुदा नहीं है। वो खुदा बनेगा कैसे, वो खुदा बनेगा कैसे, बने आदमी से पहले कोई खुशी नहीं थी। अंतिम बंद है। मेरी बंदगी ने तुझको अबूदार खुदा बनाया, मेरी बंदगी ने तुझको अबूदार खुदा बनाया, तू भी खुदा कहाँ था, तू भी खुदा कहाँ था।

0: यही थी। शुक्रिया।
1: बहुत सुंदर, बहुत खूब, बहुत ही बेहतरीन गजल। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।
0: शुक्रिया, बहुत बहुत आपका।
1: अब मैं फिर से गुजारिश करूंगा कि अपने किसी पसंदीदा गजल गायक की गजल बताएं जो हम अपने दोस्तों को सुनवा सकें।
0: गुलाम अली साहब की आवारगी।
1: बहुत खूब, बहुत ही प्यारी गजल। आइए दोस्तों सुनते हैं गुलाम अली साहब की ये प्यारी सी गजल। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपका बहुत बहुत आभार। आपकी गजलें हमने सुनी, आपसे बातचीत हमने की, श्रोताओं ने आपके इतने सालों के अनुभवों का लुत्फ उठाया, उसका फायदा लिया। आपके आपने जो एक मिसाल कायम की है देह दान करके, अपने समाज को सिखाया है कि किस तरह से हम रूढ़ीवादी सोच को छोड़कर समाज के लिए चाहें तो कुछ ना कुछ कर ही सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब
0: जी। और अगर आप इजाजत दें तो एक संदेश
1: जी, जरूर जरूर जरूर जरूर,
0: शायद ये आखिरी गजल होगी।
1: जी जरूर जरूर इरशाद। जी जी जी,
0: तो मैं ये चाहती हूँ कि सब लोग जीवन में देखिए, परेशानियां और संघर्ष के बिना तो जीवन नहीं है
1: जी।
0: लेकिन अगर आप, जैसा मैंने कहा कि पहले तो खुद को पहचाने, और पहचान करके संघर्षों में भी अगर हम गुनगुनाते रहें, मुस्कुराते रहें, और उन परेशानियों को बहुत ज्यादा दिल से न लगाएं, कोशिश करें उन पर एक तरह से उनको दूर करने की और उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित न होने की, तो हम बड़े बहुत खुश रह सकते हैं। और हम जब खुश रहते हैं तो हमारे आसपास का वातावरण भी खुश रहता है। आप दुखी तो आप उस दुख की जो भावना है वो उसका ही संचार और प्रसार कर रहे हैं आपस में, जो भी आपके संपर्क में आता है। आप अगर मन से प्रसन्न हैं, खुश हैं, खुश रहने की कोशिश, किसके जीवन में दुख नहीं है? कौन अस्वस्थ नहीं होता है? शरीर से अस्वस्थ होता है, मन से अस्वस्थ होता है। लेकिन कोशिश हमारी अगर हो कि हम समय दें थोड़ा सा उसको, कि समय के प्रवाह में धीरे धीरे वो सुख जब नहीं रहता है तो दुख भी नहीं, क्यों रहेगा, दुख भी नहीं रहेगा। तो मैं एक छोटी सी संदेशात्मक आप कह सकते हैं, गीत गाए नहीं तो किया कुछ नहीं। गीत गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, यही संदेश है। गीत गाए नहीं तो किया कुछ नहीं, गीत गाए नहीं तो किया कुछ नहीं, मुस्कुराए नहीं तो मिला कुछ नहीं। हर सपन की अधूरी सी एक रात है, हर सपन की अधूरी सी एक रात है, स्वप्न आए नहीं तो हुआ कुछ नहीं। सपना देखिए, ख्वाब देखेंगे वही पूरे होंगे। स्वप्न आए नहीं तो हुआ कुछ नहीं, गीत गाए नहीं। जिन अंधेरों से डरते रहे उम्र भर, जिन अंधेरों से डरते रहे उम्र भर,

हौसला कुछ नहीं, गीत गाए नहीं तो किया कुछ नहीं। ओ कुछ तो हमसे कहो, क्या सुनाए तुम्हें, कुछ तो हमसे कहो क्या सुनाए तुम्हें। अनकहा कह दिया पर कहा कुछ नहीं, गीत गाए नहीं तो किया कुछ नहीं। उसने सब कुछ दिया जो न मांगा उधार, उसने सब कुछ दिया जो न मांगा उधार, उसकी रहमत से बढ़कर दुआ।

ला कुछ नहीं। और ये संदेश मैंने इसलिए दिया क्योंकि आपको मैं बताऊं, मनोविज्ञान के विद्यार्थी हूं, तो 1970 में मैंने BHU के एफिलिएटेड कॉलेज में एज ए लेक्चरर ज्वाइन किया और तब से मैं काउंसलिंग भी कर रही हूं। जीवन में जिनके संघर्ष है, परेशानियां हैं, मुश्किलें हैं, उनको थोड़ा सुलझाने की कोशिश करती हूँ जो मुझ पर भरोसा करते हैं। तो मैं यही कहती हूँ ना कि कुछ तो हमसे कहो, क्या सुनाऊं तुम्हें, जो आपकी परेशानी है, जो आपकी समस्या है, मुझ तक पहुंचाइए, मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपकी परेशानियों को कम कर सकूं। और मेरी कोशिश तब से आज तक जारी है, यहाँ रह करके भी, अभी मैं 3 साल ही हुए हैं अमेरिका आए, यहाँ भी मैं हमारे 3 ऐसे व्यक्ति हैं जिनके, जो मेरे संपर्क में हैं, यहाँ

0: विदेश में रहने वाले हमारे साथी कह लीजिए कि जिनको जरूरत है और वो बात करते हैं, तो हम लोग ऑनलाइन बहुत से, आजकल तो ये डिजिटल वर्ल्ड ने दुनिया छोटी कर दी है, ऑनलाइन हम लोग बहुत सी समस्याओं का समाधान भी करने की कोशिश करते हैं। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अवसाद में डूबने से अच्छा है कि अपने अंदर झांक कर अपने हौसले को, अपनी शक्तियों को पहचानिए और बढ़ाने की कोशिश कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।
1: बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका आशीर्वाद, आपके संदेश हमने सुने, सारे श्रोताओं ने सुने, बहुत लाभान्वित हुए वो। आपका बहुत बहुत आभार कि आप हमारे प्रोग्राम में आए।
0: बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इस योग्य समझा कि मैं कुछ, मेरी जो मेरे शब्द हैं उन शब्दों का कुछ प्रभाव पड़ेगा लोगों पर। ईश्वर ने चाहा तो जरूर उससे लोग लाभान्वित होंगे।

दोस्तों आज शाम गजलों के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल नई गजलें लेकर मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा आपके पास। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं।

0: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
1: नमस्कार साथियों, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेतीबाड़ी में। और अब हमारे किसान साथी इंतजार कर रहे हैं क्योंकि अब हल्की फुल्की बारिश स्टार्ट हो गई है और मध्यम गति से ये बारिश हो रही है, रिमझिम बारिश हो रही है। मौसम विभाग क्या कहता है इस पर आज नजर डालेंगे। साथ साथ में साथियों आपको बता देना चाहते हैं कि आज के हमारे इस कार्यक्रम में आज हम काफी विषयों पर बातचीत करने जा रहे हैं, जैसे कि कपास की खेती। चूंकि अगर देखा जाए झाबुआ जिले को देखा जाए तो यहाँ पर कपास की खेती का विशेष ध्यान दिया जाता है, किसान विशेष तौर पर इस खेती को करते हैं। कौन सा बीज होना चाहिए, कैसे इसको करना चाहिए, उस पर चर्चा करेंगे। साथ साथ में मधुमक्खी पालन एक अच्छा व्यवसाय है तो हमारे किसान साथी इसको भी, मधुमक्खी पालन भी हमारे किसान साथी कर सकते हैं। साथ साथ में सफल किसान की कहानी पर भी हम एक नजर डालेंगे। लेकिन इन बातों से पहले हम साथियों आपको बता देना चाहते हैं कि भारत का मौसम विभाग इस बार का क्या कहता है। दक्षिण पश्चिम मानसून जिसकी उत्तरी सीमा पोरबंदर, बड़ौदा, शिवपुरी, रीवा, चक्र से होकर गरज रही है और प्रदेश के चंबल संभाग के जिले तथा ग्वालियर, दतिया, नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, उज्जैन, आगरा जिलों को छोड़कर प्रदेश के शेष जिलों में आ चुका है मानसून। आज अगर बात करें कि पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के नर्मदापुरम और भोपाल संभागों के जिलों में अधिकांश स्थानों पर शहडोल, जबलपुर, सागर, ग्वालियर एवं उज्जैन संभागों के जिलों में अनेक स्थानों पर रीवा, इंदौर एवं चंबल संभागों के जिलों में कुछ स्थानों पर वर्षा दर्ज की गई है। वर्षा के प्रमुख आंकड़े अगर देखा जाए तो छपारा, गोहरगंज, नागदा, पचौर और परसवाड़ा, अनूपपुर, बहोरीबंद, देवेंद्र नगर, गुलाबगंज, रायसेन, खाच रोड और नर्मदापुरम में 5 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान ग्वालियर संभाग के जिलों में काफी गिरे और शेष संभागों में जिलों में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। ग्वालियर संभागों के जिलों के सामान से विशेष रूप से कम है और सागर संभागों के जिलों में सामान्यता काफी कम, इंदौर और उज्जैन संभागों में सामान्य, रीवा, शहडोल और जबलपुर संभागों के जिलों में सामान्य से कम और शेष संभागों में जिलों में सामान्य वर्षा हो रही है। आपको बता देना चाहते हैं कहां पर किस तरीके की बरसात होने की संभावना बताई जा रही है। मौसम विभाग क्या कहता है, वर्षा या गरज चमक के साथ बौछार किन किन स्थानों पर होनी है। रीवा, शहडोल, सागर, जबलपुर, भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर, चंबल, इंदौर एवं उज्जैन संभागों के जिलों में संभावित है। आगामी 24 घंटों में भारी और मध्यम वर्षा कहां कहां होने वाली है। कहीं कहीं भारी वर्षा की संभावना बताई जा रही है, जहां पर डिंडोरी आएगा, बैतूल, बालाघाट, राजगढ़, रायसेन, धार, उज्जैन, अनूपपुर, मंडला एवं सिवनी जिलों में, और कहीं कहीं गरज के साथ बिजली चमकने और गिरने के अल्पकालीन तेज हवा की संभावना उसमें रीवा, शहडोल, सागर, जबलपुर, भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर, चंबल, इंदौर एवं उज्जैन संभागों के जिले इसमें आते हैं। तो ये थी हमारे जानकारी जो अभी आप सुन रहे थे मौसम की। अगर झाबुआ जिले की बात करें तो अधिकतम तापमान आज का जो रहा है वो 37.1 डिग्री सेल्सियस रहा है, न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस रहा है। वर्षा अभी तक नहीं हुई है, बहुत कम हुई है। 1 जून से अभी तक जो वर्षा कुल आंकी गई है वो 15.9 मिलीमीटर आंकी गई है। तो ये मौसम आधारित जानकारी आपको हम दे रहे थे क्योंकि इस आधार से हमारे किसान साथी चुनाव कर सकते हैं कि किस तरीके से हमें फसलों का चयन करना है। कार्यक्रम को आगे बढ़ते हुए हम कार्यक्रम में जानते हैं कि किस तरीके से हमारे किसान साथी कपास की खेती कर सकते हैं। साथ साथ में जानेंगे किस तरीके से हमारे किसान साथी मधुमक्खी पालन कर सकते हैं। तो आइए इस रेडियो रिपोर्ट को हम सुनते हैं। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम, आप लो रेडियो अपनी बात है।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम, आप लो रेडियो अपनी बातें।
3: किसानी में हम आपको बताएंगे कपास की खेती के बारे में। जी हाँ, कपास की अगर हम बात करें तो व्यवसायिक दृष्टि से इसका काफी महत्व है और इसे सफेद सोना भी कहा जाता है। लेकिन कई तरह की बातें हैं जिसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है ताकि कपास की अच्छी पैदावार हमारे किसानों को प्राप्त हो सके। तो आइए देखते हैं इससे जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट।
4: कपास नगदी फसल है जो हमारे देश में सफेद सोना कहा जाता है। भारत में कपास की सबसे ज्यादा खेती गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना में की जाती है। हमारे देश में देसी और बीटी दोनों ही कपास की खेती की जाती है। हालांकि बेहतर मुनाफे के लिए किसान आजकल बीटी कपास ज्यादा लगा रहे हैं। बीटी कपास में भी कई प्रजातियां लोकप्रिय हैं, जो स्थान विशेष के हिसाब से रोग और कीट प्रतिरोधक क्षमता रखती हैं। इसकी खेती के बारे में विस्तार से बात करें तो इसकी बुवाई पर्याप्त सिंचाई व्यवस्था होने पर मई माह में की जाती है। यदि सिंचाई का अभाव है तो किसान मानसूनी बारिश शुरू होने पर ही कपास की बुआई करें। बुआई से पहले मिट्टी को अच्छी तरह भुरभुरा कर लेना चाहिए। बुआई के लिए उन्नत जातियों का 2.5 से 3 किलोग्राम बीज, जबकि संकर व बीटी जातियों का 1 किलो बीज प्रति हेक्टेयर की दर से ठीक रहता है। बुआई करते समय कतार से कतार और पौध से पौध की दूरी का खास ख्याल रखना चाहिए। वहीं कपास की सघन खेती में कतार से कतार 45 सेंटीमीटर व पौधे से पौधे 15 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाए जाते हैं। फसल के सही विकास और बेहतर उत्पादन के लिए खाद व उर्वरक की सही मात्रा सही समय पर देनी चाहिए। उन्नत किस्मों में 80 से 120 किलो नत्रजन प्रति हेक्टेयर, 40 से 60 किलो फास्फोरस, 20 से 30 किलो पोटाश, करीब 25 किलो गंधक प्रति हेक्टेयर देना चाहिए। जबकि संकर किस्मों की बात करें तो 150 किलो नत्रजन, 75 किलो फास्फोरस, 40 किलो पोटाश, 25 किलो गंधक प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए। इसके अलावा सड़ी हुई गोबर की खाद 7 से 10 टन प्रति हेक्टेयर की दर से डालना चाहिए। खरपतवारों के नियंत्रण के लिए अंकुरण के 15 से 20 दिन के अंदर डोरा चलाकर खरपतवारों को नष्ट किया जा सकता है। इसके अलावा कृषि विशेषज्ञ की सलाह से खरपतवार नाशी का छिड़काव भी किया जा सकता है। फसल में सिंचाई की बात करें तो शाखाएं निकलने की अवस्था व 45 से 50 दिन पर फूल व फल बनने के दौरान 75

0: से 85 दिन पर, इसके बाद 95 से 105 दिन की फसल होने पर और 115 से 125 दिन की फसल होने पर सिंचाई करनी चाहिए। यदि किसान टपक तकनीक का इस्तेमाल करते हैं तो करीब 70% पानी की बचत की जा सकती है, साथ ही खरपतवारों और कीटों पर नियंत्रण भी आसान हो जाता है। कपास की फसल में चुनाई का काम बहुत विशेष होता है। देसी व उन्नत जातियों की चुनाई खासकर नवंबर से जनवरी फरवरी तक, संकर जातियों की अक्टूबर नवंबर से दिसंबर जनवरी तक, बीटी किस्मों की चुनाई अक्टूबर से दिसंबर तक की जाती है। कपास की चुनाई करते समय किसान इस बात का ध्यान रखें कि चुनाई ओस सूखने के बाद ही करें, गीले घेटों की चुनाई ना करें। चुनाई करते समय कपास के साथ सूखी पत्तियां, डंठल ना आए। चुनाई के बाद कपास को धूप में सुखा लेना चाहिए। कपास को सुखाकर ही भंडारित करें, क्योंकि नमी होने पर कपास पीला पड़ जाएगा व फफूंद भी लग सकती है। लेकिन कुछ जरूरी सावधानियां अपनाकर कपास का बेहतर उत्पादन कर मुनाफा कमाया जा सकता है।
1: ये हमारा पशुधन पर, पशुधन में आज हम बात करेंगे मधुमक्खी पालन के बारे में। जी हाँ, सरकार भी मधुमक्खी पालन को काफी प्रोत्साहित कर रही है और आज के समय में युवाओं के बीच में भी काफी लोकप्रिय हो रहा है। खास बात यह है कि मधुमक्खी पालन से न सिर्फ किसानों की आय में वृद्धि होती है बल्कि साथ ही साथ उनकी फसलों में भी इसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। तो कैसे करें मधुमक्खी पालन और कौन कौन सी विशेष बातें जिसका ध्यान रखना जरूरी है, आइए डालते हैं नजर।
0: हमारे देश में मधुमक्खी पालन के कई फायदे हैं। इससे जहां परागण में सहायता मिलती है वहीं अतिरिक्त आय भी होती है। हाल के कुछ वर्षों में मधुमक्खी पालन में खासी दिलचस्पी बढ़ी है, जिससे भूमिहीन किसानों के सामने रोजगार के कई अवसर पैदा हुए हैं। मुनाफे की ओर ले जाने वाले इस व्यवसाय में मधुमक्खी पालकों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो लाभ के साथ साथ मधुमक्खी का भी ख्याल रखें, जिससे उनकी घटती संख्या में कमी लाई जा सके। मौजूदा समय में तापमान में हो रही बढ़ोतरी के साथ कुछ खास प्रबंधन करने होते हैं, जिससे मधुमक्खियों को अनुकूल वातावरण मिल सके। तो इस समय कौन से हैं वो खास बिंदु, आइए जानते हैं विशेषज्ञ की राय।
2: गर्मियों का मौसम है, मधुमक्खी पालक के लिए जरूरी है कि कुछ विशेष चीजों का ध्यान रखे ताकि मधुमक्खी पालक अच्छे से मधुमक्खियों का देखभाल कर सके तो अच्छे से उनको लाभ मिल सके। सबसे जरूरी है क्योंकि गर्मी का समय है, इस समय जो तापमान है वो 40 के ऊपर है, तो इसलिए जरूरी है कि मधुमक्खी पालक जो मधुमक्खियां हैं उनको ऐसे स्थान पर रखें जहां फूल यानी के फ्लोरा हो। इसके लिए इस समय जो है सीसम, जहां सीसम हो, नीम हो, जामुन हो, यूकेलिप्टिस हो या इसके अलावा मल्टी फ्लोरा हो तो वहां मधुमक्खी को अपने उस स्थान पर रखना चाहिए। साथ ही साथ क्योंकि गर्मी का समय है तो पीने के पानी, स्वच्छ पीने का पानी मधुमक्खी के लिए जरूर होना चाहिए और इसके लिए जरूरी है कि ऐसे स्थान पर मधुमक्खी को रखें जहां छाया हो, क्योंकि इस समय लू और गर्मी ज्यादा है तो उससे बचाव के लिए जरूरी है कि उनको ऐसे स्थान पर रखें जहां ऊपर पेड़ पौधे उसके आसपास हो। और इसके लिए जरूरी है कि कहीं कहीं अब इस समय फ्लोरा की कमी है तो उनको भोजन के रूप में आर्टिफिशियल भोजन दें। इसके लिए एक भाग पानी और एक भाग चीनी दोनों का घोल बनाकर एक चाशनी तैयार कर लें। उस चाशनी को ठंडा होने के उपरांत फीडर की सहायता से किसान भाई यानी कि मधुमक्खी पालक आदि मधुमक्खियों में इस भोजन को दें। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें कि गर्मी का मौसम थोड़ा और भी बढ़ सकता है, टेम्परेचर और भी बढ़ सकता है, तो जो टाट के बोरे होते हैं उन टाट के बोरे को जो बॉक्स है मधुमक्खी के उसके ऊपर डाल देना चाहिए। साथ ही साथ दो या तीन बार उनको गीला करना चाहिए दिन में ताकि जो बॉक्स का तापमान है वो सामान्य बने रहे और मधुमक्खी को ज्यादा दिक्कत ना हो। साथ ही साथ ये भी जरूरी है, ये भी ध्यान रखें कि इस समय मधुमक्खी पालक को मधुमक्खी का विभाजन नहीं करना चाहिए। अगर कमजोर मधुमक्खी है, बॉक्स कमजोर है, परिवार बॉक्स कम है तो ऐसे समय पर उनको विभाजन नहीं करना चाहिए।
0: गर्मी के मौसम में पर्याप्त फूल नहीं होते जिससे मधुमक्खियों को भोजन के लिए संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे में मधुमक्खी पालकों को चाहिए कि उनके कृत्रिम भोजन की व्यवस्था करें। इसके लिए क्या करें, जानते हैं विशेषज्ञ से।
2: तो स्थान का चुनाव करते समय इन बातों का जरूर ध्यान रखना है मधुमक्खी पालक को।
0: ये तो बात हो गई मधुमक्खियों के भोजन की, अब बात कर लेते हैं उनकी सुरक्षा की। इस समय अन्य कीटों से उन्हें कैसे सुरक्षा दी जाए, आइए जानते हैं।
2: मधुमक्खी पालक ये देख ले कि ऐसे स्थान का चुनाव इस समय करे कि जहाँ फूल यानी कि फ्लोरा हो, वैसे स्थान पर मधुमक्खियों का स्थानांतरण कर दे। साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि पहले से वहाँ स्थान आपका होना चाहिए कि पानी वहाँ है, अच्छा पीने के लिए स्वच्छ पानी है, आसपास जो है कोई हाईवे रूट तो नहीं है, साथ ही साथ कोई किसी तरह की पेस्टिसाइड, क्योंकि आजकल जो फसलें हैं अधिकतर किसान भाई पेस्टिसाइड का प्रयोग करते हैं, तो ये भी देख लें कि अधिकतर वहाँ ज्यादातर किसान कीटनाशियों का अधिक प्रयोग ना करते हो, और करते भी हो तो ये भी शोध कर लें कि किस कीटनाशी या फंजीसाइड का किसान भाई इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब मक्खी होती है तो वो फूल के पास जाएगी, उससे फूल से रस चूसेगी, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो केमिकल होता है उसका इफेक्ट मधुमक्खी के में आएगा, वो धीरे धीरे उससे उसकी जो है मोर्टिलिटी होने की भी संभावना बनी रहती है।
0: इस तरह छोटी छोटी बातों का ध्यान कर किसान और मधुमक्खी पालक उनकी सुरक्षा भी कर सकते हैं और उनकी संख्या में इजाफा भी। HS और BQ टीकाकरण के 10 से 15 दिन पहले सभी पशुओं की डीवॉर्मिंग कर देनी चाहिए। ऐसा करने से टीकाकरण प्रभावी हो जाता है। पशुओं को 50 से 60 ग्राम खनिज मिश्रण एवं 20 ग्राम नमक प्रतिदिन देना चाहिए। गर्मियों के मौसम में लगाई गई ज्वार फसल पशुओं को ना दें, इस समय ये हानिकारक हो सकता है। बरसात के मौसम में हरे चारे की अच्छी पैदावार लेने के लिए ज्वार व मक्का की बुआई करें। हरे चारे की फसल से अधिक उत्पादन लेने के लिए उन्नत किस्म के बीज का प्रयोग करें। जून का महीना काफी गर्म रहता है, इसीलिए पशु के लिए अलग से शेड बनाएं। इस समय पशु को ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाएं। अधिक दूध देने वाले पशुओं को तरल कैल्शियम फास्फोरस की मात्रा 70 से 100 ग्राम प्रतिदिन दें। पशुओं को बाह्य परजीवियों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह पर दवा का प्रयोग नियमित रूप से करें। यदि पिछले माह भेड़ के ऊन कतरने का कार्य ना किया हो तो इस माह कर लें।

किसानों को पशुओं की खरीद और बिक्री में मदद मिले और किसान की आमदनी में बढ़ोतरी हो, इसके लिए भारत सरकार ने एक कार्यक्रम केंद्रीय पशु पंजीकरण योजना लागू किया, जिसके तहत गाय और भैंस की महत्वपूर्ण नस्लों के दुग्ध उत्पादन का रिकॉर्ड करके पशु पंजिका में लिखा जाता है। इस कार्यक्रम में उन्नत नस्ल के पशुओं के प्रमाणीकरण और पशुओं के उत्पादन का लेखा जोखा लिखा जाता है। पशु पंजीकरण योजना के उद्देश्य इस प्रकार है। पंजीकरण के माध्यम से बेहतर जन्म

0: ये दुग्ध अभिलेखन कार्य को बढ़ावा देना, सभी पंजीकृत किए हुए पशुओं के इकट्ठे किए हुए आंकड़ों को प्रकाशित करना ताकि पशुपालकों का मार्गदर्शन हो और पशुओं को खरीदने व बेचने में इसका योगदान मिले। पशुओं की खरीद बिक्री और आयात निर्यात को नियंत्रित करना ताकि उनकी गुणवत्ता को नियंत्रित किया जा सके तथा आयात व निर्यात के लिए स्तर निर्धारित किया जा सके। पशुपालकों को योजना के बारे में जागृत करना और जानकारी देना ताकि पशुओं के सुधार में उनकी आर्थिक स्थिति सुधर सके। केंद्रीय पशु पंजीकरण योजना में पशु पंजीकरण पुस्तक होती है, इसमें उन पशुओं की सूची रखी जाती है जो कि पशु पंजीकरण पुस्तक के नियम व नियमावली पर खरे उतरते हैं। इस पंजीकरण के तहत पंजीकृत पशुपालकों को प्रोत्साहन राशि तथा प्रमाण पत्र प्रदान किए जाते हैं जो पशुपालकों को पशु खरीदने तथा बेचने में मदद करते हैं। अब सवाल ये है कि इस योजना के तहत सुविधा का लाभ कैसे उठाया जाए। ये सुविधा देसी गाय व भैंसों के लिए है। इस सुविधा का लाभ गौशाला और अभिलेखन केंद्र के आसपास के पशु झुंड उठा सकते हैं। पंजीकृत पशुओं का ब्यौरा कंप्यूटरीकृत होता है। पशुपालकों तक योजना को आसानी से पहुंचाने के लिए दुग्ध अभिलेखन केंद्र पशु चिकित्सालय पर रखा जाता है। खास बात ये है कि पशु पंजीकरण इकाइयां दुग्ध अभिलेखन योजना को समयबद्ध विस्तार के लिए प्रशिक्षण भी देती है। गौरतलब है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत हरियाणा में गाय और मुर्रा भैंस के लिए संयुक्त रूप से एक यूनिट 1962 में रोहतक में स्थापित की गई। ये इकाई हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्यों में संचालित है। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान गिर व कांकरेज गाय और सूरती भैंस के लिए एक इकाई अहमदाबाद में स्थापित की गई। पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंत में दो और इकाइयां एक आंध्र प्रदेश में और एक राजस्थान में स्थापित की गई। इस प्रकार चार इकाइयां रोहतक हरियाणा, अहमदाबाद गुजरात, ओंगल आंध्र प्रदेश और अजमेर राजस्थान में चल रही है। पशुपालक स्थानीय केवीके या कृषि विभाग से संपर्क कर केंद्रीय पशु पंजीकरण योजना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें और इस योजना का लाभ उठाएं।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भी 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
2: अब नई चीज हम जान लेते हैं क्योंकि बहुत सारे किसान साथियों को हम वही चीजें बताते रहते हैं, वही बातें सुनाते रहते हैं। आज कुछ नया करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं अब कि सीप की खेती, जो मोतियों की खेती रहती है, वो किस तरीके से होती है। ये भी एक व्यवसाय है हमारे किसान साथियों की, नई चीज है। आइए जानते हैं कि हमारे किसान साथी किस तरीके से मोतियों का खेती कर सकते हैं। लेकिन साथियों, इनसे बातचीत करने से पहले हम लेते हैं एक छोटा सा विराम, सुनते हैं प्यारे से गीत को।

आज समाज में बालिकाओं के प्रति पुरुष तो ठीक, महिलाएं भी परंपराओं का हवाला देकर अपनी फूल सी कोमल बच्चियों को अपनी जिंदगी को ठीक से जीने नहीं देती। हमारे समाज में अनेक बच्चियां रूढ़िवाद एवं सामाजिक प्राचीन परंपराओं के कारण माँ के कोख में ही खत्म कर दी जाती है। यदि जन्म लेती है तो परिवार पर बोझ बन जाती है।

रूढ़िवादी परंपरा है। बच्चियां अपनी सिसकियां अपने हृदय में संजोकर अपने पिताजी की गोद में शायद यह जरूर अभ्यंतर से कहती होगी,

0: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और साथियों, अभी आपने इस प्यारे से गीत को सुना, गीत का आनंद लिया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम सुनते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से हमारे किसान साथी मोतियों की खेती कर सकते हैं, कैसे इसका प्रशिक्षण, कहाँ प्रशिक्षण मिलेगा, इसकी सारी जानकारी इस सेगमेंट में सुनते हैं।
1: भारत में मोतियों का इस्तेमाल लंबे समय से किया जा रहा है। मोती शुरू से ही सजने संवरने और सजावट के लिए प्रयोग किए जाते हैं। पहले सिर्फ प्राकृतिक रूप से मिलने वाले मोतियों का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन बदलते दौर में मांग को देखते हुए मोतियों का उत्पादन किया जा रहा है, जिसे हम सरल भाषा में सीप पालन या मोती की खेती कहते हैं। ये इतना सरल और सस्ता है कि किसान इसे आसानी से शुरू कर सकते हैं। सीप पालन के लिए सबसे जरूरी प्रशिक्षण लेना है। कई संस्थानों में सरकार के द्वारा निशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इसके अलावा जिले के मत्स्य विभाग से भी जानकारी ली जा सकती है। मोती एक प्राकृतिक रत्न है जो सीप में बनता है। जब सीप में कोई बाहरी पार्टिकल जैसे मिट्टी के कण या कोई सूक्ष्म जीव चला जाता है, तो वो उसे बाहर निकालने के लिए एक तरल छोड़ती है। ऐसे ही धीरे धीरे उस कण पर सीप परत दर परत एक चमकदार कोटिंग बना देती है और फिर एक निश्चित समय बाद यही मोती बन जाता है। सीप पालन को शुरू करने के लिए सबसे पहले स्थान का चयन करना होता है जहां सीप को आसानी से पाला जा सके। सीप को छोटे स्तर से घर में पाला जा सकता है, जबकि बड़े स्तर पर पालने के लिए तालाब की जरूरत होती है। इसके बाद किसान को सीप खरीद कर सीपों को खुले पानी में दो दिन के लिए रखते हैं, जिससे धूप और हवा लगने के बाद सीप का कवच और मांसपेशियां ढीली हो जाती है। मांसपेशियां ढीली होने के बाद सीप की सर्जरी कर सीप के अंदर सांचा डाल दें। किसान चाहे तो सामान्य मोतियों का भी उत्पादन कर सकते हैं। मोती बनते समय सांचा जब सीप को चुभता है तो वो उस पर अपने अंदर से निकलने वाला एक पदार्थ छोड़ता है जो मोती में बदल जाता है। सीपियों के प्रकार लेमिनेनिस मार्जिनेनिस, लेमिनेनिस कोरियनस, पाइरेसिया। सीप पालन के लिए सबसे अनुकूल मौसम शरद ऋतु यानी अक्टूबर से दिसंबर तक का समय माना जाता है। कम से कम 10x10 फीट या बड़े आकार के तालाब में सीप पालन किया जा सकता है। सीप में छोटी सी शल्य क्रिया के बाद इसके भीतर 4 से 6 मिलीमीटर व्यास वाले साधारण या आकर्षक आकृति के मोती तैयार किए जा सकते हैं। शल्य क्रिया के बाद सीप को बंद कर दिया जाता है। इन सीपों को नायलॉन बैग में 10 दिनों तक एंटीबायोटिक और प्राकृतिक चारे पर रखा जाता है। अब इन सीपों को तालाबों में डाल दिया जाता है। इसके लिए इन्हें नायलॉन बैगों में रखकर यानी 2 सीप प्रति बैग बांस या बोतल के सहारे लटका दिया जाता है और तालाब में 1 मीटर की गहराई पर छोड़ दिया जाता है। प्रति हेक्टेयर 20,000 से 30,000 सीप की दर से इनका पालन किया जा सकता है। अंदर से निकलने वाला पदार्थ पीठ के चारों ओर जमने लगता है जो अंत में मोती का रूप लेता है। करीब 10 माह बाद सीप को खोलकर मोती निकाल लिया जाता है। बेहतर उत्पादन के लिए सबसे जरूरी संबंधित विषय में जानकारी का होना है। इसके लिए किसानों को चाहिए कि वो सीप पालन शुरू करने से पहले प्रशिक्षण लें। सरकारी संस्थान ग्रामीण नवयुवकों, किसानों व छात्र छात्राओं को मोती उत्पादन पर तकनीकी प्रशिक्षण देते हैं। इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्रों और किसान हेल्पलाइन से भी मोती उत्पादन पर तकनीकी प्रशिक्षण की जानकारी ली जा सकती है।
0: अभी आपने कि हमारे किसान साथियों ने सुना कि किस तरीके से मोतियों का हम खेती कर सकते हैं, यानी हम मोतियों का जो खेती रहती है उसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, कैसे प्रशिक्षण लिया जाता है, ये सारी जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से जानी है। और भी बातें हम इस कार्यक्रम के माध्यम से जानेंगे, लेकिन यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा विराम, यानी लेते हैं छोटा सा ब्रेक और सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। बनी रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांडिया भी 90.8 FM, अपना रेडियो अपनी बातें।

0: जब किसान की मेहनत सार्थक होती है तो खेतों में खुशी की तरंगे बिखरने लगती है और बंजर जमीन भी हरियाली की चुनर ओढ़ लेती है। वैसे तो राजस्थान की धरती को मरुभूमि के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ के किसान प्रकृति का सीधा सामना करते हुए सफलता की कहानी गढ़ रहे हैं। आज हम आपको ऐसे ही एक किसान से मिलवाएंगे जिन्होंने कृषि का शायद ही कोई क्षेत्र छोड़ा हो जिसमें कामयाबी ना पाई हो। जयपुर राजस्थान का बेहद खूबसूरत शहर जहां देश के हर हिस्से से पर्यटक पहुंचते हैं। यहां से करीब एक घंटे की दूरी और 36 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद आता है कालख गांव, जो पहचाना जाता है किसान गंगाराम सेपट के नाम से, जो सेपट ऑर्गेनिक कृषि फार्म का संचालन करते हैं। उनके यहाँ जितनी भी पैदावार ली जाती है वो सभी जैविक तरीके से ली जाती है। गंगाराम कृषि के साथ साथ बहुत कुछ करते हैं, जैसे जैविक खेती, पॉली हाउस में खेती, पशुपालन, मछली पालन, जल संचय करना और सोलर पैनल लगाकर बिजली का इस्तेमाल कर खेती के हर कार्य को संपन्न कर रहे हैं। वो बताते हैं कि आज वो जिस मकाम पर है उसके पीछे उनकी व उनके परिवार की मेहनत तो है ही, साथ ही सरकार का पूरा सहयोग भी रहा। सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर गंगाराम ने अपने कार्य क्षेत्र में इजाफा किया। आज उनके खेतों में हर तरह की फसलें लहलहा रही है जिसमें विदेशी सब्जियां भी शामिल है। उनके खेतों की सब्जियां बड़े शहरों तक पहुंचाई जाती है जिससे परिवार को अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है।
1: राजस्थान में पानी की काफी कमी है, रेगिस्तान है और इस वजह से हम लोग बरसात का एक एक बूंद इकट्ठा करते हैं। मेरे पास में पॉली हाउस है, पॉली हाउसों के ऊपर जितनी भी बारिश होती है उन सबको मैं पाइप के द्वारा मेरे फार्म पॉन्ड के अंदर लेके आता हूँ। फार्म पॉन्ड में जो साइज है मेरी 50x50 मीटर का, लगभग 75 लाख लीटर पानी इसके अंदर हम बरसात का पूरा पानी इकट्ठा करते हैं और इसी के आधार पर पूरे साल भर हम लोग सिंचाई करते हैं। इसके फार्म पॉन्ड के जो है भारत सरकार का जो स्कीम है NHM और NHB दोनों के द्वारा 50% सब्सिडी मिलती है। इसमें मेरे जो है इस फार्म पॉन्ड बनाने में 8,35,000 रुपया खर्चा हुआ था तथा सब्सिडी के रूप में मुझे 5 लाख रुपए मिले थे। साथ ही फार्म पॉन्ड से पानी की सिंचाई करने के लिए मेरे पास में सोलर पैनल है, सोलर पैनल पे भी मैंने सब्सिडी ली है। 3 HP का इसमें मैंने कनेक्शन ले रखा है और जिसमें 67,000 रुपए मेरे फार्मर शेयर के लगे हैं। साथ ही इसमें 1,32,000 रुपए मेरे अनुदान प्राप्त हुआ है। इस फार्म पॉन्ड के अंदर मैंने 7 प्रकार की मछलियां डाल रखी, जिसमें 3 प्रकार की देसी मछलियां हैं और 4 प्रकार की विदेशी मछलियां हैं जो अलग अलग लेयर में अपना भोजन करती है। और देसी मछलियों में कटला है, रोहू है और मरगला है और विदेशी में कॉमन कॉर्प है, गोल्डन कॉर्प, सिल्वर कॉर्प और ग्रास कॉर्प है। इन मछलियों को हमारे पास में विशेष प्रकार के कोई भोजन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारे खेत में जो भी वेस्टेज पदार्थ होता है हम लोग मछलियों के लिए डाल देते हैं। इसके अलावा जो हमारे और भी कई बार क्या होता है, वेस्टेज पदार्थ कम होता है तो हम बाजरे का दाना और सरसों की खली मिलाकर इनको भिगोकर देते हैं और जो मछलियों का वेस्टेज है वो हमारे खेत के लिए, हमारी फसल के लिए उर्वरा शक्ति बढ़ाने का काम करता है। और साथ ही हमारा जो पानी का EC और PH है वो मेंटेन करने का काम है। इसके अंदर अगर मछलियां नहीं डालेंगे तो इसके अंदर एल्गी आ जाती है जो हमारे फिल्टर पंप को चोक कर देती है, इस वजह से इसको मछलियां डाली गई है। साथ ही मछलियों का जो है एक्स्ट्रा इनकम के बेचने पर हमें एक्स्ट्रा इनकम प्राप्त होगी, तो ये हमारे साथ में इंटीग्रेट फार्मिंग का एक अच्छा उदाहरण है। मैं सभी युवा साथियों से सलाह देना चाहता हूं कि अपने फार्म खेत के अंदर बरसात के पानी को इकट्ठा करें, उसमें पॉन्ड बनाएं, मछली पालन कर सकते हैं, साथ में खेती कर सकते हैं और अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। किसी भी और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आज भारत सरकार की और स्टेट गवर्नमेंट की बहुत अच्छी अच्छी स्कीमें हैं, जैसे पॉली हाउस लगा सकते हैं, ड्रिप सिंचाई यंत्र है, सोलर सिस्टम है, इन सबका उपयोग करके अपने अच्छे से नई तकनीकी के द्वारा खेती कर सकते हैं और अच्छा लाभ और मुनाफा कमा सकते हैं।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें। रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से कार्यक्रम खेती बाड़ी में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और साथियों, अभी आपने इन सफल किसानों की कहानी को सुना और जाना कि किस तरीके से उन्होंने अपने क्षेत्र में एक नया मुकाम हासिल किया है, यानी खेती के क्षेत्र में नया मुकाम हासिल किया है। उन्होंने योजनाओं का लाभ लिया है, उन्होंने आधुनिक पद्धति से खेती की है, उन्होंने वर्मी कम्पोस्ट पर जोर दिया है, तो तमाम प्रकार की उन्होंने योजनाओं का लाभ लेते हुए आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं कि सफल किसान के नाम से उनको जाना जाता है राजस्थान में। तो साथियों, हमें आशा है कि ऐसे ही हमारे किसान साथी अब सोच रहे होंगे कि हम भी एक उन्नतशील किसान बन सकते हैं। तो इसके लिए आपको हमें वैज्ञानिक पद्धति से खेती करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके लिए आप समय समय पर कृषि विस्तार अधिकारी अपने झाबुआ जिले में बैठे हुए हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं, खासतौर पर जो KBK रहता है उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो नई नई पद्धति से और नई नई योजनाओं के साथ लाभ लेकर आप एक अच्छी पद्धति से खेती करके मुनाफा कमा सकते हैं, यही हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य है। मित्रों, अब हमारा समय होता है आज के कार्यक्रम खेतीबाड़ी कार्यक्रम से जाने का। आपकी हमारे फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात, और चलते चलते आपको सुनवाते हैं एक और प्यारे से गीत को। नमस्कार।

0: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें। ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
1: नमस्कार साथियों, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और अब हमारे किसान साथी बिल्कुल तैयारी में लग चुके होंगे क्योंकि थोड़ी थोड़ी बारिश भी अब होने लगी है। खासतौर पर देखा जाए अब मानसून भी आने की संभावना बताई जा रही है, ऐसे हमारे मौसम विभाग कह रहा है। खासतौर पर अगर झाबुआ जिले की बात करें तो 15.2 mm की बारिश अभी तक हो चुकी है, तो खुशी की बात है कि इस बार सामान्य वर्षा होने की संभावना बताई जा रही है। तो ऐसे में किसान साथी अपनी भरपूर तैयारी करें, पानी संरक्षण को लेकर काम करें। खासतौर पर अगर हम देखें कि जहां पर उबड़ खाबड़ जमीन है उसको एक सा कराएं, समतलीकरण करा लें, मेड़बंधान करा लें, तालाब का निर्माण भी करा सकते हैं। और किसान साथी तालाब अगर है तो उसका जीर्णोच्चारण भी करा सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो किसान साथियों को समझने वाली बात है। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम खेती बाड़ी में आज हम बात करने जा रहे हैं मानसून और खेती पर। आज महत्वपूर्ण चर्चा है, इसको आप सुनिएगा और हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनकी बातचीत को आप सुनकर अपने जीवन में जरूर अपनाइएगा। हम किस तरीके से खेती कर सकते हैं, खासतौर पर जो खरीफ की फसल आने वाली है उसको हम किस तरीके से लगा सकते हैं, कौन सी फसलें हैं जो लगा सकते हैं, क्या क्या तैयारी हमें करना चाहिए, आइए सुनते हैं इस खास रिपोर्ट को।
2: जी हाँ, मानसून का हम सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है और खास तौर पर दक्षिण पश्चिम मानसून की बात करें तो हमारी देश की अर्थव्यवस्था अगर कहें इस मानसून पर निर्भर करती है तो गलत नहीं होगी। खास तौर पर अगर खरीफ फसलों की बात करें तो बहुत हद तक इसकी निर्भरता रहती है और ऐसे में ये भी कह सकते हैं कि अगर मानसून की बारिश अच्छी होगी तो हमारे खेत लहलहाएंगे। तो इसीलिए आज हम बात करेंगे कि इस बार मानसून कैसा रहने वाला है, हमारे किसानों को अपने स्तर पर किस तरह की तैयारी करनी है और कैसे वर्षा जल संचयन भी वो कर सकते हैं। इन तमाम बिंदुओं पर आज हम बात करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ विशेष मेहमान स्टूडियो में हैं। आइए उनसे आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर आर के जैनमणि जी जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग में। आप मानसून के चाल के बारे में बताएंगे, मानसून कैसा रहने वाला इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। हमारे साथ डॉक्टर वाई शिवे जी हैं, प्रधान वैज्ञानिक हैं सस्य विज्ञान संभाग पूसा नई दिल्ली में, और शिवे जी हमें क्रॉप्स के बारे में जानकारी देंगे यानी अलग अलग जो फसलें हैं उनके बारे में। और डॉक्टर अनंता वशिष्ठ जी हैं प्रधान वैज्ञानिक कृषि भौतिकी संभाग पूसा नई दिल्ली में। और अनंता जी से भी हम समझेंगे कि प्रबंधन किस तरीके से करें, मानसून भी है फसलें भी हैं तो इनके बीच का प्रबंधन किस तरह से होना चाहिए। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सभी मेहमानों के बारे में आपको हमने बता दिया है और आगे बात करते हैं मानसून के बारे में। तो इस बार मानसून कैसा रहने वाला है और इसका प्रभाव हमारी कृषि पर किस तरह से होता है, इन तमाम बातों को समेटे हुए देखिए हमारी रिपोर्ट।
3: भारत में मानसूनी सीजन 1 जून से 30 सितंबर तक होता है। इस दौरान हुई बारिश खरीफ फसलों की पैदावार के लिए काफी अहम मानी जाती है, यानी अगर मानसून अच्छा हो तो उपज भी भरपूर हो जाती है। लेकिन मानसून कमजोर हुआ तो इसका सीधा असर कृषि पर सूखे के रूप में पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए और खेती के लिए मानसून की अहमियत को समझते हुए मौसम विभाग हर साल मानसूनी वर्षा का पूर्वानुमान जारी करता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने दक्षिण पश्चिमी मानसून की वर्षा के दूसरे चरण के दीर्घ अवधि पूर्वानुमान में इस बार जून से सितंबर के दौरान मानसूनी बारिश के औसत से 96 से 104% रहने की संभावना जताई है। विभाग के मुताबिक इस बार पूरे देश में दक्षिण पश्चिमी मानसून की वर्षा के सामान्य रहने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक इस मानसून सीजन में मध्य भारत और दक्षिण प्रायद्वीप में सामान्य से ज्यादा बरसात होने की संभावना है। मध्य भारत में ओडिशा, पूर्वी पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ और छत्तीसगढ़ आते हैं। इन इलाकों में दूसरी फसलों के साथ मुख्य रूप से गेहूं, धान, कपास और दलहन की बुआई की जाती है। गुजरात में किसान मिर्च, जीरा जैसी फसलों की खेती भी करते हैं। ऐसे में यहाँ के किसानों के लिए मानसून की अच्छी बरसात अच्छी पैदावार की सौगात लेकर आती है। वहीं दक्षिण प्रायद्वीप में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, तटीय कर्नाटक, उत्तरी और दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी हिस्से, केरल और लक्षद्वीप आते हैं। इन इलाकों में मुख्य रूप से धान की खेती होती है। वहीं उत्तर पूर्व भारत और उत्तर पश्चिम भारत में बरसात के सामान्य रहने की संभावना है। उत्तर पूर्व भारत में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, गांगे पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार आते हैं। इन इलाकों में मुख्य रूप से धान की खेती होती है। उत्तर पश्चिम भारत में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान आते हैं। इन राज्यों में अन्य फसलों के अलावा गेहूं, धान और दलहन की खेती मुख्य रूप से की जाती है। हालांकि कई बार मॉनसून हर इलाके में एक जैसा नहीं बरसता, यानी कई बार कहीं कम और कहीं ज्यादा बरसात भी हो जाती है। आमतौर पर जिन इलाकों में मॉनसून के दौरान ज्यादा बरसात होती है, वहाँ किसान ऐसी फसलों की बुआई कर सकते हैं जिन्हें ज्यादा पानी की जरूरत होती है। जिन इलाकों में कम बरसात होती है, वहाँ किसान उन फसलों की बिजाई कर सकते हैं जिनकी पैदावार के लिए कम पानी की जरूरत हो। इसकी जानकारी किसान अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्रों से भी ले सकते हैं।
4: जो आप काम करने को कह रहे हैं,
2: आपने रिपोर्ट देखी जिसमें हमने आपको ये भी बताया कि जिन क्षेत्रों में ज्यादा बारिश की संभावना है वहां के किसान क्या करें, जहां पर बारिश थोड़ी कम रह जाती है वहां पर किसानों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या फिर किस तरह की फसलों या फिर किस्मों का उन्हें चुनाव करना चाहिए। बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले डॉक्टर जयनमणि जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, देखिए मानसून का इंतजार हर किसी को होता है, लेकिन किसान जो है उसका जीवन उसके ऊपर निर्भर करता है, उसकी आमदनी उसके ऊपर निर्भर करती है। सिर्फ मौसम में बदलाव, ठंड या गर्म का मतलब उससे उसका नहीं रहता। तो ऐसे में इस बार का मॉनसून कैसा रहने वाला है, क्या बताता है भारत मौसम विज्ञान विभाग?
5: देखिए, जो अभी तक हमारा जो प्रेडिक्शन आया है, जो भविष्यवाणी है, वो जून मंथ का मंथली जो रहेगा और कौन सा एरिया में कम रेन होगा और कौन सा एरिया में ज्यादा रेन होगा, और उसके साथ साथ पूरा जो सीजन है 1 जून से लेकर के 30 सितंबर तक सारा भारत में मानसून स्थिति क्या रहेगा। तो पहले अगर बात करें सारा भारत का, तो इस साल ऐसे कुछ फीचर्स नेगेटिवली नहीं है। तो हम अगर ग्लोबल फीचर्स का बात करें, जैसे लानीना चल रहा है और ऐसे ही अप्रैल मई में भी ज्यादा गर्मी हुआ है, तो ये सारा बहुत इंडिकेट करता है कि मानसून अच्छा रहेगा ओवरऑल जो है। अगर ऑल इंडिया रेनफॉल जो सारा भारत का बारिश का अगर हम हिसाब करें, तो पूरा सीजन में जो है टोटल रेन लगभग जो हमारा 89 सेंटीमीटर होता है वो नॉर्मल रहेगा। हम रादर बढ़ाया, इनका मान था 99%, हम 103% दिया अपडेट में। और उसके साथ साथ जून महीने का जो है, सभी को ये मैं बताना चाहता हूँ कि मानसून का जो आगमन होता है, ये एडवांस फेज में मानसून धीरे धीरे आगे बढ़ता है। हर साल का यही स्टोरी है, मतलब यही ऑब्जर्वेशन है, इसमें घबराने का कोई बात नहीं होना चाहिए। और कुछ कुछ मीडिया जो बोलते हैं वो बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए। अभी जैसे हमारा जो रहेगा स्थिति, अभी पेनिनसुलर इंडिया जो दक्षिण भारत कवर कर रहा है, आगे से भी केंद्रीय भारत और हमारा उत्तर पश्चिम भारत को भी आएगा। और यही है कि कौन सा डेट जो है, डेट तो वेरी करता है, कभी 10 दिन लेट में आता है, कभी 10 दिन पहले आता है। जैसे दिल्ली का अगर बात करें, पिछले साल बहुत लेट में आया,
2: 25 के बाद
5: जून 27 नॉर्मल डेट होता है, राजस्थान जुलाई फर्स्ट वीक होता है। तो लगभग जो प्रेडिक्शन है जून महीना का सेकेंड हाफ है वो बारिश अच्छा रहेगा। और उसके साथ साथ मानसून का जो आगमन है, अभी तक जो आंकड़ा है कुछ डिले नहीं हुआ है, और महाराष्ट्र का कवर टाइम पर करेगा और केंद्रीय भारत भी टाइम पर करेगा।
2: बिल्कुल, तो अभी जो मानसून की चाल है या फिर रफ्तार है उसमें किसी तरह की हम तब्दीली नहीं देख रहे हैं, जो सामान्य रूप से जो होना चाहिए वैसा ही है। शिव साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि देखिए जो रिपोर्ट भी हमने दिखाई, तो उसमें भी हमने बताया कि किस तरीके से कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पर बारिश बहुत ज्यादा हो जाती है, और जब हम एवरेज निकालते हैं पूरे देश का तो लगता है कि हाँ मानसून अच्छा रहा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन जो है वो एक बहुत बड़ी समस्या है और किसानों को इसके लिए पहले से ही तैयार रहना पड़ेगा। आप जो अभी खासतौर पर जो खरीफ सीजन की फसलें हैं उनके लिए विशेष तौर पर क्या बताना चाहेंगे?
6: देखिए मानसून जैसा कि इस साल नॉर्मल रहने की संभावना है तो बहुत से क्षेत्रों में जो है अलग अलग किस्में लगाई जाती हैं, अलग अलग फसलें लगाई जाती हैं, तो उस अनुसार जो है किसानों को अपनी तैयारी करने की जरूरत है। जैसे विशेषकर मध्य प्रदेश के अंदर जो है सोयाबीन लगाई जाती है, महाराष्ट्र के अंदर जो है कपास लगाई जाती है, या छत्तीसगढ़ और झारखंड और बिहार के अंदर जो है धान का बहुत खेती होती है। इसके साथ साथ यदि हम उत्तरी भारत की बात करें, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ पे जो है धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, इनकी बहुत खेती होती है। लेकिन साथ साथ कुछ ऐसी फसलें भी हैं हमारी, जैसे दाल वाली फसलें हैं, अरहर है, मूंग है, उड़द है, इनकी खेती लगभग सभी क्षेत्रों में की जाती है खरीफ के मौसम में। लेकिन बात ये ध्यान रखने की है कि जो अपने क्षेत्र के लिए अनुमोदित किस्में उन्हीं को लगाएं, और उसके साथ साथ जो है इस चीज का भी ध्यान रखें, पानी यदि आपके यहाँ अच्छी बारिश हो रही है तो उसका जो है पूरा सदुपयोग करें। सदुपयोग करने का मतलब ये है कि पानी को बाहर न जाने दें, और यदि पानी बहुत ज्यादा भर गया है, जैसे हमारी अरहर की है, मूंग की है, उड़द की है, तो वहाँ पानी निकालने की संभावना भी बढ़ जाती है,
2: बहुत जल्दी खराब भी हो जाती है फसलें, ये भी हम जानते हैं। अनंता जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी कि देखिए प्रबंधन बहुत जरूरी हो जाता है, रेन और क्रॉप, इसके बीच में जब प्रबंधन की बात करते हैं तो इसे हम किस तरीके से समझें?
7: जी, जैसे कि अभी मानसून के समय में विभिन्न फसलें लगती हैं, जिसमें जैसे कुछ धान है, मक्का है, दलहनी फसलें हैं, तिलहनी फसलें हैं, इसके अलावा सब्जी वर्गीय फसलें भी लगती हैं, तो इसमें सभी फसलों को सामान रूप से पानी की जरूरत नहीं होती है। जैसे धान है उसको ज्यादा पानी की जरूरत होती है, तिलहनी या दलहनी फसलें हैं उनको कम पानी की जरूरत होती है, तो आपको जो उस हिसाब से जो पानी का जो प्रबंधन करना चाहिए फसलों में, जैसे अभी डॉक्टर सिवे जी ने भी कहा है कि धान के लिए पानी की ज्यादा जरूरत होती है, तो आपको वहां पे जो ऐसे मैने ऊंची बना लीजिए, ताकि अगर बरसात का पानी आता है तो ज्यादा से ज्यादा पानी जो है आपके खेतों में रुक सके। आपकी जैसे तिलहनी फसलें हैं या दलहनी फसलें हैं या सब्जी वर्गीय फसलें हैं, तो पानी के प्रति काफी संवेदनशील होती है, अगर ज्यादा पानी बरस गया तो उनकी जो जड़ें होती है वो खराब होने की संभावना होती है, तो उसमें जो है आप जल निकासी का प्रबंधन कर सकते हैं या फसलों को आप में लगा सकते हैं, जिससे जो है आपका पानी से नुकसान नहीं हो सकता। जैसे कि हम देख ही रहे हैं आजकल जलवायु परिवर्तन की वजह से जो वर्षा की तीव्रता है वो ज्यादा हो जाती है, और जो आपके रेनी डे हम जो कहते हैं कि वर्षा के दिन, उनमें कमी आ रही है। जैसे कि टोटल बारिश हम कहते हैं कि जो आपका मानसून वर्षा है वो तो आपकी उतनी ही रहेगी, लेकिन जो वितरण है वो आपका सामान्य नहीं रहता है, कभी आपकी बहुत ज्यादा बारिश आ जाती है, कभी आपका ड्राई पीरियड जो सूखा समय है फसलों के दो बारिश के बीच का समय वो ज्यादा रह जाता है। तो अगर आप जो ये जो पानी है जो पानी एकत्रित नहीं, तो आपको ये सलाह दूंगी कि आप खेत के पास में एक पौंडनुमा स्ट्रक्चर बना दीजिए, और जो बरसात का पानी आता है उसमें इकट्ठा हो जाएगा, साथ ही जो आप जल निकासी करते हैं खेतों से उसका पानी भी उसमें इकट्ठा हो जाएगा, और जब आपका जो सूखा पीरियड ज्यादा होता है उसमें आप जो पंप की मदद से वो जो पौंड में आपका पानी एकत्रित हुआ है उसको आप फसलों में डाल सकते हैं। इसके आपके कई फायदे होंगे, एक तो आपको पानी मिल जाएगा फसलों में, दूसरा जो खेत का जो उर्वरक है वो पानी के साथ आपका उसमें इकट्ठा हो गया तो फिर से आपके जो खेतों में आ जाएगा, तो ये भी आपका फायदा हो जाएगा।
2: जी बिल्कुल अनंत जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बताई, क्योंकि देखिए हम पानी को सिर्फ पानी की तरह लेते हैं कि एक पोषक तत्व है, जितने जो जरूरत होती है फसलों को उनमें से एक ये भी है, एक कंपोनेंट है महत्वपूर्ण, लेकिन उसके साथ न्यूट्रिएंट्स भी मिले, जो अनंता जी ने बताया कि आपके खेत की जो मिट्टी बहती है वो बहुत रिच होती है, वो बर्बाद ना जाए, उस पानी को बर्बाद आप बिल्कुल ना जाने दें, इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारे किसान इसके लिए अपने स्तर पर तैयारी करें, वहां पर भी जहां पर बारिश कम होती है और वहां पर भी जहां पर ज्यादा होती है, दोनों ही स्थिति में आपको अपने स्तर पर जरूर तैयार रहना चाहिए। अब बात मैं करती हूँ जनमणि जी से। जनमणि जी, जैसे कि हम वितरण की बात करें, देखिए सारा प्रबंधन जो है इसी बात पर फोकस हो जाता है कि कहीं बारिश ज्यादा ना हो जाए और कहीं बारिश कम ना हो जाए, लेकिन अगर एक समझने की हम कोशिश करें, एक मेरा सवाल है कि ये दरअसल वितरण कम हो क्यों रहा है, मतलब एक दिन एक क्षेत्र में देखते हैं बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, वहीं दूसरी जगह देखते हैं कि कम हो रही है, तो एवरेज तो आपका ज्यादा निकलता है लेकिन पानी जो है वो पूरी तरीके से नहीं हो पाता, प्यास धरती की नहीं बुझती।
5: देखिए मैं इसका ना जो डिस्कशन है दो बातें बताऊंगा, जो एक तो जो एरिया है जैसे उड़ीसा है या हमारा पूर्वोत्तर राज्य है, और जैसे हमारा पश्चिम का जो कोंकण गोवा कर्नाटक और केरल, यहाँ तो हर साल ज्यादा बारिश होता है, फ्लड होता है, ठीक है ना। इसकी जो वेरिएबिलिटी है कम है, चाहे मानसून कैसा भी परफॉर्म करो, लेकिन जो रेन है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, बहुत ज्यादा बारिश मिलता है, ठीक है। और अगर हम अंदरूनी इलाके का बात करें, जैसे मध्य प्रदेश है या ज्यादा से ज्यादा जो राजस्थान है, ये इलाके में जो है एक तो रेनफॉल का जो अमाउंट है 100 सेंटीमीटर या 120 सेंटीमीटर टोटल होता है, और राजस्थान में भी तो ऐसा इलाका है टोटल 50 सेंटीमीटर है। तो ये इलाके में जो मानसून का जो जैसे अभी डिस्कशन हो रहा है, यहाँ जो है जो हम रेनफेड एरिया बोलते हैं कि जहां बारिश कम होता है, उसके साथ साथ इसका जो वेरिएबिलिटी है, मतलब 6 दिन बारिश हुआ या 2 दिन बारिश हुआ फिर एकदम ड्राई स्पेल लंबा है, तो ज्यादा हमारा जो फोकस रहता है ये राजस्थान मध्य प्रदेश इसी इलाका का रहता है कि इनको सही इन्फॉर्मेशन मिले कि कब वेट स्पेल होगा, कब ड्राई स्पेल होगा, सो दैट जैसे दे कैन यूज दैट इन्फॉर्मेशन, पानी को स्टोर करना है कौन सा, यू नो सोइंग सीजन कौन सा टाइम में होता है, इसलिए वो मौसम विज्ञान विभाग से जो नियरेस्ट सेंटर है वहां से टाइम टू टाइम हमारा SMS जाता है उसका इस्तेमाल करें
2: जी। यानी जनाब मनी जी, जो भी प्रिडिक्शंस होते हैं, पूर्वानुमान होते हैं, इस पर हमारे किसान बहुत गौर करें, क्योंकि अगर उन्हें ये पता चलता है कि बहुत ज्यादा बारिश होने वाली, जैसे आपने बताया कि हैवी स्पेल की अगर संभावना बन रही है, तो किसान सिर्फ इस सीजन की फसल को ध्यान में रखते हुए अपने स्टेप्स ना उठाएं, बल्कि ये भी सोचें कि इस पानी को हम कैसे बचा सकते हैं। और जैसे कि हाल में हमने विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाया, उसमें भी फोकस यही था कि धरती एक ही है और पानी जो है इसे आप लैब में नहीं क्रिएट कर सकते हैं, बारिश होगी ऊपर से वही पानी आप इस्तेमाल करेंगे या फिर ग्राउंड वाटर होगा, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारे किसान पहले से किस तरीके से पानी को बचाया जाए ताकि आगे भी काम आए।
5: और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि एक तो वाटर मैनेजमेंट है, दूसरा क्या होता है कि क्रॉप का जो डिफरेंट स्टेज होता है, तो अकॉर्डिंगली जैसे हैवी स्पेल होता है तो पेस्ट एंड डिजीज और आपको जो भी खादी या कुछ भी फर्टिलाइजर डालना है तो वेट स्पेल में तो चला जाता है नीचे, ठीक है ना। तो इसलिए जो मौसम का भविष्यवाणी लेके नॉट ओनली कि आप लगाए धान कि कब आ रहा है मानसून, वो एक है, उसके बाद भी कम्प्लीटली मैनेजमेंट जो है वो मौसम का भविष्यवाणी पर होना चाहिए
2: जी जी।
5: जैसे पेस्ट डिजीज कंट्रोल है, जैसे फर्टिलाइजर लगाना है, तो बारिश को देखते या कब ड्राई स्पेल है वही विंडो में करना चाहिए।
2: शिवे जी, इस पे मुझे लगता है और बेहतर तरीके से बता पाएंगे, आप क्या बताना चाहेंगे सर, चाहे वो खाद डालने की बात हो या फिर पेस्ट मैनेजमेंट की बात करें, तो मौसम या फिर खासतौर पर बारिश की जो संभावना है उसको देखते हुए कैसे हमारे किसान कर सकते हैं।
6: देखिए, बारिश का जो है बहुत बड़ा महत्व है हमारे खाद्यान्न उत्पादन में, विशेषकर जो है खरीफ के मौसम में। ये एक तो पानी पौधों को डायरेक्ट मिलता है, दूसरे जो हमारा ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज होता है वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बाद में हम पंप सेट से ट्यूबवेल से पानी को निकालते हैं, तो उसके लिए भी रिचार्ज होना ग्राउंड वाटर बहुत जरूरी है, और ये वर्षा पर ही निर्भर करता है। तो इसका बहुत अच्छे ढंग से किसानों को सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि पानी एक ऐसी कॉमोडिटी है इसके बिना खेती नहीं की जा सकती, चाहे वो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर है चाहे इरीगेटेड है, कैसी भी कंडीशन है पानी बहुत जरूरी है। तो किसानों को, क्योंकि आजकल कृषि विज्ञान केंद्र हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर है और वहां पे जो मौसम की भविष्यवाणी की सूचना जाती है, और उन्होंने जो है अपने व्हाट्सएप मैसेज से किसानों को जोड़ रखा है, तो उनके हर किसानों के पास में कम्युनिटी सेंटर पे जाती है कि भी अगले 24 घंटे में क्या होने वाला है, बारिश होने वाली है या हवा तेज चलने वाली है, या हमको जो है खाद डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूंगा इस माध्यम से किसान भाइयों को जागरूक होने की जरूरत है, और उनको जो है समय समय पे जो भी उनको मैसेज मिलता है उसी अनुसार जो है, चाहे वो किसी खरपतवार नाशी का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे किसी इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस चीज को ध्यान में रखकर करें कि आज बारिश होने वाली है तो हम नहीं डालेंगे, यदि थोड़ा ड्राई स्पेल आ रहा है तो उस समय जो फर्टिलाइजर लगाएं, या हो सकता है उनका कुछ इरिगेशन देने की जरूरत पड़े तो इस तरीके से करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि क्रॉप की प्लानिंग भी इस तरीके से करनी चाहिए कि जैसे इंटरक्रॉपिंग है या मिक्स क्रॉपिंग है या इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है, ऐसे आयाम यदि वो अपनी कृषि पद्धति में लेकर आएंगे तो वहां पर पानी की उपयोग क्षमता बढ़ जाएगी और उसके साथ साथ उनकी आमदनी भी बढ़ेगी। और यदि कुछ दुर्भाग्यवश किसी कारणवश कुछ ड्राई स्पेल आ जाता है तो वहां पर फसल होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा, किसान भाई जो है इस चीज का भी ध्यान रखें कि उनके पास में कोई अवशेष बचा हुआ है किसी फसल का तो उसको जलाएं नहीं, बल्कि उसको मिट्टी के ऊपर छोड़ें, तो आच्छादन का काम करेगा, मल्चिंग का काम काम करेगा, उससे उनका जो है पानी का ह्रास कम होगा और उनकी जो है वाटर रिटेंशन
2: और कार्बन कंटेंट भी बढ़ेगा मिट्टी का।
6: बिल्कुल, ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट तो आत्मा मानी जाती है मिट्टी की, और वो जो है पोषक तत्व प्रबंधन के लिए बहुत जरूरी है। और जो हमारे जैसे माइक्रोबियल बायोमास है, माइक्रोबियल बायोमास कार्बन है, बैक्टीरिया, फंजाई, एक्टिनोमाइसिन, इनके लिए भी बहुत जरूरी है।
2: जी जी, लेकिन डॉक्टर शिवे, जैसे कि आपने बताया कि मौसम कैसा रहने वाला है, पूर्वानुमान देखे उसी के अनुसार चाहे सिंचाई करनी है या फिर पोषक तत्व प्रबंधन की बात करें, खाद डालें या कीटनाशक डालने हैं, उसी के अनुसार हमारे किसान अपनी योजना बनाए। लेकिन एक बात हम ये भी जानते हैं कि किसान जो एक पैटर्न फॉलो करता आ रहा है, मतलब जो पारंपरिक तौर पर कि इस फसल में इतनी सिंचाई लगनी है तो 21 दिन बाद हम पहली सिंचाई लगाएंगे, फिर इतने दिन बाद, तो वो भी ये बात सही है कि अगर वो डे मिस हो गया तो उसकी फसल में नुकसान होगा, तो इसे मतलब ये बड़ा जटिल हो जाता है, किसान कैसे समझे इसे?
6: समझने की जरूरत यह है कि यदि बारिश हो जाती है, जैसे क्रिटिकल स्टेज बताते हैं कि भी इस पे पानी देने की जरूरत पड़ती है। धान के अंदर हम बताते हैं कि जिस समय मैक्सिमम टिलिंग स्टेज हो या हमारी जो है बालियां निकलनी अंदर ही बढ़नी शुरू हो में, तो उस समय पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, और बालियां इनिशिएशन से बाली बाहर आने तक तो बिल्कुल भी पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी स्टेज को ध्यान में रखते हुए किसान भाई पानी का प्रबंधन कर सकते हैं, लेकिन उस समय यदि बारिश हो जाती है तो फिर पानी देने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से मक्का के अंदर जो है हमारी नी हाई स्टेज है, बहुत क्रिटिकल है पानी के लिए, तो उस समय पानी नहीं लगा तो लगेगा तो काफी नुकसान हो जाएगा। यदि बारिश हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बारिश होती है तो उस समय सप्लीमेंटल इरिगेशन कहते हैं उसको, पूरक सिंचाई कहते हैं, उस समय सिंचाई करेंगे तो उनकी पैदावार अच्छी होगी। इसी तरीके से जैसे हम मैं बताना चाहूंगा कि अरहर की फसल है, अरहर की फसल या मूंग उड़द की फसल को अभी डॉक्टर अनंत अवशिष्ट जी ने बताया कि बेड पर लगाना चाहिए, और आजकल ब्रॉड बेड पर लगा रहे हैं किसान, तो उसी पद्धति को अपनाना चाहिए। तो इस पद्धति को अपनाएंगे तो उनके यहाँ जल भराव की कोई समस्या होती है तो वो उससे नुकसान नहीं होगा, बल्कि हमारी फसल बच जाएगी, और उससे हमारा ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज होगा, बाहर नहीं जाएगा और जड़ों को भी नुकसान नहीं होगा। तो इस तरीके से यदि कुछ नए आयाम लेकर आएंगे बिजाई के लिए या क्रॉप एस्टेब्लिशमेंट के लिए, तो उनसे जो है ज्यादा हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा और हमारी फसल भी अच्छी होगी, और इसके साथ साथ जो हमारे जो दूसरे प्रबंधन के आयाम है वो भी अच्छे होंगे।
2: जी अनंता जी, आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि देखिए जैसे कि डॉक्टर शिवे बता रहे हैं कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा, लेकिन हम इस बात को भी समझते हैं कि जब किसान की फसल खेत में होती है या फिर बुआई कर देता है तो उसका सिर्फ और सिर्फ फोकस उसकी फसल होती है उस वक्त, वो उसके आगे पीछे नहीं सोचता, वो उसका पूरा ध्यान ही रहता कि मेरी फसल कैसे अच्छी हो। तो कैसे यहाँ पर एक सामंजस्य भी रहे और दोनों तरह से काम होते रहे, क्या बताएंगे?
7: जी, इसमें तो मैं किसान भाई बहनों को यह सलाह दूंगी कि उन्हें मौसम आधारित कृषि करनी चाहिए या मौसम आधारित कृषि प्रबंधन उसमें करना चाहिए, उन्हें समय समय पर मौसम की जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि अभी मानसून के समय जो मुख्य मौसमी तत्व होता है वो बारिश होती है, बारिश केवल सिंचाई के लिए नहीं, खरपतवार नियंत्रण करना है या आपका कीटनाशक है या आपका जो आपके बीमारियां आ रही हैं उसके प्रबंधन के लिए भी बहुत जरूरी है। जैसे कि अभी डॉक्टर सिवे बता रहे थे कि आपको कब सिंचाई देनी है, आप डिफरेंट स्टेज होती है इसमें आपको सिंचाई देते हैं, और किसान भाई बहन क्या करते हैं कि उसी में दे देता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि उन्होंने सिंचाई कर दी और उन्हें मौसम की जानकारी नहीं है, उसके तुरंत बाद बारिश आ गई, तो फसलों को जितना पानी चाहिए था उससे ज्यादा पानी उनको फसलों को मिल गया। तो हर चीज को अपना ऑप्टिमम जो कहते हैं उतनी जरूरत होती है, तो अगर ऑप्टिमम से ज्यादा उनको पानी मिल जाता है तो उनकी फसलें खराब हो सकती है। इसके अलावा जैसे खरपतवार नाशी डालना है या कीटनाशी डालना है, आपको बीमारियों से बचाना है अपनी फसलों को, तो किसान भाई बहनों को अगर इसकी सूचना नहीं है कि अगले 2-3 दिन में बारिश होने वाली है और उन्हें कीटनाशक आपके फसलों में डाल दिया, तो इसका क्या होगा कि तुरंत उसके बाद बारिश हो गई तो कीटनाशक उसका धुल जाएगा, और धुल के जो है ये आपका
2: मिट्टी को भी
7: दूषित करेगा और वहां से जो है वो ग्राउंड वाटर में चला जाएगा। और अगर आपका बारिश बहुत ज्यादा हो रही है तो रन ऑफ करके पानी के साथ बह के जो नजदीकी नाले हैं या नाले से होते होते जो नजदीक के तालाब है उनमें भी चला जाएगा, उसमें मछलियां हैं अन्य जलीय जंतु हैं,
2: प्रदूषित हो जाएगा, कंटैमिनेट हो जाएगा।
7: तो आपका देखो एक तो एनवायरमेंट पॉल्यूट होने से बच जाएगा अगर आपको मौसम की जानकारी है, आपकी मृदा प्रदूषित होने से बच जाएगा, आपका जो भूजल है वो प्रदूषित होने से बच जाएगा, और आपके जो जलीय जंतु हैं वो भी आपके बच सकते हैं। तो अगर आपको छोटी सी जानकारी एक मिल जाती है तो आपके इतने जो साइड फायदे हैं हम कहते हैं, ये फायदे आपके हो जाते हैं। इसके अलावा आपकी रिसोर्स सेविंग हो जाती है, क्योंकि आपने जो है पानी की आपकी बचत हो रही है, आपने पानी लगाया तो पानी लगाने में आपका लेबर का जो खर्चा आ रहा है या डीजल का खर्चा आ रहा है तो वो भी आपका बच जाता है, तो उनका जो नेट प्रॉफिट है वो बच जाता है।
8: बिल्कुल, देखिये यानी कुल मिलाकर ये भी कह सकते हैं कि मानसून

0: सुबह झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM आपरो रेडियो आपरी बातें।
1: आज हम बात कर रहे हैं मॉनसून और खेती की। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ता है और किसान कितने खुशहाल होंगे, उनकी आय में वृद्धि होगी, किस हद तक होगी, ये भी निर्भर करता है मॉनसून कैसा रहने वाला है। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर जयनमणि, जैसे ब्रेक से पहले मैंने कहा था कि ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। ठीक है, किसान मौसम पर नजर रखता है, मौसम के अनुसार अपनी योजना बनाना चाहता है, लेकिन सही समय पर सही जानकारी उसे मिलेगी तभी यह संभव होगा कि कल बारिश होने वाली है, तभी वो तैयारी करेगा ना कि आज वो सिंचाई ना लगाए। तो इसके लिए किस तरह का तंत्र बनाया जा रहा है, किसानों तक जानकारी पहुंचाई जा रही है?
2: देखिए, जो मेनली जो आजकल हमारा जो किसान भाई और बहन के साथ है, एक व्हाट्सएप ग्रुप हर जैसे ग्राम या डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ है, जहाँ हमारा जो लेटेस्ट है 4 बार पर डे बुलेटिन जाता है। तो उसमें हम दो तरीके का भेजता है, एक है एक नावकास्ट जाता है जो मेनली सडन डेवलपमेंट के बारे में बताता है। नेक्स्ट 2-3 घंटा है तो किसान भाई के लिए ज्यादा यूज नहीं है, लेकिन अपने सेफ्टी के लिए है। जैसे लाइटनिंग है जो सडनली लोगों के ऊपर, आप सभी को मालूम है बिहार झारखंड उड़ीसा में ज्यादा जाने जाता है, तो उनका सेफ्टी के लिए ये बहुत जरूरी है। वो एक SMS जाता है, उसमें ध्यान देना चाहिए अपना सेफ्टी के लिए, क्योंकि जून महीना में ज्यादा जान को खतरा रहता है, जून जुलाई में जैसे मानसून आगमन का टाइम होता है। और दूसरा एक है कि हमारा जो शॉर्ट रेंज है, मतलब 5 दिन तक जो प्रेडिक्शन है वो आता है, डेली हम लोग भेजते हैं, मैसेज के थ्रू में भेजते हैं। अगर कोई सीवियर वेदर है, लंबा स्पेल है, एक्टिव स्पेल है, मानसून आ रहा है, सारा डिटेल कवर करता है। और उसके साथ साथ एक एक्सटेंडेड रेंज, लंबा अवधि का 2 हफ्ते तक वैलिड है, हम भेजते हैं। वो 2 हफ्ते वाले जो 14 दिन का जो प्रेडिक्शन है वो जाता है। सभी किसान भाई जो हमारा व्हाट्सएप नंबर जो हमारा होता है, जैसे हर स्टेट में हमारा सेंटर है, तो अगर वो जैसे कृषि विज्ञान केंद्र का बात हो रहा था, अगर वहां संपर्क करे तो सारा डिटेल मिल जाएगा। तो आजकल का जो टेक्नोलॉजी है वो 80% to 90% एक्यूरेटली जो है ड्राई स्पेल है या ज्यादा बारिश होगा, कितना दिन बरसेगा, वो डिटेल्स आजकल से ही जा रहा है इन्फॉर्मेशन। तो इसलिए इसका इस्तेमाल जरूर करें। और मैं तो और बोलूंगा कि जो नावकास्ट है उसको अपना सेफ्टी के लिए जरूर व्यवहार करें, क्योंकि ज्यादा जाने जो है हमारा एग्रीकल्चर में जो काम करते हैं उन्हीं का भी जाता है। हम अगर पिछले स्टैटिस्टिक
1: बिल्कुल, और पिछली बार का मुझे भी याद भी आता है कि किस तरीके से आप बताए कि लाइटनिंग की वजह से
2: बिहार में जान भी गई, उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में।
1: जी, और डॉक्टर शिवे, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि हमारे जो किसान है मौसम देखते रहे, उसी के अनुसार अपनी पूरी जो स्ट्रेटजी है वो डेवलप करें, तो ऐसे में ये तो बात हुई सिंचाई की, तो क्या ये सिंचाई तक ही सीमित है या फिर पोषक तत्व प्रबंधन और बारिश का भी किसी तरह का संबंध है जिसे हमारे किसान ध्यान में रखें?
3: देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। किसान भाइयों को ये जानने की जरूरत है कि पानी है तो तभी वो अच्छे ढंग से पोषक तत्व प्रबंधन कर सकते हैं, पानी नहीं है तो फिर वो पोषक तत्व भी नहीं डालते हैं, क्योंकि पोषक तत्व जो है पानी से ही लिए जाते हैं, जड़ों के माध्यम से। तो इस तरीके से ध्यान करने की जरूरत है, जैसे बारिश बहुत ज्यादा हो गई है जिस दिन, तो उस दिन जो है उनको नाइट्रोजन नहीं डालनी चाहिए, जब तक पानी खेत में खड़ा है, धान के खेत में विशेषकर, क्योंकि धान हमारे भारत में लगभग 40 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल में होता है, सभी प्रदेश के अंदर होता है, तो उसमें जो है नाइट्रोजन का बहुत बड़ा ह्रास होता है। और नाइट्रोजन की उपयोग क्षमता धान के अंदर देखें वो 25 से 30% से ज्यादा नहीं है, बाकी लॉस ही होता है, चाहे अमोनिया गैस बनकर उड़ जाता है, चाहे नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस, या जो है फिर वो नाइट्रेट लीचिंग के द्वारा ग्राउंड वाटर में चला जाता है। तो ये ध्यान रखने की जरूरत है किसानों को कि जैसे हमारा ड्राई स्पेल आ रहा है तो उसमें जो है आप फोलियर फीडिंग कर सकते हैं, पानी का घोल बनाकर पर्णीय छिड़काव कर सकते हैं, और यदि आपकी बहुत ज्यादा बारिश हो गई है तो उस समय जो नाइट्रोजन देने की जरूरत नहीं है, बल्कि जब पानी निकल जाए खेत से तभी दें, तो इससे हमारी नाइट्रोजन की उपयोग क्षमता बढ़ेगी।

0: इसके साथ साथ आजकल बायो फर्टिलाइजर्स भी पानी के साथ साथ बहुत अच्छे पोषक तत्व प्रबंधन में हमारी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, अच्छी फसल लेने के लिए, मृदा स्वास्थ्य के लिए। इसका भी इस्तेमाल किसान भाइयों को जरूर करना चाहिए। और इसके साथ साथ जो है ग्रीन मैन्यूरिंग है या हमारा
1: हरी खाद वगैरह,
0: सड़ी गड़ी गोबर की खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, इनका भी इस्तेमाल करना चाहिए। इसके दो फायदे होते हैं, एक तो जो है हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, दूसरा हमारा जो फसल अच्छी होती है, और तीसरा जो हमारा ग्राउंड वाटर का रिचार्ज भी अच्छा होता है, क्योंकि ऐसी मृदा के अंदर जो है पानी का अवशोषण ज्यादा होता है तो पानी बह के नहीं जाता है ऐसी मृदाओं के अंदर। और जो हमारी वैसी मिट्टी होती है जिसमें हम ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट की कमी है, वहां पानी बह के भी चला जाता है और मिट्टी की उर्वरता शक्ति भी नहीं बढ़ती है। तो इस तरीके से पोषक तत्व प्रबंधन करें। अभी दूसरे जो है भारत सरकार ने और हमारा इफ्को जो है नैनो यूरिया बना रहा है, तो कुछ नाइट्रोजन उपरणीय छिड़काव से नैनो यूरिया के माध्यम से भी कर सकते हैं, इससे नाइट्रोजन की उपयोग क्षमता बढ़ेगी
1: और श्रम भी इसमें कम लगता है,
0: कम भी लगता है। और इसके साथ साथ कभी कभी हमारे जो सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और पौधों के अंदर दिखाई देते हैं कि भी जिंक की कमी होगी, आयरन की कमी होगी। विशेषकर मैं बताना चाहूंगा जैसे डायरेक्ट सीधी बिजाई धान की कर रहे हैं और अभी चली रही है पंजाब हरियाणा पश्चिम उत्तर प्रदेश में, ज्यादातर किसानों दूसरी जगह भी करते हैं, तो यदि शुरू में उनके यहाँ आयरन की हरिमाहीनता दिखाई देती है तो उसके लिए जो है पर्णीय छिड़काव से कर सकते हैं। बाद में जब बारिश होगी तो फिर उनको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बारिश अच्छी होती है तो फिर जो है आयरन की कमी नहीं होती है। तो ये सारी चीजें जो है पानी की और पोषक तत्व प्रबंधन का एक सामंजस्य है जो एक अच्छा मृदा स्वास्थ्य के लिए और अच्छी उत्पादकता के लिए और अच्छा जो है रिटर्न देने के लिए जरूरी है।
1: जी डॉक्टर अनंता, एक चीज हम ये भी देखते हैं कि कुछ क्षेत्रों में ऐसी ऐसी बीमारियां आ जाती हैं जो पहले नहीं होती है। तो अगर बारिश उस क्षेत्र में ज्यादा हो गई तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, आर्द्रता हो जाती है और उसके बाद बीमारियों अपने आप ही आने लगती है। तो इसको भी ध्यान में रखना चाहिए हमारे किसानों को, किस तरीके से इसको लेकर वो सजग रहें।
2: जी, जैसे कि आपने काफी अच्छा प्रश्न पूछा है, बरसात के मौसम में जो बीमारी और कीड़े आते हैं ये जो है एक तो तापमान और नमी आर्द्रता जो हम कहते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी उस पर निर्भर करते हैं। और विभिन्न जो आईसीआर के भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान है उन्होंने ऐसे कई मॉडल डेवलप किए हैं जो हम कहते हैं कि डिजीज फॉर वार्निंग मॉडल्स, वो जो है आपके जो मौसम के आधार पे आप उसकी पहले से वार्निंग दे सकते हैं कि फसल की आपकी ये फसल लगी हुई है और ये फसल की कौन सी स्टेज है और इसमें कौन सी बीमारी है, कीड़ा आने वाला है, तो इसकी फॉर वार्निंग पहले से पता चल जाती है मॉडल के आधार पर। तो ये जो है अलर्ट जो है हम किसान भाई बहनों को दे सकते हैं कि भाई आपकी ये फसल लगी है इसमें ये कीड़ा या बीमारी आ सकती है, तो आप पहले से इस फसल की निगरानी करना शुरू कर दीजिए। लेकिन इसके लिए किसान भाई लोगों को अपने जो निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र है या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के जो आपके अनुसंधान संस्थान है या आपकी कृषि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उनके संपर्क में, कृषि वैज्ञानिकों के संपर्क में तथा मौसम वैज्ञानिकों के संपर्क में रहना चाहिए और समय समय पर आपको जानकारी लेनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप जो है अपना मोबाइल पे जो है जैसे मेघदूत ऐप अभी बताया है या दामिनी ऐप है, इससे बिजली की आपको जानकारी मिल जाएगी। मेघदूत ऐप है इसमें आपको मौसम की जानकारी के साथ साथ ही कैसे आपको प्रबंधन करना है, मौसम आधारित कृषि प्रबंधन करना है, ये भी आप उसमें जान सकते हैं। तो इसके लिए आपको अपने मोबाइल में जो प्ले स्टोर से ये जो मेघदूत ऐप और दामिनी ऐप इसमें
1: ये बहुत अच्छा आपने बताया। जानकारी मेघदूत ऐप के बारे में तो काफी प्रचार प्रसार हुआ, दामिनी ऐप जो
3: लाइटनिंग
1: बारे में थोड़ा सा बताइए कि बिजली का प्रिडिक्शन भी पता चल सकता है।
3: देखिए बिजली का जो प्रिडिक्शन है वो मॉनिटरिंग है, हमारा जो सिस्टम है कहीं कहीं इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है उसके साथ साथ सैटेलाइट बेस्ड भी हम लोग को पता चलता है। तो आधा घंटे विद इन वन आवर वो मैसेज जाता है कि जस्ट फोर वार्निंग, मतलब कहीं इलाका में हो रहा है आगे जाएगा। तो उसको हम लोग ये जैसे बताए कि जो दामिनी ऐप है उसके थ्रू में आपको पता चलेगा कौन सा एरिया में वो एक्टिविटी चल रहा है या थोड़ा बहुत होने वाला है। अच्छा। वो मैपिंग के वजह से वो गूगल ऐप में दामिनी डाउनलोड करके कर सकते हैं बिजली की गिरने का जो है। और जैसे बताया मेघदूत, मेघदूत में आपका पूरा अपना एरिया का भी आप देख सकते हैं, लोकेशन और जो जगह है वहाँ क्या बारिश का संभावना है वो मिल सकता है डिटेल।
1: जी
2: इसके अलावा मैं कुछ यहाँ पे जैसे बरसात के मौसम में आप खरपतवार नियंत्रण करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बरसात के मौसम में आप देखते हैं कि खरपतवार काफी आती है और खरपतवार का जो मुख्य फसल है उससे काफी प्रतिस्पर्धा होती है, वो मृदा से पोषक तत्व तो लेती है, इसके साथ साथ जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है उसको भी बाध्य करती है, क्योंकि उनकी बढ़वार जो है मुख्य फसल से ज्यादा हो जाती है और वो जो मुख्य फसल है उसको प्रकाश कम मिलता है तो उसकी बढ़ोतरी रुक जाती है या कम हो जाती है, तो इसका काफी उपज की गुणवत्ता पे भी इसका असर पड़ता है। तो समय समय पर जो आपको खरपतवार नियंत्रण भी करना चाहिए, इससे आपके जो मृदा है उसमें भी क्या होगा कि जो हवा का आदान प्रदान अच्छे से होगा, हवा का आदान प्रदान अच्छा होगा तो आपकी जो जड़ें होंगी वो भी मजबूत होंगी, ज्यादा से ज्यादा पोषक तत्व वो जमीन से ले लेगी, अच्छे से आपका प्रकाश संश्लेषण होगा और आपकी जो उपज की गुणवत्ता है और उत्पादकता दोनों में बढ़ा होगा।
1: जी जी बिल्कुल। तो अभी आपने बताया, देखिए सुनने में बातें बहुत आम सी लगती है लेकिन इसका प्रभाव वह बहुत दूरगामी होता है और बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है फसलों पर। जयरमणि जी, जैसा कि हम मानसून की बात कर रहे हैं और पहले तो जो तरीका होता था कि विंड्स किस तरफ हवा बह रही है और आसमान में बादल छाए या नहीं छाए उसको देखकर अंदाजा लगाया जाता था, लेकिन अब तो सब चीजें बहुत सिस्टमैटिक हो गई, नई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर हम मानसून को ओवरऑल समझने की कोशिश करें तो हमारे देश का मानसून किस तरह का है, नेचर ऑफ मानसून क्या है?
3: नहीं देखिए, ये मतलब जानकर हम गर्व अनुभव करना चाहिए कि जो मानसून है वो भारत में सबसे ज्यादा रेन होता है। अगर सारा विश्व का जो क्लेम करते हैं, जैसे अमेरिका भी क्लेम करता है हमारा मानसून है, या कहीं भी आप जो ट्रॉपिकल एरिया है, मानसून मतलब विंड एक्चुअली मेनली हवा, हवा का गति एंड हवा का दिशा। तो हमारा भारत का ऐसा नेचर, मतलब हमारा जैसे लैंड है केरला से लेकर के हिमालय अगर जाए और हमारा दो जो समुन्द्र है जो अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है, तो ये बहुत अहम भूमिका निभाता है। हिमालय तो एक जो है जो हमारा हवा आ रहा है समुद्र से उसको रुकता है, अगर हिमालय नहीं होता तो हमारा ये पूरा रेगिस्तान बन जाता है, ठीक है ना। तो हमारा जो रेन का जो अमाउंट है वो भी बहुत ज्यादा है, जैसे अगर किसी के साथ कंपेयर करें तो मानसून का सबसे ज्यादा रेन होता है हमारा पूर्वोत्तर, सभी को मालूम है मौसिनराम है, चेरापूंजी है, उसके साथ साथ हमारा जो कोंकण का क्षेत्र है चाहे कर्नाटक का क्षेत्र है बहुत ज्यादा बारिश होता है, 2500 मिलीमीटर एक्चुअली 250 सेंटीमीटर 300 सेंटीमीटर। तो ये हमारा का पूरा साल का जो पानी है और बिजली भी है मानसून के ऊपर डिपेंड करता है कि खेती तो है ही है, उसके साथ साथ हमारा जो पूरा जीवन है मानसून के द्वारा नियंत्रित होता है, तो इसलिए मानसून बहुत अहम माना जाता है साउथ एशिया के लिए, पर्टिकुलरली हमारा भारत के लिए है।
1: जी जी शिवेश जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? क्रॉप के हिसाब से अगर हम बात करें, खरीफ की जो फसलें हैं अगर उनके बारे में एक एक करके और बारिश से जोड़कर अगर इसको थोड़ा समझना चाहें तो किस तरह से?
0: हाँ देखिए, जैसे भारत के अंदर जो लगभग खरीफ में जो राइस है, धान है, सभी प्रदेशों में उगाया जाता है, इसके लिए पानी की जरूरत पड़ती है, बिना पानी के धान नहीं हो सकता, तो इसके लिए बारिश का बहुत बड़ा रोल है। और जो ये हमारी खाद्यान्न की जो पूर्ति के लिए नहीं बल्कि विदेशी मुद्रा कमाने के लिए,
1: हमारी खाद्य सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है,
0: खाद्य सुरक्षा के लिए जरूरी है और इसके साथ साथ विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए भी जरूरी है। जैसे पिछले साल जो लगभग हमने 32-36 हजार करोड़ रुपए का जो है
1: रिकॉर्ड एक्सपोर्ट
0: धान का किया है, तो उससे अर्निंग हुई है, तो उस तरीके से धान के प्रबंधन के लिए जरूरी है कि पानी का जो है सदुपयोग करें। और विशेषकर मैं पंजाब हरियाणा में, क्योंकि बासमती की खेती होती है, यहाँ बताना चाहूंगा इस माध्यम से कि वो डायरेक्ट सीधी बिजाई करेंगे, डायरेक्ट सीडिंग करेंगे तो उसमें पानी की बचत होगी और पानी कम लगता है, लगभग उसमें 25-30% पानी की बचत हो सकती है, क्योंकि हमको जो है लगभग उसमें 20-22 इरीगेशन देनी पड़ती है, लेकिन जो ट्रांसप्लांटेड राइस है उसमें हमको जो 28-30 इरीगेशन देनी पड़ती है। साथ साथ ये भी बताना चाहूंगा, जैसे हम पडलिंग करते हैं उस समय यदि बारिश नहीं होती है तो उसमें लगभग हमारा 15 लाख लीटर पानी लग जाता है पडलिंग के अंदर, तो उस पानी की बचत कर सकते हैं हम सीधी बिजाई करके, लेकिन ये सीधी बिजाई जो है अभी कर लें वो बारिश आने से पहले ताकि उनका जमाव हो जाए, तो इस तरीके से जो है धान के अंदर पानी का प्रबंधन कर सकते हैं। लेकिन मक्का है, ज्वार है, बाजरा, इनको थोड़ा कम पानी की जरूरत पड़ती है, मक्का ज्वार बाजरे को हमेशा जो रेज बेड पर लगाना चाहिए, तो रिज पर लगाएंगे, उससे दो फायदे होंगे, एक तो उनकी फसल को नुकसान नहीं करेगा पानी यदि अधिक हो जाता है, और दूसरा उनका ग्राउंड वाटर कहीं पानी, खेत का पानी खेत में ही रहेगा, बाहर नहीं जाएगा, और ये हमारा स्लोगन भी है और ये हमारा विजन भी है,
1: खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में,
0: गांव का पानी गांव में ही रहे। तो इस तरीके से यदि बिजाई करेंगे वो मक्का ज्वार बाजरे के अंदर, तो उनकी फसल अच्छी होगी। और हमारा, मैं फिर दोबारा कहना चाहता हूँ, ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज होगा। अब बात आती है कपास, कपास बहुत हमारी हमारी प्रमुख
1: सफेद सोना भी कहा जाता है।
0: हाँ जी बिल्कुल, बहुत मतलब अच्छी क्रॉप है। तो लगभग जो ये पंजाब में भी, हरियाणा में भी होती है, राजस्थान में भी होती है, गुजरात में भी होती है, और हमारे लगभग महाराष्ट्र, हमारे जो मध्य प्रदेश में, इनमें सभी प्रदेशों में होती है। तो इसके लिए जो है आजकल ये बताते हैं हम कि रेज बेड पे लगाएं, रेज बेड पे लगाएंगे तो उनका ये फायदे होंगे कि दो लाइनें आ जाएंगी और दो लाइनों के बीच में खूड बन जाएगा, तो अधिक पानी होगा तो खूड के अंदर जो है वो अवशोषित हो जाएगा, फसल को नुकसान नहीं होगा। अब आती है जैसे गन्ने की बात, गन्ना एक हमारी बहुत ही कॉमर्शियल क्रॉप है, सभी जानते हैं, चीनी हमारे लिए बहुत जरूरी है, सभी खाते हैं लगभग, तो इसके लिए जो है पानी की बहुत जरूरत पड़ती है गन्ने के लिए। गन्ने के लिए पानी खेत से बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसकी जो है गन्ने की पानी जो सहन करने की क्षमता वो अधिक है और इसको पानी की भी ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो इसको भी जो है इस तरीके से जब लास्ट जुताई करें, लास्ट अर्थिंग करें, तो गन्ने के ऊपर जो है मिट्टी चढ़ा दें, मिट्टी चढ़ा देंगे तो उनकी जो है गूल बन जाएंगी और गूल के अंदर जो पानी रहेगा तो पानी बाहर बहकर नहीं जाएगा। और दूसरी बात यह है, यदि अधिक पानी भर भी जाता है गन्ने के अंदर तो गन्ने की फसल को जो है बांधने का जरूर सोचें, उसको जो है गिरने से बचाने के लिए। अब बात आती है जैसे हमारी जो है कुछ दाल वाली फसलें हैं, दाल वाली फसलें भी हमके लिए बहुत जरूरी है खाद्यान्न आपूर्ति के लिए, पोषण सुरक्षा के लिए भी प्रोटीन का स्रोत है। और विशेषकर जैसे हमारा अरहर है, अरहर दूसरे नंबर पर आती है चने के बाद में, और लगभग सभी प्रदेशों में इसकी खेती की जाती है, और लंबी अवधि की भी है, मध्य अवधि की भी है, और बहुत कम अवधि की भी किस्में पूसा ने निकाली है, पूसा अरहर 16 करके, वो भी लगा सकते हैं किसान भाई। तो पानी के अनुसार जो लगा सकते हैं, लेकिन उसको भी जो है रेज बेड पे लगाना चाहिए, यानी कि खूड बना कर जो हमारी बेड बनी हुई है उस पर लगाना चाहिए। और मूंग उड़द को तो पहले से ही बताते हैं 2-3 लाइन लग जाएंगी, और उसके बाद में जो है पानी का जो है कोई नुकसान नहीं होगा और फसल अच्छी होगी, या कीट प्रबंधन करने में या खरपतवार नियंत्रण में भी यदि रेज बेड पर लगाएंगे तो उसमें काम आता है।
1: और जो जो हमारे किसानों की एक ये शिकायत रहे या कहे समस्या रहती है कि दाल दलहन लेने में थोड़ा सा वो घबराते भी है कि बारिश अगर ज्यादा होगी तो फसल को नुकसान हो जाएगा, काफी सेंसिटिव होती है ये फसल, तो ऐसे में जैसा कि डॉक्टर शिवे आपने बताया कि रेज्ड बेड यानी कितना ऊंचा होना चाहिए, किस तरीके से मतलब रेज्ड बेड किस तरीके से?
0: लगभग जो है ये 5-8 सेंटीमीटर ऊंचा होता है और उस तरीके से उस पर लाइनें भी 2-3 आ जाती हैं। तो इसके यही फायदा होता है कि हमको खरपतवार नियंत्रण करना है तो खूड के अंदर जाके हम होइंग कर सकते हैं, या किसी को इंसेक्टीसाइड डालना है तो उसके खूड के अंदर चलकर डाल सकते हैं, और जो एक्सेस पानी है वो खूड के अंदर आ जाता है, वो जड़ों में नहीं रहता है, तो इसका ये फायदा है। तो रेज बेड जो है बहुत ही जरूरी है, हालांकि किसान कुछ क्षेत्रों में जागरूक हैं, लेकिन कुछ क्षेत्रों में अभी उनको जागरूक होने की जरूरत है ताकि उनकी फसल को वाटर लॉगिंग से बचाया जा सके और उनको किसी तरीके का कोई नुकसान ना हो।
1: जी, और डॉक्टर अनंता आप क्या बताना चाहेंगे, जो कीट और बीमारियों का प्रबंधन किस तरीके से किया जाए, क्योंकि हम देखते हैं कि दलहन में ये समस्या काफी रहती है?
2: इसके लिए आपको मौसम की जानकारी होनी जरूरी है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि मौसम आधारित फॉरवार्निंग मॉडल है, तो उस फॉरवार्निंग मॉडल के आधार पर आप जो आने वाले कीड़े और बीमारी की जानकारी समय पर ले सकते हैं। और जब मौसम आपका अच्छा है, मतलब बारिश नहीं हो रही है, उसी समय आप जो कीड़े या बीमारी को बचाने के लिए उसमें कीटनाशी का छिड़काव कर सकते हैं। जब अगर बारिश आने वाली है तो आप कभी भी उसमें छिड़काव न करें। और जैसे कि अभी डॉक्टर शिवे जी भी बता रहे थे कि धान के लिए और इनके लिए बारिश की मानसूनी जो वर्षा वो काफी अच्छी होती है, एक टाइप से वरदान है। और जो पिछले कई वर्षों के सांख्यिकीय आंकड़े हैं उनसे भी पता चला है कि अगर मानसूनी वर्षा, जैसे हम एक तो सिंचाई के रूप में पानी दे रहे हैं, दूसरा आपका जो मानसूनी वर्षा हो रही है, तो अगर मानसूनी वर्षा अच्छी हो रही है तो उससे जो फसल की जो गुणवत्ता होती है वो ज्यादा अच्छी होती है। इन दोनों में जो मानसूनी वर्षा है और फसल की गुणवत्ता उपज है, इसमें एक सकारात्मक रिलेशनशिप है। अगर आप सिंचाई का पानी ज्यादा देते हैं तो उसमें उतनी अच्छी गुणवत्ता नहीं आएगी बजाय आपकी मानसूनी वर्षा की। तो नहीं तो मेरी ये सलाह रहेगी कि आप जो मौसम के बारे में जानकारी अवश्य लें और अपने क्षेत्र में कौन सी फसल लगानी है, फसल का चुनाव उसी आधार पर करें कि आपके वहाँ पे कितनी बारिश होने वाली है। अगर बारिश ज्यादा होने वाली है तो जो पानी को नवीन क्रॉप है जैसे धान है या कपास है या गन्ना, वो वाली फसलें लगा सकते हैं। और अगर बारिश कम हो रही है तो वहाँ पे आप जैसे बाजरा है या दलहनी है या तिलहनी फसलें लगा सकते हैं, और उसमें समय समय पर मौसम आधारित प्रबंधन आप कर सकते हैं। इससे आपका नई रिसोर्स की तो सेविंग होगी, आपकी लागत में भी कम आएगी और आपकी जो उपज है उसकी गुणवत्ता अच्छी होगी, और अगर गुणवत्ता अच्छी है तो आपको उसका जो बाजार भाव भी अच्छा मिलेगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो मैं इसमें थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगा, जैसा आप पूछ रहे थे ना कैसा इंसेक्ट और डिजीज

0: प्रबंधन करें, और क्योंकि जैसा डॉक्टर अनंत अवस्थी जी ने पहले भी बताया था कि बरसात के दिनों में ह्यूमिडिटी ज्यादा होने की वजह से कीड़े मकोड़े और बीमारियां ज्यादा आती हैं, तो किसानों को ये सलाह देंगे हम कि वो जागरूक रहें, अपने खेतों में जाते रहें, देखते रहें कोई कीड़े मकोड़े तो नहीं आ गए हैं या कोई बीमारी तो नहीं आ गई है, अपने जो कृषि विज्ञान केंद्र नजदीक के हैं वहां से वो सलाह लेते रहें, और दूसरे जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के डेवलपमेंटल एजेंसी है उनसे कॉन्टेक्ट करते रहें, सही दवा का सही समय पर इस्तेमाल करें, और जब बारिश ना हो रही हो तभी जो है उसका स्प्रे करें, और ये आपको वार्निंग मिल जाती है कि भाई आज बहुत ज्यादा बारिश होने वाली है, फिर आपको जो है किसी दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, चाहे कोई डिजीज है चाहे कोई आपका
1: इंसान। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे मैं थोड़ा सा और ऐड करना चाहूंगी, एक भारत मौसम विज्ञान विभाग और आईसीएआर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से एक परियोजना, जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं ग्रामीण कृषि मौसम सलाह चलती है, तो ये हर केबीके में कृषि विज्ञान केंद्र है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, उसमें भी ये जानकारी जो है आप हर शुक्रवार और हर मंगलवार को ले सकते हैं कि आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहा, पिछले सप्ताह मौसम कैसा रहा, आगे आने वाले दिनों में क्या करवट बदलेगा, और मौसम आधारित कृषि प्रबंधन चाहे वो कीड़े भी
2: मतलब वो एग्री एडवाइजरी भी मतलब साथ साथ कृषि सलाह भी रहती है
1: आप वहां से ले सकते हैं।
2: बिल्कुल, तो देखिए कई तरह की व्यवस्था है किसानों के लिए कि उन्हें सही जानकारी, सटीक जानकारी और सही समय पर मिलती रहे, क्योंकि खेती में समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, और अगर आप कृषि में अनुशासन के साथ नहीं चलेंगे तो उसका नुकसान आपको फसलों के रूप में देखने को मिलेगा, यानी उस तरह की उपज आपको प्राप्त नहीं होगी। इसीलिए कहते हैं कि सब कुछ रुक सकता है लेकिन खेती नहीं रुकती है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि अब मौसम पूर्वानुमान को लेकर किसानों में किस तरह की जागरूकता है और किस हद तक उनका विश्वास पैदा हुआ है। छोटा सा ब्रेक।

0: सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपरो रेडियो आपरी बातें।
1: डॉक्टर जनमणि जी, जैसा कि मैंने ब्रेक से पहले कहा कि एक जो ट्रस्ट फैक्टर है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है कि अगर आपने पूर्वानुमान देखा है तो उसको बिल्कुल आप मानकर आगे बढ़ें। तो आपको किस तरह का फर्क लग रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से भी काफी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसका प्रभाव या फिर इसका असर किसानों पर किस तरह का देख रहे हैं आप?
2: नहीं, देखिए, जैसे जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे मैं महाराष्ट्र का बात करूं, कुछ कुछ राज्यों हैं जहां जो पेनिट्रेशन है, जिसको माना जाता है, बहुत ज्यादा है। महाराष्ट्र में तो हर कृषक के पास जो भी जागरूकता है पहुंचता है, ग्रामीण कृषि केंद्र है, जैसे वहां तक लेवल पर पूरा आयोजन है। लेकिन कुछ कुछ एरिया है, जैसे झारखंड एरिया है, कुछ एरिया बिकॉज जो टेक्नोलॉजी है, जैसे मोबाइल का पेनिट्रेशन हो, व्हाट्सएप का हो, तो जहां जहां नेटवर्किंग कम है, फिर भी मतलब जैसे ग्रामीण कृषि विज्ञान केंद्र में पहुंचता है। लेकिन कृषक का पर्सनल जागरूकता बहुत जरूरी है कि वो उनका जो जैसे बात हो रहा था, नियरेस्ट कहाँ है, इन्फॉर्मेशन कौन देता है, तो एक बार एक चैनल बन जाए और वो व्हाट्सएप जो ग्रुप है वहां मेंबर बन जाए, तो आपको देखिए एक तो मिलता है कि पिछले हफ्ते में कैसा बारिश था, और वो भी दर्शाता है, जैसे हमारा कलर भी रहता है, जैसे ग्रीन कलर मतलब बहुत ज्यादा बारिश चल रहा है, ठीक है ना, तो फ्लड का सिचुएशन क्या रहेगा, तो अपने आप को एक शिक्षणीय या शिक्षित हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं अनुरोध करूंगा सारे किसान भाई और बहन को कि वो जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ जरूर इस मानसून का पहले
1: जी जी
2: वहाँ दर्शन कर, वहाँ जाके विजिट करें
1: और
2: डिटेल उनसे ले,
1: विशेषज्ञों के टच में रहे, उनके संपर्क में रहे।
2: दूसरा मैं ये बोल रहा हूँ कि नॉट ओनली हमारा जो एग्रीकल्चर का जो क्रॉप है वो उसके लिए चाहिए, बट खुद का सेफ्टी के लिए भी। जैसे आजकल जो है जलवायु का परिवर्तन वजह से बारिश का जो परिमाण है बहुत बढ़ जाता है, एकदम से 400 मिलीमीटर, 500 पिछले साल देखे होंगे, कि
1: काफी नुकसान भी,
2: तो वो इन्फॉर्मेशन भी मिल जाता है उनको, नावकास्टिंग के रूप में, वार्निंग के रूप में, सब कुछ इन्फॉर्मेशन डिफरेंट टाइम स्केल में मिल जाता है, लोकेशन एरिया में भी।
1: बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर शिवे, क्योंकि अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्योंकि आपका लंबा अनुभव रहा है, किस तरह का प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था पर मॉनसून का आप देखते हो? कि हम देखते हैं कि जिस दिन भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से मॉनसून का प्रेडिक्शन होता है, तो अच्छा हुआ तो शेयर बाजार मुस्कुरा उठता है, अगर गड़बड़ रहता है तो मुरझा जाता है। तो इतना मतलब इतना प्रभाव है मॉनसून का हमारी अर्थव्यवस्था पर, उसे किस तरीके से उसका असर दिखाई देता है, तो क्या कहेंगे इसके बारे में?
3: देखिए, मॉनसून का जो है हमारी खेती पे बहुत आत्मनिर्भरता के लिए बहुत जरूरी है, हर मामले में, चाहे वो खाद्यान्न का उत्पादन है, चाहे दलहन उत्पादन है, चाहे तिलहन उत्पादन है, चाहे हमारी गन्ने की फसल है, चाहे हमारी धान की फसल है, सभी फसलों के लिए, क्योंकि खरीफ के मौसम में अधिक उत्पादन होता है हमारा, और बरसात के दिनों में यदि पानी का हम अच्छा सदुपयोग करते हैं और बरसात की सूचना मिल जाती है किसानों को, तो उनके चेहरे पे एक अलग से मुस्कान आ जाती है। वो क्यों आ जाती है? क्योंकि उनकी फसल जो है, हम कितना ही पानी दे लें धान और गन्ने के लिए, जब तक ऊपर से मानसून की बारिश नहीं होती तो ये दो फसलें बहुत अच्छे ढंग से नहीं होती। तो इस वजह से जो है हमारी अर्थव्यवस्था में जो मानसून का है बहुत बड़ा रोल है, चाहे हमारा खाद्यान्न उत्पादन है, चाहे एक्सपोर्ट में है, चाहे हमारा किसान की खुशहाली है, क्या हमारी देश की अर्थव्यवस्था है। तो उस समय जो है मैं ये कह सकता हूँ कि जो हमारा दक्षिण पश्चिमी मानसून है ये बहुत ही मतलब जरूरी है, और ये इसका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होना और समय से होना बहुत जरूरी है अच्छी पैदावार।
1: डॉक्टर अंता, अंत में आप क्या कहना चाहेंगे?
4: जी, जैसे कि अभी बताया कि मानसूनी वर्षा से काफी फायदा होता है, मैं तो ये कहूंगी कि अभी जो पूर्वानुमान है उसकी जो सटीकता है उसमें काफी अच्छा आ रहा है, क्योंकि पहले जैसे हम देते थे मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट जो हम देते थे IMD से जो मिलता था वो आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मिलता था, तो उसके आधार पर ही जो है मौसम आधारित परामर्श बनाए जाते हैं। लेकिन अब ये ब्लॉक लेवल पे आ गया है।
1: बिल्कुल।
4: तो जैसे ब्लॉक लेवल पे आने से इसकी जो है एक्यूरेसी जो है अच्छी हो गई है, तो अगर एक्यूरेसी अच्छी होगी तो जो मौसम आधारित हम सलाह दे रहे हैं वो भी आपकी अच्छी होगी, सटीक होगी, और उससे जो किसान भाई बहनों को ज्यादा फायदा होगा।
1: जी बिल्कुल। तो जानकारी का सटीक होना बहुत जरूरी होता है, और खासतौर पर जैसे कि हम कह रहे हैं जब खेती की बात करते हैं तो मौसम का क्या रोल है, क्या भूमिका है, ये शायद बताने की भी जरूरत नहीं है, ये हम सभी समझते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, आप स्टूडियो में आए और इतनी महत्वपूर्ण चर्चा पर आपने अपने अपनी राय रखी, और महत्वपूर्ण चर्चा में आपने जानकारी साझा की हमारे किसानों तक। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आप सुन रहे हैं है झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपरो रेडियो आपरी बातें।
5: रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा को सुना हमारे विशेषज्ञों द्वारा, ये जानकारी आपको दी जा रही थी। और खासतौर पर उन्होंने मौसम और खेती को हम किस तरीके से देख सकते हैं, खासतौर पर मौसम आधारित हम लोग खेती करते हैं कि अगर सामान्य से अधिक वर्षा हुई या सामान्य वर्षा हुई, किस क्षेत्र में कैसी वर्षा होगी, किस तरीके से हमें फसल को बोना चाहिए, ये सारी जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से दी। हमारा वक्त हो चुका है आज के कार्यक्रम खेती बाड़ी से जाने का। आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।
6: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।

नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के कलाकार के इस प्यारे से प्रोग्राम में, जहां कुछ ख्वाब आवाज बनकर सचते हैं, कुछ जज्बात गीतों में ढल जाते हैं, और जब दिल गाता है तो हर सुनने वाला अपना सा लगने लगता है। आज हम लेकर आए हैं कुछ ऐसे ही कलाकार जिनकी आवाज में सच्चाई है और सुरों में जादू। तो चलिए इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करें।

0: आज के कलाकार का एक और बहुत ही खूबसूरत सा एपिसोड लेकर हम हाजिर हैं, और आज जो टैलेंट हमारे साथ हैं वो हैं कीर्ति श्रीवास्तव मैम। बाकी जैसा मैं हमेशा करता हूँ, मैं कीर्ति मैम से ही पूछूंगा कि वो कहाँ हैं, क्या करती हैं, कौन हैं। तो कीर्ति मैम, आपका बहुत बहुत आभार, वेलकम टू आवर प्रोग्राम, आवर फैमिली। प्लीज़ हमें बताइए ना, आप कहाँ हैं, क्या करती हैं?
1: मैं लखनऊ में रहती हूँ और मैंने LLB किया हुआ है, और मैं वकालत मैंने करी है शादी से पहले, बट इस समय मैं हाउसवाइफ हूँ।
0: जी, बहुत खूब। तो लखनऊ तो वैसे भी नज़ाकत वालों का शहर है, आपको जान के थोड़ा सा आश्चर्य भी होगा। मैं कानपुर से बिलोंग करता हूँ, मेरी मम्मी पापा अभी भी कानपुर में ही हैं, तो लखनऊ आना जाना बहुत रेगुलर होता है मेरा। खैर, तो दोस्तों, आपने जाना कि कीर्ति जी एक एजुकेशन से वकील हैं और लखनऊ में रहती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उनका ये प्यारा सा प्रोग्राम उन्हीं के गाए हुए इस पहले गीत से।

0: बहुत ही सुंदर शुरुआत कीर्ति जी। चलिए आपको जानने के लिए, आपके संगीत के बारे में जानने के लिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को। और आपसे पूछना चाहूंगा कि म्यूजिक में, गायकी में आने की प्रेरणा, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन आपको किससे मिली?
1: एक्चुअली मैं, क्या है कि मेरे नाना जी एक शायर थे, मतलब, और मेरे जो मम्मी का साइड था, मम्मी बहुत अच्छा गाती थी, बट मेरे मतलब घर में, मतलब पापा को इतना म्यूजिक का बहुत ज्यादा नहीं था हमारे फैमिली में, बट ये गॉड गिफ्टेड था तो मुझे बहुत इंटरेस्ट था म्यूजिक में। तो मैं, यकीन नहीं होगा, मैं बचपन से, मैंने सीखा नहीं है, बट मैं रेडियो सुन सुन के, लता जी को सुन सुन के, बस मैंने उन्हीं से सीखा है, जो कुछ भी सीखा है मैंने।
0: बहुत खूब। तो दोस्तों, आपने जाना कि किस तरह के से कीर्ति जी ने लता जी को सुन सुनकर सीखा और म्यूजिक में इंटरेस्ट जगाया और गायकी की। चलिए तो फिर एक बहुत ही प्यारा सा गीत मैं पेश करता हूं कीर्ति जी की ही आवाज में।

0: बहुत खूब, बहुत प्यारा गीत। आगे बढ़ते हुए कीर्ति जी हमें बताइए ना, किस किस तरीके का म्यूजिक आपको पसंद है? देखिए आप तो ये कहेंगी कि म्यूजिक ही म्यूजिक पसंद है, लेकिन फिर भी म्यूजिक में कुछ तो अलग होता है ना, कि आप गजल पसंद करती हैं, फोक म्यूजिक पसंद करती हैं, शास्त्रीय संगीत पसंद करती हैं, या फिर सिंपल बॉलीवुड सिंगिंग पसंद करती हैं, क्लासिकल, क्या क्या चीज पसंद करती हैं आप पर्सनली?
1: हाँ, पर्सनली तो देखिए मुझे जो है वो म्यूजिक तो सभी को पसंद है, बट मुझे जो है लाइट क्लासिकल सॉन्ग्स मुझे बहुत पसंद आते हैं, लाइट म्यूजिक, और सेमी क्लासिकल सॉन्ग्स मुझे पसंद आते हैं।
0: ओके, जैसे कि कोई एग्जांपल देना चाहेंगे आप?
1: जैसे कि
0: जी
1: मैं सोच रही हूँ।
0: ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम।
1: हाँ, एक सॉन्ग मुझे बहुत पसंद है, वो सुर संगम का सॉन्ग है, लता जी का है, मैं काफिया बुलावे अपने मंदिर पा, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सॉन्ग।
0: अच्छा, उस तरीके के संगीत, उस तरीके की गायकी आपको पसंद है, करेक्ट?
1: हाँ हाँ जी, हाँ जी, सेमी क्लासिकल होता है, और बॉलीवुड म्यूजिक तो मुझे मतलब ओल्ड सॉन्ग्स थोड़े मुझे बहुत पसंद आते हैं, पुराने हिंदी सॉन्ग्स।
0: चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए फिर अगले गीत का आनंद उठाते हैं कीर्ति जी ने जो हमारे लिए रिकॉर्ड किया है।

0: बहुत खूब, बहुत सुंदर। कीर्ति जी, जब आप म्यूजिक में हैं, आप गायकी करती हैं, तो कुछ रियाज भी तो होता ही है। म्यूजिक में रियाज के बगैर तो बड़ा मुश्किल होता है, तो आपका रोज का रियाज होता है? और अगर होता है तो उसका रूटीन क्या है, कैसे करते हो आप?
1: नहीं, रियाज नहीं हो पाता है मेरा, क्योंकि अब चूंकि हाउस वाइफ हूँ तो इतना टाइम ही नहीं रहता है, तो वो तो नहीं हो पाता है। उसकी मुझे कमी बहुत खलती भी है। मन होता है कि मैं रियाज करूं, क्योंकि बचपन से मैं बस गा रही हूं, तो ऐसा कोई रियाज वगैरह तो मैंने नहीं किया।
0: ओके, तो दोस्तों आपने जाना कि कीर्ति जी ऐसा सच रियाज नहीं है, सच बहुत ज्यादा करती हैं। लेकिन कीर्ति जी, दिन में कोई एक गाना तो रिकॉर्ड करती हैं या हफ्ते में एक गाना रिकॉर्ड करती हैं, मतलब कुछ कैसे करती हैं आप? स्टार मेकर पे हैं, एसम्यूल? जी
1: नहीं, मैं एसम्यूल पे गाती हूँ, और दिन में मैं एसम्यूल पे तो जरूर गाती हूँ रोज। कभी हो गया तो नहीं गाया, कोई प्रॉब्लम आ गई या कोई इशू हुआ तो, अदरवाइज मैं, हो सकता है रियाज मेरा इसी से हो जाता हो। मैं रोज एक दो गाने तो गा ही लेती हूँ, किसी को ज्वाइन कर लिया, इनवाइट ऊपर ऐसे करके।
0: ओके, ऑलराइट ऑलराइट। मतलब ऐसा रियाज, मतलब जिस तरीके से सरगम करना या ऐसे करना,
1: वो रियाज होता? नहीं नहीं, वो नहीं हो पाता,
0: वो चीज नहीं है। ओके,
1: हाँ, वो नहीं हो पाता।
0: चलिए, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। अपने पैशन को एंजॉय करना भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए, आइए आगे बढ़ते हुए इस प्यारे से गीत का आनंद उठाते हैं। कीर्ति जी ने जो हमारे लिए गाया,

0: बहुत खूब बहुत खूब। तो चलिए कीर्ति जी, कुछ हल्की फुल्की बातें करते हैं। अगर आपको कोई जिन्न कहीं पर मिल जाए, इमामबाड़ा में या मे बी हजरतगंज में, जिन्न जिन्न कोई परी हाँ। कोई परी मिल जाए, चलिए कोई परी मान लीजिए, हाँ, जिन्न छोड़िए हाँ, परी हाँ, मिल हाँ। अगर आपको जिन्न से डर लगता हो तो परी पकड़ लीजिए और वो आपसे हाँ। कहे कि चलिए अपनी तीन इच्छाएं बताइए, मैं पूरी करूंगी। तो चलिए आपकी तीन इच्छाएं बताइए, कौन कौन सी आप चाहेंगी?
1: तीन इच्छाएं बस, सब अच्छा रहे, दुनिया में सब अच्छा रहे, एक दूसरे से लोग प्यार करें, नफरत हटे, बस और तुम्हें कुछ नहीं। उसी में मतलब मुझे लगता है कि एक दूसरे से प्यार करे इंसान, और ये नफरत और ये सब चीजें चली जाएं तो सुखी सुख है ना जीवन में, और अपने लिए तो क्या ही मांगना।
0: वाह क्या बात है, बहुत खूब। तो लीजिए दोस्तों, आप सब लोग खुश रहें, कीर्ति जी की यही दुआएं हैं। तो चलिए इसी प्रयास में कीर्ति जी की आवाज में एक प्यारा सा गीत सुनते हैं और आगे बढ़ते हैं।

0: बहुत खूब। तो आगे बढ़ते हुए कभी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इतना समय हो गया आपका गायकी में, आप गीत गाती रही हैं, तो कभी स्टेज पर जाने का मौका मिला?
1: हाँ, मैं स्टेज पे मैंने गाया पहले, पर शादी के बाद ये मौका मैंने मुझे नहीं मिला, क्योंकि मेरी फैमिली में म्यूजिक तो पसंद करते थे, बट स्टेज के ऊपर गाना उन लोग को पसंद नहीं था, तो मैंने स्टेज पे तो नहीं गाया, टीवी पे गाया मैंने, रेडियो स्टेशन पे गाया
0: शादी के बाद।
1: बट हाँ, शादी के बाद भी गाया मैंने, बट स्टेज पे मैंने प्रोग्राम्स नहीं किए।
0: अच्छा।
1: शादी के पहले ही किए हैं, जो किए हैं स्टेज प्रोग्राम्स।
0: ऑलराइट, चलिए ठीक है, एक्सपीरियंस तो हुआ ना, बस उसी चीज
1: की एक्सपीरियंस
0: उसी चीज की इंपॉर्टेंस होती है। चलिए तो आगे बढ़ते हुए आप ही की आवाज में गाया हुआ एक गीत हम अपने सारे सुनने वालों को पेश करते हैं, सुनते हैं इस चीज का, इस गीत का।

0: बहुत सुंदर, अमेजिंगली ब्यूटीफुल। क्या कभी कुछ ऐसा भी हुआ कि आपकी टैलेंट, आपकी जो प्रतिभा थी, वो गाना गाने से ऊपर उठकर लिखने पर भी गई? क्या आपने कुछ गीत या कविताएं कुछ लिखने की कोशिश की कभी?
1: नहीं, मैं छोटे पर मेरा मन था कि मैं कुछ लिखूं, मैं लिखती थी ऐसे ही, लेकिन मैंने, हाँ, मैं मेरी नाना जी गजल लिखते थे तो मैं उनकी गजल को कंपोज करती थी।
0: अरे वाह, दैट्स नाइस।
1: हाँ जी, वो मैं बचपन से, मैं नाइन्थ में थी जब, तो मैं मेरे टीचर ने एक मुझे गीत दिया था, क्योंकि मेरे पास म्यूजिक नहीं था, तो उन्होंने कहा क्या तुम इसको म्यूजिक इसका बना सकती हो, तो मैंने कहा ठीक है मैं ट्राई करती हूँ। मैं नाइन्थ में थी तो उस समय मैंने उसका म्यूजिक बनाया और अपनी मैम को सुनाया, फिर मैं उसको, मैंने परफॉर्म किया, मैं कॉम्पिटिशन्स में गई, वो जितने कॉम्पिटिशन्स में गई सब में वो फर्स्ट आया, और इसी को मैंने रिकॉर्ड किया रेडियो स्टेशन। जब मैं गई रेडियो स्टेशन में, जो ग्रेड का एग्जाम होता है, वो मैंने इसको गा के मतलब दिया और मैं वहां भी सेलेक्ट हो गई।
0: ओके, सो इसका मतलब यह है कि म्यूजिक कंपोज करना भी दरअसल आपको एक्सपीरियंस है उसका, आपको आता है।
1: हाँ, वो मैं अपने आप करती थी, मैं मतलब नाना की गजलों को, गीतों को मैं अपनी ही ट्यून में कंपोज करती थी,
0: बहुत
1: बनाती थी उसको।
0: बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, ये टैलेंट होना भी, ये प्रतिभा होना भी थोड़ा विलक्षण है, थोड़ा कम होता है लोगों में, बट कीर्ति जी ऐसा कर सकती हैं। बहुत खूब। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए एक और बहुत ही प्यारे से गीत का आनंद उठाएं।

0: बहुत अमेजिंगली ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सिंगिंग। तो मैम इसी पूरी जर्नी में आपने बताया आपने टीवी पे गए, आपने रेडियो पर गाया, स्टेज पर आप शादी से पहले गए, तो ऐसा कौन सा सम्मान, बहुत सारे सम्मान मिले ही होंगे तय बात है,
1: हाँ वो तो मिले हाँ,
0: तो ऐसा कौन सा सम्मान मिला है, ऐसा कौन सा पुरस्कार मिला है जिस पर आपको सबसे ज्यादा नाज है?
1: मुझे मैंने एक स्टेज प्रोग्राम किया था जिसमें कंपटीशन था और जिसमें मुझे स्वर कोकिला का अवार्ड मिला था वो मुझे बहुत अच्छा लगा था और वो मेरे बहुत दिल के करीब है।
0: कौन सा अवार्ड मैम?
1: सुर कोकिला का, स्वर कोकिला।
0: कहां पर, मतलब ये क्या प्रोग्राम?
1: लखनऊ में, हाँ लखनऊ में एक प्रोग्राम हुआ था स्वर संगम की तरफ से, तो उन्होंने मुझे ये अवार्ड दिया था।
0: बहुत खूब बहुत खूब, ये बड़ी अच्छी बात होती है दोस्तों, बड़ा अकॉम्प्लिशमेंट, बहुत ही गर्व महसूस होता है। तो चलिए,
1: हाँ, और वो दिया था मुझे उस समय चीफ मिनिस्टर थे, अरे तिवारी जी, क्या नाम,
0: नारायण दत्त तिवारी
1: जी, हाँ यस यस नारायण दत्त तिवारी जी के हाथों कर कमलों द्वारा मुझे वो अवार्ड दिया गया था।
0: बहुत बढ़िया, तो चलिए आगे बढ़ते हुए एक प्यारे से गीत का आनंद उठाते हैं।

0: बहुत खूब बहुत खूब। आपने जिस तरीके से बताया कि सेमी क्लासिकल बॉलीवुड सिंगिंग, बॉलीवुड सॉन्ग्स आपको पसंद आते हैं, तो आज के समय में जो सॉन्ग्स हो रहे हैं, गायकी हो रही है, लिरिक्स लिखी जा रही है, तो आपको क्या लगता है आज के समय में जो सिंगर्स हैं उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है?
1: चैलेंज तो देखिए है आजकल की, मुझे ऐसा फील होता है कि आप किसी की भी वॉइस सुनेंगे आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं कि ये किसकी है। लगता है कि सब एक ही जैसे गा रहे हैं, एक ही जैसी ट्यून, एक ही जैसा सॉन्ग, लिरिक्स भी बहुत अच्छे नहीं, मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो आज की जो सिंगिंग है वो टफ इसलिए क्योंकि सब एक ही जैसे गा रहे हैं। किसी को भी आप गवा देते हैं, किसी को भी आप कोई भी गाना है बस एक ही जैसा लगता है, तो वो दिल को नहीं छू रहा है। जो आज के सिंगर्स हैं उनका आप किसी भी आर्टिस्ट को, बहुत कम आर्टिस्ट हैं जिनको आप मतलब जान रहे हैं कि हाँ ये बहुत, अरिजीत को ले लीजिए या श्रेया घोषाल को ले लीजिए, पर जो पहले के जो सिंगर्स थे वो आज भी हमारे साथ चल रहे हैं। पर जो आज के सिंगर हैं उनको अपनी जो एक आइडेंटिटी बनाने में बहुत मतलब स्ट्रगल करना पड़ रहा है, ऐसा मुझे लगता है।
0: तो गड़बड़ कहां पर है, हु इज रिस्पॉन्सिबल, या फिर कहां कमी चल रही है? पिछले जब 60s से लेकर 90s तक शानदार गायकी होती रही, लिरिक्स लिखे जाते रहे, म्यूजिक बनता रहा, उसके बाद क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम हो गई?
1: लोगों की सोच बदली, लोगों का टेस्ट बदला, और वो टेस्ट लोगों का बदला इसलिए भी बदला क्योंकि आप जो परोस रहे हैं वो बहुत लोगों को अच्छा लगने लगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो फिल्में हमें जो परोसती हैं उनको, जो हमारे मन में रहता है उसको हम देख लेते हैं, तो हमको जो परोस रहे हैं वो हमें अच्छा लगने लगा, तो वो एक कंटेंट बन गया कि नहीं वही चीज है। तो ऐसा नहीं है, तो जो परोसी जा रही है चीजें वो लोगों को पसंद आ रही है। जो आजकल के बच्चे हैं, जो आजकल के वो है, वो फास्ट है, उनको ऐसा स्लो सॉन्ग या नहीं समझ में आता है। तो कमी तो है ही, समाज में भी कमी है। हमारे जो पेरेंट्स थे वो हमारे मतलब लिरिक्स पे बहुत ध्यान देते थे, हम लोग गाते भी थे तो लिरिक्स को ध्यान में रख के गाने गाते थे। आजकल के बच्चे किसी भी कोई भी गाना आपके सामने गा देते हैं, उनको पता नहीं होता है कि इसका मीनिंग क्या है या क्या है क्या नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आज अगर हम श्रोता लोग कम नहीं हुए हैं, श्रोता तो आज भी वैसे ही हैं, बट हमको ऐसे संगीत परोसा जा रहा है ना, तो वो लग रहा है कि हाँ चलो एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, लोग जबरदस्ती भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, नहीं भी पसंद आ रहा है तो बस चलने दो, ऐसे वाला हो रहा है।
0: ओके, बिल्कुल ठीक कहा आपने मैम। तो दोस्तों विचार करने की जरूरत है, विचार कीजिए और आइए तब तक इस प्यारे गीत का आनंद भी उठाएं, सोचें कि क्या हो रहा है।

0: बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर गायकी और बड़े ही सुंदर गीत आपने चुन चुन के हमारे लिए रिकॉर्ड किए हैं। चलिए,
1: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं
2: अपने अच्छे से आप नई तकनीकी के द्वारा खेती कर सकते हैं और अच्छा लाभ और मुनाफा कमा सकते हैं।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपनू रेडियो आपड़ी बातें। रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से कार्यक्रम खेती बाड़ी में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और साथियों, अभी आपने इन सफल किसानों की कहानी को सुना और जाना कि किस तरीके से उन्होंने अपने क्षेत्र में एक नया मुकाम हासिल किया है, यानी खेती के क्षेत्र में नया मुकाम हासिल किया है। उन्होंने योजनाओं का लाभ लिया है, उन्होंने आधुनिक पद्धति से खेती की है, उन्होंने वर्मी कम्पोस्ट पर जोर दिया है। तो तमाम प्रकार की उन्होंने योजनाओं का लाभ लेते हुए आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं कि सफल किसान के नाम से उनको जाना जाता है राजस्थान में। तो साथियों, हमें आशा है कि ऐसे ही हमारे किसान साथी अब सोच रहे होंगे कि हम भी एक उन्नतशील किसान बन सकते हैं। तो इसके लिए आपको हमें वैज्ञानिक पद्धति से खेती करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके लिए आप समय समय पर कृषि विस्तार अधिकारी अपने झाबुआ जिले में बैठे हुए हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं, खासतौर पर जो केबीके रहता है उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो नई नई पद्धति से और नई नई योजनाओं के साथ लाभ लेकर आप एक अच्छी पद्धति से खेती करके मुनाफा कमा सकते हैं, यही हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य है। मित्रों, अब हमारा समय होता है आज के कार्यक्रम खेतीबाड़ी कार्यक्रम से जाने का। आपकी हमारे फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात और चलते चलते आपको सुनवाते हैं एक और प्यारे से गीत को। नमस्कार।

0: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया व्हील 90.8 एफएम। आपनू रेडियो आपड़ी बातें। ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया व्हील 90.8 एफएम। आपनू रेडियो आपड़ी बातें।
1: नमस्कार साथियों, रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम सुनने वाले सभी किसान साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और अब हमारे किसान साथी बिल्कुल तैयारी में लग चुके होंगे क्योंकि थोड़ी थोड़ी बारिश भी अब होने लगी है। खासतौर पर देखा जाए अब मानसून भी आने की संभावना बताई जा रही है, ऐसे हमारे मौसम विभाग कह रहा है। खासतौर पर अगर झाबुआ जिले की बात करें तो 15.2 mm की बारिश अभी तक हो चुकी है, तो खुशी की बात है कि इस बार सामान्य वर्षा होने की संभावना बताई जा रही है। तो ऐसे में किसान साथी अपनी भरपूर तैयारी करें, पानी संरक्षण को लेकर काम करें। खासतौर पर अगर हम देखें कि जहां पर उबड़ खाबड़ जमीन है उसको एक सा कराएं, समतलीकरण करा लें, मेड़बंधान करा लें, तालाब का निर्माण भी करा सकते हैं। और किसान साथी तालाब अगर है तो उसका जीर्णोच्चारण भी करा सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो किसान साथियों को समझने वाली बात है। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम खेती बाड़ी में आज हम बात करने जा रहे हैं मानसून और खेती पर। आज महत्वपूर्ण चर्चा है, इसको आप सुनिएगा और हमारे जो विषय विशेषज्ञ हैं उनकी बातचीत को आप सुनकर अपने जीवन में जरूर अपनाइएगा। हम किस तरीके से खेती कर सकते हैं, खासतौर पर जो खरीफ की फसल आने वाली है उसको हम किस तरीके से लगा सकते हैं, कौन सी फसलें हैं जो लगा सकते हैं, क्या क्या तैयारी हमें करना चाहिए, आइए सुनते हैं इस खास रिपोर्ट को।
2: जी हाँ, मानसून का हम सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है और खास तौर पर दक्षिण पश्चिम मानसून की बात करें तो हमारी देश की अर्थव्यवस्था अगर कहें इस मानसून पर निर्भर करती है तो गलत नहीं होगी। खास तौर पर अगर खरीफ फसलों की बात करें तो बहुत हद तक इसकी निर्भरता रहती है और ऐसे में ये भी कह सकते हैं कि अगर मानसून की बारिश अच्छी होगी तो हमारे खेत लहलहाएंगे। तो इसीलिए आज हम बात करेंगे कि इस बार मानसून कैसा रहने वाला है, हमारे किसानों को अपने स्तर पर किस तरह की तैयारी करनी है और कैसे वर्षा जल संचयन भी वो कर सकते हैं। इन तमाम बिंदुओं पर आज हम बात करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ विशेष मेहमान स्टूडियो में हैं। आइए उनसे आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर आर के जैनमणि जी, जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग में। आप मानसून के चाल के बारे में बताएंगे, मानसून कैसा रहने वाला है इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। हमारे साथ डॉक्टर वाई शिवे जी हैं, प्रधान वैज्ञानिक हैं सस्य विज्ञान संभाग पूसा नई दिल्ली में, और शिवे जी हमें क्रॉप्स के बारे में जानकारी देंगे यानी अलग अलग जो फसलें हैं उनके बारे में। और डॉक्टर अनंता वशिष्ठ जी हैं, प्रधान वैज्ञानिक कृषि भौतिकी संभाग पूसा नई दिल्ली में। और अनंता जी से भी हम समझेंगे कि प्रबंधन किस तरीके से करें, मानसून भी है फसलें भी हैं तो इनके बीच का प्रबंधन किस तरह से होना चाहिए। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सभी मेहमानों के बारे में आपको हमने बता दिया है और आगे बात करते हैं मानसून के बारे में। तो इस बार मानसून कैसा रहने वाला है और इसका प्रभाव हमारी कृषि पर किस तरह से होता है, इन तमाम बातों को समेटे हुए देखिए हमारी रिपोर्ट।

0: फसलों की पैदावार के लिए काफी अहम मानी जाती है, यानी अगर मॉनसून अच्छा हो तो उपज भी भरपूर हो जाती है। लेकिन मॉनसून कमजोर हुआ तो इसका सीधा असर कृषि पर सूखे के रूप में पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए और खेती के लिए मॉनसून की अहमियत को समझते हुए मौसम विभाग हर साल मॉनसूनी वर्षा का पूर्वानुमान जारी करता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने दक्षिण पश्चिमी मॉनसून की वर्षा के दूसरे चरण के दीर्घावधि पूर्वानुमान में इस बार जून से सितंबर के दौरान मॉनसूनी बारिश के औसत से 96 से 104% रहने की संभावना जताई है। विभाग के मुताबिक इस बार पूरे देश में दक्षिण पश्चिमी मॉनसून की वर्षा के सामान्य रहने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक इस मॉनसून सीजन में मध्य भारत और दक्षिण प्रायद्वीप में सामान्य से ज्यादा बरसात होने की संभावना है। मध्य भारत में ओडिशा, पूर्वी पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ और छत्तीसगढ़ आते हैं। इन इलाकों में दूसरी फसलों के साथ मुख्य रूप से गेहूं, धान, कपास और दलहन की बुआई की जाती है। गुजरात में किसान मिर्च, जीरा जैसी फसलों की खेती भी करते हैं। ऐसे में यहाँ के किसानों के लिए मॉनसून की अच्छी बरसात अच्छी पैदावार की सौगात लेकर आती है। वहीं दक्षिण प्रायद्वीप में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, तटीय कर्नाटक, उत्तरी और दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी हिस्से, केरल और लक्षद्वीप आते हैं। इन इलाकों में मुख्य रूप से धान की खेती होती है। वहीं उत्तर पूर्व भारत और उत्तर पश्चिम भारत में बरसात के सामान्य रहने की संभावना है। उत्तर पूर्व भारत में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, गांगे पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार आते हैं। इन इलाकों में मुख्य रूप से धान की खेती होती है। उत्तर पश्चिम भारत में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान आते हैं। इन राज्यों में अन्य फसलों के अलावा गेहूं, धान और दलहन की खेती मुख्य रूप से की जाती है। हालांकि कई बार मॉनसून हर इलाके में एक जैसा नहीं बरसता, यानी कई बार कहीं कम और कहीं ज्यादा बरसात भी हो जाती है। आमतौर पर जिन इलाकों में मॉनसून के दौरान ज्यादा बरसात होती है, वहां किसान ऐसी फसलों की बुआई कर सकते हैं जिन्हें ज्यादा पानी की जरूरत होती है। जिन इलाकों में कम बरसात होती है, वहां किसान उन फसलों की बिजाई कर सकते हैं जिनकी पैदावार के लिए कम पानी की जरूरत हो। इसकी जानकारी किसान अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्रों से भी ले सकते हैं।
1: जो आप काम करने को कह रहे हैं,
2: रिपोर्ट देखिए जिसमें हमने आपको ये भी बताया कि जिन क्षेत्रों में ज्यादा बारिश की संभावना है वहां के किसान क्या करें, जहां पर बारिश थोड़ी कम रह जाती है वहां पर किसानों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या फिर किस तरह की फसलों या फिर किस्मों का उन्हें चुनाव करना चाहिए। बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले डॉक्टर जैनमणि जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, देखिए मॉनसून का इंतजार हर किसी को होता है, लेकिन किसान जो है उसका जीवन उसके ऊपर निर्भर करता है, उसकी आमदनी उसके ऊपर निर्भर करती है। सिर्फ मौसम में बदलाव, ठंड या गर्म का मतलब उससे उसका नहीं रहता। तो ऐसे में इस बार का मॉनसून कैसा रहने वाला है, क्या बताता है भारत मौसम विज्ञान विभाग?
3: देखिए, जो अभी तक हमारा जो प्रेडिक्शन आया है, जो भविष्यवाणी है, वो जून मंथ का मंथली जो रहेगा और कौन सा एरिया में कम रेन होगा और कौन सा एरिया में ज्यादा रेन होगा, और उसके साथ साथ पूरा जो सीजन है 1 जून से 1 जून से लेकर के 30 सितंबर तक सारा भारत में मानसून स्थिति क्या रहेगा। तो पहले अगर बात करें सारा भारत का, तो इस साल ऐसे कुछ फीचर्स नेगेटिवली नहीं है। तो हम अगर ग्लोबल फीचर्स का बात करें, जैसे लानीना चल रहा है और ऐसे ही अप्रैल मई में भी ज्यादा गर्मी हुआ है, तो ये सारा बहुत इंडिकेट करता है कि मानसून अच्छा रहेगा ओवरऑल जो है। अगर ऑल इंडिया रेनफॉल जो सारा भारत का बारिश का अगर हम हिसाब करें, तो पूरा सीजन में जो है टोटल रेन लगभग जो हमारा 89 सेंटीमीटर होता है वो नॉर्मल रहेगा। हम रादर बढ़ाया, इनका मान था 99%, हम 103% दिया अपडेट में। और उसके साथ साथ जून महीने का जो है, सभी को ये मैं बताना चाहता हूँ कि मानसून का जो आगमन होता है, ये एडवांस फेज में मानसून धीरे धीरे आगे बढ़ता है। हर साल का यही स्टोरी है, मतलब यही ऑब्जर्वेशन है, इसमें घबराने का कोई बात नहीं होना चाहिए और कुछ कुछ मीडिया जो बोलते हैं वो बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए। अभी जैसे हमारा जो रहेगा स्थिति, अभी पेनिनसुलर इंडिया जो दक्षिण भारत कवर

0: रहा है, आगे से भी केंद्रीय भारत और हमारा उत्तर पश्चिम भारत को भी आएगा। और यही है कि कौन सा डेट जो है, डेट तो वैरी करता है, कभी 10 दिन लेट में आता है, कभी 10 दिन पहले आता है। जैसे दिल्ली का अगर बात करें, पिछले साल बहुत लेट में आया,
1: 25 के बाद
0: जून 27 नॉर्मल डेट होता है, राजस्थान जुलाई फर्स्ट वीक होता है। तो लगभग जो प्रेडिक्शन है जून महीना का सेकेंड हाफ है वो बारिश अच्छा रहेगा, और उसके साथ साथ मानसून का जो आगमन है अभी तक जो आंकड़ा है कुछ डिले नहीं हुआ है, और महाराष्ट्र का कवर टाइम पर करेगा और केंद्रीय भारत भी टाइम पर करेगा।
1: बिल्कुल, तो अभी जो मानसून की चाल है या फिर रफ्तार है उसमें किसी तरह की हम तब्दीली नहीं देख रहे हैं, जो सामान्य रूप से जो होना चाहिए वैसा ही है। शिव साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि देखिए जो रिपोर्ट भी हमने दिखाई तो उसमें भी हमने बताया कि किस तरीके से कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पर बारिश बहुत ज्यादा हो जाती है, और जब हम एवरेज निकालते हैं पूरे देश का तो लगता है कि हाँ मानसून अच्छा रहा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन जो है वो एक बहुत बड़ी समस्या है, और किसानों को इसके लिए पहले से ही तैयार रहना पड़ेगा। आप जो अभी खासतौर पर जो खरीफ सीजन की फसलें हैं उनके लिए विशेष तौर पर क्या बताना चाहेंगे?
2: देखिए, मानसून जैसा कि इस साल नॉर्मल रहने की संभावना है, तो बहुत से क्षेत्रों में जो है अलग अलग किस्में लगाई जाती हैं, अलग अलग फसलें लगाई जाती हैं, तो उस अनुसार जो है किसानों को अपनी तैयारी करने की जरूरत है। जैसे विशेषकर मध्य प्रदेश के अंदर जो है सोयाबीन लगाई जाती है, महाराष्ट्र के अंदर जो है कपास लगाई जाती है, या छत्तीसगढ़ और झारखंड और बिहार के अंदर जो है धान का बहुत खेती होती है। इसके साथ साथ यदि हम उत्तरी भारत की बात करें, पंजाब हरियाणा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर जो है धान मक्का ज्वार बाजरा इनकी बहुत खेती होती है। लेकिन साथ साथ कुछ ऐसी फसलें भी हैं हमारी, जैसे दाल वाली फसलें हैं, अरहर है, मूंग है, उड़द है, इनकी खेती लगभग सभी क्षेत्रों में की जाती है खरीफ के मौसम में। लेकिन बात ये ध्यान रखने की है कि जो अपने क्षेत्र के लिए अनुमोदित किस्में उन्हीं को लगाएं, और उसके साथ साथ जो है इस चीज का भी ध्यान रखें, पानी यदि आपके यहाँ अच्छी बारिश हो रही है तो उसका जो है पूरा सदुपयोग करें। सदुपयोग करने का मतलब ये है कि पानी को बाहर ना जाने दें, और यदि पानी बहुत ज्यादा भर गया है, जैसे हमारी अरहर की है, मूंग की है, उड़द की है, तो वहाँ पानी निकालने की संभावना भी बढ़ जाती है,
1: बहुत जल्दी खराब भी हो जाती है फसलें, ये भी हम जानते हैं। अनंता जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी कि देखिए प्रबंधन बहुत जरूरी हो जाता है, रेन और क्रॉप इसके बीच में जब प्रबंधन की बात करते हैं तो इसे हम किस तरीके से समझें?
3: जी, जैसे कि अभी मानसून के समय में विभिन्न फसलें लगती हैं, जिसमें जैसे कुछ धान है, मक्का है, दलहनी फसलें हैं, तिलहनी फसलें हैं, इसके अलावा सब्जी वर्गीय फसलें भी लगती हैं। तो इसमें सभी फसलों को सामान रूप से पानी की जरूरत नहीं होती है। जैसे धान है उसको ज्यादा पानी की जरूरत होती है, तिलहनी या दलहनी फसलें हैं उनको कम पानी की जरूरत होती है। तो आपको जो उस हिसाब से जो पानी का जो प्रबंधन करना चाहिए फसलों में, जैसे अभी डॉक्टर सीवेज जी ने भी कहा है कि धान के लिए पानी की ज्यादा जरूरत होती है, तो आपको वहां पे जो ऐसे मैने ऊंची बना लीजिए, ताकि अगर बरसात का पानी आता है तो ज्यादा से ज्यादा पानी जो है आपके खेतों में रुक सके। आपकी जैसे तिलहनी फसलें हैं या दलहनी फसलें हैं या सब्जी वर्गीय फसलें हैं, तो ये पानी के प्रति काफी संवेदनशील होती है। अगर ज्यादा पानी बरस गया तो उनकी जो जड़ें होती है वो खराब होने की संभावना होती है। तो उसमें जो आप जल निकासी का प्रबंधन कर सकते हैं या फसलों को आप में लगा सकते हैं, जिससे जो है आपका पानी से नुकसान नहीं हो सकता। जैसे कि हम देख ही रहे हैं आजकल जलवायु परिवर्तन की वजह से जो वर्षा की तीव्रता है वो ज्यादा हो जाती है, और जो आपके रेनी डे हम जो कहते हैं कि वर्षा के दिन, उनमें कमी आ रही है। जैसे कि टोटल बारिश हम कहते हैं कि जो आपका मानसून वर्षा है वो तो आपकी उतनी ही रहेगी, लेकिन जो वितरण है वो आपका सामान्य नहीं रहता है। कभी आपकी बहुत ज्यादा बारिश आ जाती है, कभी आपका ड्राई पीरियड जो सूखा समय है फसलों के दो बारिश के बीच का समय वो ज्यादा रह जाता है। तो अगर आप जो ये जो पानी है जो पानी एकत्रित नहीं, तो आपको ये सलाह दूंगी कि आप खेत के पास में एक पौंडनुमा स्ट्रक्चर बना दीजिए, और जो बरसात का पानी आता है उसमें इकट्ठा हो जाएगा, साथ ही जो आप जल निकासी करते हैं खेतों से उसका पानी भी उसमें इकट्ठा हो जाएगा। और जब आपका जो सूखा पीरियड ज्यादा होता है उसमें आप जब पंप की मदद से वो जो पौंड में आपका पानी एकत्रित हुआ है उसको आप फसलों में डाल सकते हैं। इसके आपके कई फायदे होंगे, एक तो आपको पानी मिल जाएगा फसलों में, दूसरा जो खेत का जो उर्वरक है वो पानी के साथ आपका उसमें इकट्ठा हो गया तो फिर से आपके जो खेतों में आ जाएगा, तो ये भी आपका फायदा हो जाएगा।
1: जी बिल्कुल, अनंत जी आपने बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बताई, क्योंकि देखिए हम पानी को सिर्फ पानी की तरह लेते हैं कि एक पोषक तत्व है जितने जो जरूरत होती है फसलों को, उनमें से एक ये भी है, एक कंपोनेंट है महत्वपूर्ण, लेकिन उसके साथ न्यूट्रिएंट्स भी मिले, जो अनंता जी ने बताया कि आपके खेत की जो मिट्टी बहती है वो बहुत रिच होती है, वो बर्बाद ना जाए, उस पानी को बर्बाद आप बिल्कुल ना जाने दें। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारे किसान इसके लिए अपने स्तर पर तैयारी करें, वहां पर भी जहां पर बारिश कम होती है और वहां पर भी जहां पर ज्यादा होती है, दोनों ही स्थिति में आपको अपने स्तर पर जरूर तैयार रहना चाहिए। अब बात मैं करती हूं जनमणि जी से। जनमणि जी, जैसे कि हम वितरण की बात करें, देखिए सारा प्रबंधन जो है इसी बात पर फोकस हो जाता है कि कहीं बारिश ज्यादा ना हो जाए और कहीं बारिश कम ना हो जाए, लेकिन अगर एक समझने की हम कोशिश करें, एक मेरा सवाल है कि ये दरअसल वितरण कम हो क्यों रहा है? मतलब एक दिन एक क्षेत्र में देखते हैं बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, वहीं दूसरी जगह देखते हैं कि कम हो रही है, तो एवरेज तो आपका ज्यादा निकलता है लेकिन पानी जो है वो पूरी तरीके से नहीं हो पाता, प्यास धरती की नहीं बुझती।
0: देखिए मैं इसका ना जो डिस्कशन है दो बातें बताऊंगा। जो एक तो जो एरिया है जैसे उड़ीसा है या हमारा पूर्वोत्तर राज्य है और जैसे हमारा पश्चिम का जो कोंकण गोवा कर्नाटक और केरल, यहाँ तो हर साल ज्यादा बारिश होता है, फ्लड होता है, ठीक है ना। इसकी जो वेरिएबिलिटी है कम है, चाहे मानसून कैसा भी परफॉर्म करो लेकिन जो रेन है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, बहुत ज्यादा बारिश मिलता है, ठीक है। और अगर हम अंदरूनी इलाका का बात करें जैसे मध्य प्रदेश है या ज्यादा से ज्यादा जो राजस्थान है, ये इलाका में जो है एक तो रेनफॉल का जो अमाउंट है 100 सेंटीमीटर या 120 सेंटीमीटर टोटल होता है, और राजस्थान में भी तो ऐसा इलाका है टोटल 50 सेंटीमीटर है। तो ये इलाका में जो मानसून का जो जैसे अभी डिस्कशन हो रहा है, यहाँ जो है जो हम रेनफॉल एरिया बोलते हैं कि जहां बारिश कम होता है उसके

0: करते हैं। और जैसे कि हाल में हमने विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाया, उसमें भी फोकस यही था कि धरती एक ही है और पानी जो है इसे आप लैब में नहीं क्रिएट कर सकते हैं। बारिश होगी ऊपर से वही पानी आप इस्तेमाल करेंगे या फिर ग्राउंड वाटर होगा, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारे किसान पहले से किस तरीके से पानी को बचाया जाए ताकि आगे भी काम आए।
1: और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि एक तो वाटर मैनेजमेंट है, दूसरा क्या होता है कि क्रॉप का जो डिफरेंट स्टेज होता है तो अकॉर्डिंगली जैसे हैवी स्पेल होता है तो पेस्ट एंड डिजीज और आपको जो भी खादी या कुछ भी फर्टिलाइजर डालना है तो वेट स्पेल में तो चला जाता है नीचे, ठीक है ना। तो इसीलिए जो मौसम का भविष्यवाणी लेके नॉट ओनली कि आप लगाए धान कि कब आ रहा है मानसून, वो एक है, उसके बाद भी कम्प्लीटली मैनेजमेंट जो है वो मौसम का भविष्यवाणी पर होना चाहिए।
0: जी जी।
1: जैसे पेस्ट डिजीज कंट्रोल है, जैसे फर्टिलाइजर लगाना है तो बारिश को देखते या कब ड्राई स्पेल है वही विंडो में करना चाहिए।
0: जी शिवे जी, इस पे मुझे लगता है और बेहतर तरीके से बता पाएंगे। आप क्या बताना चाहेंगे सर, चाहे वो खाद डालने की बात हो या फिर पेस्ट मैनेजमेंट की बात करें, तो मौसम या फिर खासतौर पर बारिश की जो संभावना है उसको देखते हुए कैसे हमारे किसान कर सकते हैं?
2: देखिए, बारिश का जो है बहुत बड़ा महत्व है हमारे खाद्यान्न उत्पादन में, विशेषकर जो है खरीफ के मौसम में। ये एक तो पानी पौधों को डायरेक्ट मिलता है, दूसरे जो हमारा ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज होता है वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बाद में हम पंप सेट से ट्यूबवेल से पानी को निकालते हैं तो उसके लिए भी रिचार्ज होना ग्राउंड वाटर बहुत जरूरी है और ये वर्षा पर ही निर्भर करता है। तो इसका बहुत अच्छे ढंग से किसानों को सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि पानी एक ऐसी कमोडिटी है इसके बिना खेती नहीं की जा सकती, चाहे वो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर है चाहे इरीगेटेड है, कैसी भी कंडीशन है पानी बहुत जरूरी है। तो किसानों को, क्योंकि आजकल कृषि विज्ञान केंद्र हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर है और वहां पे जो मौसम की भविष्यवाणी की सूचना जाती है और उन्होंने जो है अपने व्हाट्सएप मैसेज से किसानों को जोड़ रखा है, तो उनके हर किसानों के पास में कम्युनिटी सेंटर पर जाती है कि भी अगले 24 घंटे में क्या होने वाला है, बारिश होने वाली है या हवा तेज चलने वाली है या हमको जो है खाद डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूंगा इस माध्यम से किसान भाइयों को जागरूक होने की जरूरत है और उनको जो है समय समय पर जो भी उनको मैसेज मिलता है उसी अनुसार जो है, चाहे वो किसी खरपतवार नाशी का इस्तेमाल कर रहे हैं चाहे किसी इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस चीज को ध्यान में रखकर करें कि आज बारिश होने वाली है तो हम नहीं डालेंगे, यदि थोड़ा ड्राई स्पेल आ रहा है तो उस समय जो फर्टिलाइजर लगाएं या हो सकता है उनका कुछ इरिगेशन देने की जरूरत पड़े तो इस तरीके से करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि क्रॉप की प्लानिंग भी इस तरीके से करनी चाहिए कि जैसे इंटरक्रॉपिंग है या मिक्स क्रॉपिंग है या इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है, ऐसे आयाम यदि वो अपनी कृषि पद्धति में लेकर आएंगे तो वहां पर पानी की उपयोग क्षमता बढ़ जाएगी और उसके साथ साथ उनकी आमदनी भी बढ़ेगी। और यदि कोई दुर्भाग्यवश किसी कारणवश कुछ ड्राई स्पेल आ जाता है तो वहां पर फसल होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती
0: जी,
2: है।
0: लेकिन जी सर,
2: एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा, किसान भाई जो है इस चीज का भी ध्यान रखें कि उनके पास में कोई अवशेष बचा हुआ है किसी फसल का तो उसको जलाएं नहीं बल्कि उसको मिट्टी के ऊपर छोड़ें, तो आच्छादन का काम करेगा, मल्चिंग का काम करेगा, उससे उनका जो है पानी का ह्रास कम होगा और उनकी जो है वाटर रिटेंशन
0: और कार्बन कंटेंट भी बढ़ेगा मिट्टी का।
2: बिल्कुल, ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट तो आत्मा मानी जाती है मिट्टी की और वो जो है पोषक तत्व प्रबंधन के लिए बहुत जरूरी है। और जो हमारे जैसे माइक्रोबियल बायोमास है, माइक्रोबियल बायोमास कार्बन है, बैक्टीरिया फंजाई एक्टिनोमाइसिन, इनके लिए भी बहुत जरूरी है।
0: जी, लेकिन डॉक्टर शिवे, जैसा कि आपने बताया कि मौसम कैसा रहने वाला है, पूर्वानुमान देखे उसी के अनुसार चाहे सिंचाई करनी है या फिर पोषक तत्व प्रबंधन की बात करें, खाद डालें या कीटनाशक डालें हैं, उसी के अनुसार हमारे किसान अपनी योजना बनाए। लेकिन एक बात हम ये भी जानते हैं कि किसान जो एक पैटर्न फॉलो करता आ रहा है, मतलब जो परंपरागत तौर पर कि इस फसल में इतनी सिंचाई लगनी है तो 21 दिन बाद हम पहली सिंचाई लगाएंगे फिर इतने दिन बाद, तो वो भी ये बात सही है कि अगर वो डे मिस हो गया तो उसकी फसल में नुकसान होगा, तो इसे मतलब ये बड़ा जटिल हो जाता है, किसान कैसे समझे इसे?
2: नहीं, समझने की जरूरत यह है कि यदि बारिश हो जाती है जैसे क्रिटिकल स्टेज बताते हैं कि भाई इस पर पानी देने की जरूरत पड़ती है, धान के अंदर हम बताते हैं कि जिस समय मैक्सिमम टिलिंग स्टेज हो या हमारी जो है बालियां निकलनी अंदर ही बढ़नी शुरू हो में तो उस समय पानी की कमी नहीं होनी चाहिए और बालियां इनिशिएशन से बाली बाहर आने तक तो बिल्कुल भी पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी स्टेज को ध्यान में रखते हुए किसान भाई पानी का प्रबंधन कर सकते हैं, लेकिन उस समय यदि बारिश हो जाती है तो फिर पानी देने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से मक्का के अंदर जो है हमारी नी हाई स्टेज है, बहुत क्रिटिकल है पानी के लिए, तो उस समय पानी नहीं लगा तो लगेगा तो काफी नुकसान हो जाएगा। यदि

0: बारिश हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नई बारिश होती है तो उस समय सप्लीमेंटल इरिगेशन कहते हैं उसको, पूरक सिंचाई कहते हैं, उस समय सिंचाई करेंगे तो उनकी पैदावार अच्छी होगी। इसी तरीके से जैसे हम, मैं बताना चाहूंगा कि अरहर की फसल है, अरहर की फसल या मूंग उड़द की फसल को अभी डॉक्टर अनंत अवशिष्ट जी ने बताया कि बेड पे लगाना चाहिए, और आजकल ब्रॉड बेड पे लगा रहे हैं किसान, तो उसी पद्धति को अपनाना चाहिए। तो इस पद्धति को अपनाएंगे तो उनके यहाँ जल भराव की कोई समस्या होती है तो वो उससे नुकसान नहीं होगा, बल्कि हमारी फसल बच जाएगी, और उससे हमारा ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज होगा, बाहर नहीं जाएगा और जड़ों को भी नुकसान नहीं होगा। तो इस तरीके से यदि कुछ नए आयाम लेकर आएंगे बिजाई के लिए या क्रॉप एस्टेब्लिशमेंट के लिए, तो उनसे जो है ज्यादा हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा और हमारी फसल भी अच्छी होगी, और इसके साथ साथ जो हमारे जो दूसरे प्रबंधन के आयाम है वो भी अच्छे होंगे।
1: जी अनंत जी, आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि देखिए जैसे कि डॉक्टर शिवे बता रहे हैं कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा, लेकिन हम इस बात को भी समझते हैं कि जब किसान की फसल खेत में होती है या फिर बुआई कर देता है तो उसका सिर्फ और सिर्फ फोकस उसकी फसल होती है, उस वक्त वो उसके आगे पीछे नहीं सोचता, वो उसका पूरा ध्यान नहीं रहता कि मेरी फसल कैसे अच्छी हो। तो कैसे यहाँ पर एक सामंजस्य भी रहे और दोनों तरह से काम होते रहे, क्या बताएंगे?
2: जी, इसमें तो मैं किसान भाई बहनों को यह सलाह दूंगी कि उन्हें मौसम आधारित कृषि करनी चाहिए या मौसम आधारित कृषि प्रबंधन उसमें करना चाहिए। उन्हें समय समय पर मौसम की जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि अभी मानसून के समय जो मुख्य मौसमी तत्व होता है वो बारिश होती है। बारिश केवल सिंचाई के लिए नहीं, खरपतवार नियंत्रण करना है या आपका कीटनाशक है या आपका जो आपके बीमारियां आ रही हैं उसके प्रबंधन के लिए भी बहुत जरूरी है। जैसे कि अभी डॉक्टर सिवे ही बता रहे थे कि आपको कब सिंचाई देनी है, आप डिफरेंट स्टेज होती है इसमें आपको सिंचाई देते हैं, और किसान भाई बहन क्या करते हैं कि उसी में दे देते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि उन्होंने सिंचाई कर दी और उन्हें मौसम की जानकारी नहीं है, उसके तुरंत बाद बारिश आ गई, तो फसलों को जितना पानी चाहिए था उससे ज्यादा पानी उनको फसलों को मिल गया। तो हर चीज को अपना ऑप्टिमम जो कहते हैं उतनी जरूरत होती है, तो अगर वो ऑप्टिमम से ज्यादा उनको पानी मिल जाता है तो उनकी फसलें खराब हो सकती है। इसके अलावा जैसे खरपतवार नाशी डालना है या कीटनाशी डालना है, आपको बीमारियों से बचाना है अपनी फसलों को, तो किसान भाई बहनों को अगर इसकी सूचना नहीं है कि अगले 2-3 दिन में बारिश होने वाली है और उन्हें कीटनाशक आपके फसलों में डाल दिया, तो इसका क्या होगा कि तुरंत उसके बाद बारिश हो गई तो कीटनाशक उसका धुल जाएगा, और धुल के जो है ये आपको
1: मिट्टी को भी
2: दूषित करेगा और वहां से जो है वो ग्राउंड वाटर में चला जाएगा।
1: जी, जी।
2: और अगर आपका बारिश बहुत ज्यादा हो रही है तो रन ऑफ करके पानी के साथ बह के जो नजदीकी नाले हैं या नाले से होते होते जो नजदीक के तालाब है उनमें भी चला जाएगा, उसमें मछलियां हैं, जलीय जंतु हैं,
1: प्रदूषित हो जाएगा, कंटैमिनेट हो जाएगा।
2: तो आपका देखो, एक तो एनवायरमेंट पॉल्यूट होने से बच जाएगा अगर आपको मौसम की जानकारी है, आपकी मृदा प्रदूषित होने से बच जाएगा, आपका जो भूजल है वो प्रदूषित होने से बच जाएगा, और आपके जो जलीय जंतु हैं वो भी आपके बच सकते हैं। तो अगर आपको छोटी सी जानकारी एक मिल जाती है तो आपके इतने जो साइड फायदे हैं हम कहते हैं ये फायदे आपके हो जाते हैं। इसके अलावा आपकी रिसोर्स सेविंग हो जाती है, क्योंकि आपने जो है पानी की आपकी बचत हो रही है, आपने पानी लगाया तो पानी लगाने में आपका लेबर का जो खर्चा आ रहा है या डीजल का खर्चा आ रहा है तो वो भी आपका बच जाता है, तो उनका जो नेट प्रॉफिट है वो बच जाता है।
1: बिल्कुल, देखिए यानी कुल मिलाकर ये भी कह सकते हैं कि मानसून का प्रिडिक्शन, उसका पूर्वानुमान कितना सटीक होगा इस पर भी आपकी आय निर्भर करती है, क्योंकि उसी के अनुसार आप आगे की जो कृषि क्रियाएं हैं के बारे में विचार कर सकते हैं, उनके बारे में स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, योजना बना सकते हैं। इसीलिए इस विषय को हमने आज शामिल किया अपने कार्यक्रम में, ताकि किसानों तक जागरूकता फैले और मॉनसून के चाल पर वो नजर रखें। लेकिन कई बार समस्या ये आती है कि किसानों तक इतनी सटीक जानकारी सही समय पर पहुंचे तो पहुंचे कैसे, क्योंकि हम ये भी देखते हैं कि मौसम की चाल इतनी तेजी से बदलती है कि किसान खुद भाप नहीं पाता। तो इसके लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं,

0: सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपरो रेडियो आपरी बातें।
1: आज हम बात कर रहे हैं मॉनसून और खेती की। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ता है और किसान कितने खुशहाल होंगे, उनकी आय में वृद्धि होगी, किस हद तक होगी, ये भी निर्भर करता है मॉनसून कैसा रहने वाला है। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर जनमणि, जैसे ब्रेक से पहले मैंने कहा था कि ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। ठीक है, किसान मौसम पर नजर रखता है, मौसम के अनुसार अपनी योजना बनाना चाहता है, लेकिन सही समय पर सही जानकारी उसे मिलेगी तभी यह संभव होगा कि कल बारिश होने वाली है, तभी वो तैयारी करेगा ना कि आज वो सिंचाई ना लगाए। तो इसके लिए किस तरह का तंत्र बनाया जा रहा है, किसानों तक जानकारी पहुंचाई जा रही है?
2: देखिए, जो मेनली जो आजकल हमारा जो किसान भाई और बहन के साथ है, एक व्हाट्सएप ग्रुप हर जैसे ग्राम या डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ है, जहां हमारा जो लेटेस्ट है 4 बार पर डे बुलेटिन जाता है। तो उसमें हम 2 तरीके का भेजता है। एक है, एक नावकास्ट जाता है जो मेनली सडन डेवलपमेंट के बारे में बताता है। नेक्स्ट 2-3 घंटा है तो किसान भाई के लिए ज्यादा यूज नहीं है, लेकिन अपने सेफ्टी के लिए है। जैसे लाइटनिंग है जो सडनली लोगों के ऊपर, आप सभी को मालूम है बिहार झारखंड उड़ीसा में ज्यादा जाने जाता है, तो उनका सेफ्टी के लिए ये बहुत जरूरी है। वो एक SMS जाता है, उसमें ध्यान देना चाहिए अपना सेफ्टी के लिए, क्योंकि जून महीना में ज्यादा जान को खतरा रहता है, जून जुलाई में जैसे मानसून आगमन का टाइम होता है। और दूसरा एक है कि हमारा जो शॉर्ट रेंज है, मतलब 5 दिन तक जो प्रेडिक्शन है वो आता है, डेली हम लोग भेजते हैं, मैसेज के थ्रू में भेजते हैं। अगर कोई सीवियर वेदर है, लंबा स्पेल है, एक्टिव स्पेल है, मानसून आ रहा है, सारा डिटेल कवर करता है। और उसके साथ साथ एक एक्सटेंडेड रेंज, लंबा अवधि का 2 हफ्ते तक वैलिड है, हम भेजते हैं। वो 2 हफ्ते वाले जो 14 दिन का जो प्रेडिक्शन है वो जाता है सभी किसान भाई, जो हमारा व्हाट्सएप नंबर जो हमारा होता है, जैसे हर स्टेट में हमारा सेंटर है, तो अगर वो जैसे कृषि विज्ञान केंद्र का बात हो रहा था, अगर वहां संपर्क करे तो सारा डिटेल मिल जाएगा। तो आजकल का जो टेक्नोलॉजी है वो 80% to 90% एक्यूरेटली जो है ड्राई स्पेल है या ज्यादा बारिश होगा, कितना दिन बरसेगा, वो डिटेल्स आजकल से ही जा रहा है इन्फॉर्मेशन। तो इसलिए इसका इस्तेमाल जरूर करें। और मैं तो और बोलूंगा कि जो नावकास्ट है उसको अपना सेफ्टी के लिए जरूर व्यवहार करें, क्योंकि ज्यादा जाने जो है हमारा एग्रीकल्चर में जो काम करते हैं उन्हीं का भी जाता है। हम अगर पिछले स्टैटिस्टिक
1: बिल्कुल, और पिछली बार का मुझे भी याद भी आता है कि किस तरीके से आप बताए कि लाइटनिंग की वजह से
2: बिहार में जान भी गई, उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में
1: जी। और डॉक्टर शिवे, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि हमारे जो किसान है मौसम देखते रहे, उसी के अनुसार अपनी पूरी जो स्ट्रेटजी है वो डेवलप करें, तो ऐसे में ये तो बात हुई सिंचाई की, तो क्या ये सिर्फ सिंचाई तक ही सीमित है या फिर पोषक तत्व प्रबंधन और बारिश का भी किसी तरह का संबंध है जिसे हमारे किसान ध्यान में रखें?
3: देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। किसान भाइयों को ये जानने की जरूरत है कि पानी है तो तभी वो अच्छे ढंग से पोषक तत्व प्रबंधन कर सकते हैं, पानी नहीं है तो फिर वो पोषक तत्व भी नहीं डालते हैं, क्योंकि पोषक तत्व जो है पानी से ही लिए जाते हैं जड़ों के माध्यम से। तो इस तरीके से ध्यान करने की जरूरत है। जैसे बारिश बहुत ज्यादा हो गई है जिस दिन, तो उस दिन जो है उनको नाइट्रोजन नहीं डालनी चाहिए, जब तक पानी खेत में खड़ा है, धान के खेत में विशेषकर, क्योंकि धान हमारे भारत में लगभग 40 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल में होता है, सभी प्रदेश के अंदर होता है, तो उसमें जो है नाइट्रोजन का बहुत बड़ा ह्रास होता है। और नाइट्रोजन की उपयोग क्षमता धान के अंदर देखें वो 25 से 30% से ज्यादा नहीं है, बाकी लॉस ही होता है, चाहे अमोनिया गैस बनकर उड़ जाता है, चाहे नाइट्रोस ऑक्साइड गैस, या जो है फिर वो नाइट्रेट लीचिंग के द्वारा ग्राउंड वाटर में चला जाता है। तो ये ध्यान रखने की जरूरत है किसानों को कि जैसे हमारा ड्राई स्पेल आ रहा है तो उसमें जो है आप फोलियर फीडिंग कर सकते हैं, पानी का घोल बना के पर्णीय छिड़काव कर सकते हैं, और यदि आपकी बहुत ज्यादा बारिश हो गई है तो उस समय जो नाइट्रोजन देने की जरूरत नहीं है, बल्कि जब पानी निकल जाए खेत से तभी दें, तो इससे हमारी नाइट्रोजन की उपयोग क्षमता बढ़ेगी। इसके साथ साथ आजकल बायो फर्टिलाइजर्स भी पानी के साथ साथ बहुत अच्छे पोषक तत्व प्रबंधन में हमारी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, अच्छी फसल लेने के लिए, मृदा स्वास्थ्य के लिए, इसका भी इस्तेमाल किसान भाइयों को जरूर करना चाहिए। और इसके साथ साथ जो है ग्रीन मैन्योरिंग है या हमारा
1: हरी खाद वगैरह,
3: सड़ी गड़ी गोबर की खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, इनका भी इस्तेमाल करना चाहिए। इसके दो फायदे होते हैं, एक तो जो है हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, दूसरा हमारा जो फसल अच्छी होती है, और तीसरा जो हमारा ग्राउंड वाटर का रिचार्ज भी अच्छा होता है, क्योंकि ऐसी मृदा के अंदर जो है पानी का अवशोषण ज्यादा होता है तो पानी बह के नहीं जाता है ऐसी मृदाओं के अंदर, और जो हमारी वैसी मिट्टी होती है जिसमें हम ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट की कमी है, वहां पानी बह के भी चला जाता है और मिट्टी की उर्वरता शक्ति भी नहीं बढ़ती है। तो इस तरीके से पोषक तत्व प्रबंधन करें। अभी दूसरे जो है भारत सरकार ने और हमारा इफको जो है नैनो यूरिया बना रहा है, तो कुछ नाइट्रोजन उपरणीय छिड़काव से नैनो यूरिया के माध्यम से भी कर सकते हैं, इससे नाइट्रोजन की उपयोग क्षमता बढ़ेगी
1: और श्रम भी इसमें कम लगता है,
3: कम भी लगता है। और इसके साथ साथ कभी कभी हमारे जो सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और पौधों के अंदर दिखाई देते हैं कि भी जिंक की कमी होगी, आयरन की कमी होगी, विशेषकर मैं बताना चाहूंगा जैसे डायरेक्ट सीधी बिजाई धान की कर रहे हैं और अभी चली रही है पंजाब हरियाणा पश्चिम उत्तर प्रदेश में ज्यादातर किसानों और दूसरी जगह भी करते हैं, तो यदि शुरू में उनके यहाँ आयरन की हरिमाहीनता दिखाई देती है तो उसके लिए जो है पर्णीय छिड़काव से कर सकते हैं, बाद में जब बारिश होगी तो फिर उनको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बारिश अच्छी होती है तो फिर जो है आयरन की कमी नहीं होती है। तो ये सारी चीजें जो है पानी की और पोषक तत्व प्रबंधन का एक सामंजस्य है जो एक अच्छा मृदा स्वास्थ्य के लिए और अच्छी उत्पादकता के लिए और अच्छा जो है रिटर्न देने के लिए जरूरी है।
1: जी डॉक्टर अनंता, एक चीज हम ये भी देखते हैं कि कुछ क्षेत्रों में ऐसी ऐसी बीमारियां आ जाती हैं जो पहले नहीं होती है, तो अगर बारिश उस क्षेत्र में ज्यादा हो गई तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, आर्द्रता हो जाती है और इसके बाद बीमारियों अपने आप ही आने लगती है, तो इसको भी ध्यान में रखना चाहिए हमारे किसानों को, किस तरीके से इसको लेकर वो सजग रहें।
4: जी जैसे कि आपने काफी अच्छा प्रश्न पूछा है, बरसात के मौसम में जो बीमारी और कीड़े आते हैं ये जो है एक तो तापमान और नमी आर्द्रता जो हम कहते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी उस पर निर्भर करते हैं, और विभिन्न जो आईसीएआर के भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान है उन्होंने ऐसे कई मॉडल डेवलप किए हैं जो हम कहते हैं कि डिजीज फॉरवार्निंग मॉडल्स, वो जो है आपके जो मौसम के आधार पे आप उसकी पहले से वार्निंग दे सकते हैं कि फसल की आपकी ये फसल लगी हुई है और ये फसल की कौन सी स्टेज है और इसमें कौन सी बीमारी है कीड़ा आने वाला है, तो इसकी फॉरवार्निंग पहले से पता चल जाती है मॉडल के आधार पर। तो ये जो है अलर्ट जो है हम किसान भाई बहनों को दे सकते हैं कि भाई आपकी ये फसल लगी है इसमें ये कीड़ा या बीमारी आ सकती है, तो आप पहले से इस फसल की निगरानी करना शुरू कर दीजिए। लेकिन इसके लिए किसान भाई लोगों को अपने जो निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र है या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के जो आपके अनुसंधान संस्थान है या आपकी कृषि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उनके संपर्क में, कृषि वैज्ञानिकों के संपर्क में तथा मौसम वैज्ञानिकों के संपर्क में रहना चाहिए और समय समय पर आपको जानकारी लेनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप जो है अपना मोबाइल पे जो है जैसे मेघदूत ऐप अभी बताया है या दामिनी ऐप है, इससे बिजली की आपको जानकारी मिल जाएगी। मेघदूत ऐप है इसमें आपको मौसम की जानकारी के साथ साथ ही कैसे आपको प्रबंधन करना है, मौसम आधारित कृषि प्रबंधन करना है, ये भी आप उसमें जान सकते हैं। तो इसके लिए आपको अपने मोबाइल में जो प्ले स्टोर से ये जो मेघदूत ऐप और दामिनी ऐप इसमें
1: जानकारी, मेघदूत ऐप के बारे में तो काफी प्रचार प्रसार हुआ, दामिनी ऐप जो
2: लाइटनिंग
1: का है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि बिजली का प्रिडिक्शन में पता चल सकता है।
2: देखिए बिजली का जो प्रिडिक्शन है वो मॉनिटरिंग है, हमारा जो सिस्टम है कहीं कहीं इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है उसके साथ साथ सैटेलाइट बेस्ड भी हम लोग को पता चलता है, तो आधा घंटे विद इन वन आवर वो मैसेज जाता है कि जस्ट फोर वार्निंग, मतलब कहीं इलाके में हो रहा है आगे जाएगा, तो उसको हम लोग ये जैसे बताए कि जो दामिनी ऐप है उसके थ्रू में आपको पता चलेगा कौन सा एरिया में वो एक्टिविटी चल रहा है या थोड़ा बहुत होने वाला है। अच्छा। वो मैपिंग के वजह से वो गूगल ऐप में दामिनी डाउनलोड करके कर सकते हैं बिजली की गिरने का जो है, और जैसे बताया मेघदूत, मेघदूत में आपका पूरा अपना एरिया का भी आप देख सकते हैं, लोकेशन और जो जगह है वहाँ क्या बारिश का संभावना है वो मिल सकता है डिटेल।
4: जी इसके अलावा मैं कुछ यहाँ पे जैसे बरसात के मौसम में आप खरपतवार नियंत्रण करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बरसात के मौसम में आप देखते हैं कि खरपतवार काफी आती है और खरपतवार का जो मुख्य फसल है उससे काफी प्रतिस्पर्धा होती है, वो मृदा से पोषक तत्व तो लेती है इसके साथ साथ जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है उसको भी बाध्य करती है, क्योंकि उनकी बढ़वार जो है मुख्य फसल से ज्यादा हो जाती है और वो जो मुख्य फसल है उसको प्रकाश कम मिलता है तो उसकी बढ़ोतरी रुक जाती है या कम हो जाती है, तो इसका काफी उपज की गुणवत्ता पे भी इसका असर पड़ता है। तो समय समय पर जो आपको खरपतवार नियंत्रण भी करना चाहिए, इससे आपके जो मृदा है उसमें भी क्या होगा कि जो हवा का आदान प्रदान अच्छे से होगा, हवा का आदान प्रदान अच्छा होगा तो आपकी जो जड़े होंगी वो भी मजबूत होंगी, ज्यादा से ज्यादा पोषक तत्व वो जमीन से ले लेगी, अच्छे से आपका प्रकाश संश्लेषण होगा और आपकी जो उपज की गुणवत्ता है और उत्पादकता दोनों में बढ़ाव होगा।
1: जी जी बिल्कुल। तो अभी आपने बताया, देखिए सुनने में बातें बहुत आम सी लगती है लेकिन इसका प्रभाव बहुत दूरगामी होता है और बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है फसलों पर। जयरमणी जी, जैसा कि हम मॉनसून की बात कर रहे हैं और पहले तो जो तरीका होता था कि विंड्स की किस तरफ हवा बह रही है और आसमान में बादल छाए या नहीं छाए उसको देखकर अंदाजा लगाया जाता था, लेकिन अब तो सब चीजें बहुत सिस्टमैटिक हो गई, नई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर हम मॉनसून को ओवरऑल समझने की कोशिश करें तो हमारे देश का मॉनसून किस तरह का है, नेचर ऑफ मॉनसून क्या है?
2: देखिए ये मतलब जानकर हम गर्व अनुभव करना चाहिए कि जो मानसून है वो भारत में सबसे ज्यादा रेन होता है। अगर सारा विश्व का जो क्लेम करते हैं, जैसे अमेरिका भी क्लेम करता है हमारा मानसून है, या कहीं भी आप जो ट्रॉपिकल एरिया है, मानसून मतलब विंड एक्चुअली मेनली हवा, हवा का गति एंड हवा का दिशा। तो हमारा भारत का ऐसा नेचर, मतलब हमारा जैसे लैंड है केरला से लेकर के हिमालय अगर जाए और हमारा दो जो समुन्द्र है जो अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है, तो ये बहुत अहम भूमिका निभाता है। हिमालय तो एक जो है जो हमारा हवा आ रहा है समुद्र से उसको रुकता है, अगर हिमालय नहीं होता तो हमारा ये पूरा रेगिस्तान बन जाता है, ठीक है ना। तो हमारा जो रेन का जो अमाउंट है वो भी बहुत ज्यादा है। जैसे अगर किसी के साथ कंपेयर करें तो मानसून का सबसे ज्यादा रेन होता है

0: हमारा पूर्वोत्तर, सभी को मालूम है मोहसिन राम है, चेरापूंजी है, उसके साथ साथ हमारा जो कोंकण का क्षेत्र है चाहे कर्नाटक का क्षेत्र है, बहुत ज्यादा बारिश होता है। 2500 मिलीमीटर एक्चुअली, 250 सेंटीमीटर 300 सेंटीमीटर, तो ये हमारा का पूरा साल का जो पानी है और बिजली भी है मानसून के ऊपर डिपेंड करता है कि खेती तो है ही है, उसके साथ साथ हमारा जो पूरा जीवन है मानसून के द्वारा नियंत्रित होता है। तो इसीलिए मानसून बहुत अहम माना जाता है साउथ एशिया के लिए, पर्टिकुलरली हमारा भारत के लिए है।
1: जी जी, शिवेश जी आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? क्रॉप के हिसाब से अगर हम बात करें, खरीफ की जो फसलें हैं अगर उनके बारे में एक एक करके और बारिश से जोड़कर अगर इसको थोड़ा समझना चाहें तो किस तरह से?
2: हाँ देखिए, जैसे भारत के अंदर जो लगभग खरीफ में जो राइस है, धान है, सभी प्रदेशों में उगाया जाता है, इसके लिए पानी की जरूरत पड़ती है, बिना पानी के धान नहीं हो सकता, तो इसके लिए बारिश का बहुत बड़ा रोल है। और जो ये हमारी खाद्यान्न की जो पूर्ति के लिए नहीं बल्कि विदेशी मुद्रा कमाने
1: के लिए, खाद्य सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है,
2: खाद्य सुरक्षा के लिए जरूरी है और इसके साथ साथ विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए भी जरूरी है। जैसे पिछले साल जो लगभग हमने 32-36 हजार करोड़ रुपए का जो है
1: रिकॉर्ड एक्सपोर्ट
2: धान का किया है, तो उससे अर्निंग हुई है। तो उस तरीके से धान के प्रबंधन के लिए जरूरी है कि पानी का जो है सदुपयोग करें, और विशेषकर मैं पंजाब हरियाणा में क्योंकि बासमती की खेती होती है, यहाँ बताना चाहूंगा इस माध्यम से कि वो डायरेक्ट सीधी बिजाई करेंगे, डायरेक्ट सीडिंग करेंगे, तो उसमें पानी की बचत होगी और पानी कम लगता है, लगभग उसमें 25-30% पानी की बचत हो सकती है, क्योंकि हमको जो है लगभग उसमें 20-22 इरीगेशन देनी पड़ती है, लेकिन जो ट्रांसप्लांटेड राइस है उसमें हमको जो 28-30 इरीगेशन देनी पड़ती है। अब साथ साथ ये भी बताना चाहूंगा, जैसे हम पडलिंग करते हैं उस समय यदि बारिश नहीं होती है तो उसमें लगभग हमारा 15 लाख लीटर पानी लग जाता है पडलिंग के अंदर, तो उस पानी की बचत कर सकते हैं हम सीधी बिजाई करके, लेकिन ये सीधी बिजाई जो है अभी कर लें वो बारिश आने से पहले ताकि उनका जमाव हो जाए। तो इस तरीके से जो है धान के अंदर पानी का प्रबंधन कर सकते हैं, लेकिन मक्का है, ज्वार है, बाजरा, इनको थोड़ा कम पानी की जरूरत पड़ती है। मक्का ज्वार बाजरे को, मक्का ज्वार बाजरे को हमेशा जो रेज बेड पर लगाना चाहिए, रिज पर लगाना चाहिए, तो रिज पर लगाएंगे उससे दो फायदे होंगे, एक तो उनकी फसल को नुकसान नहीं करेगा पानी यदि अधिक हो जाता है, और दूसरा उनका ग्राउंड वाटर पानी खेत का पानी खेत में ही रहेगा, बाहर नहीं जाएगा, और ये हमारा स्लोगन भी है और ये हमारा विजन भी है,
1: खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में,
2: गांव का पानी गांव में ही रहे। तो इस तरीके से यदि बिजाई करेंगे वो मक्का ज्वार बाजरे के अंदर तो उनकी फसल अच्छी होगी, और हमारा, मैं फिर दोबारा कहना चाहता हूँ, ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज होगा। अब बात आती है कपास, कपास बहुत हमारी प्रमुख
1: कमर्शियल
2: क्रॉप है। हाँ जी बिल्कुल, बहुत मतलब अच्छी क्रॉप है, तो लगभग जो ये पंजाब में भी, हरियाणा में भी होती है, राजस्थान में भी होती है, गुजरात में भी होती है, और हमारे लगभग महाराष्ट्र, हमारे जो मध्य प्रदेश में, इनमें सभी प्रदेशों में होती है। तो इसके लिए जो है आजकल ये बताते हैं हम कि रेज बेड पे लगाएं, रेज बेड पे लगाएंगे तो उनका ये फायदे होंगे कि दो लाइनें आ जाएंगी और दो लाइनों के बीच में खूड बन जाएगा, तो अधिक पानी होगा तो खूड के अंदर जो है वो अवशोषित हो जाएगा, फसल को नुकसान नहीं होगा। अब आती है जैसे गन्ने की बात, गन्ना एक हमारी बहुत ही कमर्शियल क्रॉप है, सभी जानते हैं, चीनी हमारे लिए बहुत जरूरी है, सभी खाते हैं लगभग, तो इसके लिए जो है पानी की बहुत जरूरत पड़ती है गन्ने के लिए। गन्ने के लिए पानी खेत से बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसकी जो है गन्ने की पानी जो सहन करने की क्षमता वो अधिक है और इसको पानी की भी ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो इसको भी जो है इस तरीके से जब लास्ट जुताई करें, लास्ट अर्थिंग करें, तो गन्ने के ऊपर जो है मिट्टी चढ़ा दें, मिट्टी चढ़ा देंगे तो उनकी जो है गूल बन जाएंगी और गूल के अंदर जो पानी रहेगा तो पानी बाहर बहकर नहीं जाएगा। और दूसरी बात यह है यदि अधिक पानी भर भी जाता है गन्ने के अंदर तो गन्ने की फसल को जो है बांधने का जरूर सोचें, उसको जो है गिरने से बचाने के लिए। अब बात आती है जैसे हमारी जो है कुछ दाल वाली फसलें हैं।